ने जवाब दिया, ऐ शुएब, तेरी बहुत सी बातें तो हमारी समझ ही में नहीं आती और हम देखते हैं कि तू हमारे दरमियान एक बेजोर आदमी है। तेरी बिरादरी ना होती तो हम कभी का तुझे संगसार कर चुके होते। तेरा बलबूता तो इतना नहीं है कि हम पर भारी हो।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, मौसम बदल रहा है और उसके साथ ही बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम, गले की खराश जैसे बहुत से सेहत के मसाइल आम हो रहे हैं। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि स्कूल में जबकि मौसम सरमा जैसे अभी शुरू हो रहा है और उसमें देखते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप देखिए कि अगर बच्चों को गर्म कपड़े और कुछ जो पानी उनके पीने का ख़ास ख्याल रखिए, तो उससे जो बच्चों में जो सेहत के मसाइल हैं वो आधे रह जाएंगे। आमतौर पर ज़ुकाम है, खांसी है और इसी तरह और भी मसाइल जो हैं वो पेट के मसाइल भी हो सकते हैं। तो इसमें करना ये है कि मौसम के मुताबिक कपड़े जो हैं वो आप पहनिए, खासतौर पर बच्चों का ख़ास ख्याल रखिए। हाइजीन, हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा पानी पीजिए और जो अपनी ग़िज़ा है उसको हल्की और बैलेंस रखिए। नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, नींद ज़रूर पूरी कीजिए। हर उम्र के अफराद को नींद जो है अपनी पूरी करनी है 6 से 7 घंटे, और इससे हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, जिस्म की जो कुव्वत मुदाफ़त है वो ज़्यादा होती चली जाती है। WHO के मुताबिक अगर हम हाथ जो धोते हैं यानी हैंड हाइजीन पर ध्यान देते हैं तो जो 40% इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो कम होती चली जाती हैं। आपने करना ये है कि बहुत ज़्यादा जो ठंडे मशरूबात हैं उन्हें ज़रा दूर रखिए। वैक्सीन ज़रूर लगाइए, फ्लू वैक्सीन जैसे कि शुरू हो चुकी है और आप ज़रूर वैक्सीन जो है वो लगवा लीजिए। इसमें सोचने की बात यह है कि हम सोचें कि हम में से कितने अफराद हैं जो रोज़ हाथ धोने के लिए सोप का इस्तेमाल करते हैं, और क्या आपने अपने बच्चों के स्कूल बैग्स में जो सैनिटाइजर्स हैं वो रखे हैं या नहीं, इस पर ज़रूर तवज्जो दीजिए। ये कि मौसम बदलना कुदरत का एक निज़ाम है, लेकिन एहतियात हमारा फ़र्ज है। छोटी छोटी तब्दीलियाँ बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ हैं या सेहत के मसाइल हैं उससे हमें बचा सकती हैं। साफ रहिए, मोहतात रहिए और हर मौसम को सेहतमंद अंदाज में गुजारिए। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
4: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। आरजे सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से शहर की गली में एक जवान औरत रहती थी जिसे गार्डनिंग का बहुत शौक था। उसकी जिंदगी का एक हिस्सा उसके बाग से जुड़ा हुआ था। उसने छोटी सी जमीन पर अपनी छोटी सी जगह में हर किस्म के पौधे लगा रखे थे और वो हमेशा उनका ख्याल रखती थी। हर सुबह वो अपने बाग में जाकर पौधों की देखभाल करती थी। हर पौधे की जिंदगी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी और वो उसे अपनी खुशी समझती थी। इस औरत का नाम था आमना। आमना का दिल और दिमाग दोनों खुले दिल से गार्डनिंग किया करते थे। उसके लिए फूल सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि एक जज्बा थे जो उसके दिल को सुकून दिया करते थे। आमना को फूलों की खूबसूरती और उनकी नरमी से कुछ खास मोहब्बत थी। वो दिन में काफी वक्त अपने बाग में गुजारती जहां वो पौधों का ख्याल रखती थी और नए नए फूल लगाने की कोशिश किया करती थी। एक दिन जब आमना अपने बाग की देखभाल कर रही

की थी, उसकी नजर एक कैटलॉग पे गई। वो अपने शौक के मुताबिक नए नए पौधे देखने का शौक रखती थी और इस बार भी उसने एक नया पौधा देखा जो अपने खूबसूरत फूलों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर था। उसने सोचा, अरे भाई ये पौधा तो मेरे बाग में होना चाहिए, ये तो मेरे बाग को और भी खूबसूरत बना देगा। आमना ने फौरन वो पौधा खरीद लिया और अपने बाग में लगा दिया। उस पौधे की एक खास बात ये थी कि वो अपनी शाखें बहुत तेजी से बढ़ाता था लेकिन फूल जल्दी नहीं खिलते थे। आमना ने उस पौधे को अपने बाग के कोने में दीवार के बिल्कुल पास लगा दिया। उसे ये बात पता थी कि इस पौधे को बड़ा होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो ये उम्मीद भी कर रही थी कि एक दिन इस पौधे से खूबसूरत फूल भी जरूर निकलेंगे। दिन गुजरते गए और आमना हर दिन अपने बाग की देखभाल करते हुए इस पौधे का जायजा लेने लगी। लेकिन आमना ने ये देखा कि दिन ब दिन इस पौधे पर कहीं भी फूल नहीं खिल रहे थे। उससे आमना को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी जब कुछ हफ्तों बाद भी पौधे पर कोई फूल नजर नहीं आए तो उसने सोचा कि शायद इस पौधे को काट देना चाहिए। उसे लगा कि इस पौधे का इस बाग में कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके ऊपर फूल ही नहीं। एक दिन जब आमना अपने बाग की दीवार के पास खड़ी थी और अपने पौधे को काटने का फैसला कर रही थी, उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त सारा आई। सारा का एक छोटा सा बच्चा भी था और वो हर दिन आमना के बाग में खेला कूदा करता था। सारा ने आमना को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया आमना, तुम्हारा पौधा बहुत खूबसूरत फूल दे रहा है। आमना हैरान हो गई और सोचा, हैं क्या, मेरा पौधा तो अब तक कुछ नहीं दे रहा था, मेरे बाग में तो कोई फूल नहीं खिले थे। आमना ने अपनी दोस्त सारा से कहा, मेरी तरफ तो कुछ भी नहीं खिला, मेरे बाग में तो कोई फूल नहीं खिला, तुम किस फूल की बात कर रही हो, तुम किस बात पर शुक्रिया कह रही हो। सारा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं उसी पौधे के बारे में बात कर रही हूँ जो तुमने अपनी दीवार के पास लगाया था। उसने अपनी शाखें दीवार के छेदों से गुजारते हुए मेरी तरफ फैला दी हैं और अब उन शाखों पर बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। वो फूल देखकर मुझे लगता है कि तुमने जो पौधा लगाया था वो वाकई एक खूबसूरत पौधा है। आमना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, वो फौरन अपनी दीवार के दूसरी तरफ गई। जब उसने देखा तो उसे वाकई में अपने पौधे के खूबसूरत फूल नजर आए जो दीवार की दूसरी तरफ खिल रहे थे। फूल इतने खूबसूरत थे कि आमना का दिल भर आया। उसे ये बात समझ में आई कि अगर उसकी कोशिश उसे फौरन नजर नहीं आई तो उसका मतलब ये तो ना था कि उसकी कोशिश बेकार जा रही थी। आमना को ये समझ आया कि कभी कभी हम जो कुछ करते हैं उसका असर हमेशा फौरन नजर नहीं आता। हमारी मेहनत के नतायज कभी कभी हमें देर से मिलते हैं और जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए बेकार हो रहा है वो किसी और के लिए फायदे का सबब बन सकता है। आमना ने अपनी जिंदगी में इस बात को समझा कि हर मेहनत का अपना एक फल होता है और अगर हम अपनी कोशिश में सब्र रखें तो हम अपने मकसद तक जरूर पहुंच सकते हैं। उस दिन आमना ने अपने पौधे की तरफ देखा और सोचा, अगर मैं उस दिन अपने पौधे को काट देती तो मुझे कभी ये खूबसूरत फूल नजर नहीं आते। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी और अब जाकर मुझे उसका फायदा मिल रहा है। आमना ने अपनी गलती से ये सीखा कि अगर वो अपनी मेहनत से कभी पीछे हट जाती तो ये खूबसूरत मंजर उसे कभी देखने को ना मिलता। इस बात को समझते हुए आमना ने अपनी जिंदगी में नए जज्बे के साथ अपने पौधे की और अपने बाग की देखभाल करना शुरू कर दी। उसने ये सीखा कि जिंदगी में हर चीज का अपना वक्त होता है और हर कोशिश का एक नतीजा होता है। अगर आप अपनी मेहनत में ईमानदारी से लगे रहें तो चाहे वो आपको फौरन नजर आए या ना आए, एक दिन वो मेहनत अपना रंग जरूर दिखाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको शायद फौरन अपनी मेहनत का नतीजा ना नजर आए, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपकी कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा। आपका हर कदम, चाहे आपको उसका नतीजा नजर आए या ना आए, किसी ना किसी चीज को बेहतर बना रही होती है। मेहनत का फल मिलने का वक्त हमेशा अलग होता है, बस हमें उस वक्त का इंतजार करना जरूरी होता है।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है, इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है? किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है? इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समात कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं हूं नाज़िया FM 107 से and welcome to the segment called Economic Concept. दोस्तों, आज मैं आपके पास लेकर आई हूं बहुत ही कमाल की टर्म and this is called cutie. Not your cutie. आपकी क्यूट डॉटर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ क्यूटी यानी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की। दोस्तों, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग क्या है? बेसिकली क्यूटी यानी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक जैसे US फेडरल रिजर्व या फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक तब इस्तेमाल करती है जब वो मार्केट से पैसा निकालना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक अपने पास रुके हुए बॉन्ड्स या फिर सिक्योरिटीज बेचकर मार्केट से कैश वापस ले लेते हैं ताकि मार्केट में पैसे की सप्लाई कम हो जाए, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, महंगाई तो सारा खेल महंगाई को रोकने का होता है, लेकिन महंगाई फिर भी रहती है। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो क्यूटी है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है किस तरह से काम करती है। तो देखिए, जब इकोनॉमी स्लो हो रही होती है या फिर क्राइसिस होते हैं तो सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी क्यूई करती है, यानी मार्केट से बॉन्ड्स खरीद कर पैसा मार्केट में डालना। लेकिन जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो इसका उल्टा किया जाता है, यानी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की जाती है। ये टाइटनिंग बेसिकली जो है वो सेंट्रल बैंक अपने पास रखे हुए बॉन्ड्स या फिर सिक्योरिटीज मार्केट में बेच कर करती है। जब लोग या फिर बैंक्स ये बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वो सेंट्रल बैंक को पैसे देते हैं। इस तरह मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी कम होने से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, लोन्स लेना महंगा हो जाता है और लोग खर्चा करने से हिचकिचाते हैं। इससे महंगाई कंट्रोल की जाती है। चलिए आपको मैं एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये किस तरह से काम करती है, क्यूटी। तो देखिए, सोचिए कि एक शहर में मान लीजिए 100 लोग हैं। वैसे तो एक शहर में 100 होंगे नहीं, बट मानना और सोचने में क्या जा रहा है। तो एक शहर में 100 लोग हैं और सबके पास ज्यादा पैसे हैं। वाह, ऐसा कोई शहर है क्या? तो ऐसा हम सब सोच रहे हैं फिलहाल कि एक शहर है जिसमें 100 लोग हैं और सबके पास पैसे ज्यादा हैं। सब शॉपिंग कर रहे हैं। अब शॉपिंग कह रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा के ज्यादा यहाँ पर फीमेल्स हैं, मेल भी हैं, वो भी शॉपिंग कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं और गैजेट्स खरीद रहे हैं। चीजें खरीदने की वजह से क्या हो रही है? महंगी होती जा रही है। इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो सेंट्रल बैंक जो कि आप पे निगाह लगाए बैठा है, उसने ये देखा कि भाई चीजें ज्यादा बढ़ रही, महंगी हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक देखती है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है तो वो बेसिकली क्यूटी का इस्तेमाल करते हैं, यानी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का इस्तेमाल करती है। तो देखो, सेंट्रल बैंक अपने पास रुके हुए बॉन्ड्स को मार्केट में बेचती है, लोग या फिर बैंक्स ये जो बॉन्ड्स हैं उन्हें वो खरीदते हैं और पैसा सेंट्रल बैंक को देते हैं। अब मार्केट में पैसा हो गया कम, लोगों के पास जो है वो खरीदारी करने की जो ताकत है वो भी हो गई कम। तो जब ये दोनों चीजें कम हो गई तो ऐसे में महंगाई क्या हुई? कंट्रोल हो गई। भाई, ये है तरीका। वही एक और मिसाल भी मैं आपको देती हूँ, शायद आप थोड़ा सा और इसे गहराई से समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान स्टेट बैंक या फिर US फेडरल रिजर्व क्यूटी शुरू कर दे तो बैंक्स को लोन देना महंगा हो जाएगा। लोग कम लोन लेते हैं क्योंकि भाई अब लोन जब महंगा हो गया तो लोग ज्यादा थोड़ी लेंगे, कम ही लेंगे। बिजनेस कम इन्वेस्ट करते हैं और इकोनॉमी का क्या हाल होता है? इकोनॉमी बेसिकली स्लो हो जाती है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इन्फ्लेशन भी यानी महंगाई भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर महंगाई को रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे लगाए जाते हैं? अच्छा देखिए, क्यूटी यानी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का इस्तेमाल कब और क्यों होता है ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, क्यूटी यानी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का इस्तेमाल महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन, मैं आपको बता रही हूँ। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसके लिए जो है सेंट्रल बैंक बीच में कूदता है और फिर आपको मैंने बताया कि किस तरह से वो जो है इस पॉलिसी के चलते कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को। वहीं जब इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है यानी सब कुछ बहुत तेज चल रहा हो, प्राइसेस बढ़ रही हो, तो ऐसे में अगेन क्यूटी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर जब सेंट्रल बैंक को लगे कि मार्केट में ज्यादा पैसा फ्लोट कर रहा है तो उस सिचुएशन में भी क्यूटी पॉलिसी यूज होती है, तो यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो था वो ये बताया कि क्यूई और क्यूटी में क्या फर्क है। तो क्यूटी बेसिकली इज क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, यानी सेंट्रल बैंक मार्केट से पैसा निकालती है बॉन्ड्स को बेचकर। वहीं दूसरी चीज है क्वांटिटेटिव ईज या क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी सेंट्रल बैंक मार्केट में पैसा डालती है बॉन्ड्स को खरीद कर। वैसे एक और भी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगी, अभी आपको शायद पता हो, आई थिंक बहुत से लोग जो दिलचस्पी रखते हैं फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या फिर मतलब जिनको बिजनेस न्यूज में दिलचस्पी रहती है, आई एम श्योर उन्हें पता होगा कि अभी 2022 एंड 2023 में US फेडरल रिजर्व ने क्यूटी शुरू किया था। दैट मीन्स क्वांटिटेटिव टाइटनिंग शुरू की थी क्योंकि US में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। जी हाँ, आप अगर आर्टिकल्स पढ़ा होगा तो इसकी नॉलेज होगी होगी। उन्होंने अपने पास रखे हुए बॉन्ड्स धीरे धीरे बेचने शुरू किए ताकि मार्केट से पैसा कम हो और इन्फ्लेशन यानी महंगाई कंट्रोल हो। वैसे देखा जाए तो क्यूटी की वजह से लोगों की जो लाइफ है वो भी मुतासर होती है। लोन्स महंगे हो जाते हैं, फिर चाहे घर का लोन लेना हो, गाड़ी हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ये सारे लोन्स लेना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं पर स्टॉक मार्केट गिर सकता है क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास कम पैसे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऐसे में सिचुएशन क्या होगी, मार्केट की बदहाल हो जाएगी भाई। वहीं महंगाई कंट्रोल हो सकती है, चीजें महंगी होना स्लो हो जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट तो करती है। तो खैर, अब इसको मैं पूरी तरह से अगर समराइज करूं, मुख्तसर में आपको समझाऊं, तो क्यूटी यानी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल बैंक मार्केट से पैसा निकालती है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। इसके लिए वो अपने पास रुके हुए बॉन्ड्स या फिर सिक्योरिटी मार्केट में बेचती है और पैसा वापस लेती है। इससे लोन्स महंगे हो जाते हैं, लोग कम खर्चे करते हैं और इन्फ्लेशन रुक जाता है, और मैं भी अब यहाँ पर रुक रही हूँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नए सेगमेंट में एक और नए टर्म के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।

0: की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तरतीब व पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: हार के वो जा रहा है कोई शबम गुजार के तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बार।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107. Time check. Time check. राइट गाइस, टाइम फॉर द टाइम चेक. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम आदाब, क्या हाल चाल है. और आज हम वीकेंड्स में एंट्री लेते हुए एंटर 6th of August, क्या बात है, किस तरह से ये, कितनी तेजी से ये वीकेंड, ये वीक निकल गया पता ही नहीं चला. और इतनी जल्दी हम लैंड कर चुके हैं वीकेंड पे. वैसे तो बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है वीकेंड को लेके, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने देखा कि उतना एक्साइटमेंट बिल्ड नहीं होता. हाँ, ये थोड़ा सा आपके जहन में रिलैक्सेशन रहता है कि हाँ अभी 2 दिन मिल जाएंगे या 1 दिन मिलेगा, छुट्टी हम इंजॉय कर लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, या हो सकता है जो हमारे पास पेंडिंग वर्क है वो कहीं ना कहीं जाके अब हम फिनिश करेंगे. लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हर वीक के बाद, पूरे वीक काम करने के बाद हमें छुट्टी या फिर हमें रेस्ट करने का मौका मिलता है, या यूं कहें कि हमें जो है इस तरह के छोटे से रियलाइजेशन का मौका मिलता है. वैसे देखा जाए तो ये ज़िंदगी है ना अपने आप में एक बड़ी बुक की तरह है. एक पूरे बुक भी नहीं कहूँगी बल्कि एक पूरे इंस्टीट्यूशन की तरह हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है. और कितनी बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो हमें कुछ नया और कुछ बेहतर सिखा के जाती हैं. जैसे कभी कोई मुस्कुराहट ये बताती है कि आज हम खुश हैं, कभी कोई हमारे चेहरे की उदासी हमें और आपको ये सिखाती है कि आज कुछ तो हमारे दिल के मुताबिक नहीं हुआ है, कभी हमें शुक्रगुजार रहने से दिल को सुकून देती है ये ज़िंदगी, और बहुत सारी चीज़ें. और सबसे बड़ा लेसन जो हम और आप इस इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं वो ये कि कामयाबी जो है वो सिर्फ सिर्फ बड़े बड़े अचीवमेंट्स का नाम नहीं है, बल्कि हर रोज़ एक बेहतर इंसान बनने का नाम है, या हर रोज़ एक बेहतर इंसान बनने का सफ़र है. तो बस यही छोटी सी प्यारी सी सोच और ये छोटा सा खूबसूरत सा प्यारा सा जज्बा, इसी के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं समर मॉर्निंग्स में. मैं नाज़िया आपके साथ और कुछ अगले चंद घंटे, कह सकते हैं 3 घंटे, आप और मैं यहाँ पर साथ रहेंगे. बातें हम हमेशा ही करते हैं, आज भी करेंगे. आज भी हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एंड आई एम श्योर कि आपका भरपूर पार्टिसिपेशन होगा. कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर होगा बताने के लिए, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी जिस टॉपिक से डेफिनेटली रिलेट करेगी, कुछ मैं भी आपको बताऊँगी, बहुत कुछ आप मुझे बताएंगे. तो चलिए बस मुस्कुराइए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ी सी पॉजिटिव उसमें पॉजिटिविटी डालिए, और हाँ हंसते मुस्कुराते इस शो का आगाज़ कीजिए. जैसे कोई भी अच्छा काम

0: करते हैं तो सबसे पहले जो है हम चाहते हैं कि हम उसमें प्रेयर्स शामिल करें। बस इसी तरह से शो का आगाज भी हम करेंगे सुबह के अस्कार के साथ। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं मॉर्निंग अस्कार की तरफ, वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे हुक टू FM 107, दिल से देसी।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

हैं जिसमें एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब की डिटेल में बताई गई है। हालांकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हाँ प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर का है दैट इज़ क्वाइट मैंडेटरी। और इस बुकलेट में कंट्रोल्ड मेडिसिंस की लिस्ट भी शामिल की गई है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक बार गो थ्रू करना ही पड़ेगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर लाइक कैरिंग बहुत सारी मेडिसिंस। तो उस केस में आपको बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद एप्लीकेशन को, मतलब आप देख लीजिए सारी रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद एप्लीकेशन को 3 working day के अंदर अप्रूव या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है। ट्रैवलर्स को ये एडवाइस दी जाती है कि वो अपनी ट्रैवलिंग डेट से कम अज़ कम 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, एटलीस्ट 1 week एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करें, जिससे उनके पास भी टाइम रहे और ऑप्शंस भी रहे, है ना। और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो ट्रैवलर्स को सेफ और सेहतमंद जो है रिक्वायरमेंट्स की जो है वो किस तरह से उन्हें कंप्लीट और फुलफिल करना है उसमें बहुत ज़्यादा मदद देगा। और कहीं ना कहीं ये मदद जो है वो हम सब के लिए ज़रूरत भी है। आपको बताएं कि सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को नेशनल ऑथेंटिकेशन सिस्टम के ज़रिए लॉग इन करना होगा और एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा और साथ ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले ही बताया कि वैलिड प्रिस्क्रिप्शन इज मैंडेटरी, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी और ड्रग कंट्रोल एप्लीकेशन के लोग जो है इसका जायज़ा लेंगे और फिर परमिशन जो है वो जारी की जाएगी। यानी सबसे अच्छी प्यारी और क्विक में शॉर्ट सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने ट्रैवलर्स के लिए कंट्रोल मेडिसिन का एक नया इलेक्ट्रॉनिक परमिट सिस्टम लॉन्च कर दिया है। अब जितने भी ट्रैवलर्स या मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेडिसिन कैरी कर रहे हैं या लेकर आ रहे हैं, तो वो अब ऑनलाइन परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक परमिट भी हासिल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ने ये भी मशवरा दिया है कि ट्रैवल से कम से कम 5 working days पहले एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और जब परमिशन मिलेगी उसमें कम से कम 3 working days जो है वो लगेंगे ही लगेंगे। तो ये एक अच्छी वाली न्यूज़, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब आ रहे हैं और पूरे साल की दवा कैरी करते हैं, है ना, पूरे साल की जो दवाएं हैं वो लेकर आ रहे होते हैं। तो बस मैंने कहा चलो अब आपको बता दिया जाए कि अगर आप आ ही रहे हैं और साल भर की दवा या 6 महीने की या 8 महीने 7 महीने का कोई लेकर कैरी करके आ रहा है तो उन तक ये न्यूज़ पहुंच जानी चाहिए, अब बिल्कुल आसानी से सारे काम होंगे। अच्छा जी, अब इसके साथ अब आपकी तरफ आ जाते हैं, मेरा मतलब है आपके मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। वैसे आप बताइए कहाँ पहुंचे हैं, किस तरह से आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हुई, कैसा मौसम है, क्या कुछ चल रहा है, क्या ऑफिस लैंड कर चुके हैं या अभी प्लानिंग ही चल रही है आपकी। 666-22-107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आइए, बताइए, बतियाइए, अपना हाल चाल भी मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड यस, अब से थोड़ी देर के बाद मैं आज का सवाल रखने वाली हूँ, तो सवाल तो नहीं कहना चाहिए, आज का टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। तो बस उसके लिए आपको जो है वो तैयार रहना है, तैयार इन द सेंस कॉल करना है। कॉल करने के लिए हमारे नंबर है 4434377। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको मैंने बता दी। और आज सबसे पहले मैसेज हमें भेजा है, हाँ, और यस, पूरी टीम को सलाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, आप सबकी आवाज़ और पॉजिटिव वाइब से सुबह और भी खूबसूरत हो जाती है। अल्लाह ताला हम सब के दिन को जो है वो खुशियाँ और अच्छी एनर्जी से भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच यूसुफ शमीम जी। आई थिंक ये अर्ली ट्रैवल करते हैं, इनकी मॉर्निंग जल्दी स्टार्ट होती है, इनके वर्किंग आवर्स क्या है मुझे बताइएगा ज़रा। आप क्या 6 बजे से पहले निकलते हैं? ओके, यहाँ पे तौफीक जी का मैसेज है, सलाम आपने कहा है, सभी सुनने वालों को सलाम कहते हैं एंड बकरा से हमें सुनते हुए वेरी गुड मॉर्निंग आपको एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये सुबह बखैर और ये खूबसूरत सा मैसेज शिराज मलिक जी का है, सो या इट्स रियली अ नाइस वन। सलाम कहा है शहजादा सलीम जी ने, हो सके तो कॉल कर लेना, अब सबसे पहले आपको करूँगी, ठीक है। कल भी ऐसा हुआ कि आपने मुझे बोला और मैं मिस कर गई, सो वो मेरी फॉल्ट थी, आज हम उसे किसी तरह से कंपनसेट करेंगे, तो आज सबसे पहले आपसे बात करेंगे। इसके साथ नाजिया जी, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ लवली डे एंड हैप्पी वीकेंड, वी विश यू द सेम। रमेश जी थैंक यू सो मच। और खूबसूरत सा ये मैसेज, ओहो यहाँ पे सलाम कहते हैं एंड ग्रेट मॉर्निंग, थर्सडे ऑफ हो तो कॉफ़ी का अपना ही मज़ा है,
क्या

0: बात है जावेद जी, बहुत जबरदस्त तरीके से कॉफी एंजॉय करते हुए एंड दैट टू सो अर्ली मॉर्निंग। आज आपको बाय द वे ऑफ क्यों मिला है जरा बताएंगे मुझे? आज तो थर्सडे तो यूजुअली वर्किंग ही होता है ना। चलिए ये भी हमें बताएंगे। सलाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, सरफराज हमें जो है वो सुन रहे हैं। आपके टाइम से हमारी भी ड्यूटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी 6 बजे आपका भी काम स्टार्ट हो जाता है मेरी तरह। ये तो होता है। ओके, और यहाँ पर है गुड मॉर्निंग नाजिया मैम और सभी सुनने वालों को, गुड मॉर्निंग कहते हैं। जस्ट फिनिश विद माई जिम एंड गोइंग बैक होम। वाह भाई वाह, असली सही तरीके से जो मॉर्निंग की शुरुआत की है वो इन्होंने की है। इनका नाम है GSK, नाम तो पता नहीं चल रहा है मुझे। ओके सो नाइस, चलिए आपने तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपने मॉर्निंग का आगाज़ किया है, दैट्स रियल नाइस। रिजवान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इसके अलावा सऊदी से हमें सुन रहे हैं जावेद जी, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैडम यहाँ भी अच्छा मौसम है, शायद बादल है शायद, है ना, इसीलिए अच्छा मौसम है। अच्छा, इसके साथ गुड मॉर्निंग का है, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और ये है इकराम हमारे साथ, गुड मॉर्निंग कहते हुए, एंड इनका नाम भी चेक कर लेते हैं, एंड गुड मॉर्निंग पीस लिखा हुआ है। सो गुड मॉर्निंग मैम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और रईस जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए, गुड मॉर्निंग कहते हुए। कॉफ़ी को इन्जॉय करना तो चाहती हूँ मैं, बट अभी तो नहीं, अभी तो आपका साथ ही इन्जॉय करूँगी। तो आपका मेरा साथ अभी बहुत सॉलिड वाला है, 9 बजे तक रहने वाली हूँ, बहुत सारी बातें करनी है और आज का जो मेरा टॉपिक है उस पर भी बात होगी। तो फिर केस आपने नंबर लिखना मिस कर दिया है, आपको पता नहीं है किस नंबर पे हमें बात करनी है, तो हम आपको बता दें कि नंबर है 4434377। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, थोड़ी देर बाद हम अपनी कॉल्स लेने का सिलसिला स्टार्ट करेंगे एंड वी वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट कि आप हमारे साथ जुड़े ओवर कॉल। और अगर हाँ आप किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, मसरूफ हैं, यू नो, तो आप हमारे साथ जो है वो मैसेज के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसका नंबर है 666-22-107। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, वापस आऊँगी तो कुछ और अपडेट्स और बातें आपके साथ एंड या आज का हमारा टॉपिक वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
2: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر
3: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے
2: سنیے ایمبیسڈر آف دا مانتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر دل سے دیسی
4: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है।

0: अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ 6:32 ऑन द क्लॉक. और आज है वीकेंड वाली वाइब. और वीकेंड वाली वाइब जब तक आपके साथ, मतलब तब तक अधूरी है जब तक आपका दिल पूरी तरह से मुतमईन ना हो, आपका दिल पूरी तरह से रिलैक्स्ड वाले मोड में ना आए और आपका दिल जो है वाकई खुश ना हो. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करते हैं और हमारा दिल खुश होता है, दिल को सुकून मिलता है, खुशी का एहसास होता है. उसमें हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ जब आउटिंग के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंजॉय करते हैं. कुछ लोगों के लिए जो है ना खुशी का मतलब है अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना उन्होंने खाया तो उनको एक खुशी का एहसास होता है. कुछ लोगों के लिए सिंपली अ कप ऑफ टी, एक अच्छी सी चाय मिल जाए तो उनके लिए वो खुशी का एहसास होता है. लेकिन कुछ लोग जो असली खुशी को जानते पहचानते हैं, उनके लिए खुशी का मतलब है दिली सुकून. और दिली सुकून हमें कब मिलता है? जब हम किसी की मदद कर दें, है ना, और वो हमें जो है वो जेन्युइनली आके भले से शुक्रिया कहे ना कहे, उसका काम हो जाए और वो आप उसकी आंखों में देख लें तो आपको लगता है वाह क्या मैंने कितना अच्छा काम किया है. भले कोई आपकी पीठ थपथपाए ना थपथपाए, आप दिल ही दिल अपनी पीठ जरूर थपथपाते हैं और आपको लगता है कि आज तो मैंने कुछ बहुत अच्छा किया. ऐसे ही एक और काम भी है जिसे करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर कर जाएं हम ना तो फिर वाकई अपने आप को सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने इतना नहीं होता, फिर होता है कि वाकई खुद को हग करें, खुद को गले लगाएं. और वो है चैप्टर, एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड माफ़ कर देना. आज जो है वो हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग हैं इतने डेयरिंग हैं, बड़ी बड़ी बातें हुई बट आपने अपना दिल बड़ा करके माफ़ किया. माफ़ कर देना या माफ़ करने के बाद कैसे रिएक्ट करना, वो सारी चीज़ें आज हम रिएक्ट उस पर बात करेंगे. ये नहीं बात करेंगे कि आप माफ़ी किससे मांगे. आपके साथ कोई ऐसा किस्सा पेश आया जहाँ किसी ने कुछ ऐसा किया जो वाकई माफ़ी के लायक तो नहीं था बट आपने अपना दिल बहुत बड़ा किया और उस शख्स को माफ़ कर दिया. क्या आपको कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि लोगों ने जो है वो मजबूर किया कि आप उन्हें माफ़ ही ना कर पाए? मतलब आपने एक बार उन्हें माफ़ किया, फिर उन्होंने रिपीट की वो गलती और फिर आप उस स्टेज पे आ गए कि अब आपने तय कर लिया कि नहीं, मैं अब इस शख्स को कभी माफ़ नहीं करूँगा. क्या आपको ऐसा लगता है कि एक्शन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो वर्ड्स होते हैं? आज जो हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे वो है माफ़ करने वाली बात. और मुझे बताइएगा, माफ़ करने के बाद, दिल से माफ़ करने के बाद भी क्या इंसान को बाउंड्रीज जो है वो तय करनी चाहिए? बाउंड्रीज उनके लिए होनी चाहिए. क्या हम किसी को माफ़ कर सकते हैं और साथ ही खुद को दोबारा हर्ट होने से भी बचा सकते हैं? कोई है स्ट्रैटेजी आपके पास? ये आज का मेरा बड़ा मुद्दा है. बड़ा मुद्दा यही है कि हमने एक शख्स को जो है जिसने बड़ी गलती की, उसने जेन्युइनली आके हमसे माफ़ी मांगी और हमने शायद उसे माफ़ कर दिया. लेकिन अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हम खुद को दोबारा हर्ट होने से कैसे बचाएं? कुछ है आपके पास जो आप बता सकते हैं? यानी माफ़ी दिल से होगी लेकिन बाउंड्रीज का होना भी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या ख्याल है आपका? बस आज यही मेरा टॉपिक है, माफ़ करना. कुछ लोग कहते हैं कि माफ़ी ठीक है, एक चांस आप उन्हें ज़रूर दीजिए. कुछ लोग कहते हैं नो, वी शुड गो फॉर सेकेंड और थर्ड चांस एंड इवन लाइक फोर्थ चांस. तो क्या इतना भी चांस दिया जा सकता है? क्या कोई ऐसा बंदा था जिसने जनरली ऐसा आपको हर्ट किया, इतना ज़्यादा किया, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आपने उनको यू नो सेकेंड थर्ड एंड मे बी लाइक फोर्थ चांस दिए? तो बताइए ज़रा मुझे, मेरे साथ जुड़िए 4434377 पर. फिलहाल एक कॉलर यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं तो चलिए बात कर लेते हैं. हेलो.
1: हेलो, आप सलाम, आप क्या हमेशा जुड़ गए पहले?
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, मबरूक, आप जुड़ गए पहले, बहुत अच्छा किया. सबसे अच्छी बात ये कि आपको लोग सुन लेते हैं, आप बहुत अच्छा सा एक जो टोन है ना वो सेट कर देते हैं हमारे सवाल की और फिर लोग जो है ना उसको फॉलो करते हैं अच्छे से. तो क्या कहेंगे, पहले तो बताइए कि किसी को माफ किया, कोई बड़ी गलती थी लेकिन आपने माफ कर दिया दिल बड़ा करके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, करना भी चाहिए. और अगर हम नक देखेंगे तो ये हमारे और आपके हिसाब से कोई काम नहीं होता है. हाँ. ये अगर हम सोचें किसी के सामने वाले के साथ में हमने कोई चीज का एक बार दो बार दस बार एहसान किया, वो भी हमारे साथ करेगा, वो हम ये करके रखें एक्सपेक्ट करें, तो ये होता नहीं है, बहुत कम होता है, मैं बहुत कम देख रहा हूँ. खासकर मेरे लाइफ में मैंने तो बहुत धोखा खाया नाजिया, मैंने इतना धोखा खाया कि लोगों के साथ मैंने इतना रहम दिली और इतना इतना उनका काम बना, लेकिन वो एंड टाइम पे हमारे दुश्मन बन बन गए और करीब करीब के लोग, तो थोड़ा सा मतलब ये होता है सामने वाले को माफ करने का। फिर उस बंदे से आदमी को ये भी होशियार हो जाना चाहिए कि ये बंदा हमारे लिए किस टाइप का, मतलब ये नहीं कि मतलब हमेशा उससे आप जुड़े रहो, हमेशा उसको मतलब ये करते रहो। जैसे कोई खास रिश्ता होता है ना, उनसे अगर आप बहस करोगे, उनसे ये करोगे, तो बहुत ज्यादा मतलब आपके उसमें दरार पैदा और लोग मतलब तमाशा देख के और आपके उसमें बहुत ज्यादा सारी चीजों पे मतलब खराबी का जरिया बन जाएगा। तो इससे बेहतर है कि अगर वो तुम्हारे साथ में हमेशा आपके साथ में धोखा करते हैं, मुनाफ़कत करते हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, बस उतने रखें, कतर रहमी ना करें। कतर रहमी के मैं कायल नहीं हूँ, अगर आप कतर रहमी कर लेंगे तो फिर तो वहां से पूरा आप अल्लाह के उसमें मतलब ये हो जाएंगे, गुनहगार होंगे और आप अल्लाह के यहाँ पकड़ होएगा। तो कतर रहमी ना करें, सिर्फ उतने ही बात उनके साथ में शेयर करें, उतने ही उनसे मतलब रखें जितना कि मतलब हमारे लिए कोई मुसीबत का जरिया ना बने। बाकी चीजों में मतलब थोड़ा सा अपने अपने आप को ये होके रहें खबरदार कि मतलब उतने चीज और उतनी चीजों को शेयर करके रखें, नहीं तो बस अपना अपनी बात और अपने जो करीब के हैं उतने उतने तक ही वो उस चीज को ये रखें। मैं तो यही समझूंगा।
0: अच्छा, आपको किसी ने कोई जो सबसे बड़ा धोखा दिया, कोई है ऐसा जिसने सबसे बड़ा धोखा?
1: जैसे मैंने बहुत जगह पे, अब मैं क्या बयान करूं, वो इतने इतने धोखे देने वाले थे कि मतलब बहुत ज्यादा पैसे का भी लॉस किया उन्होंने धोखे में और अपने करीब के बन के मतलब और बहुत ज्यादा बहुत लाखों लाख का नुकसान करवाया। लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि चलो ये अल्लाह को मंजूर था, ये हमारे पास था उस वक्त इतना, हमारे पास वो अल्लाह ताला ने दिया था और चलो इसकी तरफ समझ लो कि गया, अगर लॉस हुआ तो फिर अल्लाह ताला दिया, और दिया अल्लाह ने, दिया उससे कहीं ज्यादा भी दिया। हाँ, तो सब्र करना चाहिए बंदे को, ये नहीं मतलब बहुत ज्यादा जज्बात में आके फिर वहाँ पे, क्योंकि भाई हम किसी को आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं अगर, तो वो बंदा उसी का फायदा ज्यादा उठाता है हमारा।

0: ये कहना है कि बहुत ज्यादा आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें, उसको पूरा पहले छानबीन कर ले कोई भी फैसला लेने से पहले किसी के ऊपर। कोई अपना आपका जो करीब के बहुत करीब बन के कोई भी आपको लूटता है, आपको लॉस करता है, तो बहुत करीब बन के और बहुत ज्यादा आपको यकीन दहानी करके कि मतलब यार मैं आपसे ज्यादा मतलब ये नहीं हूँ और लोगों से सबसे ज्यादा मैं आपका मुखलिस हूँ, उसी पे बंदा धोखा खाए। और मेरे अंदर ये चीज है कि मैं बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट करने कर लेता हूँ कि यार मैं आपको जैसे मेरा दिल है उस तरीके से ही लोगों पर भी ट्रस्ट करके और फिर धोखे खा जाते हैं। थोड़ी देर में पता चलता है कि यार इस बंदे ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, बस मैंने बहुत खाया धोखा। अब मैं नाम लूंगा तो फिर उसमें अच्छा नहीं है। करीब करीब के लोगों ने बहुत ज्यादा
1: धोखा दिया, तो उन्होंने आपसे आके माफी मांगी या उनको कोई एहसास हुआ?
0: माफी नहीं मांगते कोई माफी नहीं, मतलब ये कहते बस वो अपना कुछ ना कुछ ये बयान करते हैं कि यार ऐसे था तो ऐसे था, तो अपनी बात को जिताने के उसमें कि मतलब मैंने आपका कुछ भी नहीं नुकसान किया, मैंने तो ये चीजें ऐसे ऐसे भाई ऐसे ऐसे जमीन खरीदवा दिए कि जो कि पूरा का पूरा रोड में मतलब उनको बाकायदा पता था, उनपे ट्रस्ट करिए कि वो पूरा रोड में है। और बाद में उनसे पूछा नहीं नहीं ऐसा नहीं था, अभी मैंने पूरा बाकायदा नक्शा निकलवाया, देखा तो देख रहा है कि पूरा वो पूरा लैंड ही पूरा का पूरा वो रोड में जा रहा है। और वो बंदे ने ये कर दिया। अब हमारे पास या तो बैठ के वहां पे, अब इतना वक्त नहीं है कि हम बैठ के वहां पे चले केस मुद्दा दें और उसको ये करें, हम बोले जाओ भाई ठीक है अभी इससे ज्यादा और क्या, अभी आंख बंद करके पैसा यहाँ से वहां से आप भेज दो जमीन को और दूसरे दूसरे जमीनों का फोटो भेज के ये करते हैं कि मतलब ये जमीन इतना अच्छा है, उसकी इतनी तारीफ यहाँ तक कि आप फोन लगते हो बंदे फोन भी नहीं उठाने के राजी है। हम बोले भैया चलो कम से कम तुम्हारी मदद कर, अब इतने पे ही ये हो गया, उतना कितना दिन खा हो गया। और परेशान भी रहते हैं वो लोग, अल्लाह ताला उनके उसमें फायदा नहीं देता, कुछ वक्त के लिए वो कमा लेते हैं फायदा। और कोई किसी का विश्वास यकीन जीत के और फिर उसको धोखा देना, ये बहुत बड़ा गद्दारी है, उस बंदे को नहीं ऐसा करना चाहिए कोई भी हो।
1: तो कर रहा है और थोड़ा सा आपको भी लिहाज रखना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए
0: क्योंकि ये चीजें हमारी भी मतलब हम लोगों की भी गलतियां
1: हैं। आपको नहीं हुआ, आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सबके साथ चीट हुआ, अब कोई भी किसी पे यकीन नहीं करेगा। सोसाइटी में यही तो यकीन ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है।
0: अभी भी वो सलाम दुआ करते मिल जाते हैं तो मैं उसको नहीं मानता हूँ, चलो ठीक है भाई तुमने जो किया, मैं मतलब ऐसा नहीं कि उनसे कोई मतलब दुश्मनी, बस सलाम दुआ तक बस उतने तक बात रखते, जरूरत से ज्यादा फिर अब उनसे थोड़ा सा खबरदार हो गए। बाकी ऐसा नहीं कि मतलब उनसे इतना लंबा तनाजा बना के उस पड़ोस और अगल बगल के लोगों को बताएं, हाँ इतना बताते जरूर कि इस बंदे से खबरदार है ना, ये बंदा सही नहीं है। कोई चीज का फैसला लेने से पहले उसके ऊपर ट्रस्ट करके अपना मतलब कोई भी चीज का बिजनेस हो या कोई भी चीज को ये नहीं करना, ये बंदा आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, ये तो जरूरी है बताना सामने वाले को कि मतलब पैसा ना करें, बस इतने तक। बाकी चीजों में भाई ये बाकी आना जाना और मतलब कोई अगर फंक्शन होता है तो उनको इनवाइट करना, उससे भी नहीं मतलब करते हैं कि यार अभी तो इनवाइट करो उनको, आना जाना जितना भी है वो बाकी रखो। लेकिन अब क्या कहें लोगों के ऊपर, अब यही माफी करना हुआ ना, बहुत लोग हैं कि जो कि छोटी छोटी बातों पर इतना तमाशा कर लेते हैं कि फिर उसका कोई फायदा होता नहीं है, कोई खास फायदा जो हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आता इतना आसानी से, कोई खास वापस नहीं करता, वो भी अपना कुछ ना कुछ ट्रम डाल के कि मतलब के साथ ऐसा किया था वैसा किया था वैसा किया था, आपने मतलब आपके ऊपर ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं।
1: सही बात है,
0: तो थोड़ा सा बंदे को कोई भी फैसला लेने से पहले मेरा यही कहना है कि मोहतात रहें और सामने वाले को माफ करना सीखे, अल्लाह ताला मतलब आपके लिए कोई जरिया बना देता है।
1: और फिर जब हम माफ करते तो अल्लाह ताला भी, तो हम भी तो कितने गुनहगार हैं, कितनी गुनाह कर जाते हैं जाने हम जाने में, और फिर अल्लाह ताला हमें माफ करते हैं तो ठीक है अपना दिल, लेकिन हाँ मोहतात रहिए माफ करने के बाद भी,
0: ये बहुत जरूरी है। जो कि करीब के लोग पैसे भी ले लेते हैं उनके वक्त पे, हम मतलब मेरे दिल में ये रहता है कि यार चलो सामने वाले की मदद कर दो, लेकिन वो बंदे कुछ ऐसे लोग हैं कि वो सालों साल तक वो अगर उनका काम चल रहा है तो आपके पास फोन भी नहीं करेंगे, फोन भी नहीं उठाएंगे जल्दी, हाँ उनको कुछ वक्त आ जाएगा, फौरी तौर पे आपसे कांटेक्ट करके और आपको अपना ये बना ले बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें बहुत आम हो चुकी हैं।
1: सही बात है,
0: इस चीजों में आदमी को मोहतात रहना है।

0: देने वाला देना। फिर हमको ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला इतना सुकून से मतलब चलाता है ना कि कोई परेशानी, थोड़ा सा लोगों को देखते हैं कि लोग किस तरीके से मतलब खुद परेशान है वो। मैं देखता हूँ अल्लाह ताला, मैं दूसरों पर ये करता हूँ, रहम करता हूँ और माफ करता हूँ, तो अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में कोई खास सुकून है इतना नहीं है। क्योंकि जो दीनी लिहाज से हम सोच के चलो किसी को अगर कर्ज दिए हैं तो एक सदका, एक सदके का सवाब, अगर वक्त पे नहीं दे रहा है और वो जो वक्त दिया तो डबल सदके का सवाब। अल्लाह ताला ने इसके बारे में भी आपको मतलब बता दिया है उसका, ये नहीं है कि मतलब आपका वो जाया या फ्री में मतलब ये हो रहा है, जितना आप सबका वो पैसा भी आपको हो सकता कल मिलेगा, वो तो देना ही पड़ेगा उनको, दे मिला और वो उतना देर तक आप अगर इंतजार कर लिए, बर्दाश्त कर लिए, तो वो सदके के उसमें आपको उसका अजर मिलेगा। तो ये सब चीजें बहुत हिम्मत करके और खासकर अपने रिश्तेदारी के, उसमें शैतान जो है बहुत बड़ा मतलब उसमें चाल चलता है, जो बर्बाद ये करने के लिए कोशिश करता है, इसमें थोड़ा सा मुहतात होके बर्दाश्त करना चाहिए। उसी बंदे को कर्ज दें या कोई चीज का ये करें, कोई राज बताएं कि जिससे मतलब आप को धोखा ना हुए, नुकसान ना हुए, थोड़ा सा ख्याल करें।
1: जबरदस्त,
0: तो ये सब चीजें मतलब ख्याल करना चाहिए बंदे को, और माफ करना मतलब बेहतर है कि, और माफ उसी का नाम है ना, माफी उसी का नाम है कि आपने गलती नहीं किया, सामने वाले ने आपके साथ में कोई चीट किया या कोई भी ये किया, फिर आपने माफ किया तो उसको माफी कहते हैं। और अगर हम ऐसे माफी कोई मतलब कोई ऐसा कोई चीज तो नहीं है ना होना कि मतलब उसको कहीं भी ले जाके कहीं झोले पे लेके घूम रहे हो,
1: तो ये लेकिन होता ये कि थोड़ा सा हम सबके लिए मुश्किल हो जाता है लोगों को दूसरा मौका देना। एक किसी ने बहुत बड़ा आपके साथ धोखा किया, चीट किया, अब आप उसे दूसरा चांस नहीं दे पाते हो, इतना भी कह ले बड़ा मुश्किल है, माफ तो शायद कर देंगे लेकिन दूसरा चांस नहीं दे पाएंगे। दूसरा
0: फिर हम एक दो जगह धोखा खाए लेकिन उसके बाद में हम अपने आप को मुहतात हो गए, मुहतात हो गए
1: सही।
0: तो खासकर मुहतात हो जाना चाहिए बंदे को कि यार उस बंदे से, अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम सारे हम उसको सामने वाला उसका फायदा उठाते जाए और हम ये करते जाए, तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म करने वाला और सहने वाला भी अगर वो ये करे तो वो भी गुनहगार होगा। अगर जानबूझ के अगर हम जिस दरिया का गहराई हमें पता नहीं है और उसमें हम छलांग लगाएं ये करके कि मतलब अल्लाह चाहेगा तो ये अल्लाह ने अकल दिया है ना हमको,
1: सही बात है, उसे इस्तेमाल कीजिए बिल्कुल,
0: ये अकल को भी इस्तेमाल करना है। तो उस हिसाब से आदमी को सामने वाले को बस माफ करना ज्यादा बेहतरी है, लेकिन उसी बंदे के साथ में कि उससे थोड़ा सा मुहतात होके खबरदार रह के कोई भी काम करें। हाँ, और रिश्ता नाता तो आजकल इतना ये हो गया, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, आमदनी लोगों का बढ़ गया थोड़ा सा मतलब पहले के बनिस्बत, लेकिन लोगों के अंदर वो मतलब मुखलिस नहीं रह गए, मुखलिस बहुत कम आपको मिलेंगे। हाँ, तो इस चीजों पे थोड़ा सा हमें ये होके रहना चाहिए, खबरदार होके।
1: हाँ,
0: ये चीजें बहुत जरूरी है।
1: और
0: अब अगर हम कहें कि नहीं हम माफ करेंगे और हम समझते भाई किससे किससे तुम ये करके रखोगे, और कल अल्लाह ने कह दिया कि नहीं हम तुमको माफ करेंगे तुमने ऐसा किया, फिर क्या आ जाएंगे।
1: सही बात है,
0: ये सब चीजें हमें आखिरत में, ये दुनिया कुछ वक्त के लिए हमें मौका दिया गया है और हमें आजमाने के लिए ये दुनिया में भेजा गया है, तो हमें चाहिए कि सामने वाले को माफ करें और बदला अल्लाह से लेने का ये मतलब उम्मीद रखें। वाकई अल्लाह ताला के लिए रास्ता जरूर खोल देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना लोगों ने तकलीफ, हम तो बस उसी पे चले जाते हैं कि सहाबा और हमारे जो ये थे असलाफ थे उनको कितना तकलीफ लोगों ने मतलब ये किया, लेकिन फिर भी उन्होंने माफ किया। अब हो सकता है उनके उस पर अगर हम अमल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसी के जरिए से, और वही चीज हमारे लिए सबसे बड़ा मतलब ये है, नमूना भी है।
1: सही
0: है,
1: बहुत ही अच्छी बात, जबरदस्त। थैंक यू सो मच रईसी, थैंक यू फॉर योर कॉल। अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज के टॉपिक का आगाज हो चुका है। आज बात हो रही है माफ करने की, आज बात हो रही है उस धोखे की जिसे माफ करना बड़ा मुश्किल था आपके लिए, बट फाइनली कुछ तो आपने ऐसा किया कि कर ही दिया माफ। मेरा मतलब है एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसामा
2: है? जी उसामा बात कर रहा हूँ। आपने बहुत आज क्लेशी टॉपिक छेड़ दी हमारे खास तौर पे ये देसी देसी फैमिलीज और देसी पर पीपल नहीं होते।
1: अच्छा चलिए इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं आपके साथ। आप मुझे बताइए क्या हमें जो है वो लोगों को दूसरा मौका देना चाहिए, सेकंड चांस इन लाइफ? गलती की हमने माफ कर दिया फिर मौका दिया,
2: माफ कर देना चाहिए लेकिन सेकंड चांस ऐसे के ऐसे नहीं देना चाहिए कि आप दोबारा से अपने आप को उनके सामने और पेश करेंगे जी मैं आपको उनको दोबारा ऐसा मौका दें कि जी वो उस चीज को दोबारा से एक्सपीरियंस करें, यानी कि आपको ऐसे अवॉइड खुद अवॉइड करना चाहिए लेकिन माफ करना है एक आदमी से करना चाहिए, क्योंकि जारी बात है ह्यूमन नेचर ऐसी है कि जारी बात है कोई बात किसकी बुरी लग भी सकती है और लगती हो जाती है, लेकिन आप उस पे आप ईगो पे लेके ईगो पे नहीं ले लेना चाहिए कि जी बात नहीं अब मैं नहीं माफ करूंगा मैं तो इसे, वो जैसे हमारे वो सब कॉन्टिनेंट में नहीं कहते कि मैं तो कब्र तक नहीं माफ करूंगा।
1: सही कहा आपने,
2: उनके नहीं होनी चाहिए ईगो पे बात नहीं जानी चाहिए कि जैसे भी मामला आता है। और दूसरी बात ये सारी बात है वॉइड, तो बाद में फिर उस चीज पे वॉइड जब आपको पता चल गया कि ये चीज आपके लिए नहीं बेहतर, तो उसको वो एक वो भी है ना कि मोमिन एक सुराख से दो दफा नहीं डसा जाता।
1: मतलब आप कह रहे हैं कि माफ तो कर दो बट आप बहुत ज्यादा जो है वो मोहतात रहो, दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, सेकंड और थर्ड चांस, थर्ड तो खैर बहुत पीछे आ गया, सेकंड चांस भी आप खुद को ना दिलवाएं उस शख्स से।
2: सेकंड चांस ऐसे कि
1: तो फिर क्या हमने जनरली उसे माफ किया है? फिर तो ट्रस्ट तो खत्म हो गया है ना, माफ कर देने के बाद क्या लगता है कि ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाता है?
2: वो तो ऑब्वियसली फिर आप थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, मुहतात हो जाते हैं ना, क्योंकि अब आपको पता है कि एक दफा भले अगले को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, लेकिन ये चीज देखें ये चीज तो आप अगर कोई शख्स कोई तरह यानी कि आपके साथ कोई मामला होता है या कोई भी मिसहैंडलिंग होती है, आपको किसी चीज ने किसी की किसी बात ने हर्ट किया है, तो अगर वो खुद उस चीज का एहसास कर ले तो आपको सारी बात है ये तो बात अल्लाह ताला को भी पसंद है कि इंसान खता करके खुद माफी मांगे, लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट में या देसी सिस्टम में तो माफी का तो सिस्टम ही नहीं है ना, यानी कि आप नहीं वो फिर बाद में उसमें तो ये होता है कि उस चीज को बाद में डिफेंड करने पे डिफेंड करते हैं मजीद पे, नहीं नहीं ये हम वो चीज नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो फिर तो जाहिर बात है इंसान ऑब्वियसली फिर इंसान भी दिल पड़ा, अगर लेकिन हम ये चीज अगर दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कभी हम से भी दूसरे की तरफ अगर कोई मिसहैंडलिंग हो हमारी वजह से कोई दूसरा हट हो तो हमें भी यही चीज इख्तियार करनी चाहिए कि हमें माफी मांग लेनी चाहिए, कोई वो उसकी बात नहीं है, ईगो वाली बात नहीं है,
1: माफी मांग लेना चाहिए। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है, जैसे एक भाई का मैसेज है यहाँ पे मुबीन, मैं उनका भी देख रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि मेरी बेटी की किसी ने गलत मतलब शादी ही उसकी ऐसे घर में झूठ बोल के करा दी। अब आप मुझे बताइए, वो उन्होंने लिखा है ये मैसेज और लंबा उनका काफी मैसेज है, कहते हैं अब आप मुझे बताइए इसकी माफी मैं किस तरह से दूं उस शख्स को।
2: बिल्कुल ये चीजें
1: अब देखिए ये भी चीजें हैं कि किसी का इतना गलत ही रिश्ता करवा दिया,
2: तो ऑब्वियसली यानी कि वैसी बात है खास तौर पे अगर ऐसे मामला हो तो बात है मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाता है,
1: बड़ा मुश्किल है
2: वो करना।
1: उन्होंने कहा कि बेटी का नाम मत लीजिए, उन्होंने पूरी बात लिखी है किस तरह से किया, तो कुछ धोखे वाकई इतने बड़े होते हैं कि उसके बाद आपको समझ में भी नहीं आता कि माफ करें, और माफ ना करें तो क्या करें, ये भी तो एक ही लास्ट ऑप्शन है
2: जी। मेरे ख्याल से कि अल्लाह ताला की रजा के लिए माफ कर देना चाहिए, क्योंकि आप बदला अगर कहेंगे जी मैं बदला लेंगे तो ये चीज तो फिर मेरे ख्याल से कि वो नहीं है, तो बेहतर है कि वही बात एक आ जाती है कि जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है तो आपके पास उसमें मेरे ख्याल से उसमें पॉजिटिव थिंग ये है कि अगर आप माफ कर दें अल्लाह ताला की रजा के लिए तो ये मे भी आपके लिए कितना बड़ा उस पर सबर आ जाए आपको, क्योंकि आपके पास तो सेकंड ऑप्शन नहीं है।
1: सही बात है, आपके पास है ही नहीं सेकंड ऑप्शन, तो अच्छा है कि आप माफ कर दें बट ट्रस्ट पे नहीं लगा
2: दें, अल्लाह ताला की रजा के लिए माफ कर देना, हो सकता है कि ये चीज आपके लिए बहुत क्या कहते हैं वर्थ रखे कल को आपके अमाल में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: वैल्यूएबल चीज ऐड हो जाए आपके लिए,
1: सही बात है, और हो सकता है कि इस बिना पे आपकी बख्शिश हो जाए, अल्लाह ताला को ये आपका अमल पसंद आए, तो जितना बड़ा आप जितना बड़ा किसी ने कोई धोखा दिया है और आपने उतना बड़ा दिल करके उसे माफ़ किया है तो फिर उसका रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा उतना बड़ा है, तो यही मैं आपको मुबीन जी भी, इनको भी यही कहना चाहूंगी. लेट्स सी. बट थैंक यू सो मच उसामा, थैंक यू कि आप टाइम निकालते हैं और जुड़ते हैं. एंड थैंक यू फॉर द लवली परसेप्शन ऑफ योर्स जो आपने हमारे इस टॉपिक पे ऐड किया. थैंक यू सो वेरी मच. अपना ख्याल रखिए जी. अल्लाह हाफिज. एंजॉय योर वीकेंड. टेक केयर. बाय. ऑलराइट. आज धोखे धड़ी की बात चल रही है, माफ करने की बात चल रही है, बात चल रही है क्या सेकंड चांस दिया जाना चाहिए. या आपको क्या लगता है कि जब आप सेकंड चांस लाइफ में किसी को देते हो तो उस इंसान से ट्रस्ट ये कर पाते हैं आप उस पर दोबारा यकीन. आई डोंट नो. आप बताइए मुझे क्या ट्रस्ट बिल्ड हो पाता है कि नहीं हो पाता है. एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो.
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. भाई मबरूक, आज तो आपकी छुट्टी उट्टी है.
3: टीवी और वुट्टी भी है. वुट्टी वो कॉफी भी.
1: नहीं वुट्टी तो मैंने इसलिए बोला ना, बताए मुझे ऐसी ये अजीब सा लगा. मैंने कहा लो ये तो मुझसे पहले छुट्टी मना रहे.
3: हाँ नहीं ये भी तो आप सबसे पहले तो मैं FM 107 की टीम और तमाम दोस्तों को भी सलाम पेश करता हूँ. और वालेकुम सलाम जिन्होंने सलाम मैसेज किए. और छुट्टी का देखे ना आप, उस वक्त माशाल्लाह लोग काफी नींद के आगोश में होते हैं जब हम 2:30 बजे इमरजेंसी ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं. तो जब के रात को आदमी 12:15 बजे लेटे और सडनली इसको कॉल आए कि आप सून एज सून पॉसिबल पहुंचिए, तो फिर छुट्टी तो बनती है.
1: फिर तो वाकई सल्यूट के साथ बनते हैं आपको. हाँ, क्योंकि अगर 2:30-2:30 बजे आपको काम करना जाना पड़ता है तो
3: मतलब इल्म है आपको बस.
1: हाँ, मुझे पता है आपकी जॉब है इस तरह की. जी जी
3: सिचुएशंस के ऊपर है सारा. बाकी माशाल्लाह सवाल बड़ा अच्छा है और मेरे दोनों भाइयों ने बड़े अच्छे तरीके से इसकी तशरीह भी कर दी है और हमारे पास कुछ बचता नहीं है बाकी बोलने के लिए.
1: नहीं आपके पास जरूर होगा कोई ऐसा धोखा जो काफी बड़ा था, पर आप क्या आपके लिए माफ करना आसान होता है या मुश्किल होता है?
3: नादिया धोखे वो मैं यहाँ से एक लाइन से कहूँगा कि ईमानदारी और वफा के चक्कर में या वफा के रास्ते में अक्सरियत धोखे इंसान को मिलते हैं और मिल भी जाते हैं और मिलते रहते हैं. और इसका मतलब ये कुछ अरसा पहले पढ़ा ही मैं, आई वॉज रियली शॉक्ड कि मैं मेरा ताल्लुक किसी ऐसे लोगों के साथ था जिनको मैं 3 साल. देखें कोई इंसान किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला की रजा है, उसके ऊपर कर्म है जो आप किसी की मदद करते हैं. उसके लिए मदद के साथ आपका दिल भी रब ने अता किया होता है कि आप किसी की मदद करते हैं.
1: सही.
3: ठीक है. तो ये सिचुएशंस कुछ ऐसी जो गुजरी हैं मैंने 1-2 दफा जिनके साथ, मतलब जिनको मैं बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहा था, तो मेरा बनता था, मुझे फील होता था कि यार जितनी मैं मोहब्बतों के साथ किसी को केयर कर रहा हूँ या मेरा परवरदिगार करवा रहा है, तो मेरा पूछना भी गुनाह बन गया कि यार आप किसी को हाल अहवाल भी नहीं पूछते, इंसान किस सिचुएशन में है, किस हाल में है. तो वो जी आगे से जवाब मिलते हैं कि यार बस मसरूफियत. मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मसरूफियत किस बला का नाम है, खासतौर पे हमारे मुल्कों में. आप यकीन
1: और आप देखिए आपकी जॉब में आप कितने बिजी हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आप टाइम ढूंढ ही लेते ना, तो अब आपसे ज्यादा कौन बिजी होगा.
3: मैं एग्जैक्टली और मैं रब का शुक्र गुजार हूँ कि मेरे कभी भी किसी काम में कोई कोताही नहीं हुई. सारे काम मेरे टाइम पे, वो मेरी एक्सरसाइज है, वो फैमिली है, वो मेरे कोलीग्स हैं, वो मेरे जो भी लोग हैं, मतलब एक्यूरेट टाइम पे हो रहा सारा, क्योंकि आप उसको मैनेज करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं.
1: हाँ
3: तो बहरहाल वो फिर काफी अरसा पहले भी मेरा वैसे नाजी हल्का बड़ा महदूद है, क्योंकि जिस वक्त 2009 में मैंने अपनी मेरी वालदा पर्दा फरमा गई दुनिया से, तो तब मुझे एक रियलिटी मैंने देखी. उसके बाद अभी तक मेरा हल्का बहुत महदूद है, बहुत कम लोगों से मैं मिलता हूँ. ये मतलब रेडियो FM 107 के तौर से जो मेरे भाई बहनों जिनसे भी मुलाकात ये बात हुई है, ये बड़े अरसे के बाद मेरा मतलब इस तरह फिर मेरा दिल चाहा दोबारा, वरना ये समझिए कि वो चीज खत्म हो चुकी थी मेरे अंदर. बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर लोगों से आपको पता है बड़े अदब से मिलना पड़ता है, वो अपना फर्ज पूरा हम करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो चीज खत्म हो जाती है इंसान के अंदर. क्यों आप रियलिटी मतलब आप वो जो हुक्म है उसके मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग समझते हैं कि शायद ये बेवकूफ़ हैं यार, ये बेवकूफ़

0: वकूफ है, धंधा एतमाद हम उन पे जो करते हैं। लेकिन अगर मैं यही कहूंगा दूसरा मौका, लेकिन अगर वाकई कोई बंदा गलती करता, देखिए पिक्चर में ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमसे भी कहीं ना कहीं गलतियां, धोखा ना दिया हो बेशक, लेकिन गलतियां जरूर होती
1: हैं, गलतियां जरूर होती हैं। बहुत
0: हम
1: अच्छा
0: अपने आपको हाँ बिल्कुल साफ नहीं रख सकते कि यार उसने किया तो उसने किया तो हम बहुत साफ सुथरे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ धोखे से मतलब दूर है, वो रब की जात ने बचाया हुआ है। अगर वाकई ही कोई बंदा इस गलती पर शर्मिंदा है और अपने अमल से साबित करता है कि वो बदल गया है, तो उसके साथ दोबारा मौका देके इज्जत और मजीद अखलाक से पेश आना चाहिए, मजीद अखलाक से।
1: बहुत अच्छा, मजीद अखलाक
0: और बार बार हाँ मतलब जो आप अखलाक देते रहे हैं ना, बल्कि उससे भी कोशिश करके बेहतर करूं मैं, एक मौका जो आप देते हैं बार बार की इस गलती उसको याद दिलाना भी मुनासिब नहीं होता। लेकिन दोबारा इत्माद करने का मकसद ये भी नहीं है कि आप आंखें बंद करके इत्माद करें, आहिस्ता आहिस्ता देखिए, अगर तो उसका रवैया बदल रहा है, उसका तरीका और सलीका बदल रहा है, तो फिर इत्माद किया जा सकता है किसी हद तक।
1: सही सही
0: मुकम्मल नहीं।
1: हाँ बहुत ही अच्छी लाइन।
0: हाँ और इस्लाम भी हमें नाजिया माफी एहसान और अमल की तालीम भी देता है, लेकिन साथ साथ अकल एहतियात और इंसाफ को भी अहमियत देता है।
1: बिल्कुल सही, ये चीज है कि आप मोहतात रहिए। हाँ माफ करिए बट स्टिल आप थोड़े से मोहतात रहिए रहिए, ये आप कह रहे हैं माफ किया जाना चाहिए, कर देना चाहिए, बट हाँ थोड़े से आप अलर्ट उसके बाद हो जाइए, यानी ये पूरी तरह से अंधे होकर उस पर एतमाद करने लगे, दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल फैक्ट है।
0: अंधे आपने तमाश करके अंधे बने, जब जब इंसान धोखा खाता है ना, तो वो दूसरे बंदे का हर लफ्ज उसके ऊपर आंखें बंद करके, यार जो इसने कह दिया वो रियलिटी है, आप एतमाद करते हैं।
1: और अच्छा तो ये भी होता है कि जब आपने किसी से धोखा खा लिया तो फिर आप औरों पे भी शक करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लाइफ में एक बार धोखा मिला है। अब बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो आपके साथ धोखा उन्होंने नहीं किया, लेकिन आप उनसे भी थोड़े से मोहतात हो जाते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं, क्योंकि आपको धोखा इतना बड़ा मिला। कभी कभी ये भी मैंने देखा है। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे एक ही बात का जिक्र किया कि वो इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि वो अंदर से उसको उस चीज का जो उसको पिंच करती रहती है ना कि यार मैंने क्या किया, मैंने इतना अच्छा अपना किरदार और अमल दिया, उसका फिर दिल नहीं करता कि वो किसी के साथ, लेकिन जिस बंदे की फितरत अच्छाई का अमल अदा करने की है वो फिर भी करता रहेगा, उसको लगातार करता रहेगा, इवन उसको धोखा मिला हो वो फिर भी करेगा।
1: इसका मतलब आप करते रहते हैं। चलिए
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि बहुत ही पॉजिटिव आपने इस पे जो है अपना टेक दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि माफ़ भी करना, लेकिन थोड़े से मैं उतार देना, लेकिन माफ़ कर देना ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए।
0: सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम एंड वेरी प्लेजेंट एंड लवली वीकेंड जिस जिसका है
1: आपको भी,
0: और सबको दुआ में याद रखिए प्लीज। ठीक है
1: अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही खूबसूरत सी बात, आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ही कमाल का है, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं जो धीरे धीरे एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे, निकल कर आ रहे हैं। जैसे एक चीज़ मेरे जहन में आई कि क्यों ना आपसे ये भी जाना जाए कि गलती और धोखा इनमें दोनों में फ़र्क है, गलती तो माफ़ की जा सकती है आपके हिसाब से, क्या धोखा वाकई माफ़ किया जा सकता है, क्या धोखे की माफ़ी मुश्किल हो जाती है, ये भी मुझे बताइएगा। कोई आपका पास का इंसिडेंट है, कुछ हुआ है तो वो शेयर कीजिएगा, बताइए मुझे 666-22-107 पर। यहाँ पे फिलहाल बढ़ एक छोटे से मैंडेटरी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे और आपके मैसेजेस की तरफ भी जाएंगे।

FM 107. Time check. Time check. Right guys, welcome back. Our time for the time check. इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:05.

0: पेट तो आपका भर गया है ना धोखे खा के नहीं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ. फिलहाल मेरे साथ जो है कॉलर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कौन है मेरे साथ?
1: मैं नौशाद अहमद.
0: नौशाद अहमद जी कैसे हैं आप? खैरियत से?
1: जी अल्लाह करम खैर. आप कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. कैसी जा रही है आपकी मॉर्निंग, सुबह कैसी जा रही है? काम पे पहुँच गए?
1: जी मैं अभी ड्यूटी पार्क कर रहा हूँ, गाड़ी पार्क कर रहा
0: हूँ. अच्छा अच्छा पार्क कर लीजिए. चलिए आप थोड़ा सा लीजिए टाइम, आराम से पार्क कर लीजिए और फिर हम आज का जो टॉपिक है उस पर आपसे बात करते हैं.
1: जी मैं सुन रहा था आज के टॉपिक के सिलसिले में.
0: जी क्या कहेंगे?
1: क्या किसी को दोबारा मौका देनी चाहिए या नहीं?
0: हाँ हाँ दिया आपने कभी किसी को दोबारा मौका?
1: मैंने तो दिया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा इस्लाम जैसे बहुत सारे हमारे साथियों ने जावेद साहब ने सबने कहा है कि हमारा इस्लाम जो कहता है कि माफी और एहसान के बारे में बिल्कुल सही बात है, माफ करनी चाहिए, लेकिन माफी का चर्चा नहीं करनी चाहिए हर जगह पे. कुरान हमें कहता है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिल नास, माफ करने वाले बेहतर है और अल्लाह जो है ना मुहसिनीन को पसंद करता है, एहसान करने वाले को. माफी का चर्चा जगह जगह पे नहीं होनी चाहिए. बस ये है कि आप ये राज अपने रब के सामने रब और अपने दरमियान में रखें और माफ करें दूसरे को मौका दोबारा एहतियात के साथ मोहतात रहते हुए दें.
0: ऐसे जावेद जी ने कहा कि आप माफ करें बट ज्यादा इज्जत दें और ज्यादा एहतराम करें, यानी कि आपको आप उसे एम्बैरस फील करा रहे हैं. हाँ वही चीज आप भी कह रहे हैं.
1: उसको एहसास ताकि उस बात का एहसास हो कि हमने इतनी बड़ी गलती की है और फला ने मुझे माफ कर दिया. बस ये है कि आइंदा के लिए आप बहुत मोहतात रहें और किसी पर आग बंद करके बिल्कुल भरोसा मत करें,
0: किसी पे भी नहीं किया जा सकता.
1: यही करें लोग तो अपने बच्चे के कातिलों को भी माफ कर देते हैं और अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि सिल मन कता का वापू अमन जलमक, उनसे उस शख्स से जुड़ो जो तुमसे कतई ताल्लुक करना चाहे.
0: उससे जुड़ो
1: तो कतई ताल्लुक नहीं होनी चाहिए. ये हमारा माशरा कहता है, हमारा इस्लाम कहता है माफी कर माफ करनी चाहिए, लेकिन माफी का चर्चा ना हो. दूसरा ये है कि एतमाद जो है किसी पर अंधा एतमाद ना करे, बहुत सोच समझ करके फैसला ले.
0: बहुत ही
1: हमारी शरीक हयात इसी वजह से पूछती रहती है कि कभी कभी हम ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं किसी पर, लेकिन हम माफ करने में बहुत आगे.
0: अरे माशाल्लाह आप तो बहुत ही अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे दिल के इंसान है कि आप लोगों को माफ़ करते, क्योंकि ये बहुत मैंने देखा कुछ लोगों का, जैसे उसामा जी ने कहा ना कि ईगो पर आ जाती है कि हम तो मरते मरते माफ़ नहीं करेंगे, है ना. कुछ लोग ऐसे ही हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका हर्ट होता है ईगो और वो किसी हाल किसी को इतने आधमंड होते हैं कि नहीं हम माफ़ तो करेंगे ही नहीं इस बात पर. बट आपकी बहुत बड़ी बात है कि आपका दिल इतना बड़ा है.
1: जब आप किसी को माफ कर देते हैं ना और हाँ. उसका सामना होता है तो आपका दिल बहुत हल्का हो जाता है.
0: आपके चेहरे पे अलग ही जो है ना वो रौनक सी होती है, एक नूर होता है.
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: कि आपने माफ किया और वो अगला बंदा मैंने देखा वो शर्मिंदा होता है. सबसे बड़ी सजा है ना किसी को माफ कर दो,
1: सबसे बड़ी बात तो यही है ना वो शर्मिंदा होता है. फला के साथ इतनी बड़ी गलती की और उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, फिर भी उसका रवैया उसका अखलाक मेरे साथ कितना बढ़िया है.
0: हाँ ये बात, ये जो आपने की ना बिल्कुल 100% सही बात कही है. इससे बड़ी सजा आप किसी को दे नहीं सकते कि वो हमेशा अपनी निगाहों में जो है वो शर्मिंदा हो और उसको लगे. एक्सेलेंट, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और कॉल किया और बहुत प्यारी बात शेयर की.
1: मेरा यही मानना है, जी मेरा यही मानना है बहन नाजिया
0: जी,
1: खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, कि कलाम बात थोड़ी हो लेकिन बढ़िया हो.
0: लेकिन बहुत ही बढ़िया बात की आपने, बहुत जबरदस्त, एकदम दिल छू, दिल को छू गई. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. एंजॉय रेस्ट ऑफ योर मॉर्निंग, अपना ख्याल रखिए. हैप्पी वीकेंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट, तो यहाँ हमारे साथ जो है बैक टू बैक कॉलर्स कनेक्ट हो रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट तो हमें दे ही रहा है। जैसे सबसे पहले रईस जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि हाँ माफ़ करिए, मोहतात रहिए। फिर हमें उसामा जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कुछ लोग जो है ना वो अपने ईगो पे ले जाते हैं कि नहीं हम तो माफ़ी नहीं करेंगे। इतना रिजिड नहीं होना चाहिए लाइफ में, जब अल्लाह आपकी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ करते हैं तो आप भी दिल बड़ा कीजिए। वहीं जावेद जी की लाइन जो मुझे बेस्ट लगी कि आप जब माफ़ करें तो उसको जो है ना जताएं नहीं, उसके साथ बल्कि और अच्छा रवैया रखें। और अभी जो नौशाद जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कितनी अच्छी कही कि माफ़ी का चर्चा नहीं होना चाहिए, है ना, माफ़ किया बस ख़त्म, आपके और अल्लाह के दरमियान है, उसको इतना ज़्यादा जो है ना हाइप ना दें। अब एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं। हेलो,
2: हाँ जी,
0: अरे गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप?
2: गुड मॉर्निंग जी, बढ़िया, तुसी दसो किवें हो?
0: बढ़िया बढ़िया। माफी माफी दी है लोगों को क्या?
2: ये मैं मैडम थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहता हूँ, धोखे के हवाले से भी एक्सप्लेन करना है या अकेला माफी के हवाले से?
0: देखिए धोखे की ही माफ़ी की बारी बात हो रही है, गलतियों को तो लोग माफ़ कर देते हैं छोटी छोटी, अब कोई धोखा आपको दे उसके बाद माफ़ करना क्या आपके लिए आसान होता है या मुश्किल होता है? कोई बड़ा धोखा आपको किसी ने दिया, बहुत करीबी था, क्या आपने उसको वाकई माफ़ किया, कर पाए और उसके बाद खुद को हर्ट दोबारा ना किया जाए, उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाते हैं?
2: देखिए मैडम लाइफ में ना हर बंदा इस सिचुएशन से गुजरता है,
0: बिल्कुल,
2: चाहे आप है चाहे मैं है, कोई भी है,
0: कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास
2: ये अपनी लाइफ का एक रूटीन है, कोई ना कोई हमें बंदा मिलता है जो हमें डसता जरूर है एक ना एक बार जिंदगी में।
0: सही बात है बिल्कुल।
2: और मैडम उस बंदे का जहर इतना खतरनाक होता है ना कि आगे से बंदा हर जगह पे फूक फूक के कदम रखता है।
0: बिल्कुल, औरों के साथ भी बहुत ज्यादा जो है ना मोहतात हो जाता है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने लगता है। तो हुआ आपके साथ कोई बड़ा सा यू नो फ्रॉड या कोई बड़ा धोखा किसी ने दिया जिसे आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था? देखिए गलती और धोखे में फर्क है, किसी से गलती हो गई उसने आके आपसे माफी मांगी तो वो जानबूझ के नहीं हुई, धोखा इज समवेयर लाइक प्लानिंग के साथ होता है, उसमें प्रिपरेशन होती है। अब माफ करने की गुंजाइश बन रही है,
2: एक तो मेरी बात है पर्सनली,
0: okay.
2: जो मेरे जानने पहचानने वालों ने मेरे को धोखा दिया था, ठीक है, और दूसरी बात मेरी ये है मेरे को किसी अननोन बंदे ने धोखा दिया था। वो धोखा कैसे दिया था मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले ना मैडम हमारे वहाँ पे ट्रेंड बहुत चला था भी कोई यूरोप को जा रहा है, कोई कैनेडा को, कोई यूके को, तो उसी चक्कर में ना मैडम गलत ट्रेवल एजेंटों ने, उनकी भरमार बहुत ज्यादा हो गई थी पंजाब में, अभी भी है मगर अभी थोड़ी सी सख्ताई ज्यादा हो गई है उनके ऊपर।
0: अच्छा,
2: हाँ जी, तो मैडम अगर एक बार बंदा उनके ऑफिस में चला गया ना, तो उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बनाता था, उनके पास ऐसी बातें थी ना कि बंदा डेफिनेटली उनकी बातों में आ जाता था मैडम।
0: ओहो, ये अलग लेवल का टैलेंट है
2: मैडम, एक ये वाला टैलेंट और एक जो बंदे रिश्ते करवाते हैं ना हमारे वहाँ पे।
0: एक भाई ने तो लिख के भेजा है, इतना गलत रिश्ता करा दिया उनका, उनकी बेटी का, वो कह रहे हैं माफी मैं कैसे दूं, मुझे बताइए आप जरा।
2: जी एक ट्रेवल एजेंट और एक ये जो विचोले बंदे है ना मैडम, इतना स्मार्टली झूठ बोलते हैं ना ये। आप मैडम कहीं ना कहीं जाके ना ये लोग ना साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं बंदे की, तो बंदा डेफिनेटली इनके जाल में मैडम फंस जाता है।
0: बिल्कुल, हम सबसे ज्यादा किस चीज से कनेक्ट होते हैं? इमोशनल क्वेश्चन से, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो बहुत टची हो गई और वो इतनी रेलेवेंट होती है कि आप पे भी अप्लाई कर रही है, मुझ पे भी कर रही है, कोई और सुन रहा है उस पे भी कर रही है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और फंस जाते हैं।
2: देखिए मैडम मैंने ना आपके इमोशंस को हैक कर लिया ना, तो पैसा कोई बड़ी बात नहीं है मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, 100% राइट। आदमी के आज का कारोबार ही आदमी के इमोशंस के साथ है।
2: इमोशंस के साथ में जी मैडम, आगे आगे देखिए, अभी आगे आने आने आने वाले समय में कैसी कैसी टेक्निक्स आ रही हैं, बंदे अवेयर भी हो रहे हैं।

0: तो मैडम क्या हुआ, हम लोगों ने भी ऐसे ही पंगा लिया था. उन्होंने हमको बोला था भी एक कंट्री है शेसलेस बोलते हैं उसको, जैसे मालदीव्स हो गया, ऐसे ही एक टापू है वो भी.
1: अच्छा.
0: तो उन्होंने दफ्तर भी मैडम नया नया खोला था पटियाला शहर में. मैं गया अपने 3-4 दोस्तों के साथ. मैडम उन्होंने इतना स्मार्टली हमें एक्सप्लेन किया ना, जब बात आई एग्रीमेंट की, उन्होंने हमको एग्रीमेंट सेंड किया व्हाट्सएप पे. तो मैंने जब मैडम पूरा एग्रीमेंट देखा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ था उन्होंने, मगर आपको पता है जो बंदा चोर होता है कोई ना कोई गलती जरूर करता है.
1: सही बात है.
0: तो हाँ. उन्होंने गलती कहाँ पे की, उन्होंने डॉलर के स्पेलिंग गलत लिख दिए मैडम, DOLAR.
1: वहां से आपने पकड़ा.
0: मोस्टली जहाँ पे मैडम रकम लिखी होती है ना, वहाँ पे डॉलर का साइन होता है उसके पीछे.
1: हमेशा ही. सही.
0: हमेशा ही. तो मैडम मैंने इस चीज को पकड़ लिया उनकी और उनसे बात की.
1: तो मैडम उनसे बात की, अच्छी खासे माशाल्लाह समझदारी से डॉक्यूमेंट लोग आजकल पढ़ते नहीं, काहिली में, सुस्ती में बस देख लिया, अच्छा ठीक ठीक है, बहुत सरसरी तौर पे. लेकिन हाँ, कोई ध्यान से पढ़े तो ये सारी चीजें जो है पकड़ में आती हैं, और हम ध्यान देते नहीं.
0: तो पकड़ के मैडम मैंने उसको कॉल की मैडम ने. हाँ, मैडम को.
1: हाँ.
0: तो उसका मैडम रवैया ही डिफरेंट था. पहले मेरे से और तरह से बात की, उसके बाद में बस वो बोलती भी हम कौन सा ऑफिस किसी गड्ढे पे लेके घूम रहे हैं, आपने जाना है आ जाओ. यानी कि मैडम देखिए, तकरीबन कुछ दिन पड़े, महीने के बाद ना उनका ऑफिस था ना कोई स्टाफ था, पूरा बंद. वो लोग कबूतरबाज हो गए, वहां से निकल गए.
1: देखिए, चलिए थैंकफुली आप बच गए, आपके साथ हुआ नहीं धोखा, और आप विजिलेंट थे तो आप पहचान भी गए, वो गलती एरर देखी और आपने खुद को भी बचाया. आई एम श्योर कितने सारे लोगों को बचाया होगा, कितने सारे लोगों के साथ ये फ्रॉड और चीट होता, तो दैट्स नाइस. ये तो अच्छी बात है.
0: एक्चुअली चक्कर पता क्या है, आपने
1: पता क्या, ऐसे लोगों को तो आप माफ करो ना करो आपका कोई लेना देना नहीं होता. वहां माफी देना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो आपका करीबी हो, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, या कोई और उससे करीबी आपका रिलेटिव है, उसको माफ करना या उसे माफी देना बड़ा मुश्किल, क्योंकि उससे लाइफ में भी आपको कई बार मौका है आमने सामने होने का, वो आपको इन पर्सन कई बार मिलेगा. अब उसको फेस कैसे करें, माफी नहीं दिए तो फेस कैसे करें, और माफ कर देते हैं आप तो वो आपको कैसे फेस करें, ये बड़ा बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, पता है
0: मैडम. ये जो सिचुएशन है ना, देखिए आप बता रहे थे वो किसी भाई साहब ने बताया उनकी बेटी का रिश्ता ऐसे ऐसे करवा दिया, ये तो मैडम एक एग्जांपल है. मैडम उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए ना, भी जो दो परिवारों को आपस में मिला रहे हैं, और मोस्टली रिश्तेदार ही मिलाते हैं मैडम.
1: हाँ, रिश्तेदार ही होते हैं. अभी तो खैर मैरिज ब्यूरोस भी हैं, बट आई एम श्योर कोई रिश्तेदार ही होगा. अभी हम डिटेल से इनसे पूछते हैं.
0: मैडम चलो, वो तो थर्ड पार्टी होगी ना.
1: हाँ, वो तो थर्ड है, सही बात है.
0: जो आपके रिश्तेदार हैं उनको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, चलो 19-21 का फर्क चल जाता है मैडम. थोड़ा बहुत हमने भी बोला था, थोड़ा बहुत चल जाता है.
1: हाँ.
0: मगर आप बिल्कुल ही यार, एक तरफ 19 का फर्क है, एक तरफ 100 का फर्क है, वो चीज बोल के किसी की लाइफ खराब कर रहे हो, तो उस बंदे ने आपको दोबारा भी फेस करना है. उसके लिए सिचुएशन देखिए ना, डू एंड डाई वाली सिचुएशन होगी बंदे के लिए.
1: बिल्कुल,
0: ना बंदा आगे ना बंदा पीछे.
1: एग्जैक्टली. कुछ टाइप तो कर रहे हैं मुबीन जी, दैट मींस वो सुन रहे हैं हमारे इस मैसेज को, और देखिए पता नहीं आगे क्या बताते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात तो
0: जी. और नाजिया जी दूसरी बात ये, चलो इस पे तो और बहुत लंबी बात हो सकती है. नाजिया जी एक चीज और आपके हिस्से में आई है.
1: अच्छा.
0: लोगों की खोई हुई खुशियों को वापस लेके आना, ये आपके हिस्से में सबसे बड़ी दात आई है मैडम.
1: आए हाय, सच्ची क्या बात है. इससे
0: सच्ची, देखिए उसकी प्राइम एग्जांपल अभी जावेद बाजवा जी देखे गए हैं ना कॉल पे. भाई मैंने अपना लिंक बहुत सारे दोस्तों के साथ छोड़ दिया था,
1: आज बनाया,
0: मगर जब से उन्होंने आपका शो सुना है, शो से जुड़े हैं, अभी दोबारा फिर देखिए उनकी जिंदगी में वैसी दोस्तों की बहार आ गई है, और उनकी लिस्ट में अभी मैं भी शामिल होने वाला हूँ. आप मेरे को नंबर सेंड कर देना उनका.
1: जावेद जी, हाँ ठीक है, आप मुझे एक मिनट हाय लिख के भेजिए अपना. आपका नंबर शेयर है नहीं इसमें, व्हाट्सएप में या नीचे होगा कहीं, तो जैसे आप मुझे हाय लिख के भेजेंगे मैं इनका नंबर आपको जावेद जी का फॉरवर्ड करती हूँ. ये तो वाकई मुझे जान के खुशी हुई कि वो जुड़े और वापस से उन्हें जोश आया है और आप लोग उनके साथ जुड़ गए हैं. तो अगेन एक हमारी स्ट्रॉन्ग FM 107 की जो फैमिली बन गई, और हम तो हमेशा कहते हैं कि आप सब हमारी बहुत ही फैमिली मेम्बर हैं, आप हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, और हमें ऐसा महसूस होता है. और ये बात मैं गावा जी बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं कितनी भी डाउन फील कर रही हूँ, लो फील कर रही हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ स्टूडियो में, माइक ऑन होता है, आप लोग के साथ जुड़ती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और ये बिल्कुल सच है.
0: जी जी बिल्कुल.

0: कोई मिल नहीं सकती और शायद ये एहसास ही अपने आप में बहुत बड़ा है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
1: तो really मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं हो सकता है झूठी तारीफ करूँ, मगर आप और देखिए ना, और सारे लिसनर्स, हर किसी का तारीफ करने का स्टाइल डिफरेंट है। और इट्स मैडम, ये बस आपके हिस्से आया है, आप भी खुश रहो, आपके सभी लिसनर भी खुश रहे,
0: लिसनर्स भी खुश रहे, यही हमारी दुआ है। एंड थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर लवली कॉल।
1: टेक केयर मैम,
0: यू टू, टेक केयर, बाय। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा टॉपिक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस पर बात हो रही है, बात हमारी जो है वो जारी रहेगी। यहाँ पर एक मैसेज जो मुबीन जी ने टाइप किया वो मैं ज़रूर यहाँ पर लेकर चल रही हूँ, क्योंकि ये एक दो और भी मैसेजेस हैं मेरे पास। इनका कहना है कि इनकी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा जो हुआ उसको करवाने वाले इनके अपने करीबी ही थे, कोई रिश्तेदार थे जिनके थ्रू ये रिश्ता लगवाया गया। और जो धोखा है मैडम वो ये कि जिस लड़के से शादी की बात की करवाई उसकी पहले से शादी हो रखी थी। अब बताइए, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात किसी ने छुपा के रखी, तो मतलब इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। ये बहुत बड़ा धोखा है वाकई। तो अब वो पूछ रहे हैं कि माफ़ी बनती है कि नहीं बनती। देखिए अब मैं क्या बताऊँ, खैर वापस आती हूँ तो मैं आपको कुछ बताती हूँ, और आप में से किसी को कुछ लगता है बताना चाहिए तो प्लीज़ बताइए। हालांकि हम सब जो हैं वो उस ट्रॉमा से नहीं गुजरे हैं जिससे आप गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, हमारे लिए तो कह देना फिर भी शायद आसान होगा, लेकिन आपके लिए वाकई उन चीज़ों पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी जितने लिसनर्स हमारे जुड़े हैं उन सबका ये कहना है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर आप अल्लाह के लिए माफ़ कर सकते हैं किसी को तो प्लीज़ गो अहेड।

और यकीन मानिए माफ कर देने से ना आपका दिल हल्का होगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको शायद जो है वो चैन और सुकून मिल जाए, और हो सकता है आपकी लड़की के लिए, आपकी बेटी के लिए और अल्लाह ताला नए रास्ते खोल दे, कुछ और बेहतर हो। तो बस इसी अच्छी सोच से अगर आप माफ कर सकते हैं, दिल बड़ा कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा। हालांकि ये भी सच है कि कई बार माफ़ कर देने से जो है वो गलती जो है वो रिवर्स नहीं होती, चीज़ें जो है वो सही नहीं हो पाती, रेक्टिफाई नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी चलो फिलहाल के लिए अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह की आवाज़ में अमेजिंग सा ट्रैक एंजॉय कीजिए। स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से दी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
5: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं
4: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में
5: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107
4: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ
6: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया

0: हाय हाय कितना अमेजिंग सा ट्रैक अरमान मलिक की आवाज में आपने एंजॉय किया. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ और मेरे साथ एक कॉलर यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं शहजादा जी आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह.
0: आज तो मैंने जल्दी कॉल कर लिया आपको, है ना? आपने हालांकि दो बार तीन बार मैसेज लिखा, लेकिन

0: मैंने देख लिया आज मेरे पास है फोन साथ में मेरे, तो मैं देखती जा रही हूँ सबके मैसेजेस भी. तो दैट्स हाउ. कैसे हैं आप बताइए.
1: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ. और मैं निकला हूँ वहाँ से सनैया से रवेश के लिए.
0: अच्छा.
1: अभी ऑन द वे रवेश में, मतलब पहुँचने वाला हूँ. थोड़ा सा है तकरीबन, थोड़ा सफर बाकी है. तो मैं बोला आप ही लगा ले तो कहीं रुका दूंगा गाड़ी. तो फिर अभी एक सन्नाटे हाईवे में रुका दिया गाड़ी. तो मैं बोला अभी थोड़ी सी बात करते
0: हैं. जबरदस्त, बहुत ही अच्छा,
1: बहुत अच्छी. मतलब सब लिसनर लोग ने जो प्लान किया ना अपने अपने अंदाज से, गांगा भाई है, जावेद भाई है, रईस भाई है, और खादिम साहब भी थे ना मेरा ख्याल है.
0: नहीं अभी वो नहीं आए, खादिम भाई नहीं आए.
1: हाँ दूसरे थे ना. हाँ दूसरे थे भाई,
0: नौशाद जी थे.
1: हाँ जी. तो माफ करना और इसी पे था ना.
0: माफ करना मुश्किल है क्या, आसान है.
1: हाँ जी जी जी. एक्चुअली नाजिया मैम ये जो माफ करना, तो माफी और माफ करना, तो माफी ना मांगी जाती है और माफ जो है ना वो एक ना हदिया है. वो एक तरीके से एक हदिया दिया जाता है. यानी किसी को मैंने माफ कर दिया, लेकिन हाँ कि जो माफी तो है ना मांगी जाती है. और वो जो बंदे से जिससे मिस्टेक हो गई, जो उसका मुंतजिर है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये बंदा मुझे माफ करेगा ये नहीं करेगा, क्योंकि डर उसको, खौफ उसको इस बात का है कि मेरे ताल्लुकात नहीं खराब हो जाए, मेरे ताल्लुकात टूट नहीं जाए, मेरे रिश्ते में दरार ना हो जाए. फिकर उसकी ना कि कुछ मतलब दूसरे लेकर. लेकिन अल्लाह रहम करे, जो छोटे अपनों ने दिए ना, जो अपनों से जो लगते हैं ना, अल्लाह अल्लाह, वो तो उनके लिए तो ना बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए. के तो फिर मैंने तो बहुत सी फेस कर चुका हूँ. तो मैंने तो इतनी लंबी बाउंड्री मारा हूँ ना, इतनी लंबी बाउंड्री मारा हूँ, तो यूटर्न के लिए काफी आगे जाना पड़ेगा. हाँ अगर आमना सामना हो गया, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बस. क्योंकि जो देख चुके हैं ना, मतलब एकदम से, मतलब इसी उम्मीद ही नहीं किया था किसी ने इस तरह से, और अपने वाले ने इस तरह से, मतलब एक खंजर जो गोपा है ना पीठ में छुरा जिस तरह मारा है ना, तो का बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए वो. आप चलो एक खिला रहने के लिए के चलो अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, चलो छोड़ दो, चलो ठीक है. वो आपने आपको, अपने आप को मुतमईन किया, आपने अपने आप को एक सेटिस्फाई और एक थोड़ा सा रिलैक्स किया. लेकिन वो जो जो दरार और जो स्क्रैच जो पड़ गया है ना, वो
0: बहुत मुश्किल है.
1: हाँ जी जी. उसको लेकर आना, उसको फिर से एकदम से लेबल करना है ना, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए. बाकी यही हो सकता है कि बस ये कि अगले को अगर उसका एहसास हो जाए और फिर खुद से आगे आए, हाँ तो फिर वो बात अलग हो जाती है. फिर तो फिर जिसने एक वक्ती तौर पर उसने हाँ भी भर दिया है, चलो ठीक है मैं जाने दो, ओके ओके छोड़ दिया जाने दो. लेकिन लेकिन जो अगला घूम फिर के अगर वापस आया ना, तो ये बंदे की जीत है कि जिसने वक्ती तौर पे मुझे माफ किया था, बड़े ठीक के लेके आया था, लेकिन अगले को एहसास से हुआ कि मैंने क्या मिस किया था, मेरी क्या गलती थी. क्यों उसको कब एहसास हुआ ना, वो जिस ग्रुप में था, जिस झूठ में था ना, उन लोगों ने उसको है ना बराबर से, मतलब है ना ऐसा उसको धोखा दिया, ऐसा उसके साथ किया ना, तो जिस बंदे को इसने धोखा दिया, तो ये बंदा उसके टाइम पे खड़ा रहा, वो सब मुंह फेर चुके थे. तो वो एहसास हुआ कि यार इसके साथ मैंने इतना गलत किया और यही देखो मेरे लिए आगे आके खड़ा रहा, तो शर्मिंदा हुआ और अपनी मतलब अपनी एक्सेप्ट किया कि यार ये मैंने जो किया था गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था. तो उसने फिर दोबारा फिर वो खुद से बोलता है कि मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ. तो ये चीज, ये एक मतलब एक बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत था ये एक रिजल्ट है और बहुत अच्छी कामयाबी है और दोनों जुटों के लिए. वरना तो फिर जिस तरह से आज के टाइम में रोजमर्रा की जिंदगी में सब जो होते हैं ना धोखे और वगैरह, तो इसमें तो बाउंड्रीज से बाउंड्रीज लंबी से लंबी होते चले जाती है और पता नहीं आगे जाके कोई कहाँ चले, राइट लेफ्ट इधर कोई कहाँ चले गया, कोई द एंड हो गया, कहीं आ गया, पता नहीं क्या हो गया. तो इस तरह से तो बहरहाल जो भी है कि माफी मांगना है और

0: जो माफ है वो तो एक गलती आपने आपने दे दिया है या माफ किया है, लेकिन आपने वाकई में आप गलत हो जो आपने आपको तलब करना है और उसके आप मुंतजी रहना है और वो रिश्तों को बरकरार और इस नियत से कि ये हमें हमारी में दरार ना हो कि हमेशा हमें साथ खुशमिजाजी और अपने भाईचारे और अपने मोहब्बत अपना इखलास खुलूस उसने सुलूक सारा कुछ हमारे साथ हमेशा रहे जैसे पहले था
1: सही
0: ना के पितर भीतर हो जाए।
1: सही कहा जी, और ये लाइन आपने बहुत अच्छी बात कही कि माफ करना जो है वो दूसरे शख्स को आजाद करना नहीं है बल्कि अपने दिल को गुस्से और बोझ से आजाद करना है, तो इसलिए माफ कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात कही आपने शहजादा जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू कि आप जुड़े और इतनी अच्छी बात आपने हमारी ऑडियंस हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की इस टॉपिक के हवाले से। थैंक यू वंस अगेन, एंजॉय योर वीकेंड, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए एंड ड्राइव सेफली, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, एक और कॉलर यहाँ मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस टॉपिक पे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप? खैरियत से?
2: और
1: जमाल से। आप बस जब आपको लगता है कि आज मुझे बात करना है इस टॉपिक पे तब आप जुड़ते हैं, वैसे आप जो है गायब रहते हैं, कहाँ रहते हैं?
2: मैं कल बहुत सारी मतलब बड़ी जद्दोजहद किया लेकिन शायद,
1: अरे मुझे मैसेज कर दिया कीजिए कि आप कॉल करना चाहते हैं तो हम खुद आपको जो है वो कॉल
2: करेंगे। गलती आपकी नहीं, गलती मेरी थी कि मैं एकदम आखिरी वक्त में कोशिश कर रहा था।
1: अच्छा,
2: तो मेरे दिल में भी था कि शायद मैं आज कामयाब हो पाऊं या नहीं। बहरहाल आज का मौजू बड़ा जबरदस्त है।
1: अच्छा,
2: समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ।
1: चलिए जहाँ से आप चाहे खुद से शुरू कीजिए, आपने कैसे किसको माफ किया?
2: हाँ बताता हूँ मैं, किसी लिखा किसी की हर बात सह लेता हूँ, हंसते भाई हूँ वरना मैं हिंदुस्तान हूँ जिसमें सिकंदर डूब जाते
1: हैं। वाह क्या बात है, जबरदस्त।
2: देखिए जहाँ तक मामला आपको दरगुजर का है तो एक आवामी सतह पर मैं आपसे कोशिश करूंगा बात करने की कि अल्लाह ने भी चीज की इजाजत दी है। मुझे होता नहीं है, मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि मतलब एक भाई साहब बहुत पहले मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि एक ही सुराख से मोमिन दो बार नहीं रखा जाता है, लाइल मोमिन मरता है, वो तो सही है। देखिए धोखा, मुझे लगता है धोखा एक अलग चीज है, आता उसी जुमरे में है ना, और लफ्ज माफ करना ये अलग मौजू है। किसी ने आपके साथ गुस्ताखी की, अब गुस्ताखी की कई एक किस्में हो सकती है, कई लिहाज से इंसान गुस्ताख हो सकता है, वो आपको सिर्फ धोखा दे बल्कि ज्यादती भी कर सकता है, आप जुल्म कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ माफी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सही है ना। किसी ने आपकी कोई बड़ी चीज नुकसान कर दी, चोरी कर दी, चोरी कर ली, आपको पता चल गया तो वहां पर आप माफ कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मिल जुमला अगर कहा जाए तो ये बात होगी कि आपको दरगुजर करने वाला एक बड़ा, यूं समझिए कि बड़ा पहलवान इंसान होता है, बड़ा मजबूत इंसान होता है, बड़ा दिल वाला होता है, बहुत बड़े जिगरे वाला होता है, तभी वो किसी को उसको खूबी के साथ माफ कर सकता है और माफ कर देना चाहिए। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम मेरे बंदों के पास रहम करोगे, उनके साथ उसमें सलूक करोगे, और माफ करना उसमें सलूक के जुमरे में आता है, दायरे में आता है ना। तो अगर आप मेरे किसी बंदे पर उसके गुनाहों पर या उसके आयत पर अगर आप पर्दापोशी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ वही मामला बरतूंगा, वही रवैया अख्तियार
1: करूंगा। बिल्कुल,
2: इस्लामी लिहाज से अगर देखा जाए तो बहरहाल आपको दरगुजर का मामला जो है ना वो बेहतर है और वो एक मोमिन और एक अच्छे इंसान की खासियत में शामिल है। जहां तक मेरी इल्मे कमाई की है, जो मैं समझ पाता हूँ, वो जो मतलब जो तजर्बात मुझे हुए हैं, अगर ना देखिए एक इंसान, वो कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी जिंदगी में कहते हैं मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहली गलती करना माफ कर देना, दूसरी गलती करने की दावत देना है, ये भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन जरूरत के हाल के हिसाब से इंसान को अपने फैसले लेकर और अब दरगुजर कर देना बेहतर है। वो इस लिहाज से कि वो आपके एक भरपूर इखलाक मंद और इंसानियत का सबूत देता है।
1: क्या आप कितने

0: बंदे इतने अच्छे इंसान है, कितने दिल वाले हैं, जो आपके अंदर सारी चीजें सारी खसूसियतें पाई जाती है। एक अच्छी खसूसियत है ये इंसान
1: दरगुजर कर।
0: एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा, क्या आप अपने घर के परिवार में या अगर खानदान या अपने खूनी रिश्ते में कोई बहुत बड़ी खता करता है तो आप उसे माफ नहीं करते? अगर करते हैं तो फिर अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम के तहत दुनिया का हर आदमी अगर देखा जाए जो कलमा गो है वो तो आपको भाई है ना। खूनी रिश्ता सही, लेकिन किसी ना किसी लिहाज से तो भाई हुआ हो। अगर भाई है, आप बाहर निकलकर समाज या माशरे में आप देखते हैं किसी को कोई बड़ी गुस्ताखी कर जाता है, अगर आपको लगता है कि उसको थोड़ा एहसास दिला कर या उसने खुद से एहसास कर लिया हो, है ना, महसूस कर लिया हो निदामत और शर्मिंदगी का इजहार सामने वाला अगर करे तो आप उस पर मुकम्मल तरह से दरगुजर फरमा दें, वो इंशाल्लाह उसका अजर भी अल्लाह आपको देगा। और आपके बारे में दुनिया की ये राय भी कायम होगी कि ये बंदा नरम नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह के लिए माफ़ कर देना ही चाहिए। देखिए, गुनाह तो होते ही हैं, सबसे बड़े छोटे, हो सकता है कुछ बहुत बड़े धोखे हों जिसके बाद माफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन हाँ, ये कहते हैं ना कि वक्त है हर चीज़ का मरहम, मतलब हर चीज़ की दवा जो है वक्त है। वक्त के साथ आप धीरे धीरे वो बड़े धोखे भी थोड़े से हल्के होने लग जाते हैं, और फिर एक वक्त आए कि आप उन्हें माफ़ कर ही दीजिए, यानी कि आखिर तक के नहीं, हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, वो नहीं होना चाहिए।
0: क्या कहते हैं, एक लंबे से मैसेज का जिक्र किया।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, मुबीन जी का मैसेज है।
0: आप यकीन करें कि वही मामला मेरे साथ हुआ है, सेम जरा सा भी फर्क नहीं है, वही मामला मेरे साथ हुआ है
1: आपकी बेटी के लिए।
0: क्या ही कर सकता हूँ मैं अब उस आदमी को, मतलब अगर मैं सजा भी दे लूँ तो क्या फिर मेरे बच्चे के साथ वो जो हुआ है वो वापस हो जाएगा?
1: नहीं, सही बात है।
0: आखिरी वक्त ये है कि मुझे उसको कैसे करके माफ करना पड़ेगा। और जो आपने एक बात ये कही बड़ी अच्छी कि लंबा वक्त गुजर जाने के बाद, है ना, हालात के तेज धूप बहुत बड़े से बड़े नक्श को मिटा देते हैं।
1: सही बात।
0: तो वैसे इंसान का उसका भी धीरे धीरे ना वो कमतर से कमतर होते जाता है, और फिर आखिर में कभी अगर कोई ऐसा मौका पड़े जहाँ वो देखे कि वो सामने वाला जिसने बड़ी गलती करके मुझे बहुत बड़े मतलब वो अदाब में मुब्तला किया था, अगर वो कहीं ना कहीं बेचारगी में मुब्तला है, कहीं ना कहीं आप उसको बेबस देखते हैं, तो अगर तो आपके अंदर मतलब सारी खसूसियत है तो यकीनी तौर पर आपका दिल तड़प कर से किसी न किसी दिन माफी करते हैं।
1: सही, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी बात, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच जमाल जी, बहुत शुक्रिया कि फाइनली आज आपकी कॉल मिली और आपने बहुत ही अच्छी और बड़ी खूबसूरत बात कही। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज है हम सब के लिए। जज़ाकअल्लाह एंड थैंक यू सो मच। और किस तरह से आप अपने लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो हैट्स ऑफ एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और जुड़े।
0: मुझे लगता है कि आपकी मेहरबानी है जो चल चीज है या जहानी के तौर पर आप ऐसे निकाल कर लाती हुई है, अल्लाह सबसे ज्यादा जजा एक्सर में कहता हूँ कि आपको भी सुनने वाले से ज्यादा, और आपको काफी देर तक हमारे रेडियो मतलब उसने ही उस रेडियो के हवाले से देर पर आवामी खिदमत का मौका दे व्यादी के साथ सारी चीजें।
1: आमीन आमीन, थैंक यू जी, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। और इसमें सादा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आप माने या ना माने, लेकिन आप लोगों को बहुत जाता है, तो बस आपको भी बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, एंड आई थिंक हम जो है 8 बजे शाम 8 बजे इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे, एंड आई विल रियली मेक श्योर कि आज इस टॉपिक को हम वाकई कंक्लूड कर दें। सो आपके पास थोड़ा सा टाइम है, अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ, नंबर है 666-22-107, यहाँ पर आपके मैसेजेस जो हैं वो हम ले रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं तो 443-443-77 हमारा नंबर है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: A very good morning. Aju hai hamare sath, right? Kaise ho?
2: Yes. Yeah, good. Badhiya.
1: Badhiya. To bataiye, aapke liye kya rehta hai? Maaf karna aasan hota hai logon ko ya phir bahut mushkil? Kisi ne bada dhoka diya aur maaf kiya?
2: General aur mera
1: ab khud se relate karenge to I think uska impact alag hoga hum sab pe. कि आपको किसी ने बड़ा धोखा दिया एंड यू नो आप माफ कर पाए या नहीं कर पाए, अभी तक अभी भी चल रहे हैं आप उस स्ट्रगल में हैं।
2: I will go for revenge.
1: अच्छा,

0: यू समबडी क्वाइट डिफरेंट. हाँ अभी तक सब लोग माफी की बात कर रहे हैं, आप बदले की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों?
1: इट डिपेंड्स ऑन माय बाउंड्री लेवल, यू नो. मेरे लिए एक बाउंड्री लेवल है. इसका आगे आगे जा रहा तो फिर मैं, इफ यू डिग वेल आई विल डिग आल्सो वेल.
0: तो मतलब आपकी डिक्शनरी में माफ करने जैसा नहीं है.
1: मेरा है माफ है वो. अच्छा. जो ऐसी पहले अपोलॉजी करने का एक तरीका है. उसका हिसाब से मेरा बाउंड्री लेवल है. एंड इट्स फॉर एग्जांपल वर्क रिलेटेड मैं किसी को माफ नहीं करता हूँ.
0: अरे बाप रे. अच्छा.
1: See, the small mistake, it will create a big issue.
0: But we all are humans, bhai. तो होती तो है ही गलतियाँ. हम लोगों से कभी ना कभी तो हो ही जाएगी. देखिए फर्क है जान के करना और हो जाना.
1: मैं एक स्टोरी बताएगा. आई वॉज वर्किंग सऊदी अरेबिया. मैं कंपनी का नाम नहीं बोलता. आई वॉज वर्किंग सऊदी अरेबिया. द मैन वॉज वर्किंग इन ओवरहेड क्रेन. ओके वो मेरा दोस्त था. तो ऊपर गया वो. क्या गया वो. उसको प्लेटफॉर्म में वो लोग का बेस अच्छा से नहीं डाला था. वो नीचे के आने का टाइम वो गिर के वो प्लेटफॉर्म वीक है. वो नीचे गिर गया. नीचे गिर के सीधा ट्रेंच में गया. वो हॉस्पिटल जाने का रास्ता में वो मौत हो गया. सो ऐसा वाला आपका काम कर रिलेटेड में कोई भी आप काम कर रहा है आपका साथ दो दो बंदा रहता है तीन बंदा रहता है. द स्मॉल मिस्टेक इट विल क्रिएट बिग इम्पैक्ट फॉर समवन. आपको नहीं लेगा लेकिन इट विल गोइंग टू क्रिएट समवन. एक्सपेशली आप गैस प्लांट में काम कर रहा है, ऑयल प्लांट में काम कर रहा है, केमिकल प्लांट में काम कर रहा है. आपका इम्पैक्ट लेवल इज वेरी हाई. दैट्स व्हाई वो जॉब के लिए किसी को माफ नहीं करने का. मैं माफ नहीं देगा.
2: जनरल
1: को फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सनल रिलेटेड है. मेरा ब्रदर्स हो ब्रदर सिस्टर्स कोई भी मेरा बेटी बेटा कोई भी आना दो वो लोग को अगर कुछ कर रहा है तो आई विल गिव यू फॉरगिव. अगेन अगेन अगेन अगेन आई विल गिव यू फॉरगिव बट आई विल ट्राई टू गेट सम सॉल्यूशन फॉर दैट मैटर. इसको मैं कोशिश करेगा उसको कैसे वो अवॉइड करने का. वो बार बार वो चीज रिपीट कर रहा है. मैं कितना बार माफ किया फिर भी वो कर रहा है. फिर उसका क्या करने का मैं सोच के उसके हिसाब से मैं उसको थोड़ा देगा.
0: सही.
1: और अभी मेरा छोटा बेटी था वो क्या करता है वो हमारा वो पर छोटा बकेट है ना उसका अंदर बैठ के वो यूरिन जाता है. तो मैं बहुत बार उसको बोला ऐसे मत करो बोला. फिर मैं उसका थोड़ा सिखाया था वो इधर नहीं है ये जो चीज को नहीं करने का मैं बहुत सिखाया था. अभी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो रहा है. तो आपका पर्सनल लाइफ में आपको माफ करना ही चाहिए. आपका वाइफ के साथ कोई झगड़ा होगा तो आप भी रिवेंज लेने के लिए जा रहा है तो आपका लाइफ पूरा सत्यानाश हो जाएगा.
0: बिल्कुल.
1: तो आपका पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा ध्यान रखने का माफ कीजिए क्योंकि ये आपका लाइफ है.
0: तो रिश्तों में माफी ही कामयाबी है. सही कहा आपने.
1: ये बार बार वो चीज रिपीट कर रहा तो उसका कैसे कंट्रोल करने का उसको हिसाब से आप सोच के उसका थोड़ा लेसन दे सकता है. और तो मेंटली वो मेंटली फिट नहीं है तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा ट्रीटमेंट दे चाहे तो करो कुछ भी करो क्योंकि वो चीज अगर रिपीट नहीं होने का.
0: सही.
1: जो उसके हिसाब से आप कर रहे तो डेफिनेटली नथिंग विल हैपन. लेकिन मेरा पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली आई विल आई एम पीस ऑफ माइंड.
0: ये अच्छी बात है. चलिए ये बड़ी बात है कि आप रिश्तों में हमेशा जो है फ्लेक्सिबल हैं एंड यू आर नॉट रिजिड. और आप माफ़ कर देते हैं और माफ़ करने की बात को आप प्रमोट भी कर रहे हैं. बट व्हेन कम्स टू प्रोफेशनल वर्क इस तरह की गलती हो तो जैसे आपने अभी एक्सप्लेन बताई वो तो खैर वाकई किसी की आपने जान ले ली. आप कहने को गलती नहीं थी. मैं कहूँगी कि केयरलेसनेस या रेकलेसनेस थी जो भी थी. बट हाँ अल्टीमेटली किसी की जान चली गई
1: तो ऐसे की माफी नहीं होनी चाहिए.
0: या
1: इट वोंट हैपन एनी टाइम बट इट विल हैपन.

0: या नहीं, ऐसे में तो वाकई सही में आपको पनिश करना चाहिए, बाकायदा पनिशमेंट होनी चाहिए इस तरह के लोगों की। अकाउंटेबिलिटी बनती ही बनती है कि आपने किसी की जान ले ली, आपकी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाए और बात ही नहीं कुछ है और आप माफ़ कर दें, इट्स नॉट रियली डन। लेकिन चलिए, थैंक यू सो मच, आपकी सोच सबसे अलग थी एंड इट वॉज नाइस एंड यू एक्सप्लेन इट वेल। बहुत अच्छा लगा कि आप आते हैं, जुड़ते हैं और आपका कोई अपना पर्सनल कोई इंसिडेंट होता है जो आप शेयर करते हैं और जो आपकी जो कन्वर्सेशन है उसको और भी पावरफुल बनाती है और इम्पैक्टफुल बना देती है बात। सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय। आज बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों के व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जहाँ इतने सारे लोग माफ़ी की बात कर रहे थे वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, कौन सी चीज़ों के लिए माफ़ नहीं करना चाहिए, यहाँ माफ़ी नहीं बनती है। एक और कॉलर मेरे साथ इस वक्त यहाँ जुड़ रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप, खैरियत से?
1: अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। मैं आप दूसरों का नाम लेने से पहले मैं मेरा नाम बोल देता हूँ, शेख अजहर को।
0: अजहर जी, हाँ, मैं आज आपको पहचानी अजहर जी, क्योंकि एक दिन और आप मेरे साथ जुड़े थे तब आपने कहा था मेरा नाम कभी याद नहीं रखती हैं, तो अब
1: मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए मैं सुन रहा था, मैं आपको काफी देर से सुन रहा था मैं।
0: हाँ नहीं, आप मैंने कहा थोड़ा सा और बोले, मुझे दिमाग में आ गया था कि शायद अजहर है, बट मैंने कहा ये थोड़ा सा और बोले तो मैं कन्फर्म हो गया सही बोलूँ, वरना चुप रहूँ।
1: हमारा नाम याद रखना वो हमारी खुशकिस्मती है।
0: अरे नहीं, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप हमारे इतने अच्छे इतने प्यारे लिसनर हैं, तो आपको भूलने का तो कुछ बनता ही नहीं है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, ये 107 से हमारे को मोहब्बत है और ये जितने आपके फैंस है 107 के, आप लोगों को मोहब्बत है हम लोग से।
0: ये तो सच है,
1: अल्लाह का शुक्र है। तो
0: हम मिले नहीं है पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आवाज
1: के थ्रू ना, यानी 107 हमारे दिल से है और पूरे जितने भी दोहा के जो ना 107 चाहने वाले आप लोगों के दिल से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए बोल के सुनते रहना आप लोगों को, क्योंकि आप लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ से। खैर वो आप लोगों का जॉब है वो अलग बात है, लेकिन आप लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ से कि कुछ दुनिया भर के कुछ कोई कोने से कुछ अच्छी बुरी खबर, दिल की हाल, हर चीज सुनने के लिए, सुनाने के लिए आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है।
0: और हम बताएं क्यों आते हैं, क्योंकि हम आपके करीबी हैं, हम आपके दोस्त हैं, बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं, तो हम उनकी फैमिली हैं, बस इसलिए आते हैं कि वो अपने दिल की बात हमसे कहे, हमें कुछ बताएं, हम भले ही कोई सोल्यूशन दे पाए या ना दे पाए, एटलीस्ट सुन पाए, तो बस यही होता है कि एक दूसरे की सुन लेते हैं तो थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है। और आज के टाइम में बाकी तो किसके पास, हाँ वही ना,
1: नहीं है टाइम नहीं है। आज पहले एक दौर था चार दोस्त, पहले एक दौर था कि चार दोस्त जो है ना एक दूसरे को घरों पे जाके किसी के गालियां भी सुनते थे, लेकिन जो है ना घर पे जाके दोस्तों को ले लेके आते थे बैठ के बात करने के लिए। आज चार दोस्त अगर बैठे हुए बात करने के लिए तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई अपने अपने मोबाइल में बिजी है।
0: सही, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और मोबाइल देखते देखते, नाजिया जी आपको एक छोटी एक बात बताता हूँ, मोबाइल देखते देखते किसी का इंतकाल भी हो गया सो है, ये मतलब एक हमारे सर्कल में, यानी अपने अपने लोगों में मसरूफ थे, मोबाइल देखते देखते अल्लाह मगफिरत करे, तो ऐसा भी वक्त आ गया। यानी पहले एक दौर था जैसे कि गांव में घरों के पास विलेज में किधर भी करंट गया तो पूरे बच्चे एक जगह होते थे, बच्चे एक जगह होते थे, बड़े एक जगह, लेडीज एक जगह, जेंट्स एक जगह होते थे। अब वैसा नहीं है, करंट गया तो कोई टेंशन नहीं, इन्वर्टर लगा लो, खत्म, गुस्सा बर्खास्त। ऐसी दुनिया हो गई आजकल।
0: वाकई सही कहा। अच्छा, आज हम जो थे माफ करने के हवाले से बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है माफ करना वाकई आसान होता है कि मुश्किल है आपके लिए?
1: बिल्कुल, आप जो आज का टॉपिक है उस वो बहुत अच्छी टॉपिक है, क्योंकि आप डेली डेली एक एक टॉपिक लेके आते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। बोलना ये था खैर देखिए, माफ करना नहीं करना, हम कौन है माफ करने वाले, क्योंकि कायनात बनाए सो वाला माफ करने के लिए तैयार है, तो हम क्या चीज है।
0: बहुत सही कहा जी, बहुत अच्छी लाइन जी,
1: क्योंकि आप जितने गुनाह कर सकते करो मेरे जो है ना, आप सजदा करके जो है ना आप मेरे से माफी मांगो, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, बोल के कायनात बनाए सो वाला बोला सो, तो हम कुछ नहीं है। बट वहाँ पे एक चीज ये है कि जो है ना इंसान को माफ करना नहीं बोल के नहीं, लेकिन इंसान को माफ करने के बावजूद अगर उन्हें गलती फिर से दोबारा फिर करा, माफ कर देना, लेकिन अगर इंसान को गलती करने के बाद अगर एहसास नहीं हुआ, वो अगर फिर से अगर वो गलती को अगर दोहरा रहा उन्हें, तो उन्हें माफी का हकदार नहीं है।

0: जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं गुस्सा किया, ठीक है आप माफ कर दिए, फिर एक बार कभी बिना कोई वजह के, कोई विदाउट एनी रीजन, फिर एक बार मैं आपको गुस्सा कर दिया, आप बोलेंगे जान दो भाई क्या है ऐसा। अगर वही आपको, अरे मैं बोला आ गया ना कुछ, अपने को बोला ही नहीं ना कुछ, अपने को तकलीफ दिया ना कुछ करा, अगर ऐसा नहीं है, अगर फिर से अगर कुछ तकलीफ दिया तो फिर उसको जो है ना माफ करने की किसी को नहीं है, तो मुश्किल की बात है। तो बोलना यही थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कोई भाई कॉल पे बात किए थे, उन्होंने भी ये बोले थे कि जो इंसान को जिस जगह पे माफ करना वही उसी को माफ करना, अगर वो आगे वाले को एहसास नहीं है, गलती करते गया, जिंदगी अगर नहीं सुधारना चाह रहा वो, जिंदगी में तब्दीलियां नहीं लेके आना चाह रहा, तो फिर वैसी जगह फिर उसको माफ करना नहीं करना, उसके उस पे हाल पे छोड़ देना है, वो माफ करना नहीं करना, तवक्कल तो अल्लाह है।
1: बहुत ही जबरदस्त।
0: सबसे पहले नाजिया जी मैं एक ही बात बताऊं, इंसान को दुनिया में कुछ नहीं होना है, इंसान को एहसास इंसान को बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई अच्छा करो या बुरा करो, तकलीफ में रहो, सुख में रहो, दुख में रहो, कुछ भी, एहसास और एहसास के मायने अगर मालूम हो गए तो इंसान आगे बढ़ता है। अगर एहसास के मायने नहीं, सिर्फ खाली गलती गलती गलती कर लेते अगर जाएंगा, गलती करेगा नहीं मैं पाक हूँ, गलती करूंगा नहीं मैं दूध का धुले हुआ हूँ बोले तो ये बात नहीं होती। बस
1: बहुत ही जबरदस्त और एकदम अपने प्रिसाइज वे में बहुत ही अच्छी बात समझा दी। सो जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच कि आप जुड़े, फाइनली आपने कॉल की, आपसे हमारी बात हुई, हालांकि काफी टाइम की बात हुई।
0: वीकेंड है, मैं बोला जी जी,
1: हाँ चलिए, थैंक यू जी, वीकेंड बना दिया आपने।
0: नहीं हमने बनाया वीकेंड, आप हमारा वीकेंड बना रहे, मैं बोला वीकेंड से पहले थोड़ा चलो बात कर लेंगे आपको बोल के मैं सुन लिया। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, अल्लाह सलामत खुश और आबाद रखे, अल्लाह हमेशा जो ना अपनी रहमत नाजिल करे, अल्लाह रब्बुल
1: आमीन,
0: दुआ में याद रखिए, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, बहुत ही अच्छी जबरदस्त कॉल दोस्तों। छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे तो उस टॉपिक को डेफिनेटली हम कंक्लूड करने वाले हैं। बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स रहा, सबने कुछ ना कुछ हमें बहुत ही अच्छा सिखाया, उस पर बात करूंगी, टॉपिक को कंक्लूड करूंगी और हम आगे बढ़ेंगे गेम की तरफ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट गाइस, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:04।
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: वेलकम बैक गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ। और फाइनली टाइम है कि जब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें, बट बिफोर दैट एक लास्ट कॉलर के साथ क्विक एक छोटी सी अच्छी सी कन्वर्सेशन कर लेते हैं। दिस विल बी द लास्ट, क्योंकि ये इस टॉपिक पे लास्ट है, अदरवाइज आप और मैं तो अभी कनेक्टेड ही हैं। ऑलमोस्ट एक घंटा है हमारे पास, जहाँ पर गेम में आपको जुड़ना है। एंड डोंट से नो, ओके, इस बार आपको जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कॉलर, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। समद है हमारे साथ, राइट?
3: जी जी

0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं बताइए, खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपकी मॉर्निंग तो बड़ी प्यारी चल रही है।
0: आप लोगों की वजह से, सो क्रेडिट गोज टू यू, आप लोग ही चलते हैं बहुत अच्छी मॉर्निंग जी।
1: अल्लाह चाहे दे सबको।
0: आमीन सुम आमीन। सो क्या कहना चाहेंगे? आई एम श्योर आपने टॉपिक सुना है
1: जी। टॉपिक ये है कि फॉरगिवनेस पे, राइट? हाँ, माफी के ऊपर।
0: माफ करना आसान लगता है कि मुश्किल लगता है आपको? कहाँ मुश्किल लगता
1: है? नहीं देखिए, मुश्किल नहीं, जब अपने रिश्तों में जब बात आती है तो हाँ। जिस पर हमको बहुत ज्यादा एतमाद होता है, बहुत ज्यादा यकीन भरोसा, जब उस इंसान हमारे साथ में कोई किस्म का जो है चीट करता है हमारे साथ, या फिर तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है तकलीफ होती है, लेकिन बेहतर है कि माफ कर दिया जाए तो वो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि माफ करने में खैर है और साथ ही साथ में पर्सनल लेवल पर और अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए कुछ ऐसे चीजों पर जिससे इम्पैक्ट सारे लोगों पर हो रहा है, सारे समाज पर हो रहा है, तो वहां पर आपको जस्टिस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि कसास में जिंदगी है, यानी इसलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, तो ये चीजें जो है खून के बदले खून, यानी तरगीब ये चीज नहीं दे रहे हैं कि क्राइम की, बताना ये चाह रहे हैं अल्लाह सुब्हान व तआला कि अगर सब एक दूसरे को माफ करते बैठेंगे तो सब एक दूसरे को मारते भी बैठेंगे साथ में। इसके लिए बैलेंस करने के लिए जो है ये जो हमारे यहाँ में कानून बनाए जाते हैं कि जो है अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो उसको जो है सजा दी जाएगी, फिर उसको जो है जो भी उसका गुनाह है वो साबित किया जाएगा, उसके बाद में उसको जो है फैसला दिया। अब पर्सनल लेवल पे ये आपके ऊपर है कि आप किसे माफ कर रहे हो किसे नहीं कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं एज एन ह्यूमन, तो मैं जो है बड़े बड़े क्राइम्स की सजा के लिए मैं कायल हूँ कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह औरतों का एहतराम नहीं करते हैं उनको, तो मैं बोलता हूँ कि जेल नहीं, सीधे सीधे उनको तो मौत ही दो। मेरा ये एक पूरे ओवरऑल वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड वाइड जो है जुडिशरी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग औरतों को बेहरमती करते हैं, छोटे छोटे बच्ची मासूम बच्चियां होती हैं और लड़कियां होती हैं जिनके साथ में इस तरीके के काम किए जाते हैं दुनिया में, और उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको फादर सिरा बना दो या उनको तो मार ही डालो। मेरी नजर में ना ये चलते फिरते दरिंदे है, ये इंसान नहीं है।
0: ये वाली बात बहुत अच्छी कही कि कुछ वाकई ऐसे गलतियां हैं, ऐसे गुनाह हैं, उन्हें गुनाह कहना चाहिए, उन्हें गलती तो नहीं कही जा सकती क्योंकि गलती धोखे और गुनाह में भी फर्क है। तो ये तो जो गुनाह है उसके लिए तो कोई माफ़ी है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। और जो आपने कहा इस तरह के और भी इससे मिलते जुलते जो गुनाह हैं, और जहाँ पर आप किसी की ज़िंदगी के साथ वाकई खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसे में तो किसी को माफ़ी होनी ही नहीं चाहिए, उनके लिए तो कैपिटल पनिशमेंट होनी ही चाहिए। दैट्स द सॉल्यूशन,
1: क्योंकि ये एक इबरत की चीज बन जाएगी, क्योंकि और इंसान इसको करने से पहले 10 बार सोचेगा कि नहीं। पहली चीज जो है ना, मुझे तो वो इंसान लगता ही नहीं है, क्योंकि तुम जिस माँ की पेट से पैदा हो रहे हो और जो है एक औरत का जो है तुम्हारे अंदर कैसे जज्बे रहना चाहिए पॉजिटिव, और तुम उसको गलत नजरियात और गलत चीजों से लेकर तुम्हारी सोच को एकदम कचरा कुंडी बना कर रखे हो, गार्बेज, और हमेशा तुम उसी चीज में जिंदा रह रहे हो, तो वो अल्लाह ही आलम वो सुधर पाए तो सुधर पाए, वरना जो है ये मेरी नजर में तो वो गुनाह जो है सबसे बदतरीन लगता है। चोरी चोरी करने वाला वापस आ जाएगा, शराब पीने वाला ठीक हो जाएगा, और अपने खून करने वाला भी चलो ठीक है अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर लेगा, लेकिन ये जो गंदी ज़हनियत के लोग होते हैं अल्लाह ही आलम वो जो है बहुत खतरनाक होते हैं। इनको जो है ना ऐसी खतरनाक सजा मिलना कि जो दूसरे लोग है ना उनकी रूह कांप जानी चाहिए। क्योंकि भाई माँ बहन वाले लोग जो है इस तरीके से दूसरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन।
0: नहीं बिल्कुल सही,
1: ये रिक्वेस्ट है।
0: सही सही, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सुमंत, थैंक यू।
1: सब आपके टॉपिक्स वगैरह बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो शायद कल आपका नहीं रहेगा, फ्राइडे
0: सैटरडे मेरी छुट्टी है, मेरे मुंह से पहले ये निकला, इसलिए ये कि कल वीकेंड होता है ना, फ्राइडे सैटरडे में तो
1: चलिए एंजॉय करें, मैं वही तो पूछ रहा था।
0: फिर हम लोग संडे में मिलेंगे
1: इंशाल्लाह। चले फिर एक नए जो है मौजू के साथ फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जिंदगी बाकी रही तो दुआओं की गुजारिश।
0: जरूर जरूर इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिए जी। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, आई थिंक सब कुछ आ गया। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी चाहिए उसमें हर चीज आ चुकी है। गलती की बात हुई, गुनाह की बात

बात हुई और धोखे की भी बात हुई, हालांकि सारी चीजें आपस में थोड़ी थोड़ी अलग हैं। गलतियां तो यह है कि अक्सर इंसान बेइरादा ही कर जाता है, नादानी में कर जाता है, जिसकी माफ़ी होनी चाहिए। जैसे आपने भी कहा, मैं भी कहूँगी कि इंसान का फ़र्ज बनता है कि कोई इंसान अगर गलती करे और वो जेन्युइनली आपके सामने आए, उसके एक्शन से भी आपको नज़र आता है कि हाँ वो वाकई जो है वो उसको अफसोस है अपनी बात पर और माफ़ी मांग रहा है दिल से, क्योंकि समझ में आता है। एक्शंस और वर्ड्स बहुत अलाइंड हो जाते हैं। अगर एक्शंस और वर्ड्स अलाइंड नहीं है, दैट मीन्स वो इंसान जो है वो दिल से माफ़ी नहीं मांग रहा, किसी के प्रेशर में आके मांग रहा है, या हो सकता है कि आगे धोखा देने की फिराक में आपसे माफ़ी मांग रहा है। तो आप हर इंसान के एक्शंस को भी बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, समझ में आता है तो ज़रूर माफ़ कीजिए, जैसे हमने कहा। लेकिन हाँ, गुनाह गुनाह तो वो काम है जो इंसान को पता होता है कि गलत है फिर भी वो कर रहा है, इस चीज़ की माफ़ी नहीं है। जैसे समझ जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा इसके लिए तो वाकई और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन पर मैं कहूँगी कि एक्चुअल में कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। तो आज हम गुनाह पे तो नहीं जा रहे हैं, वो तो बहुत ही वाइड और बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, हम बस गलती और धोखे तक ही रहेंगे, बस उतनी ही हमने बात की। और इसमें भी देखिए छोटी सी ये भी मैं आपको बताऊँ, गलती में और धोखे में भी फ़र्क है। गलती में, गलती का मतलब अगेन अनइंटेंशनली आपने कुछ किया। एक इंसान जो है अनइंटेंशनली कुछ कर रहा है, मिसाल के तौर पे कि आपका दोस्त आपकी बर्थडे पार्टी में आपने उसको इनवाइट किया और वो भूल गया, आप उसे कॉल कर रहे हैं बट वो कॉल भी नहीं अटेंड कर रहा है, आपको डेफिनेटली बुरा लगेगा और हो सकता है आप उसे शिकवा शिकायत करें, लेकिन वो आपसे माफ़ी मांगे तो आप उसको माफ़ कर दें क्योंकि छोटी सी बात थी। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, ये गलती थी जिसकी माफ़ी मिल गई। वहीं अगर कोई इंसान, कोई भी शख्स जो है जानबूझ के कुछ कर रहा है, जब मैं कहती हूँ धोखा, तो उसमें एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, एक तरीके से उस काम को अंजाम दिया जाता है। ऐसी चीज़ों में, धोखे में माफ़ी जो है वो देना या जल्दी माफ़ कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि गलती में देखिए इरादा नहीं होता, लेकिन धोखे में आपका इरादा शामिल होता है। अब ऐसी चीज़ों पर माफ़ी इंसान नहीं दे पाता। और भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर माफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान जो है ना, देखिए गलती हम सबसे होती है और हम सब जो हैं वो कोशिश भी ये करते हैं कि एक दूसरे को माफ़ करें, लेकिन माफ़ करना आसान लगता है, असल में होता मुश्किल है। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है, झूठ बोलता है या हमारा ट्रस्ट जो है वो तोड़ देता है, तो उसका असर हमारे जहन पे, हमारी पर्सनालिटी पे और हमारे दिलो दिमाग पे बहुत दिनों तक और बड़ा गहरा होता है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ जो हमें उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आने देती, वो ये कि इंसान रह रहकर उन बातों को याद करता है, और जब वो शख्स उसके सामने आता है तो वो सारी पुरानी बातें सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में बार बार उस पर जो है वो उसको माफ़ कर पाना बड़ा मुश्किल भी होता है। लोग कहते हैं कि जब एक दूसरे को हम माफ़ नहीं करेंगे तो सोसाइटी में ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल सही, ट्रस्ट एक शीशे की तरह है, अगर वो टूट जाए हो सकता है आप जोड़ लें उसे, लेकिन फिर भी दरार या निशान तो रह ही जाते हैं। माफ़ कर दीजिए, लेकिन दोबारा ट्रस्ट करने में 2-3-10 बार सोचिए। कई बार लोग जो हैं, कई लोग माफ़ इसलिए भी कर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ये खौफ होता है कि कहीं वो बंदा फिर वैसी कोई या वैसे नहीं तो किसी और तरह की कोई बात तो हमारे साथ नहीं करेगा। और कुछ लोगों का, जैसे हमारे लिसनर्स भी जुड़े, उन्होंने कहा कुछ लोगों का ईगो, मतलब ये सोचना कि मैं माफ़ क्यों करूँ, या फिर गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि हम सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते। तो इन चीज़ों के चलते, या एक और लाइन, इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए, इस नाम का इस्तेमाल छोटी छोटी चीज़ों में गलतियों को लेकर किया जाता है, जबकि इंसाफ अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। इसका ताल्लुक जो है ना छोटी छोटी गलतियों से नहीं है, लेकिन हम खुद को उस तरफ रख देते हैं और फिर हमें दूसरों को माफ़ करना बड़ा मुश्किल लगता है, लगता है नहीं हम तो माफ़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन माफ़ कर देना, जैसे मैंने कहा, ये ऐसा है कि आप अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं उस बोझ से, उस गुस्से से, उस ट्रॉमा से, उस सारी चीज़ों से आपने खुद को आज़ाद किया। तो अपने लिए जो है ना दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए ही चाहिए। और हाँ, हो सकता है कि चलिए कुछ बहुत बड़े धोखे आपको लाइफ में मिले जिसके बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं, मैं माफ़ नहीं कर सकता, शायद माफ़ करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन एक चीज़ जिसकी मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो ये कि प्लीज़ इस चेन को ब्रेक करिए, आगे आप बदले मत लीजिए कि आपको किसी ने धोखा दिया तो आप भी बड़ा धोखा देंगे। इसकी आपने प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि इसने मेरे साथ किया तो मैं इससे बदला कैसे लूँ, ये सोच। ठीक है, माफ़ी तो, माफ़ कर देना तो बहुत बड़ा अमल है।

तो बहुत बाद में शायद आता है जहन में. सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है, किसी ने हमें धोखा दिया किया, गुस्सा होते हैं और हम उस गुस्से की हालत में सोचते हैं कि हम इससे कैसे बदला लें, हम क्या कर सकते हैं कि इससे इस तरह से बदला लिया जाए. गलती इंसान को सिखाती है, उसको सीखना है बेहतर बनने के लिए. ऐसी गलतियां नहीं करना है जो माशरे में आपको अच्छा इंसान होते हुए आपको ले जाके खड़ा कर दे बुरे इंसान की कैटेगरी में. गलती माफ़ की जा सकती है, लेकिन ट्रस्ट, जैसे आप भी कहते हो मैं भी समझती हूँ, दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल है. लेकिन कोई जेन्युइनली आपके साथ जो है, आपने उसको आजमाया, परखा, देखा, समझ में आया कि हाँ ये वाकई अब ट्रस्टवर्दी है, तब भी मोहतात रहिए, उस केस में भी मोहतात रहिए, लेकिन हाँ अपना दिल साफ कीजिए. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप बदला मत लीजिए, किसी से किसी तरह का छोड़ दीजिए. भले से आप माफ़ करें ना करें, वो तो आपके ऊपर है, माफ़ कर देते तो आप बहुत ग्रेट हो जाते, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अमल कर रहे हैं आप. लेकिन अगर आप माफ़ नहीं भी कर पा रहे हैं किसी वजह से, कुछ वक्त के लिए, हो सकता है बाद में करें, बदले की ये सोच जो है ना, इससे बाहर निकलिए. ये इंसान को तबाह करती है, सोसाइटी को भी तबाह करती है, और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है. एक चेन की तरह काम करती है, आपने लिया उसने किया, आपने किया उसने किया, और इससे आप देखिए कितने कितने घर रिश्ते सब तबाह हो जाते हैं. चलिए फिलहाल यहाँ इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और इस टॉपिक को यहीं एंड कर रहे हैं. दो हमारे साथ और भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं, कुछ मैसेजेस भी हैं जिन्हें मैं आपसे थोड़ी देर में बस शामिल करती हूँ, क्योंकि अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा हैवी डोज होगी, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं. तो यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हैं, वापस आएंगे तो आपके साथ गेम खेलेंगे. सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, उसके लिए आप तैयार रहिए. नंबर है 666-22-107, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. यू कैन सेंड मी हाई हेलो सो दैट आई विल गेट टू नो कि आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए विद ऑल द गट्स कि हाँ मैं खेलूँगी. नंबर है 4434377.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: FM 107 पर दिल से देसी।
1: Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समा मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ। 8:26 ऑन द क्लॉक, टाइम हो चला है कि हम आपके साथ गेम खेलें। आज हमने वापस से जो है ना कुछ वॉइसेस रखी हैं, ठीक है। कुछ वॉइसेस हैं एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की, कुछ क्रिकेटर्स की भी वॉइसेस हैं जो आपको पहचाननी है, और 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। तो मैंने सोचा शुरुआत करते हैं यूसुफ जी से। हेलो एंड गुड मॉर्निंग।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक
1: है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं बताइए।
2: जी अल्लाह का शुक्र।
1: तो आज हमने सोचा कि हम बॉलीवुड से ही वापस से शुरुआत कर देते हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी डालें, कुछ लोगों को बॉलीवुड में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ हमारे पास प्लेयर्स भी हैं, बट आई नो दैट कि आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं बॉलीवुड के हवाले से। तो आज कुछ वॉइसेस मैं प्ले करूंगी, आपको पहचाननी है, ठीक है?
2: अच्छा ठीक है।
1: चलिए आप ट्राई कीजिए, और आपके पास एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स हैं।
2: ओके,
1: ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपको। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
3: एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झकमार मार पीछे आएगी।
1: आमिर खान इज द राइट आंसर। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा
4: गोरू भाई से लड़ना।
2: अभिषेक बच्चन
1: बनके इज द राइट।
5: बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ
1: हजार। बिल्कुल सही नवाज, आपने बिल्कुल सही पहचाना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी आपको दूंगी।
6: मैच विनिंग इनिंग्स देखे ना, तो उसमें सारे मैचेस 90% ऐसे हैं जिसमें हम मैचेस जीते
1: पास कर रहे हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा क्योंकि मैं यहां
7: पे आई थिंक इट वाज वेरी रिवॉर्डिंग, यू नो, इट्स इट कैन बी
1: टूट जाते हैं टॉपिक पे, बहुत सारे लोग बात करते, गेम नहीं खेलना चाहते, बट रियली हैप्पी कि आप जुड़े। यू टू,
2: एंजॉय योर वीकेंड। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, बाय।
2: अल्लाह हाफिज।
1: तो ये असली चैंपियन की पहचान है, पता है, कभी भी कहीं भी कैसे भी कोई शुरुआत करने को कहे, कर दे आदमी, ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर, हमारे साथ यहाँ पे यूसुफ जी जुड़े, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत कर दी है। अब देखना ये है कि अगला बंदा कितना स्कोर करता है। तो एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पे, हेलो।
8: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: वालेकुम अस्सलाम शहजादा जी, कैसे हैं आप?
8: अल्हम्दुलिल्लाह। अब गेम खेलने फ्री हूँ मैं, भला गेम खेलूंगा जरूर।
1: वेरी नाइस, कितने अच्छे इंसान हैं कि आप जो है ना गेम खेलने के लिए जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आपके साथ में गेम स्टार्ट करती हूँ। 30 सेकेंड्स का टाइम है, और आज कुछ वॉइसेस आप लोगों को पहचाननी है, ठीक है?
2: ओके
1: चलिए। और ऑल द वे बेस्ट, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
9: नहीं, अच्छा रहा, घर गया था अम्मी अब्बू से मिलने, काफी टाइम बाद ही टाइम मिला था कि
1: मतलब
9: फैमिली के साथ, भाइयों के साथ।
7: I think it was very rewarding, you know, it's it can be a thankless job because
1: is the right answer.
10: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
11: मेरे पास माँ।
1: Is the right answer?
12: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है।
1: Is the right answer?
6: आप जितने भी मेरे मैच विनिंग इनिंग्स देखे ना, तो उसमें सारे मैचेस 90% ऐसे हैं जिसमें हम मैचेस जीते हैं। देखें, जब आप 367 चेस कर रहे होते हैं, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता, फील होता कि आपको अपना जो मोमेंटम है थोड़ा स्लो करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आपको रिस्क तो लेने पड़ते हैं।
1: कौन कौन?
8: बाबर आजम।
1: नहीं, बाबर आजम नहीं है, बट आपने कितने पहचाने, आपने क्या क्रिकेटर कोई पहचाना था?
8: हाँ, क्रिकेटर रवि शास्त्री
1: पहचाना, अमिताभ बच्चन आपने पहचाना, सनी आपने पहचान लिए। सो दैट्स हाउ आपने 3 का स्कोर किया है शहजादा जी, क्या बात है। दो पाकिस्तानी क्रिकेटर आप नहीं पहचान पाए, अलबत्ता मुझे लगा शायद आप फट से पहचान लेंगे क्योंकि आप क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट बहुत है, बट फिर भी आपने एक्टर्स भी पहचान लिए एंड एक क्रिकेटर भी आपने उनकी वॉइस पहचानी, सो दैट्स नाइस।

0: ग्रेट, थैंक यू सो मच शहजादा जी. इसलिए थैंक यू ज्यादा कि आपने इतना गट्स लिया कि खेलूंगा मैं, ये बड़ी बात है. पता है ये ज्यादा बड़ी बात है. सो थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिए. ओके लाफिस बाय. लाफिस ऑल राइट. एक और यहाँ पे कॉलर हमारे साथ जुड़ते हुए. हेलो.
1: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम अब्दुल रऊफ जी. फाइनली क्या बात है, आप टीम के लिए आगे, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सो मच. कैसे हैं आप और कैसी जा रही है आपकी सुबह? नाइस. ओके तो आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं. ठीक है
1: ठीक है.
0: 30 seconds आपको एग्जैक्टली मिलेंगे जितना मैक्सिमम स्कोर कर सके. ऑल द वेरी बेस्ट. और आपका टाइम स्टार्ट होता है आप.
2: नहीं अच्छा अच्छा रहा, घर गया था अम्मी अब्बू से मिलने.
0: बिल्कुल सही.
3: I think it was very rewarding. You know, it's it can be a thankless job because you judged every day of your life by 1.4 million only. You know, and you know, there's no hiding away from it. You face the bullet.
4: Rohit Sharma.
0: क्या बात है, आपने दो ऐसे प्लेयर पहचाने जिन्हें अभी तक कोई नहीं पहचान पाया था. इमाम उल हक को आपने पहचान लिया और शाहीन आफरीदी, ये दो वॉइसेस आपने बिल्कुल पहचानी. सो दैट्स ग्रेट. और आमिर के साथ आपका स्कोर होता है 3. नॉट एट ऑल बैड रूफ जी, इतने टाइम के बाद आप जुड़े और अच्छा खेला आपने. जबरदस्त. आपने चार बताए, एक तो आफरीदी आपने बताया, इंजमाम बताया,
1: इंजमाम और ये रोहित शर्मा.
0: नहीं रोहित नहीं था, वो गलत था. रोहित इज नॉट द राइट आंसर. सो दैट्स हाउ 3. चलिए जी. ओके टेक केयर.
1: ओके थैंक यू वेरी मच.
0: थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. बाय. बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो आज ट्राई कर रहे हैं कि नहीं हम ट्राई करेंगे, देखें हम भी कितना स्कोर करते हैं. तो एक और कॉलम मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं. हेलो.
5: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
5: कौन है?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
5: मकसूद अली बोल रहा हूँ.
0: मकसूद अली जी कैसे हैं और कैसी जा रही है आपकी सुबह? आपको भी जी. हैप्पी वीकेंड आपको भी जी. तो आपके साथ में गेम स्टार्ट करूं, आप तैयार खेलने के लिए?
5: जी मैम.
0: चलो जी. और आपके पास एग्जैक्टली 30 seconds है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
4: एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का पीछा करो.
0: इज द राइट आंसर.
6: गुरु भाई से लड़ना तो गुरु भाई बन के.
7: बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर.
0: सही.
8: खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद.
0: अनिल कपूर इज द राइट आंसर.
9: देखें आउट तो कोशिश होती है कि ना हो, क्योंकि बैक टू बैक जब बिकते हैं.
0: बाबर आजम इज द राइट आंसर. सही पहचान आपने.
10: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते.
0: अमिताभ बच्चन इज द राइट आंसर. क्या बात है, अमिताभ आपने पहचाना, नवाज पहचान लिया और बाबर आपने पहचाना और एक और पहचाना था अनिल. क्या बात है, 4 का स्कोर किया है. जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, वेरी वेल प्लेड. आपने नाम क्या बताया? सॉरी
5: मकसूद अली.
0: मकसूद अली. मकसूद जी क्या बात है, आपकी तो क्रिकेट की नॉलेज भी अच्छी है और साथ में बॉलीवुड की नॉलेज भी बहुत ही पक्की है. बहुत अच्छा आपने खेला, जबरदस्त 4 का स्कोर किया है, जो कि यूसुफ जी का है, जो कि हाईएस्ट है अभी. सो वेरी वेल प्लेड.
5: और मैं, हम लोग दोनों कर्नाटक से हैं ना, तो मैं बेंगलोर से हूं, वो भी कर्नाटक.
0: अच्छा जी, तो ये वाला एंगल है जो आप दोनों को जिता रहे हैं. बट वेरी नाइस. थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए. थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ओके अल्लाह हाफिज़. हैप्पी वीकेंड. टेक केयर. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़. सो यहाँ आज जो है मुझे थोड़ा सा, पता है क्यों अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने हल्का सा जो है ना वो इतनी हिम्मत दिखाई कि नहीं आज तो मैं भी खेलूँगा, आज मैं ट्राई करके ही देखता हूँ कि कितना मैं स्कोर कर सकता हूँ. डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, बस ट्राई करने वाली बात है. एक और यहाँ पर जो है कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं. हेलो.
11: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ये बताइए थे कहाँ आप?
11: हमारी गाड़ी हॉस्पिटल गई थी.
0: ओह क्या हुआ, खैरियत?
11: गाड़ी को हॉस्पिटल भेजा
0: अच्छा गाड़ी का हॉस्पिटल नहीं, आप दो तीन दिन से आ नहीं, आरिफ जी है ना मेरे साथ, हाँ नहीं आप आ नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आपकी खैरियत पहले पूछी जाए।
11: हाँ वो थोड़ा गाड़ी खराब हो गया है तो बस। अच्छा। गाड़ी तो हाथ में नहीं है तो बंदर की तरह इधर उधर मैनेजर अच्छा। बोल रहा था इधर जाओ तो उधर जाओ, इधर जाओ तो उधर जाओ।
0: ओ, ये चल रहा था, इसीलिए आप बिजी थे और इसीलिए आप हमें जो है ना वो कॉल नहीं कर सके। कोई बात नहीं, आज आपने डायरेक्ट एंट्री ली है सीधे गेम में, तो गेम तो
11: है ना, उसमें कॉल किया पर वो कंक्लूड करने लगी आप तो फिर।
0: चलिए अब हम संडे में जो है आप कोशिश कीजिएगा अगर आप जल्दी मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है 8 बजे तक कंक्लूड, 8:15 तक कर ही दें, तो गेम के लिए टाइम नहीं बचता ना। हाँ चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर आपके पास 30 सेकेंड्स हैं और कुछ वॉइसेस हैं जो आपको पहचाननी है, ठीक है? चलो तो आप तैयार हैं पूरी तरह से? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
12: हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना।
0: ओके,
7: बाप का, दादा का, भाई का, सबका।
0: राइट।
13: ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार।
0: क्या बोला आपने? पास।
14: ऐसा न हुआ
0: अच्छा
14: तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मनार करी तुझे जीने नहीं देंगे।
0: कौन सी ये भी पास। अच्छा एक और बताइए।
15: हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, हमसे हमारा गुरूर छीन लिया।
0: हाँ नहीं समंता नहीं है तो आपने आइडियली नवाज को पहचाना ना।
11: हाँ बस एक बार।
0: चलो थैंक गॉड आपका आपका जीरो स्कोर नहीं हुआ, एक तो पहचाना, वाह मबरू, क्या बात है। हाँ कई बार नहीं आता ना, नहीं आता जहन में, सो ये भी हो जाता है। बट चलिए मुझे लगा शायद आप एक्टर्स को पहचाना आपके लिए आसान हो और शायद फुटबॉलर्स की वॉइस आपके लिए टफ पड़े, तो मैंने सारे एक्टर्स ही पूछे कि आप स्कोर करिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने एटलीस्ट वन पहचाना और ठीक स्कोर किया, फिर ट्राई करेंगे, ठीक है? ये बड़ी बात है, यस, ये आपने अपने आप को चैंपियन वाली बात बताई। देखो खेलना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई ना डरता है, थोड़ा सा घबराता है, लोग आते नहीं आसानी से, तो ये बड़ी बात है कि आपने ट्राई किया एटलीस्ट।
11: आप लोग भी हमारे लिए इतना तीन-तीन घंटे चलता-चलता बैठ के शो कर रहे थे, हम लोग को भी तो
0: बिल्कुल बिल्कुल जुड़ना चाहिए हमारे साथ। चलिए थैंक यू वंस अगेन, आप एंजॉय कीजिए अपने वीकेंड को एंड उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी ठीक हो जाए जल्दी। थैंक यू थैंक यू। अब पूरे दो दिन के बाद आपकी और मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दोस्तों बहुत आज मुझे खुशी हो रही है, आप पूछेंगे नहीं क्यों, इस बात की कि फाइनली देर सवेर धीरे धीरे आगे पीछे लोग जो है गेम खेलने के लिए आ रहे हैं, ऐसे डर वर नहीं रहे, डर को वीकेंड पे उन्होंने साइड में रखा है, जो कि अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। तो बाय द वे आप सारे के सारे चैंपियंस, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, वापस से आप मुझे कॉल कीजिए 4-4-3, 4-4-3, 7-7 पर, गेम जो है वो जारी है। सुन रहे हैं आप शो समा मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: हाँ जी, वेलकम बैक. असीस कौर देव नेगी की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक दीदार दे, और मैं भी कहूंगी आपका दीदार होना चाहिए मुझे 4434377 पर या फिर 6662107 पर.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
0: तो देखा जाए अभी तक का जो स्कोर हाईएस्ट चल रहा है वो है 4 का स्कोर, 2 चैंपियंस और बाकी कमाल के चैंपियंस भी हमारे साथ जुड़े. तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप जो हैं वो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, ठीक ठाक तरीके से आप जो है क्रिकेटर्स के फ़ैन हैं, तो आप इस वक्त ट्राई कर सकते हैं अपना लक नंबर स्कोर करना 4321. दे आर जस्ट नंबर्स, पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर कुछ लोगों के मैसेजेस भी हैं जो मैं शामिल

0: करूंगी और खुशी किसी ने मुझे बोला भी एक दो लोगों ने कि कॉल कर लीजिए, तो उन्हें हम कॉल भी मिलाएंगे। बट उसके पहले कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको बता दूं जो हो रही हैं कतर में, जहां अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। वीकेंड्स में कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ कर लीजिए, क्योंकि इस बार वीकेंड जो है वो इंटरेस्टिंग भी है और लर्निंग एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज़ जो इस वीकेंड एक्सप्लोर की जा सकती है वो है एक एक्टिविटी, एंड दिस इज कॉल्ड माई स्टोरी माई आइडेंटिटी। 6 अगस्त को कतर म्यूजियम में एक स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप होगी, जहाँ पे टीनेजर्स के लिए अपनी कम्युनिकेशन, अपनी क्रिएटिव राइटिंग, थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने का एक बहुत ही कमाल का मौका है। आपको बता दूँ कि ये वर्कशॉप जो है वो अरबिक और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, तो लिहाजा आपके बच्चे जो है वो जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन एक और एक्टिविटी जो कतर नेशनल लाइब्रेरी में जारी है, और ये है चेस फॉर ऑल। यहाँ पर अगर आप बिगनर हैं तो भी आप जा सकते हैं, या फिर आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो भी आप इस एक्टिविटी का हिस्सा बन सकते हैं। ये एकदम ओपन टूर्नामेंट है चेस फॉर ऑल, जो कतर नेशनल लाइब्रेरी में हो रहा है। यहाँ आप जाके और आपके बच्चे जाके इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ एक और एक्टिविटी है जिसके बारे में बात करूंगी, एंड दिस इज़ कॉल्ड माय करियर माय फ्यूचर 2026। देखा जाए तो ये प्रोग्राम हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एक वर्क प्लेस एक्सपीरियंस और कल्चर और करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, दैट इन अ वेरी लर्निंग अ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कम्प्लीट करने पर यहाँ बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ है द लाइफ ऑफ प्लांट्स, यानी फैमिली डे। 8 अगस्त को म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में फैमिली प्लांट्स की अहमियत पर बात की जा रही है। एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट के थ्रू एक सिंबल के तौर पे है कि किस तरह से फैमिली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से वैल्यूज़ हैं जिन्हें इनकलकेट करने की ज़रूरत है, कल्चरल इम्पॉर्टेंस को किस तरह से सीखा जाए, प्रमोट किया जाए, ये सारी चीज़ें इस एक्टिविटी में होंगी। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो मथाफ म्यूजियम में भी चल रही है एग्जीबिशन, और ये आर्ट एग्जीबिशन जो है बड़ी कमाल की एग्जीबिशन है। ये आइडेंटिटी और ट्रांसफॉर्मेशन की थीम को एक्सप्लोर करती है, और इसमें मशहूर इराकी आर्टिस्ट इस्माइल जो है उनके आर्ट वर्क को डिस्प्ले किया जा रहा है। तो इस वीकेंड कतर में बहुत कुछ है सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और हाँ बहुत ही ज़्यादा इस वीकेंड को यादगार बनाने के लिए। तो ज़रूर जाइएगा अगर आपको टाइम मिलता है। एंड नाउ कमिंग टू योर मैसेजेस, मुझे कॉल कर लीजिए, आपको कॉल करते हैं। आई वांट टू प्ले, वाओ कुछ लोग तो बहुत ही ओ बट ऑलरेडी एंटर द ऑफिस, तो डू आई कॉल यू अहमद जी कि नहीं करूँ? अब मैं मुझे बताइए आप कि अभी आप खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं, मुझे बताइएगा। यहाँ मुझे कॉल कर लीजिए, ये है इनका नाम आसिफ। ओके, आसिफ को हम कॉल करते हैं, और आसिफ के अलावा सरफराज आलम जी ने भी मुझे कहा कि मुझे कॉल कर लीजिए। तो सरफराज जी आपको भी मैं कॉल मिलाती हूँ, लेकिन उसके पहले मेरे साथ कोई कॉलर जुड़ ही गया है। हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम मैडम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका?
1: अली रजा।
0: रजा जी, अली रजा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आपके साथ गेम स्टार्ट करूँ? क्रिकेट वगैरह देखने का आपको शौक है? देखते हैं, फॉलो करते हैं? अब नहीं देखते, अब सिर्फ सुन लेते हैं कौन जीता कौन हारा। अब मैंने कहा सिर्फ आप सुन लेते हैं कि कौन जीता कौन हारा, कौन से टूर्नामेंट में।
1: नहीं, अब सिर्फ वो मैच पाकिस्तान का तो देखते ही नहीं
0: है। अरे अरे,
1: और दूसरा अब इतना इंटरेस्ट रहा भी नहीं, क्योंकि वो प्लेयर भी नहीं रहा ना।
0: अच्छा, वो प्लेयर्स नहीं है, लिहाजा आपको उस तरह का भी इंटरेस्ट भी नहीं रहा। चलिए कोशिश करते हैं कि आज आप देखिए कितने प्लेयर्स को पहचान पाते हैं, उनकी वॉइसेस पहचान पाते हैं। तो आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं, इसमें मिक्स है, ठीक है, सभी हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स से हैं लोग, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है आप।
2: I've seen him, you know, he's very cool, calm, composed when he goes out to bat. But when he's outside, watching the game, he's not MS Dhoni.
0: भज्जी इज द राइट आंसर.
3: मैं जितने दिन भी वहाँ रहा था ना, तो होटल में मैं ठहरा हुआ था, खाना मेरा सौरभ की तरफ से आता था, क्योंकि जी ऐसा मेहमान नवाज है, ऐसा जबरदस्त इंसान है ये.
1: ये कोई इंडियन प्लेयर नाम नहीं आया,
0: ये पाकिस्तानी प्लेयर है. चलिए दूसरा सुनिए.
4: ये गेम है भाई, जो न्यूज चैनल था ढूस था, ये जंग है. इट्स नॉट अ जंग, इट्स अ गेम. Somebody has to win, somebody has to lose.
0: वसीम अकरम इज द राइट आंसर. एक और आपको वॉइस सुनाती हूँ.
5: पेशेंस के साथ जो भी चीज आती है ना, वो लॉन्ग टर्म होती है.
0: मिसबा इज द राइट आंसर. क्या बात है भाई, हरभजन आपने पहचाना वसीम अकरम एंड मिसबा. क्या बात है रजा जी, आपने तीनों अलग वॉइसेस पहचान ली. जबरदस्त, तीन का स्कोर किया है, बहुत ही अच्छे. हालांकि एक वॉइस आप मिस कर गए, वो नहीं पहचान पाए. एक बार फिर ट्राई करना चाहेंगे आप? ये भी पाकिस्तानी क्रिकेटर है, एक बार ट्राई कीजिए.
3: तो मैं जितने दिन भी वहाँ रहा था ना, तो होटल में मैं ठहरा हुआ था, खाना मेरा सौरभ की तरफ से आता था, क्योंकि जी ऐसा मेहमान नवाज है, ऐसा जबरदस्त इंसान है ये.
0: नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं. बहुत ही अच्छा आपने खेला, 3 का स्कोर किया, वेरी वेल प्लेड. बहुत मजा आया आपसे बात करके. अपना बहुत ख्याल रखिए, एंजॉय योर वीकेंड, और आगे जरूर मेरे साथ कनेक्ट होइएगा. ठीक है,
1: एक बात पूछनी थी आपसे.
0: हाँ जी पूछिए. नहीं, मेरा नाम नाजिया है.
1: वो जो मिस मैविश मॉर्निंग में करती थी, खत्म हो गया.
0: वो छुट्टी पे गई हैं भाई, छुट्टी पे गई हैं. पहले मैं छुट्टी पे गई थी, अभी वो छुट्टी पे गई हैं, तो वो वापस आएंगी. फिर हम दोनों ही होंगे, ऐसे होंगे. ठीक है, चलिए ओके, लाफ इज बाय. दोस्तों बहुत सारे लोग जो है आज फाइनली, इतनी मुझे खुशी हुई, इतनी खुशी मिल रही मैं क्या बताऊँ. कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, और भी लोग जुड़ना चाहते हैं, तो मैं जल्दी से देखती हूँ एक लास्ट कॉलर के साथ अगर हम कनेक्ट हो गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास टाइम अब नहीं है. तो लेट्स सी, अगर ये पिक कर लेते हैं, वेरी नाइस, फैंटास्टिक. अदरवाइज क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते हम. फिर तो हमें टाटा बाय बाय ही कहना होगा. अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी मैसेजेस हैं जो मैं ले लेती हूँ, बट बिफोर दैट वी आर कनेक्टेड. हेलो, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सरफराज आप? खैरियत से?
6: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हालांकि मैं आपसे बात कर रही आराम से, इत्मीनान से, बट मेरे पास टाइम बहुत कम है. जल्दी से आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं. ओके,
6: क्रिकेट का मत पूछना मेरे से.
0: क्रिकेट का नाम पूछूं आपसे? ओहो, फिर तो मुझे लगता है हमें और आपको ना फिर संडे में खेलना है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स लाइन अप कर रखे.
6: कोई मुश्किल नहीं है.
0: चलिए फिर हम लोग संडे खेल लेंगे आपके साथ, नो वारीज. चलिए आपसे बात हो गई मेरी, ये एक अच्छी बात है. संडे में ट्राई करेंगे तो मैं और ज्यादा वॉइसेस निकाल के लाऊंगी एक्टर्स की. ठीक है?
6: नहीं नहीं, मुझे आपसे एक शिकायत है. कल हमने मैसेज किया, आपने बोला आप फोन लगा रहे हैं, आप फोन उठा नहीं रहे, मोबाइल
0: नहीं. क्या होता है ना, इतनी कॉल्स आ रही होती तो वो लाइन ही नहीं खाली होती कि मैं डायल करूं. कई बार ये होता है कि मेरे पास ये ऑप्शन नहीं कि मैं डायल करूँ. अब मैं ये चीज़ शायद ऑन एयर बोल नहीं पाई होंगी, तो ये कभी कभी हमारे साथ मसला हो जाता है. हम समझिए, हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं. बट चलिए संडे इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मेरी बात होगी. ठीक है, और तब हम खेलेंगे भी. ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय. ऑल राइट, सो दोस्तों अब वक्त हो गया कि आपसे इजाज़त ली जाए, और इंशाल्लाह संडे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इन्जॉय कीजिए अपने वीकेंड को. सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: कार्रवाई का शिकार ना हो। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
1: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
1: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
2: की। Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, मोहम्मद मनाई एक इमर्जिंग कतरी फुटबॉलर हैं जो मिडफील्ड में अपनी एनर्जी, डिसिप्लिन और डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी पैदाइश कतर में हुई और उन्होंने अपना फुटबॉल का सफर जो है असद अकेडमी से शुरू किया। बाद में वो कतर के डोमेस्टिक सर्किट में अशमाल क्लब के लिए खेलते हुए प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचे। उनका मेन रोल डिफेंसिव मिडफील्डर का है, लेकिन वो सेंट्रल मिडफील्ड में भी अच्छी एडेप्टिविटी दिखाते हैं। मनाई की गेम रीडिंग, प्रेसिंग और शॉर्ट पासिंग उन्हें मॉडर्न फुटबॉल सिस्टम में एक यूजफुल प्लेयर बनाती है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका स्टैमिना और डिफेंसिव ट्रांजिशंस को कवर करना है। इस साल के वर्ल्ड कप में मोहम्मद मनाई ने कतरी नेशनल टीम के लिए ग्रुप स्टेज मैचेस में पार्टिसिपेशन किया और स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में कतर ने 1-1 का ड्रॉ हासिल किया, जहां मनाई ने मिडफील्ड में डिफेंसिव स्टेबिलिटी दी। कनाडा के खिलाफ मैच में कतर को शिकस्त मिली, जहां उन्हें बहुत ज्यादा डिफेंसिव प्रेशर फेस करना पड़ा और ग्रुप के आखिरी मैच बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ में भी वो मिडफील्ड रोटेशन का हिस्सा थे, लेकिन कतर को यहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। इन वर्ल्ड कप मैचेस हार के बावजूद अगर देखा जाए, इन वर्ल्ड कप मैचेस में मोहम्मद मनाई को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया और उनके करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस साबित हुआ। आने वाले टूर्नामेंट्स में उनसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर लिसनर्स, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू अपनाने जा रहे हैं। पहले भी बात की कि वॉक करनी है, पैदल चलना है आपको, मगर जो हम कहते हैं कि 45 मिनट्स पैदल चलना है तो वो क्यों फ़ायदेमंद है। दिन में सिर्फ 45 मिनट चलना हमारी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती को फ़ायदा पहुंचा सकता है, और सबसे जो फौरी फ़ायदे हैं उनमें से दिल की जो सेहत है उसमें बेहतरी आती है। तेज़ चलना हमारे दिल की धड़कन को बुलंद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर की जो सतह है उसको बैलेंस में रखने में मदद देता है। ये सादा सरगर्मी एक्टिविटी जो है दिल की बीमारी और फालिज के खतरे को नुमाया तौर पर कम कर सकती है। इसके अलावा चहलकदमी या वॉक वजन को बैलेंस में रखती है, कैलोरीज बर्न होती हैं और इसी तरह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर सेहतमंद वजन को बरकरार रखना, यहाँ तक कि जो एक्स्ट्रा पाउंड्स हैं यानी एक्स्ट्रा वजन है उसको कम करना भी आसान बना देती है। एक और काबिले जिक्र फ़ायदा ये है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर पॉजिटिव असरात मुरतब करती है। वॉक या चहलकदमी एंडोर्फिन्स के अखराज को एक्टिव करती है, उससे हमारा जो डिप्रेशन है, इस्तराब है और एनजाइटी है उसकी अलामत कम से कम होती चली जाती हैं। 45 मिनट की वॉक जो है वो बाकायदगी से अगर हम करते रहें तो जो जॉइंट्स हैं उनको भी मोबिलाइज रखती है और इसमें सख्ती और दर्द को कम कर सकती है। खास तौर पर आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। वॉक करने से मसल्स और जॉइंट्स को लचकदार रखने में मदद मिलती है और आपकी जो एक्टिविटी है या आप जो भी हरकत कर रहे हैं उसकी हद को बेहतर बनाने और चोट लगने के खतरे को भी कम करने में मदद देती है। वॉक एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे नींद जो है बेहतर होती है, यानी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बेहतर हो जाती है और इस तरह से हम ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। बाकायदगी से वॉक करने से जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होता है और जिससे बीमारियों का खतरा कम से कम होता चला जाता है। तो 45 मिनट की वॉक को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करना हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत को बढ़ाने का एक बहुत ही सादा और ताकतवर तरीका है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छा

0: अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107. 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो लेकर आ गई हूं आपके लिए फिर से एक दफा हदीस टू हैबिट। और जैसे कि आप जानते ही हैं, इस शो में हम कुछ अहदीस शामिल करते हैं और उनको अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करना है, उनको कैसे आदत बनानी है अपनी, इसके ऊपर बात करते हैं। तो आज भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे लोवरिंग द गेज यानी निगाहें नीची रखना के बारे में। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है, एक ऐसा तरीका जो इंसान के दिल, जहन, ताल्लुकात, आदात और यहाँ तक के उसकी निगाहों तक की रहनुमाई करता है। शायद लिस्टर्स आपको पहली दफा में टॉपिक बहुत सादा लगे। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ मर्दों के लिए है या सिर्फ हिजाब और पर्दे से मुतालिक बात है, लेकिन हकीकत इससे कई ज्यादा गहरी है। निगाह सिर्फ आंखों का अमल नहीं, निगाह दिल तक पहुंचती है। जो चीज इंसान बार बार देखता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्यालात बन जाते हैं और ख्यालात फिर इंसान की शख्सियत और आदतों को बदल देता है। इसीलिए इस्लाम ने दिल की हिफाजत के लिए निगाह की हिफाजत सिखाई। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ विजुअल ओवरलोड है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, नोटिफिकेशन, रील्स, वीडियोस, शॉर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, ड्रामास, फैशन, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल, हर चीज हमारी अटेंशन हासिल करना चाहती है। कभी आपने गौर किया है कि हम रोजाना कितनी चीजें देखते हैं जिनकी हकीकत में हमें जरूरत भी नहीं होती? सिर्फ चंद मिनट की स्क्रॉलिंग कभी कभी घंटों में बदल जाती है। इंसान सोचता है कि बस एक वीडियो और, लेकिन दिल बोझल होने लगता है, दिमाग थक जाता है और इबादत में दिल कम लगने लगता है। आज बहुत से लोग जिस्मानी थकन से ज्यादा जहनी और रूहानी थकन का शिकार हैं और इसकी बड़ी वजह है हमारी बेकाबू नजरें। हम हर वक्त दूसरों की जिंदगियां देखते रहते हैं, किसी की खूबसूरती, किसी की दौलत, किसी की शादी, किसी की कामयाबी, किसी का लाइफस्टाइल, और फिर इंसान अपने आप से खुश नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता कंपैरिजन शुरू हो जाता है, दिल में बेसुकूनी आ जाती है, इंसान अपनी नेमतों को भूलने लगता है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी आंखें हर वक्त दुनिया को एब्सॉर्ब कर रही होती हैं। लिसनर्स, इस्लाम इंसान की फितरत को समझता है, इसीलिए कुरान और हदीस हमें सिर्फ हराम से बचो नहीं कहते बल्कि इसके रास्ते भी बंद करते हैं। क्योंकि बहुत सी गलतियां एक नजर से शुरू होती हैं। शैतान हमेशा बड़े गुनाह से आगाज नहीं करवाता, वो इंसान को छोटी चीजों में आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व करता है। एक नजर, फिर तजस्सुस, फिर बार बार देखना, फिर दिल का मुतासिर होना और फिर इंसान की रूह कमजोर होने लगती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहों की हिफाजत को ईमान की हिफाजत से जोड़ा। और याद रखें,

निगाहें नीची रखना सिर्फ ये नहीं कि इंसान किसी को ना देखे, इस्लाम बैलेंस सिखाता है। असल मतलब ये है कि इंसान अपनी नजर को बेहयाई से बचाए, गैर जरूरी देखने से बचे, दूसरे को ऑब्जेक्टिफाई ना करे और अपनी आंखों को ऐसी चीजों से महफूज रखे जो दिल को गंदा करती हैं। ये सिर्फ बाहर की चीजों के लिए नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन्स के लिए भी इक्वली जरूरी है। आज बहुत से लोग कहते हैं हम तो घर में बैठे होते हैं, हम किस फितने में हैं? लेकिन हकीकत यह है कि आज के दौर का सबसे बड़ा फितना इंसान की जेब में मौजूद है, उसका फोन। एक छोटी सी डिवाइस इंसान को इल्म भी दे सकता है और गुनाह में भी डाल सकता है। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। लिसनर्स, कभी कभी इंसान ये सोचकर मायूस हो जाता है कि मैं कोशिश करता हूं मगर बार बार फेल हो जाता हूं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला परफेक्शन नहीं मांगते, आपकी कोशिश मांगते हैं। अगर आपने एक गलत वीडियो स्किप की, एक इनअप्रोप्रिएट पोस्ट स्क्रॉल कर दी, अपनी नजर हटा दी या अननेसेसरी कंटेंट अवॉइड किया, तो ये छोटे अमाल अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती हैं। ये जहादे नफ्स है और नफ्स के खिलाफ जंग हमेशा आसान नहीं होती। हमारी जनरेशन की एक बड़ी मुश्किल डिस्ट्रैक्शन है। लोग फिजिकली थके हुए नहीं होते, मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा होता है। इतनी ज्यादा तस्वीर, वीडियोस, खबरें और कंटेंट कि दिल को सुकून ही नहीं मिलता। इसीलिए बाज औकात इंसान नमाज में खड़ा होता है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बनती, कुरान पढ़ता है मगर दिल हाजिर नहीं होता, दुआ करता है मगर जहन कहीं और होता है। और इसकी एक वजह यह भी है कि दिल हर वक्त दुनियावी तस्वीर और ख्यालात से भरा होता है। इस्लाम हमें डिटॉक्स सिखाता है, रूहानी डिटॉक्स, और निगाहें नीची रखना इसी डिटॉक्स का एक हिस्सा है। जब इंसान अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करता है तो दिल नरम होने लगता है, इबादात में मजा आने लगता है, ज़हनी सुकून बढ़ता है, कंसंट्रेशन बेहतर होती है और रिलेशनशिप्स में एहतराम पैदा होता है। लिसनर्स, हया इस्लाम का बहुत खूबसूरत हिस्सा है और हया सिर्फ लिबास में नहीं बल्कि निगाहों में भी होती है। एक बाहया इंसान लोगों को इज्जत की नजर से देखता है, दूसरों की बाउंड्रीज का एहतराम करता है और अपनी रूह को गंदी चीजों से बचाता है। आज दुनिया फ्रीडम के नाम पर हर चीज को नॉर्मल बना रही है, लेकिन हर चीज जो नॉर्मल लगती है वो दिल के लिए अच्छी नहीं होती। इस्लाम इंसान को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता बल्कि प्रोटेक्ट करता है। जैसे एक डॉक्टर बास चीजों से मना करता है ताकि इंसान सेहतमंद रहे, इसी तरह अल्लाह ताला बास चीजों से रोकते हैं ताकि हमारा दिल, जहन और रूह महफूज रहे। और कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला हमें सिर्फ हुक्म नहीं देते बल्कि रिवॉर्ड भी देते हैं। जो शख्स अल्लाह की खातिर किसी चीज से बचता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता फरमाते हैं। और जब इंसान अपनी निगाह की हिफाजत करता है, अल्लाह उसके दिल में नूर और सुकून पैदा फरमा देते हैं। इस हफ्ते हम यकीनी तौर पे, जैसे हर दफा की हमारा शो का मकसद होता है कि सिर्फ लेक्चर नहीं है ये बल्कि एक प्रैक्टिकल जर्नी है, तो हम इस हफ्ते सीखेंगे कि किस तरह कंट्रोल करना है सोशल मीडिया को, डिस्ट्रैक्शन से किस तरह बचना है, अपनी निगाहों और दिल को कैसे प्रोटेक्ट करना है और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कैसे मजबूत करना है। और याद रखें, चेंज हमेशा एक दिन में नहीं आता।

अच्छी आदतें आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं। हो सकता है शुरू में मुश्किल हो सकता है बार बार भूल जाए, लेकिन हर बार दोबारा कोशिश करना ही असल कामयाबी है। तो आइए नियत करते हैं कि इस हफ्ते हम अपनी आंखों की हिफाजत करेंगे, अपने दिल को पाक रखने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह देंगे। और अगर आपको हमारा शो पसंद आता है तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना हरगिज ना भूलिएगा। अब आते हैं अपने सेगमेंट हदीस फाउंडेशन की तरफ। इस्लाम सिर्फ बड़े बड़े अमाल की बात नहीं करता, बल्कि उन छोटी चीजों की भी तरबियत करता है जो इंसान के दिल और किरदार को बनाती है। और इन्हीं में से एक बहुत अहम चीज है इंसान की निगाह। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें, कि उनके लिए ज्यादा पाकीजा है, बेशक अल्लाह उनके अमाल से खूब बाखबर है। और इसके फौरन बाद मोमिन औरतों को भी यही हुक्म दिया गया। इससे पता चलता है कि इस्लाम में पाकीज़गी सिर्फ लिबास या ज़ाहिरी अपीयरेंस का नाम नहीं, बल्कि निगाहों की पाकीज़गी भी ईमान का हिस्सा है। लिसनर्स, जब अल्लाह ताला किसी चीज का हुक्म देते हैं तो उसमें जरूर कोई हिकमत होती है, चाहे इंसान फौरन समझ पाए या नहीं। निगाहें नीची रखने का हुक्म भी इंसान की हिफाजत के लिए है, ना कि उसे मुश्किल में डालने के लिए, क्योंकि आंख दिल का दरवाजा है। जो कुछ आंख देखती है वो सीधा दिल तक पहुंचता है। अगर आंखें अच्छी चीजें देखें तो दिल नरम होता है, अगर आंखें गंदी या बेहयाई वाली चीजें देखें तो दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगता है। इसलिए उल्मा कहते हैं कि दिल की खराबी अक्सर निगाह से शुरू होती है। आज के दौर में लोग कहते हैं सिर्फ देखने से क्या होता है, लेकिन हकीकत यह है कि देखना कभी सिर्फ देखना नहीं रहता। जो चीज इंसान बार बार देखता है उसकी ख्वाहिश दिल में पैदा होने लगती है, फिर वही चीज इंसान के ख्यालात पर असरअंदाज होती है, फिर आदतों पर और फिर पूरी शख्सियत पर। इसीलिए शैतान अक्सर एक नजर से आगाज करता है। लिसनर्स, जरा इमेजिन कीजिए, आपका दिल एक साफ शफाफ आईने की तरह है। जब इंसान गलत चीजें देखता है तो उस आईने पर धब्बे पड़ने लगते हैं। शुरू में शायद फर्क महसूस ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल की रोशनी कम होने लगती है। फिर इंसान इबादत में कंसंट्रेशन खो देता है, दुआ में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ने का शौक कम हो जाता है और गुनाह नॉर्मल लगने लगते हैं। ये सब अचानक नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। इसीलिए इस्लाम इब्तिदा में ही इंसान को प्रोटेक्ट करता है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था, ऐ अली, पहली नजर माफ है, दूसरी नजर मत डालो। इसका मतलब यह है कि अगर अचानक किसी नामुनासिब चीज पर नजर पड़ जाए तो वो माफ हो सकती है, लेकिन जानबूझकर देखना, बार बार देखना खतरनाक है। यह हदीस कितनी प्रैक्टिकल है। इस्लाम इंसान की फितरत को समझता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि इंसान फरिश्ता बन जाए, बल्कि ये सिखाता है कि जब गलती हो जाए तो फौरन खुद को संभालो। आज सोशल मीडिया ने इस आजमाइश को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले इंसान बाजार या किसी जगह जाकर गलत चीज देखता था, लेकिन अब सोशल मीडिया ऐप, हत्ता के बाज़ औक़ात गेम्स भी, हर जगह इंसान की निगाह को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। और खतरनाक बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता

0: इंसान का दिल इन चीजों का आदि हो जाता है। फिर सिंपल और पाकीज़ा चीजें देखना बोरिंग लगने लगता है, इबादत हैवी लगने लगती है और इंसान को हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए होता है।
1: आप सुन रहे हैं हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107।
0: अब बहुत से नौजवान एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिससेटिस्फेक्शन और मेंटल एग्जॉशन का शिकार हैं। इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन एक वजह मुसलसल विजुअल कंजप्शन भी है। इंसान का दिमाग हर वक्त ओवरलोडेड रहता है। सोचें, अगर एक इंसान रोजाना सैकड़ों तस्वीर, वीडियोस और क्लिप्स देख रहा तो उसका दिल और दिमाग कितने प्रेशर में होंगे। इसीलिए बाज लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों दिल सुकून से नहीं रहता। कभी कभी इसका जवाब हमारी आंखों में होता है। इस्लाम हमें सुकून देना चाहता है, तो सुकून तब आता है जब दिल अननेसेसरी चीजों से महफूज हो। निगाहें नीची रखना इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि ये सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। मैं हर चीज नहीं देखूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे सामने मौजूद है। ये है सेल्फ कंट्रोल और ये एक बहुत बड़ी ताकत है। आज दुनिया कहती है, जो वो चाहे करो, जो दिल चाहे करो, लेकिन इस्लाम सिखाता है कि जो सही हो वो ही करो, चाहे नफ्स को मुश्किल लगे, और यही असल कामयाबी है। सिर्फ निगाहों की हिफाजत सिर्फ नॉन महरम को देखने तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें शामिल है इंसान हसद पैदा करने वाली चीजों से बचे, फजूल स्क्रॉलिंग कम करे, खराब वीडियोस अवॉइड करे और दूसरों की प्राइवेसी का एहतराम करे। बाज लोग दूसरों की जिंदगियों में इतना झांकते हैं कि अपनी जिंदगी से खुश ही नहीं रहते। हर वक्त उसके पास क्या है, वो कहाँ गई, उसने क्या पहना, उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, लेकिन सोशल मीडिया अक्सर नहीं हकीकत दिखाता, वो सिर्फ हाईलाइट दिखाता है। और जब इंसान मुसलसल दूसरों की जिंदगी देखता रहता है तो अपने रब की दी हुई नेमतें भूल जाता है। इसीलिए निगाह की हिफाजत दिल में शुक्र भी पैदा करती है। लिसनर्स, अल्लाह ताला ने इंसान को आंखों जैसी बड़ी नेमत दी है। इन आंखों से कुरान पढ़ा जा सकता है, वालदेन को मोहब्बत से देखा जा सकता है, काबे को देखा जा सकता है, फितरत की खूबसूरती देखी जा सकती है, लोगों में खैर तलाश की जा सकती है। तो फिर क्यों ना हम अपनी आंखों को पाक चीजों के लिए इस्तेमाल करें। एक बुजुर्ग फरमाते थे, जिसने अपनी आंखों को हराम से बचाया, अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है। और वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरों पर अजीब सा सुकून होता है। क्यों? क्योंकि उनका दिल अननेसेसरी गंदगी से महफूज होता है। लिस्टर्स, ये आसान रास्ता नहीं, आज टेम्पटेशंस हर जगह हैं, लेकिन अल्लाह ताला इंसान की नियत और कोशिश देखते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो मायूस ना हो, बार बार कोशिश करें। हर बार जब आप अपनी नजर हटाते हैं, गलत कंटेंट बंद करते हैं, ये स्क्रॉलिंग रोक देते हैं, तो आप अपने नफ्स के खिलाफ एक जंग जीत रहे होते हैं। तो याद रखें, अल्लाह की खातिर छोड़ी गई हर चीज कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह उसके बदले दिल का सुकून, पाकीज़गी और ईमान की मिठास अता फरमाते हैं। इसीलिए निगाहें नीची रखना सिर्फ रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। लिस्टर्स, अगर हम सच्चाई से अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें तो महसूस होगा कि आज के दौर में निगाहों की हिफाजत पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो गई है। इंसान घर से बाहर निकले ना निकले, फितना खुद उसके हाथ में आ गया है। आज की दुनिया अटेंशन इकोनॉमी पे चल रही है। हर कंपनी

पड़ता था, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन, एक एडवर्टाइजमेंट, एक रील, एक रैंडम क्लिक इंसान को ऐसी चीजों तक ले जाता है जो उसके दिल और ईमान को मुतासर करती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब कुछ नॉर्मल महसूस होने लगता है। शुरू में दिल थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन जब इंसान बार बार एक ही चीज देखता है तो शैतान उसे आम बना देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की हसासियत खत्म होने लगती है और यही वो मकाम है जहां रूहानी नुकसान शुरू होता है। आज बहुत से लोग कहते हैं दिल में सुकून नहीं है, नमाज में कंसंट्रेशन नहीं है, हर वक्त जहन मुंतशर रहता है, दिल बेचैन रहता है। कभी कभी इसकी वजह सिर्फ स्ट्रेस या वर्कलोड नहीं होता, बल्कि वो चीजें भी होती हैं जो हमारी आंखें मुसलसल कंज्यूम कर रही होती हैं। इंसान का दिल हर चीज एब्जॉर्ब करता है। अगर इंसान खराब वीडियोस देखे, बेहयाई वाले सीन्स देखे, फजूल कंटेंट देखे या मुसलसल दूसरों की परफेक्ट जिंदगियों को देखता रहे तो दिल जरूर मुतासर होता है और फिर इंसान अपने आप से नाखुश रहने लगता है। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत बढ़ा दिया है। आज एक नौजवान अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देख रहा होता है। वो दूसरों के कपड़े देखता है, दूसरों की शक्लें, वेकेशंस, महंगी गाड़ियां, परफेक्ट बॉडीज, ग्लैमरस लाइफस्टाइल और फिर अनकॉन्शियसली अपने आप को कम समझने लगता है। हालांकि हकीकत यह है कि सोशल मीडिया अक्सर दिखावा होता है। लोग अपनी जिंदगी के बेहतरीन मोमेंट्स दिखाते हैं, स्ट्रगल्स नहीं, लेकिन मुसलसल ये सब देखने से इंसान का दिल दुनिया की मोहब्बत में ज्यादा और आखिरत की फिक्र में कम होने लगता है। इसीलिए इस्लाम इंसान को बैलेंस सिखाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि दुनिया को दिल पर सवार मत होने दो। एक और बड़ी आजमाइश एंडलेस स्क्रॉलिंग है। इंसान सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन खोलता है, लेकिन फिर 1 घंटा गुजर जाता है और आखिर में उसे याद भी नहीं रहता कि उसने देखना क्या था। ज़हन थकावा होता है, दिल भारी महसूस होता है और वक्त जाया होने का एहसास अलग। यही वजह है कि आज अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। लोग लंबी नमाज में मुश्किल महसूस करते हैं, कुरान पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, लेक्चर सुनते हुए बोर हो जाते हैं और हर चंद सेकंड के बाद अपना फोन चेक करते हैं, क्योंकि दिमाग इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का आदी हो चुका है और इस एडिक्शन की जड़ अक्सर आंखों से शुरू होती है। इस्लाम हमें डिसिप्लिन सिखाता है। जब इंसान अपनी निगाह कंट्रोल करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच बेहतर होती है, कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होती है, दिल में सुकून आता है और इबादत आसान होने लगती है। लिसनर्स, एजुकेशनल एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस में भी निगाह की हिफाजत बहुत जरूरी है। इस्लाम ये नहीं कहता कि मर्द और औरत एक दूसरे से बात ना करें, बल्कि इस्लाम एहतराम और बाउंड्री सिखाता है। आज बाज लोग फ्लर्टेशन को कॉन्फिडेंस समझते हैं, लेकिन हकीकत में हया ज्यादा खूबसूरत चीज है। एक रिस्पेक्टफुल नजर ताल्लुकात को पाकीजा बनाती है, ट्रस्ट पैदा करती है और इंसान की शख्सियत को डिग्निफाइड बनाती है। इसी तरह बाज लोग कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, नजर से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल और नजर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर इंसान मुसलसल गलत चीजें देखेगा तो दिल कैसे साफ रहेगा? इसलिए कुरान ने पहले निगाह का हुक्म दिया, फिर पाकीजगी का जिक्र दिया, क्योंकि निगाह दिल तक जाने वाला रास्ता है। लिसनर्स, आज एक और प्रॉब्लम ये है कि लोग बोर्डम से बचने के लिए स्क्रॉलिंग करते हैं। जैसे ही चंद मिनट एम्प्टी मिले, फौरन फोन, रील्स, वीडियोस। हालांकि हर खाली लम्हा फिल करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी भी दिल के लिए जरूरी होती है।
کبھی کبھی انسان کو صرف اپنے رب کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

0: अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: दोस्तों, ट्रैफिक साइन का ख्याल करने से सड़क की हिफाजत बढ़ती है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक साइंस को समझना और उन पर अमल करना सड़क पर सफर को ज्यादा सिक्योर और आसान बना देता है। ये साइंस हमें स्पीड, रास्ता और खतरे के बारे में आगाही देते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अगर हम इन निशानियों का एहतमाम करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल पर आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ट्रैफिक साइंस का इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारे सफर को आसान बनाता है बल्कि ये हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करता है। हर साइन का अपना एक मकसद होता है, जैसे कि स्पीड लिमिट, नो एंट्री या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो हमें सड़क पर हो रही हर हालात के लिए तैयार रखती है। अगर हम इन साइंस को ध्यान से देखें और इनके मुताबिक चलें, तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा कम कर सकते हैं। ये सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा अमन और मुश्किलात से बचाने वाला बना देता है। हर एक ट्रैफिक साइन का अपना अहम रोल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: Absolute Cinema।
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है ठीक 11:01 और देखें अब आपको 11:01 बोल रही थी तो अब 11:02 हो गया है। तो भाई 11:02 हो चुके हैं हमारी घड़ी में और आपका टाइम हो चला है मेरे साथ जुड़ने का, यानी के सन एंड साउंड सुनने का।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: तो भाई सफा के साथ आप जुड़ चुके हैं सन एंड साउंड में, मेरा और आपका साथ रहेगा 1 बजे तक का। साथियों देखें 1 बजे तक हम, आज जो है ना वीकेंड है तो कोई भी उजड़ी हुई बातें नहीं करना, मेहरबानी करके खुश रहो, खुश रहने दो। आज हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे जिनको सुनकर हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्या कहते हो गोभी दें फूलों, जरा आओ जरा खुशबू लगा के। वैसे आज जो ना मैंने स्टूडियो में एंटर होते के साथ एक गड़बड़ कर दी, मुझे भूल गया, क्योंकि मैं वही गजनी टाइप इंसान हूँ, मुझे भूल गया कि मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। तो मैंने गलती से स्टूडियो में यूं करके ना परफ्यूम छिड़क दिया थोड़ा, तो फ्री फंड का परफ्यूम पड़ा हुआ था, मैंने ऐसे ऐसे करके यूं करके छिड़क दिया। अब वो क्या ही छिड़कना था, अब मेरी नाक जो है ना वो शुड़ करती फिर रही है। लेकिन जिस जिसको एलर्जी है परफ्यूम से, वो खास तौर पे वीकेंड वाले दिन परफ्यूम से दूर रहे। लेकिन फिर भी जब हमसे मुलाकात करने आते हैं तो खुशबू लगा कर आइएगा ना। वो कुछ ऐसे परफ्यूम भी होते हैं, वो इत्र होते हैं ना कुछ अच्छे वाले, वो ऑयल बेस्ड वाले, हाँ वो ऑयल बेस्ड वाले, वो वाले लगा कर आना भाई। खुशबू तो लगानी है, ऑयल बेस्ड वाली लगा लो। अच्छा भाई मेरा और आपका साथ रहेगा 1 बजे तक और आज क्योंकि थर्सडे है तो आज आपसे करेंगे गुफ्तगू, मुद्दे पर भी बात करेंगे और आपसे ये भी पूछेंगे कि आपका कहाँ जाने का प्लान है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, मेरा एक मसला चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से ना, यकीन जाने मेरा इतना शिद्दत से दिल कर रहा है कि कहीं बाहर जाया जाए, लेकिन भाई हिम्मत नहीं पड़ती, हिम्मत नहीं पड़ती, या उसे लेजीनेस कह लें या मौसम का कोई रिएक्शन कह लें, मुझे नहीं पता। और कुछ ना वो समझ में भी नहीं आ रहा कि कहाँ जाया जाए। तो भाई आज ना मेहरबानी करके किसी के काम आ जाओ, किसी के काम आ जाओ, मेरे काम आ जाओ, मुझे मैसेज करके बताओ कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, या कॉल भी कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ जाया जा सकता है बीच के अलावा, मेहरबानी करके बीच थोड़ा सा परे परे करके रखो साइड पे, क्योंकि बीच अगर मैं इस मौसम में, मैं तो चली जाऊँ खुशी खुशी, मुझे बीच इंतहा का पसंद है। मैंने क्या ही कर रहा है, मैंने टेंट लगाना है और मैंने बैठ जाना है अगर मुझे ज़्यादा ही गर्मी लगी तो। लेकिन मैं जो साथ वाली कंपनी है ना मेरी, ये चूचू बूचू होते हैं, ये जो घर वाले होते हैं, ये जो फैमिली होती है सारी, इनके बड़े ना करें भाई बीच पे जाने के, नहीं चिपचिपा सा मौसम है ह्यूमिडिटी का, नहीं रेत पाँव में आ जाएगी, नहीं हमने ये नहीं करना, नहीं मतलब बीच से उनको कोई एलर्जी है। तो मुझे कुछ बताओ कुछ ऐसा बीच के अलावा ना, और मॉल्स के अलावा, मेहरबानी वो तो आड़ी मेहरबानी, मॉल्स और बीचेस के अलावा कुछ है तो मुझे बताओ, जहाँ पे मेरा दिल यूँ ललचाता हुआ जाए कि मैं यूँ जैसे बच्चे स्लाइड लेते हैं ना, वैसे मैं स्लाइड लेती हुई उस जगह पे निकल जाऊँ। तो मुझे ज़रूर बताएं, मैसेज में आपको करने के लिए नंबर दे देती हूँ 666-22107, 666-22107 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर। अच्छा मामला कुछ ऐसा है कि लॉन्ग ड्राइव भी चलेगी, लेकिन लॉन्ग ड्राइव कहाँ की, पता है मैं सोच रही हूँ पर्पल आइलैंड जाकर देखा जाए। पर्पल आइलैंड का पता है किसी को, है कतर में एक बड़ी खूबसूरत जगह है, यकीन जाने पिछले पता नहीं कितने सालों से मैं सोच रही हूँ वहाँ की डेस्टिनेशन, मैं लगाती हूँ GPS में, सोचती हूँ भाई एक दफ़ा तो जाकर देखा जाए। सोच रही हूँ इस दफ़ा ना, मसला ये कि लोग कहते हैं वहाँ पे गर्मियों के दिनों में जाने का मज़ा नहीं आता क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ पर, तो सोच रही हूँ लॉन्ग ड्राइव ही क्यों ना कर ली जाए। ऐसे ही एक दफ़ा मैं लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई थी अज़रबैजान बीच की तरफ, और भाई वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत लॉन्ग ड्राइव थी। और वहाँ पर जब मैं पहुँची भी ना, तो वो बीच, तो मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ पे लोट पोट हो जाऊँ। वो बीच भाई ऐसा लगता है जैसे किसी ने अगर मालदीव नहीं देखा ना, और मेरी तरह उसकी जेब भी नहीं है मालदीव देखने की, भाई आप चले जाओ अज़रबैजानी बीच, खलास ख़त्म भाई ख़त्म, सुभान अल्लाह, आपके मुंह से सिर्फ ही निकलेगा सुभान अल्लाह, आपके घुटनों से भी ऊपर पानी होगा, लेकिन वो इतना साफ शफाफ कि आपको अपने पाँव नजर आ रहे होंगे और वो जो छोटी छोटी सी मछलियां होती है ना एंजोवी फिश की जैसी, उसकी तरह छोटी छोटी मछलियां भी आपको आसपास तैरती हुई नजर आएंगी। मतलब अल्लाह ताला कितना हुस्न पसंद है भाई, कितना हुस्न पसंद है, पानी के अंदर भी इतनी खूबसूरती। ओए होए होए होए, आपका तो पता नहीं लेकिन मैं वहीं निकल गई जहां आपकी बात कर रही थी। अच्छा खैर वापस आती हूँ। और भाई देखें मौसम से शुरुआत करते हैं क्योंकि गर्मी वाला मौसम है, बाहर भी घूमने जाना है, ये भी एंजॉय करना है, वो भी एंजॉय करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी अपडेट ले लेते हैं। देखो भाई आज का जो टेम्परेचर है ना, मैंने दोनों मोबाइल ऐप खोली, एक मोबाइल वाली खोली है एक अपनी डेस्कटॉप वाली खोली है, तो मुझे बता रहा है 42 से 43 का टेम्परेचर, 42 मतलब 43 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर। और अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हाईएस्ट जाने की उम्मीद है, जो कि जा सकता है। तो और जो लोएस्ट आएगा टेम्परेचर वो है 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर लोएस्ट आ सकता है, ठीक है, वो भी मुझे लगता है शाम को ही आएगा, अभी कहाँ ही आएगा, है कि नहीं। अच्छा भाई फील्स लाइक का जो है ना मसला बड़ा संगीन मसला चल रहा है। देखो जब हम फील्स लाइक के बारे में बात करते हैं ना तो हमारे लिए एक एक डिग्री बड़ा कीमती होता है। देखिए 48 डिग्री फील एक जगह पे दिखा रहा है और एक जगह पे मुझे दिखा रहा है 50 डिग्री, फील्स लाइक 50 डिग्री। क्या कहते हो कौन सा वाला सही लग रहा है आपको? मुझे तो 50 डिग्री वाला सही लग रहा है। अच्छा किसी और ने ये बात नोट की है, सिर्फ पिछले एक हफ्ते से मैं नोट कर रही हूँ कि वैसे तो गर्मियों के मौसम में ये होता था कि अगर हम 7-8 बजे भी बाहर निकले ना सुबह को तो ऐसा लगता था तड़कता भड़कता अवन, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि जब सुबह 7 बजे की धूप जो होती है ना वो थोड़ी मीठी वाली धूप है, मतलब हल्की बनिस्बत जो नॉर्मल होती है उससे थोड़ी हल्की धूप है। ये किसी और को फील हो रहा है या सिर्फ मुझे को फील हो रहा है? ये मैं ही एक यूनिक चल रही हूँ। अच्छा ये तो टेम्परेचर के बारे में बात हो गई, गोविंदियाँ फुल्लो आते हैं ह्यूमिडिटी की तरफ। देखो ह्यूमिडिटी जो है ना उसको हमारे ऊपर ज़रा भी रहम नहीं आ रहा, वो अपने ही मूड से चलती है। तो आज भी उसका मूड बिल्कुल वैसा ही है जैसा कल था, यानी कि ह्यूमिडिटी वही 32-35 इसके ऊपर चल रही है परसेंटेज पर, 32-35% पर ह्यूमिडिटी चल रही है। हवाओं के बारे में क्या ही बात की जाए क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी भारी भरकम हुई हुई है तो हवाओं ने हार मान ली है उसके आगे और हवा कुछ खास नहीं चल रही बाहर। मतलब ये कि सड़ी हुई गर्मी, वो चमड़ी उधेड़ने वाली गर्मी होती है ना वो है बाहर भाई, ह्यूमिडिटी नो हवा तड़कती भड़कती धूप, आए हाय हाय हाय हाय। पता चल रहा है अब जब हम वो ग्रिल चिकन खाते हैं तो वो कैसे पकड़ी होती है बेचारी, पता चल रहा है? हम भी ग्रिल चिकन वाले हाल में फिलहाल। लेकिन हर मसले का हल होता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों से एक ऐसी ड्रिंक शेयर की जाए। देखिए ह्यूमन बॉडी जो ना 60% वाटर से बनी हुई है, ठीक है, अब 60% वाटर गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन तो होती है, वो हमने पूरा करना है मामला, ठीक है। खाली पानी नहीं पिया था, इतना ज़्यादा खाली पानी पिया भी नहीं जाता, तो क्यों ना इसको कुछ मज़े का कर दिया जाए। अच्छा मैंने ये एक चीज़ ढूंढी, मुझे नहीं पता किस किस ने ऑलरेडी ट्राई की हुई है, लेकिन मेरे लिए समथिंग इज़ ये, मैं जो ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको ट्राई करूँ। वैसे मैंने पीना कोलाडा ट्राई किया है, वो भी जो है ना कोकोनट से ही बनता है, कोकोनट मिल्क से या कोकोनट क्रीम से, आपको जो पसंद हो, लेकिन ये जो है ना कुछ हल्का फुल्का है, समथिंग वेरी लाइट, ये कोकोनट वाटर मैं कहूँगी कोकोनट वाटर कूलर है, ठीक है। नहीं वो वाला वाटर कूलर नहीं जिसके अंदर बर्फ़ भर भर के रखते हो, वो वाला नहीं भाई, ये वाटर कूलर दूसरा वाला है जो एक गिलास में पूरा आ जाता है या एक लीटर में पूरा आ जाता है। अच्छा आपने करना ये इसके लिए, वैसे आज मैं सोचूं ये ट्राई करूं मतलब ट्राई ज़रूर करूंगी, संडे को बताऊँ कैसा था। अच्छा इसके अंदर आपने करना ये है क्योंकि कोकोनट वाटर जो है ना ये याद रखें कि नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, नेचुरली ये अल्लाह ताला ने कुदरती बनाया ऐसा है। याद है हम लोग जब हमारे बचपन में भी या हमारे देसी घरों में जब कोई बीमार होता था या हॉस्पिटल में एडमिट होता था तो कहते भाई इसके लिए कोकोनट वाटर पिलाओ, उसे कोकोनट वाटर पिलाओ या वो अनार का जूस पिलाओ। हाँ बिल्कुल वैसे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स नमकीनियात भरपूर होते हैं। तो भाई आपने करना है कि कोकोनट वाटर लेना है, आपकी मर्ज़ी आप जितना भी लें, एक लीटर लें एक गिलास लें, उसके अंदर थोड़ा सा जो ना वो क्या करें पाइनएप्पल होता है ना, पाइनएप्पल थोड़ा सा क्रश करके डालें, उसको ब्लेंड नहीं करना पाइनएप्पल को, मेहरबानी करके एक काम करें, वो पाइनएप्पल के ना छोटे छोटे छोटे छोटे बारीक से क्यूब्स काटें, या कैन वाला पाइनएप्पल ले लें, या आप वो ले लें जो फ्रेश पाइनएप्पल था, जो भी आपको मैसर है या जो भी आपको बेटर लगता है, तो आपने उसके छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे क्यूब्स काटने, उसको थोड़ा सा ना हल्का सा मुश कर देना है आपने उसे, ये नहीं कि उसको बिल्कुल ही ब्लेंडर वाला कर दें, ऐसे नहीं, उसके मोटे मोटे थोड़े जो ना दाने हों, तो भाई आपने उसको डाल लेना है कोकोनट वाटर के अंदर, इसके अंदर आपने मिलाने हैं थोड़े बहुत फ्रेश मिंट लीव्स। अगर चाहें कि आपने फाइव स्टार होटल की अपने आप को थोड़ी सी फील देनी है, तो एक लेमन का पीस ना साइड पे ग्लास पे काट के लगा देना, हाय हाय हाय हाय, और एक अच्छा सा स्ट्रॉ डालकर उसके अंदर बर्फ डाल के मज़े से पीना उसे, ओए होए होए होए होए, मुझे सुनने में इतना मज़ा आ रहा है, इतना टेम्पटिंग लगा मुझे, मैंने कहा भाई मैं ये ट्राई ज़रूर करके देखूँगी। पीना कोलाडा मैंने पिया है एंड इट इज़ वेरी गुड ऑनेस्टली। उसके अंदर यही होता है पीना कोलाडा में कि कोकोनट क्रीम या कोकोनट मिल्क से, मैं जो बनाती हूँ वो कोकोनट क्रीम से बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रीमी सा लगता है। आपने कोकोनट क्रीम ली, आपने उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा क्या कहते हैं ब्लेंडर लिया, आपने उसके अंदर कोकोनट क्रीम डाली, आपने उसके अंदर जो है वो पाइनएप्पल डाल दिया थोड़ा सा, पाइनएप्पल जूस भी डाल देते हैं लोग, तो वो भी बड़ा मज़े का रहता है। मैं जो ना कैन वाला पाइनएप्पल यूज़ करती हूँ, तो मैं जूस को ज़ाया नहीं करती, बजाय इसके कि मैं स्वीटनर डालूँ, क्योंकि मेरा तो काम चलता नहीं ना चीनी के बगैर,

मैं उसी का जो पाइनएप्पल का जूस होता है ना जो कैन के अंदर स्लाइस वाले पाइनएप्पल का उसी के अंदर कोकोनट क्रीम के अंदर डाल देती हूँ और उसको अच्छी खासी आइस डालकर घुमा देते हैं। आहा क्या तो मज़े का पीना कुलाड़ा बनता भाई, क्या तो मज़े का। बनाना कभी फिर मुझे याद करना, अगर एक्स्ट्रा बना हुआ हो तो थोड़ा सा मुझे पार्सल भी कर देना। वन ऑफ माई फेवरेट ड्रिंक्स कोकोनट भाई, कोकोनट। अच्छा कोकोनट और पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। कभी किसी ने ट्राई नहीं किया ना तो ट्राई कर देखना इसको, कोकोनट एंड पाइनएप्पल ऐसा लगता है बने एक दूसरे के लिए। कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है, इनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, ये बहुत मज़े के लजीज लगते हैं एक साथ। तो भाई मैंने आपको ये तरीक़ेकार बता दिया, चाहे आप कोकोनट वाटर कूलर पी लें या आप पीना कुलाड़ा बना के पी लें, लेकिन पी ज़रूर लेना कुछ ठंडा, कुछ मीठा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। तो अपने आप को बचा के रखो, जान है तो जहान है। मुझे पता है काम हर कोई करता है, सबके नसीब में है काम करना, लेकिन काम करने के लिए भी जान चाहिए होती है, ठीक है? समझ रहे हो बाबू, समझ रहे हो ना, अकलमंद हो ना। तो अगर दूसरों का लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो घर वालों के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, घर वालों के लिए मेहनत मजदूरी तभी करोगे ना जब जान है तो जहान है ना। तो अपना ख्याल रखो, अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। और अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम करेंगे फन ट्रिविया के बारे में बात। आज का फन ट्रिविया बड़ा मजे का है, क्या तो मस्त चीज निकाली है मैंने, चकरा जाओगे चकरा जाओगे, ठीक है? चक्कर खा के वापस आओ तो मैं जो हूं ना फिर आपसे फन ट्रिविया के बारे में बात करती हूँ, ठीक है? तो भाई सुनते रहे फिर 107 पर सफा के साथ सन एंड साउंड। अरे भाई ये गाना ना अपने लेवल का गाना है भाई, ये मुझे कुछ समझ नहीं आता इस गाने में, लेकिन इसकी जो बीट है ना, एंजॉय करो एंजॉय करो, मजा खराब नहीं करती। सुनते रहे FM 107 पर सन एंड साउंड विद सफा, दिल से देश।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड सफा के साथ ऑन एफएम 107। भाई देखो, ब्रेक के उस पार वादा किया गया था कि

कौन है हमारे साथ, कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है. अरे बॉय फील्स लाइक कासिम कुरैशी ने मैसेज भेजा है क्या. देखें इन्होंने अपनी ये टेम्परेचर शो ऑफ कर रहे हैं कि घड़ी शो ऑफ कर रहे हैं. कासिम भाई ये तो बताएं जरा. हाय हाय हाय हाय घड़ी तो बड़ी एक्सपेंसिव वाली पहनी हुई है भाई ने. चले अल्लाह ताला आपको खुश रखे आपकी घड़ी के साथ. तो भाई की घड़ी बता रही है कि फील्स लाइक 55 हो रहा है. वाकरा की साइड पे फील्स लाइक 55 हो रहा है. हो सकता है क्योंकि वाकरा की साइड, भाई वाकरा की साइड ना वो बीच के पास वाली साइड है. हाय हाय हाय हाय फील्स लाइक हम मतार कदीम में ही अच्छे भाई. अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू. हसन भाई हैं. हसन भाई आप कैसे हैं. मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह की रजा में राजी. और हमारे साथ कौन है. मलिक इब्रार हैं कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू. तौफीक भाई भी वाकरा से सलाम भेज रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू. तौफीक भाई ये बताएं वाकरा में सच में 55 का टेम्परेचर चल रहा है क्या. 55 फील्स लाइक 55 वाकरा सच बताएं. अभी रुक जाएं हम जो है ना चेक करवाते हैं तौफीक भाई से. क्योंकि तौफीक भाई बोल रहे हैं मैं वाकरा से बात कर रहा हूँ. अच्छा अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ. भाई नाम नहीं है गो. अच्छा हाँ वाटर पार्क. वाटर पार्क अच्छा मैं गई थी. मैं वाटर पार्क वाली साइड पे जा चुकी हूँ अपना माशाल्लाह कतर का. अच्छा ये ऐसा वाटर पार्क है जिसका तो कतर में माशाल्लाह इतनी बेहतरीन तरीन चीज़ें. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है इसका. अच्छा अस्सलाम वालेकुम बहन कैसी हो. उम्मीद है कि ठीक होंगी. आमिर सुल्तान. आमिर भाई आपकी दुआ से अल्लाह की रज़ा से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं. और कह रहे हैं कि वो लुसर वाले वाटर पार्क जाएं. तो हाँ भाई वाटर पार्क जाकर आ चुके हैं. और वाटर पार्क भी हम ऐसे टाइम पर गए कि यकीन जानो 12 बजे की धूप में ना हमारी ज़बान ज़मीन को टकरा रही थी. हम चकरा रहे थे. वो तो अल्लाह भला करे कैफेटेरिया के अंदर एसी लगा हुआ था. वहाँ जाकर बैठे कुछ खाया पिया जान आई कुछ जूस जूस पिया. तो एक बजे के बाद फिर हम वाटर पार्क की तरफ निकले क्योंकि बड़ा शदीद भाई गर्मी थी जिस टाइम पे मैं गई थी. मैं तो जुलाई के एंड में गई थी तो बहुत सेट वाली शदीद गर्मी थी. ओए ओए लेकिन मज़ा आता है वाटर पार्क के ठंडे ठंडे पानी में जाके गिरो ना आप स्लाइड से नीचे जाकर. ऐसा लगता है ज़िंदगी बहाल हो गई. और फिर जो है हमारे पास मैसेज में कौन है. यूसुफ खान भाई हैं. यूसुफ खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसी हैं आप. ऑल गुड अल्लाह की रज़ा में राज़ी अल्हम्दुलिल्लाह. और भाई कह रहे हैं वेलकम टू सन एंड साउंड. हैप्पी वीकेंड. आपको भी हैप्पी वाला वीकेंड जी. मुबीन भाई कैसे हैं. अच्छा मुबीन भाई ये वो वाले मुबीन भाई हैं या वो वाले मुबीन भाई हैं. मुबीन भाई ने नाम क्या लिखा हुआ है. मुबीन भाई मुबीन बगदादी. यानी क्या क्या क्या दिल उचाट है. कुल मिला के क्या है. कुल मिला के क्या है. पता नहीं क्या है. हाँ ये वही वाले मुबीन भाई हैं. जब मुझे पता चल जाता है ना कि मैं डीकोड नहीं कर पा रही हूँ एक वर्ड. पता नहीं कौन से मतलब फारसी लिखकर भेजते हैं आप मुझे मुबीन भाई. चैलेंज देते हैं क्या मुझे. ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा यानी दिल उचाट है कुल मिला के. अब ये पता नहीं कौन सा वर्ड है. जाओ चलो बस MBB. अब डीकोड करना पड़ेगा मुबीन भाई. भाई ये क्या हो रहा है भाई. मुबीन भाई ये मैं जब मैं नहीं खेल रही. अच्छा एक और मैसेज आया हुआ है. रुहेल का मैसेज आया हुआ है. अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप. सफानूर गोभी दिया फुल्लो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. कल मैं शॉपिंग कार्ट भर रही थी अपनी ऑनलाइन. दिल नहीं कर रहा था ग्रॉसरी करने जाने को. तो मैं कल यही सोच रही थी कि कल आज क्या गोभी बना लूँ क्या. तो गोभी दिया फुल्लो आज खाने में क्या बनाया जाए ज़रा आइडिया तो दो. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कौन है हमारे साथ. थनसीम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. और भी ढेर सारे मैसेजेस आते चले जा रहे हैं. और क्या हो रहे हैं. हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम क्या हाल हैं. मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप फिर भी जाओ तो ये वाला सॉन्ग लगा दें. अच्छा वाह वाह वाह वाह क्या टमाटर बड़े मज़ेदार. ये क्या है. ये किस किस्म का सॉन्ग है भाई. मुझे थोड़ा सा मुझे मतलब कोई एक काम करो मुझे ना कुछ लॉजिकल सा लिखकर भेजो. ये क्या है. कौन से टमाटर मज़ेदार हैं भाई.

किस्म का गाना है भाई ये? मुझे पता है हैप्पी बर्थडे आपके दोस्त को, बहुत सारी हैप्पी बर्थडे, लेकिन ये मजेदार टमाटर वाला केड़ा सॉन्ग सी? मेरी प्लेलिस्ट में ना होगा ये टमाटरों का टमाटरों की बार-बार, जहां तक मुझे समझ में आया टमाटर ही लिखा हुआ है भाई, मैंने गलत नहीं पढ़ा था। अच्छा जी, तौफीक भाई ने ये बात ऑथेंटिकेट करते हुए कहा कि हाँ भाई टेम्परेचर तो 44 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, फील्स लाइक कितना हो रहा है ये तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैडम जी, हैप्पी वाला वीकेंड जी। तो अनु भी, मकसूद भाई आपको भी ढेर सारा हैप्पी वाला वीकेंड जी। चलें जी, मुबीन भाई मैं आपकी मैसेज पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, देखिए मैं सांस ले लेकर, मुझे थोड़ा हिम्मत लगती है आपकी मैसेज पढ़ने में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, हैप्पी वाला वीकेंड। और ये किसने हमें लिखकर भेजा है? सरफराज आलम ने हमें लिखकर भेजा है। सरफराज भाई आपकी डीपी जो है ना वो बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, मुझे नहीं पता ये कौन है आपकी गोद में, कोई छोटा सा बच्चा है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी बच्ची लग रही है मुझे, बहुत प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह। जो भी है मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आपको हर दिल अजीज़ है और अल्लाह ताला आपको खुश रखे इनके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बेटी है, कौन है तो हाँ हमारी बेटी है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश व खुर्रम रखे, आपकी आंखों की ठंडक बना के रखे उन्हें। और भाई कौन सा वाटर पार्क बेस्ट है? अस्सलाम वालेकुम, क्या चाह रहे हो मुझसे मुबीन भाई, क्या चाह रहे हो, मतलब मुझसे ब्रांडिंग करवाना चाह रहे हो ऑन एयर? अच्छा चलो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी ठीक है, लेकिन मैं ये बता दूं कि कतर का सबसे बड़ा वाटर पार्क यही है। सर्च मारो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कतर का सबसे बड़ा वाटर पार्क यही है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तक शामिल है कि इसमें सबसे बड़ा, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट ड्रॉपर जो है ना वो इसके अंदर है। और इसको जब आप दूर से देखते हो ना तो ऐसा लगता है ढेर सारे पाइप्स एक साथ गुपड़गू हो गए रोल ऑन हो गए। और जो है ना, चलो ठीक है, ये वाला वाटर पार्क जो है ना कतर का सबसे बेस्ट वाला वाटर पार्क है, मैं सारे वाटर पार्क्स में रही हूँ, लेकिन इट इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट ऑसम वाटर पार्क्स अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब। और जब आप यहाँ पे जाते हो ना तो आपको पता चलता है भाई क्यों, वाई, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। चलो भाई, वाटर पार्क से हट के बात करें तो मैसेजेस ढेर सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा शो से स्टिक टू रहकर आप लोगों को फन ट्रिविया की तरफ लेकर चलती हूँ। मैसेजेस जितने आ रहे हैं वो मैं पढ़ूंगी, फिक्र नहीं करो, टेंशन नहीं लो। अच्छा मैं आज बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी मेमोरीज के बारे में जो हमारा दिमाग खुद जनरेट करता है। आपको पता है कि एक मेमोरी तो ये होती है जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, जो होता है वो हमें वैसा पता चलता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा दिमाग क्रिएट करता है। वो अजय देवगन की मूवी याद है, कौन सी थी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं एक मूवी का नाम बताती हूँ बाद में। उसकी मूवी में ना होता ये है कि वो अपने बीवी और बच्चों को कहता है कि फलानी फलानी चीज़ का रट्टा लगाओ, और हमें जो है ना, हमने जुर्म किया तो हमें उससे बचना है, इसका रट्टा लगाओ कि ये ऐसे ही था पैटर्न, क्योंकि वो दिमाग में नई मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है बच्चों के और बीवी के। तो भाई कुछ ऐसा मामला रियल लाइफ में भी है, इसे कहा जाता है फॉल्स मेमोरी। ठीक है, देखो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप ठीक है, मैं आपको कैसे समझाऊं कि कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात पर 100% श्योर हैं, मतलब आपको 101% यकीन है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन कुछ वक्त गुजरता है और कुछ वक्त बाद आपको याद आता है, अरे नहीं यार ये वाली डिटेल भी इसके अंदर थी। आपको ऐसा लगता है आपका दिमाग आपके साथ लिटरली मजाक कर रहा होता है उस वक्त, या फिर आप कह लें कि आपका दिमाग ना बिल्कुल एक क्रिएटिव राइटर का रोल अदा कर रहा होता है। अच्छा, इस फिनोमिना को कहते हैं फॉल्स मेमोरी। अक्सर लोग ये समझेंगे कि जैसे मैं जो ना डेजावू के बारे में बात कर रही हूँ, मैं डेजावू के बारे में बात नहीं कर रही, डेजावू इज समथिंग एल्स। डेजावू ये होता है कि आपको लगता है कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, लेकिन फॉल्स मेमोरी ये कहती है कि नहीं, ये चीज़ ऐसी हुई है और ऐसी नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर हम अक्सर ये समझते हैं कि भाई हमारा दिमाग ना हाई क्वालिटी कैमरा की तरह है, वो हर चीज़ एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन असल में दिमाग कैमरा की तरह नहीं होता, दिमाग उल्टा एक डायरेक्टर की तरह होता है जो किसी भी सीन को अपने तरफ से तोड़ मरोड़ लेता है। अब समझने की कोशिश करें, जब कैमरा रिकॉर्ड करता है ना तो वो एज इट इज़ किसी चीज़ को जैसी होती है वो वैसे ही रिकॉर्ड करता है। डायरेक्टर के पास ये सलाहियत होती है कि वो अपने एंगल से किसी भी सीन को चेंज कर सकता है।
होता ये है कि जब हम कोई कोई याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, कोई एक बात होती है जो याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग पुरानी मेमोरी को एक फाइल की तरह ओपन करता है और हर बार उस फाइल को थोड़ा सा आपको बताए बगैर एडिट करता चला जाता है। कभी कोई छोटी सी डिटेल आप ऐड कर देते हैं कि हाँ भाई फलानी साइड पर जो ना टेबल रखी हुई थी, फलानी साइड पर चेयर रखी हुई थी, फलानी ने ऐसे रंग के कपड़े पहने हुए थे, फलानी जगह ये थी। कभी कभी कोई छोटी सी डिटेल ऐड होती चली जाती है और फिर होता ये है कि कभी कभी ऐड नहीं होती, कभी कभी डिलीट भी हो जाती है। अक्सर वो जब हम लोग भाई बहनों से बातें कर रहे होते हैं या पुरानी बातें कर रहे होते हैं बचपन की, तो एकदम से आपको पता है कभी कभी बहन भाइयों में और हम में उस वाक्य के अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाता है। नहीं फलाना मामू था, नहीं फलाना चाचू था उस दिन हमारे साथ, नहीं अम्मी अबू थे कि अम्मी अबू नहीं थे, पता नहीं कुछ ऐसा हो रहा होता है सीन। एग्जैक्टली ये फॉल्स मेमोरी हमारे साथ कर रही होती है। होता ये है यानी यादें भी कभी कभी पुरानी तस्वीरों की तरह हो जाती हैं जिनके ऊपर आप कह रहे हैं कि वक्त की धूल जम जाती है और उस धूल को हमारा दिमाग अपने पास से ही एडिट करना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि खुदा ना खास्ता रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा जल्दी में आपने देख लिया उस एक्सीडेंट को, आप निकल गए। अब जब आप बाद में उस एक्सीडेंट को याद करेंगे ना, या मैं आपसे पूछूंगी कि वो एक्सीडेंट कैसा था, मेरी आपसे बात करने की टोन के ऊपर आपका दिमाग आपको मेमोरी रिकैलकुलेट कर देगा लिटरली। अगर मैं आपसे बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर पूछ रही हूँ ना कि हाँ भाई बता बता भाई कैसा था एक्सीडेंट में, क्या हुआ था, अरे भाई चार गाड़ियां लगी हुई थी और पता है इतने बुरे तरीके से लगी हुई थी, ये हुआ हुआ था, फलानी गाड़ी ऐसी थी, मेरे सवाल करने की टोन से आपके जवाब, आपकी मेमोरी उसी तरीके से रेगुलेट होगी। आपने कभी मूवीज में देखा है, मूवीज में भी ऐसा होता है कि कोर्ट रूम्स में ना बार बार सवाल करते हैं, बार बार डबल ट्रिपल दफा पूछा जाता है कि क्या आप श्योर हैं कि ऐसा ही था, क्या आप श्योर हैं कि आप 11 बजे वहां पर थे, क्या आप श्योर हैं कि फलाना बंदा फलानी गाड़ी आपने देखी थी, क्या आप श्योर हैं कि आपने ये गाड़ी का नंबर देखा था। वो एक किस्म का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो इंसान के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा होता है इंसान को कि वो सही मेमोरी अपनी रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि फॉल्स मेमोरी का असर हमारे लबो लहजे से भी होता है। सामने वाला आपसे जिस लबो लहजे में पूछेगा ना, आपकी मेमोरी उसी तरीके से उसे अल्टर करके आगे पेश कर देगी। अगर मैं आपसे एक न्यूट्रल टोन में पूछूं तो वही एक्सीडेंट जो आपने देखा होगा वो आप मुझे बड़े न्यूट्रल वे में बताएंगे कि हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ था और चार गाड़ियां थी, ये था नॉर्मल सा था, कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत जो है ना वो एम्बुलेंस वगैरह आई, लोगों को ले गई। लेकिन अगर मैं एक्साइटेड होकर पूछूंगी ना तो आपकी मेमोरी एक्चुअली फॉल्स मेमोरी आपकी ये कह रही होगी, आपको याद दिला रही होगी गाड़ी बहुत बुरे तरीके से लगी हुई थी और हमें नहीं पता कोई बचा होगा कि नहीं बचा होगा, और जो है ना बजाय इसके कि दो गाड़ियां होंगी आपको कभी कभी चार गाड़ियां लगने लगेंगी। तो ये फॉल्स मेमोरी का कमाल होता है कि वो अपने पास से ना चीजें एडिट कर जाती है। तो भाई फौरन तभी हमारे दीन में भी कहा जाता है कि किसी की कही हुई बात के ऊपर और सुनी हुई बात के ऊपर कभी यकीन मत करो, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि उसके दिमाग ने क्या अल्टर करके चीज आगे बताई है। तो भाई मामला ये है कि फौरन भी किसी बात का फैसला नहीं कर लिया जाता, सुनकर किसी की बात को उससे जो है ना डिस्टर्ब नहीं हुआ जाता, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया करें, थोड़ा बहुत। अक्सर औकात खानदानों में भी ये बड़े रोले होते हैं कि जो फॉल्स मेमोरी होती है ना, ये आगे अगले को कुछ ऐसी बातें कहने पे जिसे हम कहते हैं ना मसाला लगा के पेश कर देना, बेशक वो इंसान झूठ नहीं बोल रहा होगा, सामने वाले ने ऐसी कोई बात कही होगी जो कि नागवार गुजरी है, लेकिन उसे मेमोरी जो है ना फॉल्स मेमोरी उसकी वो चार लगा के आगे और कर देगा। तो भाई ये बात याद रखें कि फौरन फैसले मत लिया करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप किसी से बात सुन रहे हो सकता है कि उसका पार्ट ऑफ द थिंग वुड बी रियलिस्टिक एंड वुड बी लॉजिकली ट्रू, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो जो पूरी स्टोरी आपको बताई जा रही है वो हकीकत होगी। तो भाई साथियों आज का मेरा आपसे सवाल ये बनता है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्या आपने कोई इवेंट देखा कुछ और हो, मामला कुछ और हो, समझ में कुछ और आ रहा हो, लेकिन जब आपने बताया हो तो आपको लगे कि भाई इसके अंदर चार बातें मैंने ऐड करके बता दी, जबकि आपकी मेमोरी में तो बिल्कुल सही चल रही थी बात। क्या कहते हैं, 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज, 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज, और अगर चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल। फिलहाल के लिए एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं,
और फिर इंशाल्लाह अजान के बाद वापस आते हैं. याद करें, ऐसा होता है आपके साथ कि नहीं होता? फॉल्स मेमोरी इज अ थिंग, इट इज एक्चुअली अ थिंग. सुनते रहे FM 107 सफा के साथ, सन एंड साउंड.

0: भाई ये कौन से लोग हैं जो गाने गा गा के कहते हैं कि करो ना करो ना गिला, अगर मेरे साथ ऐसा हो मैं तो खाने को आ जाऊं, जैसे बिल्ली नोचती है वैसे। तो भाई आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन एफएम 107। वेलकम बैक जी, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: तो जी वेलकम बैक जी, गोभी दें पुल्लो वेलकम बैक। ये कौन से लोग हैं भाई जो करो ना गिला इतने प्यार से बोल रहे हैं? अरे भाई मुझे अगर मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो ना तो मैं वो बिल्कुल स्ट्रीट कैट बन जाती हूँ। मेरा अपना मामला बहुत अलग है, मैं वैसे बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब कोई मुझे अगर कोई ट्रिगर कर दे ना, अगर कोई छेड़ दे और वो भी सुबह सुबह के टाइम, मेरी कोई नापसंदीदा हरकत कोई कर दे, तो भाई फिर बस मैं जानूं और वो शख्स जाने, बाकी सब बीच में से निकल जाना, बहुत गलत जगह सर फंसाओगे वरना अपना। चलिए साथियों मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर। देखो भाई आपने कभी ये नोटिस किया है कि कभी कभी ना सुबह का एक छोटा सा इंसिडेंट ही, कोई भी छोटा सा इंसिडेंट, जैसे मैं भी बात करी थी कि सुबह सुबह मेरे मुंह ना लगना, मेरे मत्थे ना लगना सुबह सुबह, कुछ भी ऐसी कोई छोटी सी बात ना हमारा पूरा दिन, पूरा का पूरा दिन कैंसिल करके रख देती है भाई। बस ऐसा लगता है कि जैसे आज ये, अभी ये काम हो गया ना, अब इसके बाद तो मेरा पूरा दिन खराब ही खराब है। हालांकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, क्या ही होगा अगर कॉफ़ी पीते हुए या घर से जल्दी जल्दी में निकलते हुए गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। मैं कह रही हूँ कि भाई मैं दरवाजे पे खड़ी हुई हूँ, मैंने एक कंधे पर लैपटॉप का बैग उठाया हुआ है, एक हाथ में कॉफ़ी का मग उठाया हुआ है, और अब मैं कह रही हूँ कि भाई अब मैं सीधा गाड़ी की तरफ जा रही हूँ, और मैं भूल जाती हूँ गाड़ी की चाबी उठाना, बेसमेंट में जाती हूँ, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती हूँ, तो मैं कहती हूँ, मत्था पकड़ के बैठ जाती हूँ, भाई अब वापस घर कौन जाएगा। ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है जो मेरे साथ अक्सर औकात होती है, लेकिन हर दफ़ा मेरा मूड इसके ऊपर इतना ख़राब होता है, इतना ख़राब होता है, जबकि गलती भी अपनी है, ठीक है, इतना ख़राब होता है मूड कि अब ऐसा लगता है जैसे अब जो है ना, अब से आगे का पूरा दिन मेरा खरबान ही जाना है। मतलब वो बातें भी मुझे याद आना शुरू हो जाती हैं जो अभी तक लाइफ में हुई ही नहीं है। मतलब ये कि मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन उस पर मूड हमारा ऐसा हो जाता है कि जैसे वो कहते हैं ना, रेत का पहाड़ बना लेना। अच्छा मामला पता है क्या, हमारी ज़िंदगी भी ना एक मोबाइल फ़ोन की तरह है। सुबह अगर पहला नोटिफिकेशन आपको नेगेटिव आ जाए ना, तो हमें ऐसा लगता है कि दिमाग का पूरा सिस्टम लो हो जाएगा। अब कोई भी विटामिन B12 खा लो, कोई भी मल्टी विटामिन खा लो, कोई असर ना होगा आपके पास। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि अभी हम घर में ही होते हैं, लेकिन चाय या कॉफ़ी पीते हुए हमारे

कपड़ों पे गिर जाएगा थोड़ी सी, और हमारा कुछ लोगों का ना दिमाग घूम जाता है, जबकि गलती अपनी है भाई, गिर गई आप शर्ट चेंज कर लो ना, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग ऐसा घूम जाता है कि बस वो कहते हैं अब देखो ये मामला ऐसा हो गया है कि सुबह सुबह मेरे ऊपर चाय गिर गई है, अब मेरा पूरा दिन ही बेड़ा रख जाएगा, बस खत्म, जिंदगी खत्म हो गई। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों का अलार्म जो है ना, या बजता भी है या नहीं भी बजता, ऑफ कर देते हैं, ऑन करना भूल जाते हैं, या बजता है तो आंख नहीं खुलती, तो हमारा कैसा पैनिक मोड होता है। 5 से 10 सेकंड तो हमें सिर्फ ये लग रहे होते हैं ये समझने में कि हमारा टाइम कितना गुजर गया और हमने क्या झूठ बोलने ऑफिस में जाकर, लेकिन हम ऑलरेडी सिनेरियो दिमाग को प्रिपेयर कर चुके होते हैं कि अब से मेरा दिन खराब गुजरेगा। आंख ही लेट खुली है, सुबह की चुड़चुड़ से दिमाग ही खराब हो जाता है। या अक्सर औकात जब सुबह उठे तो मोबाइल की बैटरी लो मिलती है, मेरा तो अक्सर औकात ही होता है, मैं जैसे सुबह उठती हूँ ना मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, क्योंकि मोबाइल को चार्जिंग पे लगाती नहीं, घर जाने के बाद मुझे पता ही नहीं होता मोबाइल है किस कोने में, तो सुबह को उठती हूँ देखती हूँ अरे अरे भाई मोबाइल की बैटरी खत्म है, अब ऑफिस जाके मैं काम कैसे करूंगी, मुझे ये होगा वो होगा, तो उसके ऊपर भी अक्सर औकात मूड कभी कभी खराब हो जाता है। सवाल मेरा आज आपसे ये बड़ा हल्का फुल्का सा सवाल है कि आपके साथ वो कौन सा ऐसा छोटा सा मॉर्निंग डिजास्टर, मैं कह लूँ ऐसा होता है ना, यूजली हो जाता है जल्दी में हो जाए या लेजीनेस में हो जाए, कोई ऐसा छोटा सा मॉर्निंग का डिजास्टर हो जाए जिसको आप कहें कि भाई आपको ऐसा लगता है उसके होने के बाद कि भाई अब जो है ना मेरे पूरे दिन की झंड होने वाली है, मेरे पूरे दिन की, मैं पूरा दिन मेरे लिए बड़ा हैवी गुजरने वाला है। वो बस हमारा एक वो जैसे मेरे अब्बा का एक सिनेरियो था, जब हमें स्कूल छोड़ने जाया करते थे तो कहते थे तुम लोग जो ना खामोशी से तैयार हो जाया करो, ये जो चींपा तुम लोग लगाते हो ना, जो रोता हुआ घर से निकलता है ना, वो दूसरों का भी दिन ख़राब करता है और फिर जो है ना दूसरों का भी दिन ख़राब होगा, तुम लोग का अपना भी दिन ख़राब होगा। इत्तफाक ये होता था कि कभी कभी ना वो ब्रेकें लगती हुई ट्रैफिक में कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता था, तो फिर वो सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता, देखो तुम लोग रोते हुए निकले थे ना घर से, तुम लोग रोते हुए निकले थे तो दिन बुरा जा रहा है हमारा। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है, कभी कोई कॉफ़ी गिर गई, कभी हेयर स्टाइल का भी मामला होता है, हम खातिन के साथ तो ये रोला होता है कि हम कहते हैं हमारे बाल जो है ना वो काबू में ना आ रहे, ह्यूमिडिटी की वजह से बाल ऐसे हुए होते हैं जैसे बम फटा हुआ बालों के अंदर, तो हम कहते हैं आज का तो दिन ही बुरा है, हमारे बाल तो सुलझेंगे ही नहीं, और उन बालों की वजह से पूरा दिन 24 घंटे बालों के अंदर हाथ होता है और पूरा दिन जो है ना वो सत्यानाश गुजर रहा होता है हमारा कि भाई हमारी लुक ख़राब हो रही है। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ है कि भाई कभी किसी का ब्रेकफास्ट मिस हो जाए, कभी कोई चाय मिस हो जाए सुबह की, घर में गाड़ी की चाबी गुम हो जाए, तो आप कहते हो भाई अब तो मेरा पूरा दिन ही गया भाई, ऐसा कोई कुछ है कुछ तो मुझे ज़रा मैसेज करके बताओ। 666-22-107 666-22-107 पे मैसेज करो, या चाहो तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल, 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल। अच्छा भाई कौन है हमारे साथ, एफडी हैं और नाम बता देना अब आपका नाम एफडी लिखा, अच्छा फलक लिखा, ओके फलक है, फलक कह रही जब जल्दी होती है तब मेकअप खराब होता है, हाँ और स्पेशली जब जरूरत होती है तो क्यू आईडी नहीं मिलती, अरे भाई कितना रिलेटेड। अच्छा मेरा जो वॉलेट है ना वो मोबाइल के साथ ही का है, ठीक है, मेरा मोबाइल, आई डोंट कैरी पर्स, मेरा मोबाइल का कवर ऐसा है जिसके अंदर पूरा वॉलेट है, तो मैं अपना आईडी कार्ड उसी के अंदर रखती हूँ। अरे भाई जब मुझे ज़रूरत होती है पता नहीं कौन से खोपचे में जाकर गुम हो जाता है आईडी कार्ड, मिलता ही नहीं है, गाड़ी का इस्तमारा और क्यू आईडी। और मेकअप की जो आपने बात बोली है ना, आई टोटली फील यू लिटरली फलक। और वो जो आप आईलाइनर लगा रहे होते हो ना, खुदा को मानो भाई वो आईलाइनर लगाते हुए एक साइड या नीचे हो जाती है या ऊपर हो जाती है या विंग्स कुछ अजीब से बन जाते हैं, जैसे अभी ये विंग्स उड़ाना शुरू कर देंगे आपको, और उसको सही करते करते आप पूरे पांडा बन जाते हो। अरे क्या तो ट्रिगर कर दिया है फलक, यू आर सो राइट, दिस इज सो रिलेटिव। अच्छा क्या इन्होंने आगे क्या लिखा है, भाई दो बार क्यू आई डी रीप्रिंट करवाने के बाद मिली मुझे, पैसे और टाइम दोनों ख़राब हुआ। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं ना भुलक्कड़ हूँ, मैं क्यू आई डी अगर कहीं देती हूँ ना तो मुझे अपने घर वालों को फ़ोन करना पड़ता है कि देखो मुझे याद दिला दे।

0: ना कि मैंने फलानी जगह पर फलाने गेट पर क्यू आई डी रखवाई थी, क्योंकि मोस्टली मैं जहाँ चीज़ें रखती हूँ वहाँ रख कर भूल जाती हूँ। ओ भाई, मेरे पर्स से ना अगर मेरा कोई पुराना पर्स निकले ना, तो उसके अंदर से डायनासोर एरा के अंडे भी निकल आएंगे डायनासोर्स के, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ जहाँ रखी होती है वहाँ रखकर मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता, बिल्कुल गुम। मैं शाहरुख खान वाला, वो शाहरुख खान का कैरेक्टर था ना उसका, कौन सा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में, वो आधा केला खाकर अपनी जेब में रखता और भूल जाता है। मेरा भी ये वाला हिसाब है, मैं चीज़ें रखकर भूल जाती हूँ, बिल्कुल गुम। सुन, तो मेरे घर वाले जो ना वो कोप अप कर रहे होते हैं, बेटा तुमने आईडी यहाँ पे रखवाया था, तुमने वहां पे किया, तुम कहीं गई तो नहीं थी। बस यही चल रहा है, बस यही वाला मामला। अच्छा, एक और मैसेज आया किसका, हेलो माय नेम इज नज़ीर अहमद, आई हैव प्रॉब्लम ऑल द टाइम, आई फॉरगेट। भाई मेरी और आपकी एक जैसी, वी आर बोथ गजनीज। अच्छा भाई, मेरी टीम बढ़ रही है। अच्छा, और कौन है मेरे साथ, अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं, मेरा एक दोस्त है, सुबह सुबह उसकी शक्ल देख लूँ तो मेरा दिन ख़राब हो जाता है सारा। अरे भाई, ऐसे कैसे दोस्त हैं, ऐसे लोगों से मैं तो दोस्ती ना रखूँ। उसे मैं बोलता हूँ, भाई तू रात में मिला करो, तुम रात में मिला करो, दिन को ना मिला करो। ये किस किस्म के दोस्त रखे, और वो बेचारा ये बात सुनने के बावजूद भी मिलता है। वो भाई जिगरी है फिर आपका, वो जिगरी है फिर, वो इतनी बेइज्जती ना सिर्फ जिगरी सुन सकते हैं और कोई नहीं सुन सकता। चले भाई, एक कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम मैडम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
1: अली रजा।
0: अली रजा भाई कैसे हैं ये तो बताएं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: उम्मीद करती हूँ कि जैकेट शैकेट पहन के निकले होंगे।
1: जो मैडम, खैरियत?
0: मैंने कहा सर्दी हो रही है ना बाहर, बहुत जैकेट शैकेट पहन के निकले होंगे।
1: सर्दी है मैडम, बहुत, जितनी सर्दी है गाड़ी का एसी ने काम करना बंद कर दिया।
0: गाड़ी नहीं, आपको कहना चाहिए था गाड़ी का हीटर चला के घूम रहा हूँ।
1: हाँ, ये भी कह सकते हैं।
0: अच्छा भाई, अली रजा भाई हाल चाल कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैडम।
0: अच्छा, पहले तो ये बताएं, आपका वीकेंड ऑफ होता है कि नहीं होता?
1: मेरा तो मैडम, मैं पता नहीं, मंडे से इंतजार कर रहा हूँ वीकेंड का।
0: मंडे से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि वीकेंड पे जाएंगे कहाँ? भाई मुझे बता दो प्लीज, भाई मुझे बता दो।
1: मैडम मैं आपको बताऊं, सच बताऊं मैं आपको, मेरी फैमिली यहाँ पे है नहीं अभी।
0: सही।
1: और मुझे सोने से बेहतर कोई काम लगता नहीं।
0: भाई मेरी फैमिली यहीं पर है और मुझे फिर भी सोने से बेहतर कोई काम नहीं लगता।
1: मैं बोलता हूँ, मेरा सबसे फेवरेट काम जो है ना वो सोना है मैडम, मेरे को कुछ करने को नहीं है ना, मैं सोऊंगा।
0: मेरे भाई, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे तो इन्फ्लुएंस नहीं हो गए कहीं? हम वो लोग हैं जो
1: एक और चीज मैंने आपसे सुनी, अक्सर मैं बोलता हूँ, अक्सर ये बोलता हूँ, मैंने दूसरे बंदे से नहीं सुना ये, कि मच्छे ना लगना।
0: ये सिंध वालों की पहचान है, ये हम ऐसे आधी सिंधी आधी उर्दू ऐसे बात करते हैं।
1: मैंने भी सिंधी से सीखा था, मेरा दोस्त था सिंधी का।
0: हाँ, तो बस वो
1: बोलता था
0: वो। हाँ बस, मैंने बता दिया ना, ये सिंधियों, हम सिंधियों की पहचान है। अब मैं क्या करूँ, मैं मिक्स प्लेट हूँ, मेरे अब्बा पंजाब से हैं, अम्मा सिंध से हैं, तो दोनों का कहीं से कहीं तो मिलेगा ना। अच्छा ये बताएं कि आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा होता है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना, तो उठते के साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जिसको सोचकर आपको ये लगता है भाई बस मेरा तो पूरा दिन गया, आज गया मेरा। आप पहले डिसाइड कर लेते हैं, दिन बेशक अच्छा जाना है, लेकिन आपको वो चीज़ होना इतनी बुरी लग जाती है कि आपके दिल से निकलता है कि भाई आज तो, अली भाई आज तो दिन गया तुम्हारा।
1: सुबह उठते मुझे कोई बोल दे दूध ला दो, अंडे ला दो, दही ला दो।
0: हाय हाय, सुबह सुबह कोई काम पकड़ा दे।
1: इसलिए मैं रात को सोने से पहले पूछता हूँ कि कुछ लाना है, कुछ लाने की जरूरत है? नहीं नहीं, सब कुछ है, सुबह का नाश्ता बेहतरीन बनना है, और सुबह जब फ्रिज खोलता है तो अंडे नहीं होते। अच्छा, बचना गुस्सा आता है।
0: अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये आप कहीं उन लोगों, मेरी तरह उन लोगों में से तो नहीं है जिनसे सुबह सुबह ना इंसानों की आवाज बर्दाश्त नहीं होती?
1: हाँ, मेरे को रोशनी बर्दाश्त होती सुबह सुबह तो।
0: अच्छा, मेरे अलावा भी कुछ ऐसे स्पीशीज है, ठीक है, मुझे मुझे सुन के अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा सुन कि मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बारे में कहा जाता है कि सुबह सुबह इसके नहीं, इसके आसपास नहीं नजर आना। लेकिन देखें, इस बात से पता चलता है कि यू शुड हैट्स ऑफ टू योर मदर, योर सिस्टर एंड हूएवर इज टेकिंग केयर ऑफ यू, कि भाई हम खातीन जो होती हैं ना, वो सुबह उठ के नाश्ते भी बना लेती हैं, बच्चे भी संभाल लेती हैं, घर भी देख लेती हैं। आदमियों का ये होता है कि सुबह सुबह उठ के ना हमारे मत्थे नहीं लगना, हमें खबरदार जो बोला है दूध अंडे चाय कुछ भी ले आओ।
1: ये मेरे साथ पता है

0: दोनों चीजें एक साथ हुई है, मतलब मेरी अम्मी भी मुझे सुबह सुबह बोलती थी लेके आने के लिए और मेरी बेगम मुझे सुबह सुबह बोलते लेकर आने के लिए। अम्मी के टाइम पे तो मैं गुस्सा नहीं कर सकता ना, अम्मी तो फिर अम्मी होती है ना।
1: ये अच्छा है, बेगम के ऊपर बिगड़ ले, ये अच्छा है। ये क्या घर की आवाज में बेगम
0: बोल के सोता हूँ ना? ना मैं बेगम पे गुस्सा इसलिए करता हूँ क्योंकि रात को बोलते सोता हूँ कुछ चाहिए कुछ लाना है बताइए कुछ नहीं।
1: भाई इंसान है, ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर की गुंजाइश होती है भाई।
0: ना मैडम मैं पूछ रहा हूँ, आप फ्रिज जाके देखो, आपको कुछ क्या पता कुछ याद आ जाए, बोल के देखो। नहीं सब है, सब कुछ है, सुबह का नाश्ता बेहतरीन है बस ठीक है ना, हो फिर नाश्ता बेहतरीन।
1: देखिए मेहनत करने के बाद नाश्ते का जायका और होता है, अच्छा होता है। इतनी सी बात क्यों, पूरा दिन खराब, लो जाओ नहीं खा लो, तुम खुद खा लो,
0: खाना खा लेता हूँ।
1: लो ये बिल्कुल शहजादे चल रहे हैं, बिल्कुल वो प्रिंस वाला हाल है कि मुझसे कोई काम ना कराना, देखो मैं शहजादा चल रहा हूँ आज।
0: हाँ मैडम रात को मैं बोलता हूँ ना, मेरे को बता दो कुछ लाना है, पूछता हूँ मैं स्पेशली फोन करके पूछता हूँ कुछ लाना है, ऊपर से नहीं लाना सब कुछ है, फिर सुबह बुरा लगता है मुझे।
1: सुबह बुरा ये कोई बात हुई, चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोनों मियां बीवी की जोड़ी में कौन सबर कर रहा है कौन शुक्र कर रहा है ये तो अल्लाह ताला जानता है। बरकरार रखे बरकरार रखे, थोड़ी चलनी पड़ती है मैडम, हाँ दो वो हम कहते ना दो दो बर्तन होते हैं तो बजेंगे तो सही, और फिर वो बर्तन अगर स्टील के निकले तो और भी मजा आता है।
0: ये समझ ले हम दोनों स्टील के ही हैं।
1: चले भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, वैसे ये तो कहानी घर घर की हो गया। चले जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा हमारे पास ये सहूलत है कि हम लोग शायद इतने ज़्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट हो गए कि या खुद जाके, अगर मेरा ये प्रॉब्लम है, आई एम वेरी हाइपर इंडिपेंडेंट बच्चा, तो बचपन से ऐसी ट्रेनिंग हुई है, मैंने अक्सर औकात बताया भी, मेरे अब्बा फौजी माशाल्लाह से आदमी और अम्मा भी जो है ना मेरी वर्किंग वुमेन, तो हमने हमारा दिमाग ट्रेन ही इस चीज़ के ऊपर हुआ है कि रादर देन कंप्लेनिंग आप जाकर अपना काम खुद कर लो, तो हम लोग अपना काम खुद मुका लेते हैं, अपना काम खुद कर लेंगे। अगर सुबह को कोई चीज़ मिसिंग भी है ना, तो बजाय इसके कि मैं परेशान हूँ इस चीज़ के बारे में कि भाई अक्सर औकात कभी ऐसा होता है कि भाई बच्चों का लंच बनाना है कुछ करना है कोई ब्रेड मिस हो गई, इंसान है नॉर्मली होता है, तो बजाय इसके कि मैं पैनिक मोड में आऊँ, मेरे दिमाग में पहली चीज़ ये आती है भाई मोबाइल खोलो या ऑनलाइन मंगवा लो या नीचे दुकान है, अगर दुकान खुले हुए होने का टाइम है तो फटाफट जाके खुद ले आओ, इससे पहले कोई चीखन बुखार मजे। वो वाले बच्चे होते हैं ना जो अपने ट्रैक्स कवर करते हैं कि अम्मा अब्बा को पता ना चल जाए, हम वो वाले बच्चे हैं भाई। चले भाई अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, नंबर इज 4434377, और कॉल करके ये बताएं कि आप क्या करते हैं भाई, आपके साथ क्या मामला होता है, कोई सुबह की एक ऐसी बात जो आपको नासाजगार गुजर जाती है और आप कहते हैं कि इसके बाद तो मेरा पूरा दिन झंड हो गया है ख़त्म, जबकि दिन बेशक अच्छा ही जाए लेकिन आपका मूड ख़राब कर देती है वो चीज़। देखते हैं हमारे साथ कॉल पर कौन है, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ?
2: फलक बात कर रही
1: हूं। फलक कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
2: अच्छी, आप कैसी हैं?

0: अब आवाज आई, अब खुल के आवाज आई। अच्छा भाई ये बताएं फलक कि ये जो, अच्छा ये तो एक यूनिवर्सल मसला है जब हमें बाहर निकलना होता है और मेकअप, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, आपने मैसेज करके बताया था मेकअप का मसला, कभी कभी ऐसा होता है एक साइड से मेकअप डार्क हो जाता है और एक साइड से लाइट होता है।
1: हाँ, वो और स्पेशली ग्लिटर, मतलब आप पूरा मेकअप कर चुके हैं एंड यू अप्लाई योर ग्लिटर और वो इतना सारा डार्क हो जाता है कि अल्लाह अब तो मुंह ही धोना पड़ेगा।
0: वो हाईलाइटर, हाईलाइटर, अरे भाई वो जो आप चीक बोन्स पे लगाते हो और वो थोड़ा सा नाक को सीधा, वो नाक को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ ही निकल जाता है।
1: You won't believe, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी में मैंने पूरा मेकअप कर लिया एंड आई डू नॉट नो व्हाई मुझे ऐसा दिल हुआ कि मैं ना इस बार गोल्डन ग्लिटर ट्राई करती हूं।
0: सही सही,
1: एंड उसने मेरा पूरा लुक शादी का ऐसा खराब किया है कि मेरा मुंह फटी हो गया।
0: ये बहुत ये, अच्छा मजे की बात पता है क्या है, जिस दिन आप जल्दी में मेकअप अप्लाई करते हो ना उस दिन कुछ नहीं होता, इट बिकम्स फाइन। जिस दिन आप प्रिसाइसली ये मूड के तौर पे डिसाइड करते हो शादी हो गई या कुछ, आप यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, उसी दिन सारे डिजास्टर होने होते हैं। या कपड़ों पे अक्सर औकात ये भी होता है कि वो जो फाउंडेशन वगैरह होता है कहीं कपड़ों पे, शर्ट पे गिर जाता है।
1: आपने सोचा था यही ड्रेस पहननी है?
0: अरे भाई मुझे याद है एक चीज जो मुझसे बहुत ज्यादा डिजास्टर होता है, मुझे ब्लैक आई शेडो बहुत अच्छा लगता है। अब वो ब्लैक आई शेडो आप लगाओ तो सही भाई, वो अंडर आईज के नीचे भी ना सारा ब्लैक हो जाता है। उफ, और उसको गलती से एक दो दफा मैंने हाथ से झाड़ लिया बहन, वो क्या ही होना था, मैं तो सच में कुंफू पांडा बन गई, जस्ट इमेजिन। अब अच्छा वो दिखने में इतना नहीं लग रहा होता ना क्योंकि वो पाउडर बेस्ड होता है, तो वो ऐसा लगता है इससे आप हल्का सा यूं करोगे वो तर जाएगा। उफ।
1: प्रो टिप, आप हमेशा ना जो ईयरबड होता है उससे आप सूखने के बाद में रब करके और उसके ऊपर कंसीलर लगा लीजिए, इट विल बी परफेक्ट।
0: मेरे साथ ऐसे ऐसे मेकअप के डिजास्टर होते हैं ना, आई एम बस मैं क्या बोलूं, जो किसी के साथ नहीं होता होगा ना वो मेरे साथ होता है।
1: तो मेरे साथ भी बहुत होता है, मतलब अभी तो टफ हो गया बिकॉज आई एम प्रो, बट पहले तो बहुत ही ज्यादा होते थे स्पेशली स्कूल टाइम पे, स्कूल जाने के लिए हम अपने स्कूल में मेकअप करते थे, मतलब नॉट वेरी डार्क बट
0: लाइट से मेकअप।
1: हमारा फाउंडेशन एंड लिप ग्लॉस जो है हमें
0: सही
1: करके जाते थे, तो सबसे ना वी आर प्रो।
0: हमारा तो सिस्टम ही अलग था।
1: अली के लिए कुछ क्वेश्चन था, अली वो सेइंग दैट ही इज अलोन हियर एंड देन अगेन ही, वो ब्रेकफास्ट वाला इशू होता है, तो भाई व्हाई आर यू कंप्लेनिंग, यू शुड बी हैप्पी, नो यू आर अलोन हियर।
0: हां अच्छा, ये आदमी ना किसी चीज में खुश नहीं होते फलक, है कि नहीं? ये हमें कहते हैं कि हम औरतें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और इनको देखो खुद कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, चार दिन की छुट्टी पर जाते हैं तो वहाँ पे भी अंडे और दूध दही लेने में इनको मसला हो रहा है। मैंने पिछले कुछ महीनों से यही हड़ताल शुरू की हुई है, मैं तो घर पे कहती हूँ जाओ जाके नीचे से पराठा और चाय लेकर आओ, मैं चाय भी नहीं बनाऊंगी, आज मेरी छुट्टी है, मैं देर से उठूंगी। तो यही होना चाहिए, वी आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड बींस, वी आर सिंपल। मैंने कहा ना, वो मैंने इनसे तभी कहा कि सल्यूट करें अपनी माँ बहनों को और बेगम को कि भाई बच्चे भी संभालो, अंडे ब्रेड पराठे भी बना कर दो, सारे काम उठते के साथ करो। क्या ही बोला जाए। फिर कहेंगे फेमिनिस्ट हो गई हैं बहुत ज्यादा। चलें जी, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और मेरे ख्याल से मेरे शो में फर्स्ट या सेकंड, नहीं सेकंड फीमेल कॉलर आप ही हैं, तो इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू।
1: It is very nice. I'll keep calling.
0: अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

0: देखिए एक औरत ही समझती है एक औरत का दर्द, आप क्या जाने। वैसे फलक ने भी वही एग्जैक्टली देखा, पिन पॉइंट फलक ने भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही पॉइंट पकड़ के निकाला अली रजा का कि भाई देखो दो मिनट के लिए उठ के जाना नहीं हो रहा दूध दही लेने के लिए, और हमें देखो हम इतने काम करते फिरते हैं, हम कोई क्या रोबोकॉप चल रहे हैं क्या। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, रोहेल भाई हैं, रोहेल भाई क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गोभी दिया फुल्लो, कह रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सालों में आ गए हैं, सलों, ओ माय गॉड सलों में आ गए हैं विद सलों। ठीक है देखें ये जो है ना ये बातें आप लोगों को समझ में ना आएंगी, मर्द हजरात को ये बड़े सेंसिटिव इशू होते हैं मेकअप के, ये सिर्फ हम लेडीज समझ सकती हैं। हमारी दुखती रख जो है ना तब आपको कभी कभी कभी देखना आप कभी नोट करना किसी का जब लाइनर खराब हो जाता है ना तो कैसा दिमाग खराब होता है उसका, वो भी सुबह सुबह, अच्छे अच्छों का पेशेंस खत्म हो जाता है इसके ऊपर। चलिए भाई अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं 4434377 इज द नंबर, 4434377 इज द नंबर टू कॉल। और आज का सवाल ये है, मुद्दा ये चल रहा है कि कोई एक ऐसी बात बताओ सुबह सुबह आपका मूड खराब करती है, भाई सिंपल शॉर्ट कोई एक ऐसी बात जो सुबह सुबह आपका मूड खराब कर देती है। मेरा अक्सर मूड इस बात पे भी खराब हो जाता है कि सुबह सुबह मुझे भूख क्यों नहीं लग रही, मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं कुछ खाऊं, मेरा सुबह सुबह वो दिल करता है वो वड़ा खाओ डोसा खाओ, लेकिन मेरा पेट कह रहा होता है मुझे नहीं खाना, मेरा उसके ऊपर मूड खराब हो जाता है। चलिए भाई देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा में राजी, कौन है हमारे साथ।
1: माशाल्लाह ट्रांसमिशन बात कर रहे हैं आज अच्छा सुबह, और क्या हाल चाल है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये तो बताएं कौन है हमारे साथ, है कौन
1: नहीं पहचानता। अब्बास
0: नहीं नहीं आप देखिए ये जो है ना अब आप इतनी देर देर बाद कॉल करेंगे तो फिर क्या करूं मैं।
1: ओके अब्बास मेरा नाम है।
0: अब्बास भाई थोड़ा फ्रीक्वेंटली कॉल किया करें ना, तो फिर मैं तो वैसे ही गजनी हूँ मानी भी तो मैं तो वैसे ही भूल जाती हूँ। कैसे हैं आप अब्बास भाई, खैर खैरियत से अल्लाह का करम है। अब्बास भाई ये बताएं सुबह सुबह ऐसा क्या मामला होता है कि कभी कभी जिससे आपका दिमाग जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है, आप कहते हैं आज तो पूरा दिन बर्बाद ही है बस।
1: होता है कभी कभी, हाँ होता हो सकता है, कुछ बात की वजह से रहे कभी, अरे कोई चीज की वजह से इंसान है हो जाता है कभी।
0: तो वो क्या क्या कैसे ऐसी कोई एक आधी बात बताए ना हमारे साथ अगर शेयर करने वाली हो तो।
1: हाँ यानी समझो यानी किसी ने यानी पूछा ऐसा यानी तुम्हारा साथ यानी एक गलत बात की
0: सुबह सुबह किसी ने चिल्ला दिया।
1: हाँ या चिल्ला दिया यानी ऐसा यानी बाद में हो तो समझो यानी तुम्हारा दिमाग तो पूरा आउट हो सकता है
0: दिमाग
1: समझो। हाँ यानी बाद में वो दिन तुम्हारा अल्लाह आलम कह समझे, लेकिन जब सुबह तुम हैप्पी से समझो बहुत फ्रेश से अल्लाह की इबादत से सबसे बाहर आएगा आपका ड्यूटी में आएगा बाद में पूरा दिन तुम इस तरह जैसा आप इंशाल्लाह आज यानी वीकेंड नजदीक इसलिए आज माशाल्लाह आप फ्रेश फ्रेश में बात कर रहे हैं।
0: सही इंशाल्लाह। चलें भाई तो मतलब आपको सुबह सुबह का शोर नहीं पसंद।
1: नहीं नहीं मेरे को शोर नहीं पसंद, नाश्ता तो शोर नाश्ता का कोई इतना नहीं, लेकिन किसी ने अगर शोर या कोई गाड़ी खराब मैं रास्ता जो गाड़ी एक गाड़ी
0: अरे भाई सुबह सुबह अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए ना भाई ओ भाई
1: पंचर की तो अलग बात है, लेकिन कोई अगर ये तो आपको गुस्सा आता है पंचर से।
0: मेरा मैंने एक दो दफा ना गाड़ी का टायर खुद चेंज किया है तो मुझे अंदाजा है कि कितनी मेहनत लगती है उसके अंदर, तो वो जो सुबह सुबह गाड़ी का टायर पंचर हो जाए ना वो भाई वो बड़ा वो ट्रॉमा है, बहुत बड़ा ट्रॉमा है। क्योंकि गाड़ी का टायर पंचर होने का मसला पता है क्या है, आप ऑफिस में बोलोगे गाड़ी का टायर पंचर हो गया ऑफिस वाले यकीन ही नहीं करते, वो इतना कोई मजाक बना हुआ है उसका कि वो सच भी बोलो तो कोई यकीन नहीं करता भाई।
1: ये बात सही है किसी ऊपर आजकल
0: यकीन नहीं करता भाई, मैंने कहा वाकई में भाई मैं लोगों को बोलूं कि मेरी गाड़ी की चाबी मैं गाड़ी के अंदर भूल गई गाड़ी लॉक हो गई कोई यकीन नहीं कर रहा मेरा। मैं कैसे समझाऊं
1: माशाल्लाह आपकी हिम्मत, तो आपने खुद अपना टायर चेंज किया गाड़ी का माशाल्लाह आपकी हिम्मत।
0: हमारे अब्बा मैंने बताया ना हमारे अब्बा फौजी

0: आदमी, तो वो बेटों को बेटियों को सारी इलेक्ट्रिक के काम, गाड़ी के काम, सब सब सिखाया वहाँ.
1: हाँ, पाकिस्तान पाक फौज में से है, सही, पाक फौज में सब सब सब
0: फौजी आदमी.
1: आप भी फौजी है माशाल्लाह.
0: हम भी फौजी हो गए पाकिस्तान रह रहकर. चलिए अब्बास भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखें.
1: इंशाल्लाह आप भी अपना ख्याल रखें. इंशाल्लाह आप हमेशा खुश रहे, अमन रहे, सलामत रहे.
0: आमीन. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे. अल्लाह हाफिज.
1: कभी कभी कराची में एक चक्कर लगाओ. पंजाब का तो बहुत, पंजाब बहुत दूर
0: है. हमारा दिल कराची में भाई, हमारा दिल कराची में. हम
1: वही ना, दुनिया का जन्नत कराची में.
0: चले भाई, चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. तो भाई साथियों, आपसे सवाल ये है कि जरा बताओ, सुबह सुबह ऐसी कौन सी बात है जो आपका दिमाग दही बना देती है? दही भी नहीं, लस्सी, लस्सी बना देती है. और आप कहते हैं कि अब पूरा दिन इस लस्सी को साथ लेकर घूमना पड़ेगा मुझे. 4434377 इज द नंबर टू कॉल. 4434377 इज द नंबर टू कॉल. और भाई देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ?
2: सुमी बात कर रही हूँ.
0: सुमी बात कर रही है. सुमी कैसी हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी.
0: आज मैंने सुबह सुबह उठ के किसकी शक्ल देखी थी भाई? जो मेरा ऐसा लग चल रहा है,
2: सुबह आपकी अच्छी हो गई है.
0: मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ऑन एयर बता रही हूँ. वैसे तो भाई हमारे कॉल करते रहते हैं, लेकिन आज मेरी लॉटरी लगी है बहन. मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मुझे लेडीज की कॉल आ रही है. मेरे लिए लेवल अनलॉक्ड है भाई.
2: Because we love you.
0: Oh my God, then भाई अब क्या रुलाओगी पगली? ना करो, अब क्या रुलाओगी? How are you, Sumi?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं?
0: अल्लाह का करम है, अल्लाह की रजा में राजी हैं. ये बताएं, आज चांद जमीन पे कैसे आया? आज कैसे कॉल? ये मतलब आप वैसे भी
2: बहुत दिन के बाद आज इस टाइम मैंने रेडियो ऑन किया और आपकी आवाज सुनी. मैंने कहा ये तो कुछ चेंजेस लग रहे हैं मुझे.
0: अभी ये चेंजेस कुछ महीने के एंड तक फिर और चेंज हो जाएंगे, टेंशन नहीं लें. सितंबर से इंशाल्लाह नए शोज शुरू होंगे, तो उसके हिसाब से फिर थोड़ा बहुत चेंज आएगा, फिर वो दिसंबर तक ऐसे ही रहेंगे. लेकिन आपको सुबह को हमारी आवाज सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह
2: इंशाल्लाह.
0: अच्छा ये तो बताएं कि दिल खोल कर बताइएगा, ठीक है? ये बताएं कि सुबह सुबह उठते के साथ ऐसी कौन सी चीज है जो आप कहती हैं भाई ये मेरे मत्थे ना लग जाए, ये चीज ना हो जाए, वरना मेरा पूरा का पूरा दिन क्रैश कर जाएगा?
2: बहुत सी चीजें होती हैं, और अगर आप पेरेंट हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है. बच्चों का सुबह सुबह रोना, लिटरली उनको स्कूल के लिए जगाना, फिर उनका रोना शुरुआत रोने से होना.
0: मुझे ना सबसे बड़ा फोबिया है ये. मेरी बेटी माशाल्लाह 10/10, बेटा ही माशाल्लाह 10/10, लेकिन उसको सुबह उठाना, मेरे बेटे को सुबह उठाना ऐसा है जैसे मुझे ऐसा लगता है मुझे आर्मर पहनना पड़ेगा, कानों में आवाजें बंद करने के लिए टूटियां लगानी पड़ेंगी, और फिर जाकर मेरे अंदर ये हिम्मत आएगी कि मैं इस जिन को जगाऊं कि सुबह स्कूल जाना है.
2: और अभी तो समर ब्रेक के बाद जो आएगा
0: टेंट्रम, लेवल टेंट्रम का लेवल होगा
2: उसमें मुझे अभी भी खौफ आने लग रहा है कि क्या होगा, कौन से ड्रामाज होंगे सुबह सुबह.
0: तो अभी से आप
2: वो सबसे बड़ा
0: तैयार हो जाए ना अभी से.
2: बिल्कुल. और सुबह सुबह अगर आपकी खराब चाय बन गई, एक वो मूड खराब.
0: देखिए चाय का मजाक जो है ना बड़ा
2: चाय बहुत अच्छी
0: बड़ा दिल पर लगता है.
2: शुरुआत आपकी चाय से या कॉफी से जो पीता है, बट आई लव टी, तो चाय अच्छी होनी चाहिए.
0: अच्छा मेरी मेरी गुड लक ये कि हमारे ऑफिस में ना हमारे उसामा भाई हैं, तो मैं वैसे तो कहीं से भी अपने भी चाय बना सकती हूँ, लेकिन मुझे सुबह सुबह मैं कहती हूँ, मैं बेशक बाहर से चाय पीकर आ जाऊँ, लेकिन मैं कहती हूँ सामा भाई प्लीज एक चाय प्लीज, अपने अपनी वाली चाय. तो वो माशाल्लाह इतनी मजे की चाय बनाते हैं ना. मैं कहती हूँ सबसे ऑफिस का सबसे इम्पोर्टेंट बंदा उसामा भाई है हमारा.
2: ओके. और फिर अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो आप ड्राइव कर रहे हैं और जो आपको रेड लाइट सिग्नल मिलते जाएंगे,
0: आपको देर हो रही है और आपको सिग्नल मिले ऐसे, तो आपको ऐसा लगेगा पूरा दिन ऐसे ही रुकते रुकते चलेगा पूरा दिन.
2: एग्जैक्टली. और सामने अगर आपका स्लो ड्राइवर मिल गया, उसने राइट लेके अगर राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट ले लिया, ये दिल करता है क्या?
0: अच्छा ये कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि वैसे ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रही होगी, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर दिन होता है जिस दिन सारे के सारे पगलेट जो होते ना वो ऐसा लगता है कि ये सारे मुझे को कट मार के क्यों निकल रहे हैं, और वो एक पर्टिकुलर दिन होता है।
2: हाँ होता है कभी कभी, और पता है जैसे कि फ्री राइड होता है ना, और कभी कोई बंदा उसको सीधा जाना, वो फ्री राइड पे खड़ा हो गया, मेरा दिल करता है मैं गाड़ी से उतर के इसको सिखाऊं भाई ये फ्री राइड है, इस पे मत खड़ा हो भाई, पीछे वाले लेट हो रहे हैं।
0: उफ, उफ, उफ, ये जो आपने बातें की ना दिल दहलाने वाली, ये दिल दहलाने वाली बातें हैं मुझे, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे ना जब कोई बात करता है ना मुझसे तो आई कैन विजुअली लिटरली मुझे वो विजुअल नजर आ रहा होता है, तो
2: नजर आ रहा होता है एग्जैक्टली
0: मुझे ना इस वक्त वो सिचुएशन नजर आ
2: रहा होता है ना, लिटरली सफा मैं आपको क्या बताऊं, इतना मूड खराब करता है ना सुबह सुबह कि भाई अगर बंदा को सीधा जाना वो फ्री राइड पे क्यों खड़ा है, पीछे वाले सब स्टक हो गए।
0: मैंने इस चीज का एक हल निकाला, पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था ट्रैफिक, खास तौर पर ना ट्रैफिक में मुझे बहुत गुस्सा आता था, फिर मैंने कहा भाई ट्रैफिक तो पूरी जिंदगी ऐसी रहेगा, फिर मैंने उम्र के इस हिस्से में आकर ये सीखा कि अपना आधा घंटा पहले निकलो भाई, अगर आपको पता है कि आप लेट निकल रहे हो तो अपने दिमाग को ये ट्रेन कर दो दैट आई एम ऑलरेडी लेट, खत्म, कहानी खत्म हो गई।
2: एक चीज ये भी है, अगर आप आधा घंटा पहले निकलेंगे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा,
0: ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है, ये एक ऐसी हकीकत वाली बात है जो मैं आपको, मैं क्या ही इसको एक्सप्लेन करूं, और जिस सेकंड आपने, आपको देर हो रही होगी ना उस सेकंड ऐसा रहेगा कि कुल कायनात मिलकर आपको देर करवा रही है।

0: मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार मेरे साथ ये हादसा हुआ कि भाई मैं जा रही थी सुबह में, बहुत जल्दी में थी, मुझे निकलना था और मेरी गाड़ी हिट हो गई दूसरे बंदे
1: के साथ करे। सही।
0: और वही ट्रैफिक पुलिस आई और जिस बंदे के साथ हिट हुई वो तो मुझे लिटरली गालियां दे रहा होगा, उसका 10 साल का इस्तेमारा एक्सपायर था, उसका ट्रैफिक लाइसेंस रिन्यू नहीं था।
1: ओए भाई, बस उसकी पुरानी थी।
0: मतलब जो है वो लिटरली मुझे गालियां दे रहा होगा कि इसी बंदी को टकराना था मेरे से।
1: ओ भाई, उस बेचारे की गलती अगर ना भी होती लेकिन फिर भी उसकी गलती है क्योंकि उसका गाड़ी का लाइसेंसिंग नहीं था तो उसने गाड़ी निकाली क्यों रोड पर।
0: 10 ईयर्स आप इमेजिन करिए, उसका एक्सपायर रिन्यू नहीं किया था और इस्तेमारा भी एक्सपायर, लाइसेंस भी एक्सपायर, सब एक्सपायर, फिर तो पुलिस ने बैठा लो, चलो भाई चलो।
1: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला रखे सबके साथ भाई, जान है तो जहान है, ऐसी हरकतें ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, खासतौर पर ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। अब मैं क्या ही बोलूं, मैं मेरे पास I am speechless। उस बेचारे का दिन खराब गया या आपका मुझे नहीं पता। उसका दिन क्या, उसका तो पता नहीं क्या कुछ खराब हो गया होगा।
0: उसका क्या खराब,
1: उसने कहना है कि मैंने सुबह को किसकी शक्ल देखी थी, किसकी। वो तो पहले ये पता लगाएगा कि सुबह सुबह कौन टकराया था मुझे।
0: तो मर्द हजरात जो है गाड़ी सही से चलाया करे, खासतौर से लेडीज पे बच बच के।
1: हाँ देखो, अपनी बचत खुद किया करो, ये हमें नहीं बोलो कि हमें लाइसेंस किसने दिया है। हम प्रूवन हमारे पास लाइसेंस है, मतलब ये कि हम गाड़ी चलाने के लायक हैं। अब अपनी गाड़ी आप खुद बचाओ। चले जी, सुमी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और याद रखें वी आर सुपर वुमेन, सो हमारा दिन खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि इफ वी क्रैश, हमारे साथ बहुत बहुत सारी चीजें क्रैश करती हैं फिर। चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। तो भाई साथियों, 4434377 इज द नंबर, किस किस का दिन कैसे कैसे खराब गुजरता है बताओ मुझे, आज दिल खोल कर बताओ भाई, दिल खोल कर बताओ आज कि किस किस के साथ ऐसा क्या क्या हुआ है, क्या क्या जुल्म हुए जिंदगी में, दिल खोल कर बताओ। आज थर्सडे है, आज वीकेंड का दिन है, आज हम फुल ऑन बातें करेंगे। अरे मैं तो पूछना भूल गई कि कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाओगे घर के अलावा, मेहरबानी करके अगर घर के अलावा कहीं जाओगे तो मुझे बताओ। 4434377 is the number to call. Assalamu alaikum.
2: Waalaikum assalam. Kya hal hai Safa ma'am?
1: Main bilkul Allah ki raza mein razi wala shakhs, to bilkul khushbash. Aap bataye kaun hai hamare sath?
2: Allah ka shukr, Sarfaraz Alam baat kar raha hu.
1: Sarfaraz bhai, kaisa guzar raha hai safar?
2: किसके मोबाइल की डीपी जी बात करी थी आपने व्हाट्सएप की?
1: अच्छा, वो जिनकी जिनके हाथ में छोटी सी प्यारी सी बेटी है अपनी।
2: जी जी जी जी,
1: सही, माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है पुरानी तस्वीर है या कोई नई तस्वीर है ये?
2: नहीं, तस्वीर है पुरानी, कोई तस्वीर नहीं है।
1: अच्छा, नई तस्वीर है। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी बच्ची के नसीब अच्छे करे। मुझे बच्चियां वैसे ही पता नहीं क्यों, मुझे बेबी गर्ल्स ना वैसे ही पसंद है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा।
2: बस अल्लाह को नहीं मंजूर था, नहीं तो एक की जगह दो दो दो बेटियां हाथ में होते क्योंकि ट्विंस हुए थे, तो एक अल्लाह को प्यारी हो गई।
1: अल्लाह ताला आपको सबर दे भाई। मैं क्या बोलूं, मैंने तो ये सुना है कि भाई यही जो औलाद अल्लाह ताला के पास वापस चली जाती है आखिर में, यही माँ बाप की जन्नत का वसीला भी बनती है। तो सबर अल्लाह ताला की रजा में राजी वाला सीन है, ये बोलना बड़ा आसान होता है लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है। तो अल्लाह ताला आपको सबर रखे, आपको सबर दे, और जो है ना जो औलाद आपको मिली है माशाल्लाह, वो माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी बच्ची भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, लाख हुआ अल्लाह बिला माशाल्लाह।
2: मैं आज तक कभी जिंदगी में रोया नहीं हूँ, उस टाइम पे आंख में आंसू आ गए, आज तक कभी नहीं रोया।
1: सरफराज भाई, औलाद ऐसी चीज है, मेरे वालिद साहब कहते हैं औलाद जो है ना वो घुटनों के बल ले आती है, तो इसके ऊपर कोई तबसरा ही नहीं ना कि औलाद कितनी कीमती और कितनी अजीज चीज है। तो बस अल्लाह की रजा होती है, लेकिन इस चीज के ऊपर भी राजी हो जाना चाहिए कि लोग ऐसे भी जिनके पास औलाद ही नहीं है। ये भी अल्लाह ताला का करना है, ये अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी मर्जी है कि मैं जिसको चाहे वो चाहूँ बेटा दूं, जिसको चाहे बेटी दूं, जिसको चाहे बे औलाद रखूं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास माशाल्लाह इतनी प्यारी एक बेटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको आपके दिल की ठंडक बना के रखे, नसीब अच्छा करे। ये बताएं कि सुबह सुबह का क्या मामला है भाई, ये जो सुबह सुबह होती है और कभी कभी
2: मैं वही सेम तुमने बैठ वाली बात दोहराना चाहता हूँ।
1: ट्रैफिक
2: पहले कॉल लगाई थी भाई,
1: जी जी
2: क्या नाम था?
1: हाँ जी, सुमी
2: जी, सुम्मी पहली बात पूरा रिलेट कर रहा हूँ। फिर सिचुएशन मेरे

0: παίρνει ότι με σωστό τόνσα μακριά για ρόρτε καλή λέγεται.
1: Ωραία, μπάι! ये वाकई में होता है. अच्छा लोग पता नहीं क्यों नहीं सोचते भाई, ये लोगों को ऐसा लगता है कि कट मार के हम निकल जाएंगे. अरे भाई कितनी ही गाड़ी आगे चले जाओगे, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी आगे चले जाओगे, कितनी गाड़ी आगे चले जाओगे
0: जी. लोग जो बहनपुर में थे कि मर्द हजरात, वैसे भी हम लोग देखते हैं कि लेडीज है और एक दिन पापा की परी, तो मैं वैसे भी 20 मीटर पूरी गाड़ी पीछे ही रखता हूँ.
1: अच्छा मैं हकीकत बात बताऊँ, नॉट टू ब्रैग अबाउट इट, लेकिन मैं गाड़ी के पीछे भी हूँ ना, अगर मैं किसी गाड़ी के पीछे हूँ ना, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि लेडी ड्राइवर है कि मेल ड्राइवर है.
0: वही हाल अपना भी हूँ. मैं बता देता हूँ, मेरे साथ में जो होते बोलते यार कैसे पता चल जाता है, तुमको तो पता चल जाता है बस.
1: आप बस अब मैं देखिए रेडियो में कुछ बोलूंगी नहीं. मामला ये, मुझे भी ना, मुझे ड्राइविंग मेरे भाइयों ने सिखाई है, तो मेरी ड्राइविंग थोड़ी बहुत, मेरे जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर थे यहाँ पर भी कतर में, वो भी मेल थे, बहुत अच्छी ड्राइविंग उन्होंने सिखाई थी. तो मेरी ड्राइविंग ना कुछ पता नहीं क्यों मर्द हजरात वाली है थोड़ी सी. मैं ये नहीं कहती कि हूँ तो आखिर में मैं भी कट मार के निकलने वाला बंदा, लेकिन बंदी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कदर निस्बत बेहतर है. अब जब मैं अपनी अम्मी की ड्राइविंग देखती हूँ ना भाई, ओ भाई, मैं पाँव ऊपर कर लेती हूँ. मैं कहती हूँ मैं बैठ ही नहीं सकती, मैं नहीं बैठ सकती. मुझे ऐसा लगता है मैं W11 में बैठी हुई हूँ, पाकिस्तान की कराची वाली S2 में, और मेरे हाथ पांव ऊपर बिल्कुल बर्फ. मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, शू मार्कर बनी हुई अम्मा, मतलब रोड अम्मा का है.
0: आप यकीन मानेंगे, सुबह में क्या कहते हैं, आज सुबह की बात बता रहा हूँ, मैं 15 किलोमीटर तक गया हूँ. एक लेडीज हजरात चला रही थी गाड़ी, अब उनके पीछे जितनी भी गाड़ी है फर्स्ट ट्रैक में,
1: ओ भाई,
0: पर मार मार के हॉर्न मार मार,
1: लेकिन वो नहीं हिलेंगी, लेकिन वो नहीं हिलेंगी.
0: ना ना ना ना, वो हिली ही नहीं, निकल के जाना पड़ा, लेकिन वो हिली नहीं फर्स्ट ट्रैक से. मैं बोला सही है.
1: मुझे इतना गुस्सा आता है ना इस चीज के ऊपर, या आप स्पीड में जाओ या आप साइड वाले ट्रैक पर हो जाओ ना. ये खिलाफ वर्जी, ये रूल की, ऐसे लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लगता है एक अलग से जगह होनी चाहिए, एक अलग सा जू होना चाहिए ऐसे लोगों के. मैं क्या बोलूं, ऐसे लोगों के ना अलग सा एक जू होना चाहिए. फास्ट ट्रैक में आप चला रहे हो 60 से 50 की स्पीड में गाड़ी, क्या मतलब कुछ मीजानिए में गलती है, या पाकिस्तान से उठकर आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड ड्राइविंग कुछ आपको नहीं समझ, क्या मसला क्या है? आपको पीछे वाला याद दिला रहा है हॉर्न नहीं. अच्छा मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं हॉर्न मारती नहीं ना, मुझे ये है कि मैं फिर भी लाइट डिम पर मार दूंगी कि भाई हट जाओ, लेकिन अगर उसको भी कोई ना समझे तो फिर मुझे समझ नहीं आता इसको क्या किया जाए. मेरा कभी कभी दिल करता है उतर कर जाऊं और इसकी गाड़ी को हाथ से, जैसे बच्चे गाड़ी चलाते ना, इसको साइड में करूं.
0: साइड में कभी कभी ये होता है कि बीच वाला आदमी फर्स्ट ट्रैक में फटाक से आएगा और स्लो हो जाएगा.
1: हाँ ये भी होता है.
0: ओवरटेक करना पीछे वाले की गाड़ी की स्पीड की लिमिट होती है, उसको मैच करो तब आदमी फर्स्ट ट्रैक में.
1: ऐसा मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि कुल कायनात मिलकर आपका दिमाग की जो सर्कुलेशन है ना उसको बंद करना चाह रही होती है, कुछ जिगजैग हो रहा होता है दिमाग में, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो डबल ट्रिपल करना चाह रही होती है. और फिर आप गाड़ी में बैठे हुए ऐसे और चक रहे होते हो और इतना कुछ बोल रहे होते हो कि जैसे सामने वाले को सुनाई देगा, सामने वाले को कख कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता. और मोस्टली वो निकलती हैं माशाल्लाह से हमारी समझदार बहनें, तो वो आप एक काम किया करें भाई, चाहे कोई भी ड्राइव कर रहा हो, आई विल नॉट बी जेंडराइजिंग इट, लेकिन कोई भी ड्राइव कर रहा हो ये प्लीज तरीके का अपनाएं कि आपको अगर पता है कि आप अंडर 80 चल रहे हैं तो आप ट्रैक अपना जो है ना वो एक्सट्रीम, या तो फिर एक्सट्रीम राइट पे रखें या मिडिल लेन में रखें, मेहरबानी करके. रिक्वेस्ट है हमारी भाई, रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज.
0: इतने मर्द हजरात, खवातीन हजरात सुन रहे हैं, सब ध्यान से सुन,
1: प्लीज. देखिए सुबह सुबह ना वैसे ही दिमाग का फ्यूल लो होता है, तो ये मत करो भाई, ये गेम हमसे ना हो पाएगा, ये एडवांस लेवल का गेम सुबह सुबह नहीं खेला करो. चलें जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सरफराज भाई. अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आपको जो है वो दुनिया और आखिरत की सारी अच्छाइयाँ आपको मिले इंशाल्लाह, हम सबको मिले इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, अल्लाह
0: हाफिज़.
1: अच्छा बात कुछ लंबी हो जाती है, क्या करें, कॉमेडी, ये कॉमेडी सीन है भाई, ये सुबह के सबके कॉमेडी सीन है.

0: ही किया जा सकता है इनके साथ. अच्छा भाई 4434377 इज द नंबर टू कॉल, और एक और कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है मेरी?
0: जी देखें, आप और मैं जमीन के उस लेवल पर एक साथ हैं जहां पर हमारी आवाज बिल्कुल क्लियर कट एक दूसरे को आ रही है.
1: जी
0: नहीं तो बाकियों की आवाज ऐसा लगता है कि वो एक चांद पर है. और डेढ़ माह से माशाल्लाह.
1: तो आज टॉपिक आपने छेड़ा के सुबह को जो डिस्टर्ब करते हैं आपको.
0: हाँ जी,
1: अल्लाह के नेक बंदे.
0: नहीं नहीं, मैंने टॉपिक ये छेड़ा था. अच्छा पहले तो मुझे अपना नाम तो बताएं आप. मैंने नाम नहीं पूछा, माजरत. नाम आपका?
1: सैयद अली नाम है मेरा.
0: अच्छा जी सैयद भाई, टॉपिक ये है कि सुबह कोई ऐसी चीज हो जाए जो बस आपके नट बोल्ट ढीले कर दे. वो चाहे कुछ लोग तो इसके ऊपर भी जो है ना वो हो जाते हैं, दिमाग शॉर्ट हो जाता है उनका कि भाई.
1: जी, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा. मैं ड्राइविंग करता हूँ तो अलखोर से मैं राउंड अबाउट से निकल रहा था. लेक्सस में एक बंदा आया, कतरी था. उसने मेरी गाड़ी के साथ हिट किया और पुलिस वाले को बोला कि मैं किसी की डेथ पे जा रहा था, मुझे जल्दी थी तो इसकी गलती निकाल देना.
0: सही,
1: वो मेरे लिए काफी शौक था.
0: तो अच्छा
1: पूरा दिन खराब गुजरा मेरा.
0: अच्छा होता पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताती हूँ. ट्रैफिक लॉ के मुताबिक ना, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनी बडी और मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी की नेशनैलिटी नहीं लूंगी. आई डू नॉट बिलीव इन दिस, क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा मामलात हुए, तो मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की. मैं एक दो दफ़ा जो जाबित थे उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई उनसे, तो उन्होंने मुझसे कहा देखो बहन उख्ती, होता ये है कि जो पीछे वाला होता है ना, जो पीछे वाला है उसकी गलती है. फिर
1: तो
0: आप कुछ भी
1: था ना?
0: अच्छा वो आपके पीछे था और आप कौन से ट्रैक पर थे, ये भी एक वो मामला होता है.
1: जी मैं मिडिल ट्रैक पे था, वो लेफ्ट हैंड था मेरे और मेरे पीछे था.
0: सही.
1: इंडिकेटर मैंने लगाया था लेफ्ट का, मैं राउंड अबाउट से एग्जिट 3 लेना था, उसने स्ट्रेट जाना था.
0: सही.
1: उसने पीछे से ला के मेरी ड्राइविंग जो डोर था ना उस पे आगे गाड़ी मारी.
0: सही. ओए होए, ये तो कुछ साइड वाला, मतलब आपका साइड पे लगी थी आपकी गाड़ी.
1: जी हाँ बिल्कुल.
0: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला रखे सबके साथ. अब मैं इस चीज के ऊपर तफसरा तो करने से रही, क्योंकि आई एम नॉट
1: मैं जानता हूँ आप क्यों नहीं करना चाहती इस पर.
0: लेकिन देखें मैं यही कहूंगी, इन द एंड अल्लाह ताला आदिल है. अल्लाह ताला आदिल है, मैं यही कहूंगी. अब इसके ऊपर क्या ही बात की जा सकती है. इसके अलावा ट्रैफिक से हटकर कोई और बात हो जो आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह सुबह निकल रहे हैं
1: वेस्ट बे से. इसके अलावा मैं वेस्ट बे से निकल रहा था, एक लड़की माशाल्लाह और गाड़ी चला रही थी सेंटर में, और किसी को रास्ता नहीं दिया उसने. और सेंटर में कहाँ पे जो लाइन होती है ना.
0: हाँ जी.
1: जो
0: अच्छा हाँ, लाइन के बीच में
1: फर्क देती है.
0: अरे हाँ, हाँ. वो लेन के ऊपर ही चल रही. अच्छा ठीक है, बाजी लेन के ऊपर चल रही.
1: जी जी जी
0: ठीक.
1: वो दो लेन को जो है ना कवर करते हुए जा रही थी.
0: ओके.
1: हॉर्न दे रहे हैं, डिपर दे रहे हैं, पीछे काफी ट्रैफिक जैम हो रही है उसकी वजह से.
0: सही.
1: लेकिन वो हट नहीं रही. फिर मैंने पता नहीं कैसे रास्ता लिया इधर उधर से, और जब मैंने देखा तो वो एक लड़की थी.
0: मैंने देखा तो एक लड़की. आपका दुख इसमें तमाम हुआ जब मैंने देखा तो एक लड़की. फिर मतलब मुझे आपकी आपने जिस तरीके से बोला है ना, मैंने उस चीज को कंक्लूड कर लिया. फिर आपने दिमाग में ही सोचा होगा कि इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, रहने दो.
1: और आपको पता ना, कुछ भी हो जाए और किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा देना, लड़कियों का कसूर नहीं निकलता. कहते हैं आपको नजर नहीं आता, अंधे हो क्या.
0: अच्छा मैंने जो है ना, मैंने एक ट्रैफिक पुलिस वालों से एक बात सीखी थी, जो रैश ड्राइविंग वगैरह होती है ना. अब फिर से मैं वही बात कह रही हूँ कि आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट, लेकिन मुझे ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक बात बताई थी कि अगर कोई ऐसी रैश ड्राइविंग करता हुआ आपको नजर आए, या कुछ ऐसा सीन हो कि जिसके अंदर कुछ थ्रेट हो, कुछ ऐसा हो, तो आप जो हो ना फ्रंट वाली गाड़ी की वीडियो लेकर आप अपने पास वाले स्टेशन जा सकते हो, पुलिस स्टेशन, इफ इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग. तो वो एज अ प्रूफ काउंट होता है और उसके खिलाफ फिर पर्चा कटता है कि ये जो है ना इसकी ऐसी ड्राइविंग थी और किसी ने रिपोर्ट किया है. ये भी होता है क्योंकि देखें सेफ्टी का, चाहे आदमी ड्राइव कर रहा हो चाहे औरत ड्राइव कर रही हो, दूसरों के बच्चे भी होते हैं गाड़ी में. खुदा ना खास्ता अगर आप अटेंटिव नहीं हो रोड पर तो बहुत बड़े बड़े जानी नुकसान हो जाते हैं किसी की भी गलती की वजह से. आपकी गलती नहीं भी होगी.
1: कल मेरी छुट्टी थी. जी, तो जी. मैं डेली आपको सुनता हूँ. तो कल मेरा बड़ा बोर दिन गुजरा है.
0: कल तो मैं ऑन एयर थी कल. अच्छा कल आपकी छुट्टी थी. अच्छा अरे हाँ. भाई हमारी मोबाइल ऐप यूज करे ना QMC नाउ.
1: ओके चले.
0: हमारी एक मोबाइल ऐप है QMC मतलब कतर मीडिया कॉरपोरेशन. QMC के नाम से मोबाइल ऐप है और उसके अंदर आपको तमाम के तमाम कतर मीडिया कॉरपोरेशन के अंडर जितने भी आप कह लें कि मीडिया आता है ना सारा, चाहे वो विजुअल हो चाहे वो ऑडियो हो, अरेबिक भी आते हैं, इंग्लिश भी आते हैं, यहाँ तक कि कुछ चैनल्स भी हैं उसके अंदर. आपको हमारा रेडियो उसमें मिलेगा और आप घर पे बैठे हुए आराम से, यूँ तकिए के ऊपर बैठे हुए मतलब यूँ सर टेक कर बैठे हुए आप आराम से सुने. टेंशन नॉट, हम आपको बोर नहीं होने देंगे. चलिए जी, आपसे बात करके अच्छा लगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज.
0: तो भाई साथियों एक काम करते हैं, मैसेजेस की तरफ आ जाती हूँ. जलेली जिनके मैसेजेस नहीं पढ़े गए फिर वो शिकायत करेंगे कि भाई सफा जी फयाज सैयद क्या कह रहे हैं. कह रहे हैं सफा जी आप तो पूरी पूरी गजनी है. देखिए मैं इस बात को एडमिट करती हूँ कि हाँ मैं हूँ गजनी, बट प्लीज डोंट एडॉप्ट हिज हेयर स्टाइल. आपको पता है मैं सेकेंड ईयर में थी. अच्छा मैं फिर एक बात बताऊंगी तो कहेंगे फिर ये देर इज अ रीजन कि मुझे मेरे खानदान वाले कहते हैं कि इससे कोई बईद नहीं. मैं सेकेंड ईयर में थी और मैं मुझे ना उस टाइम पर टाइफाइड हो गया था. तो टाइफाइड में जाहिर बात है वो आता है बुखार वगैरह. तो मैंने अपने आप को गंजा करवा लिया था क्योंकि मेरे बाल जो थे ना वो घुटनों से भी नीचे थे उस टाइम पर. हरे भरे खेती अपनी थी तो मैंने अपने आप को गंजा करवा लिया था. अब्बा कहते हैं, मेरे अब्बा 3 दिन बोलते रहे, कहते हैं वाकई में. मैंने कहा भाई ये देखो गुच्छों में बाल उतर रहे, मुझसे ना संभाले जा रहे. अब्बा ने पहले कंधे तक काटे, फिर अब्बा ने कहा अच्छा तू वाकई में कह रही है. मैंने कहा हाँ. फिर थोड़े से और काटे, फिर अब्बा का खुद का दिल दहलना शुरू हो गया. बेटा वाकई में? मैंने कहा ऐसे बालों को रख कर फायदा ही क्या कि जिनकी सेहत मेरी अफेक्ट हो रही है उससे. बुखार इतना ज़्यादा होता था टाइफाइड में तो मैं गंजी हो गई थी. और मैं मज़े की बात ये मैं जो ना अपने कॉलेज में ऐसे ही जाती थी, मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता था. हूँ तो हूँ, अब क्या कर सकता है. मैं एक टाइम पर गजनी भी रह चुकी. तो ये मामला रहा है अपना कुछ ऐसा दिमागी तवाजुन जो है ना. लोग मुझसे तभी पूछते हैं कहीं बचपन में गिर विर तो नहीं गई थी, कोई चोट वोट तो नहीं लगी थी, बहन भाई ने कोई डंडा शंडा तो नहीं मार दिया था सर के ऊपर. मैंने कहा नहीं, अब थोड़ी तबीयत संभल गई, अब पहले से आराम है. अच्छा भाई हमारे साथ और कौन है? मुबीन भाई हैं. मुबीन भाई क्या कह रहे हैं? सॉरी टू से बट भाई सही बोल रहे हैं. मैं 12 घंटे ड्राइव करता हूँ और हमसे अच्छा ठीक है ओके. बहुत सारे देखें भाई, मैं आखिर में ये कहूँगी कि मैं कोई यहाँ पर वो नहीं बैठी हुई तबसरा करने वाली ट्रैफिक के ऊपर. मैं ये कहूँगी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. जान है तो जहान है. अगर कोई भूल चूक किसी से हो जाती है, अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है तो आप ये बोलकर छोड़ दें आपका अल्लाह राज, अल्लाह ताला जो है ना वो आदिल है, बस ये बोल दिया करें. हसबुन अल्लाह व नेमल वकील, बस खलास. मैं तो यही बोलकर निकलती हूँ. जब मेरा दिल भारी रहता है ना किसी चीज़ पर तो मुझे एक ही चीज़ काम करती है और लिटरली मुझे वो चीज़ इतनी काम डाउन कर देती है कि फिर मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो भाई एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. है कोई कि चले गए? बहुत दूर चले गए, चांद से भी ज़्यादा दूर चले गए हो क्या जो सिग्नल नहीं आ रहे? भाई जो भी है ना पता नहीं कौन है, अब इनकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे. तो भाई देखिए हमारे साथ और कौन है, और कौन है, और कौन है? खादिर, खादिर अब्दुल हादी हैं. क्या कह रहे हैं जी? हाँ ये बात अपनी अच्छी गई. ट्रैफिक का प्रॉब्लम सर्वर भाई को मालूम है, आने दो सर्वर भाई को. 15 तारीख को आने दो भाई, आने दो, पकड़ते हैं सारी डिटेल निकलवाएंगे इनसे. बड़ी छुट्टी मनाकर आ रहे हैं ना, मुझे तो जहर सी हो रही, छुट्टी मनाकर आ रहे हैं. अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ? शेख इरफान हैं. क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम. आज कुछ न्यू डायलॉग है, अल्लाह की रजा में राजी. अच्छा अरे भाई मैं रोज़ बोलती हूँ, मैं दिन रात ही बोलती हूँ अल्लाह की रजा में राजी. मैंने खुद कहीं से सीखा था ये. और क्या है? मेकअप की बात होगी तो फीमेल लिसनर्स कॉल करेंगी. ट्रिगरिंग पॉइंट है ये. देखिए ये मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग ऐसे पकड़ते हैं हम लोगों की दुखती रख को. अच्छा जी मोहम्मद यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं? सफा जी आज ठीक है. मोहम्मद यूसुफ भाई आज जो है ना, आज मामला कुछ डिफरेंट है. तो आज नहीं, इंशाल्लाह संडे से. तो और कौन है हमारे साथ? नजीर भाई हैं, नजीर अहमद कह रहे हैं कि भाई मेरा ये है कि

आई फॉरगेट माई कीज एवरीवेयर. नजीर भाई ये जो आपका और मेरा मामला है ना चाबियां भूलने का, मुझे ऐसा लगता है हमारे हिस्से में नजीर भाई हमारे हिस्से में एक खजाना आना था, ठीक है, वो कारून का खजाना नहीं लेकिन वैसे एक खजाना आना था. मामला ये है कि हमें भेजा गया था उस खजाने की चाबी के साथ, आप और मैं जो है ना वो चाबी कहीं भूल आए. क्योंकि मेरा भी यही मामला है, मैं चाबियां ऐसे गुम करती हूँ, लोगों के सरों से बाल गिरते हैं ना, मुझे आप बालों की क्वांटिटी में चाबियां पकड़ा दें, मैं सबकी सब गुम करके दिखा दूंगी आपको. मेरे पास एक इकलौती गाड़ी है, उसकी चाबी मैंने कितनी दफा गुम नहीं की ये मुझसे पूछे कोई. अब हाल ये कि घर वाले एक एक मोड़ पर एक एक कदम पर याद दिलाते हैं, बेटा गाड़ी की चाबी रखी है, अच्छा बेटा गाड़ी की चाबी रखी है, अच्छा ये हो गया बेटा गाड़ी की चाबी, अच्छा बेटा मोबाइल, मोबाइल लोगों को कितना अजीज है अपना भाई, सांस नहीं ली जाती लोगों से मोबाइल के बगैर. मैं वो शख्स हूँ जो अपना मोबाइल हर जगह फेंक कर आ जाती हूँ, हर जगह, बस कुछ ऐसा ही सिस्टम है अपना, कुछ कुछ शॉर्ट सर्किट है. अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, कौन है, वेलकम टू कतर आफ्टर वेकेशन टू बाशा भाई. बाशा भाई कहाँ है, फ्रॉम अब्दुल नाफे एंड कैसर अब्बास. अच्छा जी वेलकम टू कतर, ये मुझे को बोला जा रहा है भाई, मुझे तकरीबन एक से डेढ़ महीना हो गया है वेकेशन के बाद आए हुए. खैर तो है, या मैं लेट चल रही हूँ या इनके पास टाइम जोन अलग है, इतना अलग है. चलो भाई एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें. 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज एंड 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल. और मैं आपको ये बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आज हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि सुबह सुबह उठते के साथ आपका दिन किस चीज़ की वजह से आपको लगता है ख़राब हो जाता है. कभी कभी होता है ना दिन ख़राब हो जाता है भाई, दिमाग की दही बन जाती है, दही से लस्सी बन जाती है. ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुली होती है सुबह को कि आपका दिन किसी तरह से ख़राब हो जाए और आपको ऐसा लगता है कि बेशक दिन अच्छा ही जाए लेकिन आपको ऐसा लगता है ये काम हो गया ना बस अब तो मेरा दिन जाया ही गया समझो, क्या कहते हो, ब्रेक ले ली जाए. ब्रेक लेते हैं छोटी सी. इतना सोना, हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्यों अरजीत भाई, थैंक यू, मेरी तारीफ कर रहे. मैं अपनी तारीफ सुन लूँ फिर वापस आती हूँ. सुनते रहे एफ एम 107 पे सन एंड साउंड और एफ एम 107 दिल से देसी. वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम, अपने लिए गाने सुनना सीखा करो. ऐसा यूं इमेजिन करो जैसे आपको कोई कह रहा है, अच्छा फील होता है.

0: देखो भाई, इतना सोना इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास रीस्टार्ट का बटन है, मेरे मूड के रीस्टार्ट का। आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन एफएम 107।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: तो भाई, कबीर भाई की आवाज में भी आपने सुन लिया, कबीर भाई की आवाज भारी लगती है, तभी मैंने कबीर भाई की आवाज में बनवाया है। लोग ज्यादा सुनते हैं फिर कि हाँ भाई, कबीर भाई कुछ बोल रहे हैं। तो भाई साथियों, वेलकम बैक, और जाने का टाइम भी आ गया है। देखिए भाई, जाते जाते ना, पहली बात तो ये मैं कहूँगी कि वीकेंड है, अपने आप को लाइट मोड पर रखें, जिंदगी के साथ एक आप कह लेंगे एक समझौता कर लें, समझौता कह लें या एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें या कुछ भी ऐसा समझ लें। ये याद रखें कि भाई, लेसन बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा, कि सुबह की एक छोटी सी जो ग्लिच होती है ना हमारी लाइफ में, वो पूरे दिन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होती। लाइफ कभी कभी हैंग जरूर हो जाती है हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल की तरह, लेकिन याद रखें इसको रीसेट या रीस्टार्ट करने का जो तरीकेकार है ना, वो आपके आपके हाथ में होता है। याद रखिए, कभी कभी दिन खराब नहीं होता, बस ये कह लें कि ट्रेलर जो होता है ना दिन का, वो धमाकेदार होता है। सुबह चाय गिर जाए, कहीं चाबियां गुम हो जाए, बच्चों की चिक-चिक हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी यूनिवर्स आपको मिलकर जो है ना वो एक मीटिंग में बैठी हुई है और आपके खिलाफ कुछ मुद्दे इश्यूज बना रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सोचें, अच्छा होगा। इन शॉर्ट, अच्छा सोचें, अच्छा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाजत। इंशाल्लाह आपसे संडे को मुलाकात होगी, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक फिर धमाल करेंगे, और इंशाल्लाह फिर अगले से अगले हफ्ते सर्वर भाई भी हमारे साथ होंगे। तो भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ये याद रखें कि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रखता, वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा, है कि नहीं? पते की बात करती हूँ मैं। देखो तो फ्री की बात है, मतलब फ्री की एडवाइस है, अपना ख्याल रखो ताकि दूसरों का ख्याल रखने के लायक रहो। क्योंकि मैंने अक्सर औकात लोगों को ये बोलते हुए सुना है, भाई हम तो जिंदगी दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने अपनों के लिए जी रहे हैं। जियोगे तभी ना जब अपने आप को सेट रखोगे। जान है तो जहान है, सेट रखो, खुश रहो, और छोटी छोटी बातों से चिड़ा नहीं करो। वैसे देखो कौन बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ। मेरे घर वाले ना सुन ले ये बात। चलो भाई, चलो चलो, सुन रहे थे आप सन एंड साउंड विद सफा ऑन एफएम 107, दिल से देसी।

क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरा

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक
2: देखिए बात सारी ऐसी है कि इस टाइम मेरी आने की आदत है तो नहीं लेकिन अभी कुछ हफ्तों से हर थर्सडे को आना होता है क्योंकि अमीन भाई की प्रॉक्सी लगानी है तो भाई अमीन जल्दी से आ जाओ प्लीज मैं जी दोहा वाला कबीर FM 107 पे स्पोर्ट्स राउंड अप आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड इस टाइम आता है थर्सडे को और शाम में भी ऑफ कोर्स ये मेरी पहली शिफ्ट है एक तरीके से और टेक्निकली शिफ्ट में स्पोर्ट्स की बातें होती हैं भर भर के लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि मेरे पास जो पहला मैसेज आया है वो आया है हैप्पी बर्थडे किसका बर्थडे ब्रो मेरा भी नहीं है अभी बहुत टाइम मोहम्मद भाई पर वालेकुम अस्सलाम यूसुफ भाई लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम यूसुफ भाई क्या हाल है और मकसूद भाई लिखते हैं वेलकम बैक हैप्पी वीकेंड मैं तो भूल ही गया एक्चुअली मैं दोपहर में फील नहीं आती है ये मैं अपने शो में 5 बजे बोलूँगा बढ़िया करके वीकेंड ठीक है भाई और अभी तो है सबसे पहले जो स्पोर्ट्स राउंड पे हमारा काफ़ी सारी खबरें हैं जो कतर से भी जुड़ी हुई हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स हैं तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा कतर से ही अलसद की जो टीम है उसमें एक बहुत बड़ा सिलेक्शन हुआ है सो अलसद ने कतर नेशनल टीम गोलकीपर अबू बकर मोहम्मद हसन को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया है एक तो ये बहुत बड़ी बात है क्लब का जो मकसद है ना वो इस बार AFC चैंपियनशिप लीग और कतर स्टार्स लीग दोनों टाइटल्स को डिफेंड करने का है तो प्रेशर कती ज़्यादा है मैंने मिलता हूँ कई लोगों से और उनसे पूछता हूँ जो स्पेशली जो लोकल्स हैं कि उनकी कौन सी फेवरेट टीम है और ज़्यादातर मुझे अलसद ही सुनाया था ज़्यादातर एंड जब ये टाइटल डिफेंड करने की बारी आती है तो बहुत प्रेशर होता है भाई आई डोंट सी देम नॉट विनिंग दिस बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस ये भी एक बहुत बड़ी खबर है इसके अलावा अल शमाल ने उरुग्वे के

टैलेंटेड लेफ्ट बैक को साइन किया है ताकि नए सीजन से पहले जो उनका डिफेंस है वो और भी मजबूत बनाया जा सके। एंड इसके बाद एक और फुटबॉल की खबर है कतर से ही जुड़ी हुई। कतर अंडर 23 टीम को एशियन गेम्स फुटबॉल टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल ग्रुप मिला भाई। हलवा नहीं है इस बार, मुश्किल होने वाला है। कतर का मुकाबला एक तो साउथ कोरिया से है, उसके बाद सऊदी अरेबिया से भी होने वाला है, और ये मुकाबला तो भाई बहुत टफ है। ठीक है, टक्कर का मुकाबला किसे नहीं पसंद है, लेकिन हार्ट बीट ऐसे धकड़ धकड़ करे है। दोनों मैचेस नॉकआउट क्वालिफिकेशंस के लिए बहुत अहम होने वाले हैं एंड ऑल आईज ऑन कतर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी एक मैसेज है, क्या है मेरे पास, एक सेकंड देख लूँगा। मोबाइन भाई बहुत सारा प्यार भाई को, भाई ने दिल लगाया, हम भी दिल वापिस भेजेंगे। एक मैसेज, कीप रॉकिंग टिल योर प्रोग्राम फिनिशेस टिल 7 PM कंटिन्यू। मेरा भाई कह रहा है मकसूद भाई कह रहे लगे रहो, 7 बजे तक माइक तुमने छोड़ना नहीं है। भाई मोहब्बत तो अच्छी है, I don't mind. अच्छा, इसके अलावा हैंडबॉल की टीम की तरफ से भी खबर आई है। सो कतर नेशनल हैंडबॉल टीम जो डिफेंडिंग एशियन चैंपियन है अपना टाइटल इस बार दिफा करेगी, और टीम को जापान, चाइना, हांगकांग इन सब के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। ये नाम सुन के लगते हैं कैसे क्या होगा भैया, बट एनी वे जापान, चाइना और हांगकांग आई थिंक डिफेंडेबल है अभी भी। ऑल द बेस्ट टू कतर टीम, क्योंकि कतर की नेशनल हैंडबॉल टीम बहुत स्ट्रांग है भाई। कतर का टारगेट एक एशियन टाइटल जीतना है और ओलंपिक क्वालिफिकेशन की रेस में मजबूत पोजीशन बनाना है। सो वी विश आर टीम, कतरी टीम, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट। बीच वॉलीबॉल से भी खबर है। जॉर्डन में चलने वाले जो वेस्ट एशिया बीच वॉलीबॉल टूर है वहां से खबर आई कि उसमें कतर की मेन्स टीम ने लगातार दूसरी जीत हासिल की है। बिना साउंड इफेक्ट वाली असली तालियां बजाना चाहूंगा मैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा मुसल खैर और मोहम्मद इहाब ने इराक को 2-1 से हराकर नॉकआउट स्टेज के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। एंड दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अभी खेलों का जो सीजन है वो आने वाला है। और कुछ इस बीच मैसेजेस आए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये कह रहे हैं कबीर भाई, भाई आप इस वक्त कैसे, भाई इस वक्त क्योंकि अमीन भाई छुट्टी मना रहे हैं इसीलिए तो उनकी प्रॉक्सी लग रही है भाई, मेरी प्रॉक्सी में अमीन भाई से लगवाऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, एथलेटिक्स की तरफ जरा बढ़ते हैं। तो एथलेटिज्म दिखाते हुए कतर एथलेटिक फेडरेशन ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के लिए 6 एथलीट्स की टीम अनाउंस की है। ये लिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। ये टूर्नामेंट जो है वो USA में हो रहा है और कतर को उम्मीद है, एंड मुझे बड़ी उम्मीद है कि यंग एथलीट्स इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हासिल करेंगे और नाम रोशन करके आएंगे। कई सारे स्पोर्ट्स में कई सारे टर्न अराउंड हो रहे हैं एंड आई रियली होप कि ये भी एक अनएक्सपेक्टेडली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आए कतरी टीम के लिए। जब मैराथन की बात किया तो मैराथन्स तो यहाँ पर भी होते रहते हैं, मगर एक और मैराथन की खबर है। कतर ईस्ट टू वेस्ट अल्ट्रा मैराथन 2026 का ऐलान कर दिया गया है और 90 किलोमीटर है भाई। म्यूजिक रोको, मैं तो यहीं सांस फूल गई मेरी सुन के। 90 किलोमीटर की जो ये जो रेस है ये 27 नवंबर को होगी और दुनिया भर के एंड्योरेंस रनर्स इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। 90 किलोमीटर भाई, अरे भाई साहब, कुछ ही दिन पहले कोई मुझसे कह रहा था आ जाओ भाई हमारे साथ भाग लो, 1 किलोमीटर की तो बात है। ये 90 सुन के 1 किलोमीटर मुझे भारी लग रहा है, उल्टा इफेक्ट हो रहा है मेरे ऊपर। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम गुलफाम खान साहब। और इसके अलावा जो खबर आ रही है वो खबर है एशिया बीच गेम्स की तरफ से। तो कतर ने एशियन बीच गेम्स सानिया 2026 के लिए 34 एथलीट्स की टीम अनाउंस कर दी है। टीम 7 स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाली है। इसमें शामिल है बीच वॉलीबॉल, बीच बास्केटबॉल, बीच हैंडबॉल, सेलिंग, एक्वाथलॉन, जिउजित्सु और रेसलिंग। रेसलिंग आजकल मैं काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। वो बचपन का जो वो टाइम था, नॉट इवन बचपन बट टीनेज वाला जो टाइम था जब हमें लगता था अंडरटेकर और किन भाई हैं। तो आई स्टॉप्ड फॉलोइंग इट फॉर अ वाइल, मुझे लगा हमारे सारे फेवरेट तो जा चुके बचा कौन है, बट रिसेंटली आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट अगेन। एक मैसेज, भाई कौन सी बड़ी बात है, मुंतजा पार्क नज़दीक है। क्या कहना चाह रहे हो शेख इरफान अल कासमी साहब, क्या कहना चाहते हो, मुझे भागते हुए देखना चाहते हो आप, क्यों चाहते हो मेरी सांस फूले। इरफान भाई आप तो अच्छे आदमी हैं यार, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी साइड में हैं।
लग नहीं रहा आप मेरी साइड ले रहे हैं आज। मुझे भाई कतर स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हो रहा है क्या, मुझे भी अप्लाई करना है। नहीं भाई मैं सिलेक्शन की रिपोर्ट नहीं दे रहा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या खबर चल रही है। अगर ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बता रहा होता तो बहुत बड़ी बात होती मेरे भाई, लाइन लग जाती। तो मैं सिलेक्शन की रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ जो खबरें आ रही हैं। जसविंदर सिंह जी

का फैसला किया है। इसके अलावा जयदेव जो इन्होंने दोबारा सक्सेक्स के लिए काउंटी चैंपियनशिप खेलेंगे इस बात की उन्होंने खबर दी है और अगस्त के आखिरी में के सिलेक्शन में वो नजर भी आने वाले हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। सो प्रैक्टिस मैच में स्पिनर कोरी उन्होंने 6 विकेट्स लेकर भाई सबकी अटेंशन हासिल कर ली और उन्होंने नेथन लियोन का मुस्तकबिल का रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है ऑलरेडी, सो इट्स इन द न्यूज़ राइट नाउ। आई डोंट नो इफ यू फॉलोइंग एनीथिंग एट ऑल। रिसेंटली बात कर रहा था कि टेस्ट क्रिकेट लोग पता नहीं देख रहे हैं छोड़ चुके हैं और जब भी उतना लगता है अरे 5 दिन बैठ के कौन देगा, इट इज़ बिकॉज हमारा टेंशन स्पैन ख़त्म हो गया है। हम बस चाहते हैं कि टेस्ट मैच को कोई 30 सेकेंड में बता दे क्या क्या हुआ है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं भाई, बटलर का नंबर है तो पहुँचेगा, रिटायरमेंट कब लेंगे भाई। कुछ खिलाड़ी पता नहीं क्या, मुझे वैसे लगता है इरफान भाई प्लेयर्स, सम प्लेयर्स इन दिस क्रिकेट और एनी अदर फुटबॉल और एनी अदर स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर, उनका कुछ अलग हिसाब की तरह बताया। आप एक रिटायरमेंट एज ना सेट कर ही नहीं सकते। मैं भी कभी बार सोचता हूँ यार ये तो जल्दी रिटायर्ड हो गए, चलो ठीक है अपने करियर के टॉप पे थे रिटायर्ड हो गए, पर कुछ खिलाड़ी मानते ही नहीं है भाई, मानते ही नहीं है, क्योंकि उनका आई थिंक एक सर्टन गोल होता है एंड दे डोंट केयर, जब तक हड्डियाँ मजबूत चल रही हैं तब तक वो खेलते रहेंगे भाई। और कुछ खिलाड़ी फिर ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि अब बिल्कुल टॉप पर हैं एंड दैट इज़ द राइट टाइम टू रिटायर। कुछ इसमें गलत और सही नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई फील कि जब आप, मेरा ये ओपिनियन है, जब आप अपने करियर के बिल्कुल पीक पे होते हैं दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कैन थिंक अबाउट इट। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ऐसा खेल रहे हैं कि कोई आपका नाम ख़राब हो रहा है और रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में आप लगे हुए हैं, तो उसके बाद रिकॉर्ड बन भी जाए तो इट डज नॉट रियली होल्ड दैट वैल्यू। फिर लोग कहते हैं हाँ इनको तो रिटायर होना ही था, तो हो गए अब अच्छी बात है, वी विल मिस हिम एंड ऑल, बट आई थिंक राइट टाइम टू टेक रिटायरमेंट स्पोर्ट्स में स्पेशली। आई फील जब आपका करियर एकदम आप पीक पे होते हैं एंड वो शोहरत बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ जो आफ्टर रिटायरमेंट शोहरत होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद कोई पूछेगा ही नहीं तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। सबसे प्राइम एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, वो रिटायरमेंट का याद है आपको, वो पूरा का पूरा जो वीडियो था आज तक लोग देखते हैं ऑन रिपीट, वैसा इतना बड़ा रिटायरमेंट और उसके बाद जो उन्होंने हासिल किया है, मतलब पहले भी ऐसा नहीं कुछ हासिल नहीं किया था, इज़ जस्ट बियॉन्ड क्रिकेट राइट नाउ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द रिटायरमेंट एट द राइट टाइम। बट देखते हैं ये वाले खिलाड़ी कब कहाँ क्या लेते हैं, दैट इज जस्ट माई ओपिनियन गाइस। टेनिस की तरफ बढ़ते हैं तो कैनेडियन ओपन में मुकाबला भाई जोरों शोरों से चल रहा है और एलेक्स एला ने टेनिस और टेनिस लेजेंड वेनस विलियम्स डबल्स कैंपेन का आगाज कर रही हैं, ये दोनों साथ में होंगी, सो इट्स गोना बी अमेजिंग। इसके बाद कार्लोस अल्कराज इंजरीज के बाद धीरे धीरे कम बैक कर रहे हैं और US ओपन से पहले अपनी फिटनेस पर फोकस कर रहे हैं, सो लेट्स सी। फैंस को बड़ी उम्मीद है, लास्ट टाइम व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट हिम हमने कहा था कि आई डोंट थिंक सो कि उनकी अभी वापसी हो पाएगी, बट अभी खबर आ रही है कि इंजरीज के बाद अभी धीरे धीरे उनका कम बैक जारी है और उम्मीद है कि US ओपन से पहले पहले अपनी फिटनेस पर वो ध्यान दे के फोकस करके ही माइट मेक अ कम बैक, सो लेट्स होप। इसके बाद टैलोन ग्रिस्पोर ने टूर्नामेंट में टॉप सीड एलेक्जेंडर को हराकर बड़ा अपसेट कर दिया भाई, मामला एकदम ख़राब कर दिया है। तो टेनिस की दुनिया से जुड़ी हुई सारी खबरें भी आपको इसी हमारे स्पोर्ट्स राउंडअप में मिलेंगी। इन केस यू फॉलोइंग टेनिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अपने फेवरेट खिलाड़ी बताइएगा। मुझे लगता है कि टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें फेवरेटिज्म मतलब फ्रॉम द फैंस इटसेल्फ बड़ा अलग है बाकी स्पोर्ट्स से, बड़ा ही अलग है। आई नो ये बहुत क्या कहते हैं सब्जेक्टिव नहीं कहूँगा, ये ऐसी चीज़ है ना कि क्रिकेट में चलो आप देखते हैं कि हाँ इनके तो सारे के सारे फैंस हैं, हाँ इनका नाम आया तो इनके तो बहुत सारे फैंस हैं। टेनिस में कुछ अलग हिसाब किताब है, कुछ लेजेंड्स के नाम बिल्कुल टॉप पर है और फिर लोग अपने फेवरेट्स चुन लेते हैं एंड द स्टाइल ऑफ प्ले द वे दे टॉक एवरीथिंग मैटर्स। टेनिस में बहुत बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जब आप किसी के फैन बन रहे होते हैं, दैट इज़ वॉट आई फेल्ट। मैं एक दो लोगों को जानता हूँ जो टेनिस के बड़े फैन हैं, बट दैट इज़ जस्ट माई ओपिनियन। बाकी फार्मूला 1 की तरफ चलेंगे, सो टीम्स अगले ग्रैंड प्री की तैयारी में मसरूफ हो चुकी हैं, सारी टीम्स लगी हुई हैं और चैम्पियनशिप रेस और डेवलपमेंट अपडेट्स पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कतर में भी इंशाल्लाह जब नवंबर में यहाँ पर फार्मूला 1 आने वाला है वापस, इट्स गोना बी ह्यूज। लुसेल सर्किट वापस से बिजी होने वाला है और इस बहाने
एक नए खेल के बारे में जानने को मिल जाता है. आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मोटो जीपी के बारे में थोड़ा बहुत तो वीडियो गेम से सीखा, बाकी भाई कतर में ही सीखा, समझा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सा खिलाड़ी टॉपर है, कौन सी टीम है, क्या होता है, और वैसे ही फॉर्मूला वन के बारे में जानने को मिला. सो आई एम रियली ग्लैड कि इतने सारे खेल कतर में होते रहते हैं, धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है. भाई फुटबॉल का एजुकेशन यहीं से मिला है, वर्ल्ड कप का. वर्ल्ड कप के बाद पता लगा कि अच्छा ओ ऐसे होता है, ऐसे होती है पेनल्टी, अच्छा ठीक है. तो या इसके अलावा बैडमिंटन की तरफ बढ़ेंगे ज़रा, जिस खेल से मुझे बहुत डर लगता है, आज तक सीख नहीं पाया, आई डोंट नो व्हाई. जज मत करना मुझे प्लीज़, जज मत करना. सो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का ड्रॉ अनाउंस हो चुका है और पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक और चिराग को मुश्किल ओपोनेंट्स मिले. मुझे तो खुद नर्वसनेस हो रही है जिस हिसाब से इनका ओपोनेंट आए, पता नहीं इस बार क्या होगा. पर इसकी वजह से इंडिया के लिए टूर्नामेंट चैलेंजिंग हो सकता है थोड़ा सा. और सारी नज़र टिकी हुई है पीवी सिंधु से, बहुत सारी उम्मीदें हैं और लक्ष्य सेन से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है. बट जो जो ओपोनेंट्स हैं भारी वर्ग में भाई, हाँ बहुत हैवी ओपोनेंट्स इनके सामने आए. तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. उसके अलावा गोल्फ की तरफ बढ़ते हैं. गोल्फ पहले हम कहते रॉइसो का खेल है, रॉइसो का. सो विंडम चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है और टॉप गोल्फर्स फेडेक्स कप पॉइंट्स हासिल करने के लिए मुकाबला कर रहे हैं. तो ये इसके अलावा बॉक्सिंग की तरफ बढ़ूंगा मैं. तो आयरिश बॉक्सर जो वार्ड के करियर की जर्नी फिर से हेडलाइंस में है, उनके कमबैक की स्टोरी और प्रोफेशनल बॉक्सर जो बॉक्सिंग सफ़र है उनका, वो बहुत सराहा जा रहा है. इनफैक्ट देर इज़ दिस शॉर्ट मूवी विच इज़ गोइंग टू बी मेड ऑन हिम जो वार्ड पे. और बॉक्सिंग में लेजेंड्स वैसे तो बहुत सारे हैं, मगर रीसेंट टाइम्स में जो वार्ड ने काफ़ी अपने करियर को इस तरीके से उठाया कि लोगों की नज़र उन पर टिकी हुई है. एंड बास्केटबॉल से खबर है. सो WNBA सीजन जारी है और आज दो अहम मैचेस शेड्यूल्ड हैं जहां प्लेऑफ रेस मजीद बहुत दिलचस्प होती जा रही है. एथलेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे तो यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 10 अगस्त से बर्मिंघम में शुरू होंगी और 50 से ज़्यादा मुल्कों के 1,500 से ज़्यादा एथलीट्स हिस्सा लेने वाले हैं. सो यस, आप बताइए आप किस खेल पर अभी नज़रें टिकाए हुए हैं. आर यू वॉचिंग एनी स्पोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, क्या चल रहा है? बिकॉज क्रिकेट के अलावा अगर आप कोई खेल दिख रहे हैं तो मुझे भी भाई अपडेट दीजिए, क्या आपकी नज़रें हैं. कुछ लोग कुछ गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग कुछ खेल पसंद आते हैं, हो सकता है फुटबॉल खेलते हैं बट यू ऑल्सो लाइक टेनिस. तो प्लीज़ लेट मी नो. बाकी एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये कहने कबीर भाई आप इस टाइम पर आ गए मेरे फेवरेट आरजे आने के लिए, थैंक यू. अरे दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. और एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं फुटबॉल ही देखता हूँ मेनली और क्रिकेट को फॉलो करना अभी शुरू किया है. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, तो मेरा ज़्यादा कनेक्शन फुटबॉल से रहा है. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड भाई. क्रिकेट की तो एक और खबर है ना, अच्छा क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान. हाँ तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के वो 3 टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करें ना, तो वो जो 3 टेस्ट सीरीज़ है वो तो 19 अगस्त से शुरू होगी ना, उसमें तो थोड़ा सा टाइम है अभी. सो जो रूट दोबारा इंग्लैंड की कैप्टनसी संभालेंगे वो आपने खबरों में देख लिया होगा, और पाकिस्तान की जो हिदायत है वो बाबर आजम करेंगे. दोनों टीम्स भाई तैयारी तेज़ी में है, बहुत ख़तरनाक. मैं बताऊँ, बाबर आजम बहुत ज़रूरी है. बॉब्जी भाई पर कुछ करना पड़ेगा बॉब्जी भाई को इस बारी, क्योंकि दिस इज़ ऑलमोस्ट हिज टेरिटरी है ना. मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, T20 उनसे नहीं हो रहा था, जो भी है, पीपल कंसिडर हिम टू बी अ टेस्ट प्लेयर. बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई इनको टेस्ट खिलाओ. मैं अपने पाकिस्तानी भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ, ये जब आपको पता लगा कि पाकिस्तान की इस बार जो है पूरी लीडरशिप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम के पास है, तो आपका क्या अंदर से दिल से क्या आवाज़ आ रही है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्योंकि ये होता है ना कि अरे पता नहीं मुझे, हाउ डू आई फील अबाउट इट. तो जितने अभी मेरे पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं, ज़रा बताइएगा कि ये बॉब्जी भाई जो हैं जब कैप्टनसी कर रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, ये 3 टेस्ट मैचों की जो सीरीज़ 19 अगस्त से शुरू होने वाली है, क्या आपके दिल में आ रहा है, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? बिकॉज एज एन इंडियन, आपका पड़ोसी मैं, यार मैं इस पर कुछ ओपिनियन दे नहीं पा रहा हूँ. मैं अभी मैंने रिसेंटली कोई टेस्ट क्रिकेट इतना फॉलो किया नहीं है, बट इतना मैं जानता हूँ जितने मैंने एक्सपर्ट्स को सुना है, इवन हमारे जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट अमीन भाई वो भी ये कहते हैं कि जो बाबर आजम है उन्हें बेसिकली टेस्ट में खिलाना चाहिए, बट कैप्टनसी देके खिलाना चाहिए, दैट इज़ समथिंग. वो फिर एक और कहते ना, एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है. आई कांट रियली कॉमेंट ऑन दैट, मगर मुझे ऐसा लगता है. तो मैं भाई जितने पाकिस्तानी सुन रहे हैं क्रिकेट के शायक हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा. बाकी एक मैसेज आया है, क्या लिखा है उन्होंने,
एक सेकंड कहाँ गया मैसेज। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया भाई, एकदम शानदार। ये सलमान भाई ने मैसेज किया, सलमान भाई थैंक यू सो मच। और इवा ने मैसेज किया है, ये पाकिस्तान से ही हैं, ये इकरम भाई लिख रहे हैं, कबीर भाई मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को टेस्ट में ही खिलाना चाहिए, और पिछले परफॉर्मेंस देख के तो मैं यही कह सकता हूँ कि कैप

अभी बढ़िया चल रहा है मामला, बट ये जो 19 अगस्त से जो है ना ये अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वहां पे लाइनअप बदलनी चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए या नहीं, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. क्योंकि अपनी टीम के लिए जज्बात भी होते हैं, अपने टीम की एनालिसिस भी होती है, और पीपल से कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई. बट एनी वे, बातों बातों में हम पहुँच चुके हैं इस शो के बिल्कुल आखिर में, खिलाई मेक्स पे. तो मैं तो आपसे मिलूंगा शाम को 5 बजे, और आज वीकेंड है, वीकेंड स्पेशल बहुत कुछ होने वाला है, सो आई होप कि आप उसके लिए भी तैयार हैं. सो 666-22-107 नंबर है. वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू. एंड बताइएगा कि आपके क्या प्लान्स हैं भाई आज के. और जैसे मैंने कहा, ये जो टेस्ट मैच वाली बात है, भूला नहीं भाई मैं, इस पे बात चलेगी, आई से तो नहीं जाने देंगे हम. 666-22-107 ये नंबर है. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, और दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. इंशाल्लाह शाम में मिलते हैं, तब तक जो है अपना ख्याल रखिएगा, एंड ये भी याद रखिएगा कि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं. मा सलामा.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक
2: चेक चेक चेक टाइम चेक इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के डेढ़ यानी इट्स टाइम फॉर
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी
2: Yes, my Desi audience, how are you? Happy wala weekend hai aap sabhi ko. हाँ जी तो कैसे हैं आप सब हाँ अस्सलाम वालेकुम एफएम 107 सुन रहे हैं आप मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता एस्केप रूम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है तो क्या वीकेंड्स के प्लान है देखो सारा कुछ मुझे जानना है 6622107 पर 6622107 पर और भाई मैं क्या करूँगी इस वीकेंड ये मैं आपको बताऊँगी शो के दौरान लेकिन अभी के लिए आज का चैलेंज बड़ा कमाल का है देखो मैंने वीकेंड का जिक्र किया और वीकेंड में एक चीज़ है जो बड़ी कॉमन होती है और वो है लजीज खाना पीना चाहे हमारे घरों में दावतें हों या हम किसी के घर में दावतों में जाएं या फिर हम कहीं और बाहर जाएं और गेट टुगेदर करें और मस्त तरीके से लजीज खाना खाएं ये तो मतलब वीकेंड में एक लाइमलाइट रहती है जो कि मेरे ख्याल से हर घर का एक इम्पॉर्टेंट वो कहते हैं ना रिचुअल है ट्रेडिशन कह सकते हैं सो यस इस वीकेंड मेरे साथ भी यही होने वाला है और आज का एस्केप रूम भी कुछ इसी तरह का है कि भाई देखो खाने पीने के शौकीन तो हम सभी हैं और गर्मियां चल रही हैं सो कोल्ड ड्रिंक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो चाहे ना चाहे लोग ज़्यादातर इन्जॉय करते हैं किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के साथ सो आज इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में गए हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एंड सडनली ऐसा हो कि आप वहीं उस फैक्ट्री का हिस्सा बन जाए सडनली आप वहीं कैद हो जाएं तो कैसे अपने आप को बाहर निकालेंगे बस यही आज आपको चैलेंज मिलेगा यही आज आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सो बी रेडी बी प्रिपेयर्ड क्योंकि एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आज के एस्केप रूम की सिचुएशन आपके सामने आएगी नंबर नोट कर लीजिए 6622107 6622107 अपने नाम के साथ हमें सही जवाब भी भेजिएगा जैसे जैसे हम आपसे सवाल पूछेंगे ठीक है पर अभी के लिए क्या करना है जस्ट लूजन अप योर सेल्फ और बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाइए क्योंकि आगे आएगी एक खतरनाक सी सिचुएशन लेकिन अभी एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना आपकी राहों में आपके मूड को रिफ्रेश करने के लिए सो एंजॉय इट स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: हाँ जी वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। तो मेरे सारे सीक्रेट एजेंट्स आर यू रेडी आज के एस्केप रूम के चैलेंज के लिए? तो आज आप कहाँ कैद हो गए? आज आप फंस चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े सोडा बॉटलिंग प्लांट में। उफ बट वेट, क्या आपने वो सुना? तेज अलार्म अचानक से बजना शुरू हो गया है। उफ ये अलार्म किस चीज के लिए बज रहे हैं? पहले ये अलार्म बज रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है इस फैक्ट्री में और फर्श पर हर जगह स्टिकी सिरप फैल चुका है और हमारी जायंट फिजोमैटिक मशीन बुरी तरह कांप रही है। उफ ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी ये जो फोम का एक पहाड़ है ये फट सकता है। इमरजेंसी एग्जिट्स प्रेशर सेंसर से लॉक हो चुके हैं। अगर हमें इस सोडा के तूफान से बाहर निकलना है, ठीक है, तो हमें समझना होगा कि हमारे पॉप में ये फिज कहाँ से आता है। देखिए ये जो फैक्ट्री का कमरा है, बड़ा सा कमरा, इसको डीप्रेशराइज करना है तो हमें एक एक करके क्लूज सॉल्व करने होंगे। तो सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। फिजोमैटिक बिल्कुल लाल हो चुका है और धमाका कभी भी हो सकता है। इस ओवरफ्लो को रोकने के लिए हमें उस इनविजिबल फोर्स को पहचानना होगा जो इन वैट्स के अंदर प्रेशर बना रहा है। सो क्लू नंबर वन आपके लिए ये रहा, मैं एक इनविजिबल गैस हूँ। ठीक है, मैं एक इनविजिबल गैस हूँ। इंसान मुझे हर बार एक्सहेल करते वक्त बाहर निकालता है और प्लांट्स मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेल करते हैं। जब मुझे हाई प्रेशर पर फ्लेवर्ड वाटर में पंप किया जाता है तो मैं लाखों छोटे टिकली बबल्स बनाता हूँ जो आपकी टंग पर जंप करते हैं। तो बताइए मेरा नाम क्या है? कम ऑन, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सही जवाब दीजिए

66221107 पर, 66221107 पर अपने नाम के साथ. तो क्लू नंबर वन एक बार फिर से आपके लिए दोहराऊंगी कि मैं एक इनविजिबल गैस हूँ. इंसान मुझे हर बार एक्सहेल करते वक्त बाहर निकालता है और प्लांट्स मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेल करते हैं. जब मुझे हाई प्रेशर पर फ्लेवर्ड वाटर में पंप किया जाता है तो मैं लाखों छोटे टिकली बबल्स बनाता हूँ जो आपकी टंग पर डांस करते हैं, जंप करते हैं. तो जल्दी से जवाब दीजिए और इस पहले पड़ाव को पार कीजिए, क्योंकि यहाँ इस सोडा की फैक्ट्री में आप फंस चुके हैं, जहाँ पर ये जो फिजोमैटिक मशीन है ये कांप रही है. कुछ टेक्निकल ग्लिच हुई है जिसकी वजह से ये चीज़ फट सकती है और हमें इस सोडा के फ्लड से बचना है. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड, सही जवाब दीजिए. सोचने के लिए मैं अब आपको एक म्यूजिकल ब्रेक पर ले जाती हूँ. भाई बहुत ही कमाल का गाना है, इसके बीट्स भी कमाल के और मूड भी कमाल का. तो वॉल्यूम बढ़ाइए, 66221107 पर इंजॉय कीजिए, मतलब इस नंबर के जरिए आप हमें मैसेजेस भेजिए. और अभी बने रहिए FM 107 पर.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और आज एस्केप रूम का जो चैलेंज है बड़ा कमाल का है कि हम फंस चुके हैं एक दुनिया की बहुत बड़ी सोडा की फैक्ट्री में। हाँ जी, अब ये फैक्ट्री ऐसी है कि भाई यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। सोडा बॉटलिंग का ये प्लांट है जहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, तो क्या हुआ जब हम यहाँ फंसे तो हमें अलार्म्स सुनाई देना शुरू हो गए और इन अलार्म्स को सुन के हम थोड़े से चौकन्ने हो गए कि भाई अब क्या हो गया। फर्श पर हर जगह स्टिकी सिरप फैल चुका है और हमारी जो जायंट फिजोमैटिक मशीन है वो बुरी तरह से कांप रही है। मतलब ये है कि एक टेक्निकल ग्लिच हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है जिससे ये मशीन फट भी सकती है। और वो कहते हैं ना, सोडा का फ्लड आ सकता है या उसका तूफान आ सकता है, और अगर हमें उससे बचना है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉजिक्स सही बिठाने होंगे, सही लगाने होंगे और पूछे गए क्लूज को सॉल्व करना होगा। तो क्लू नंबर वन हमारे लिए था कि मैं एक इनविजिबल गैस हूँ, इंसान मुझे हर बार एक्सहेल करते वक्त बाहर निकालता है और प्लांट्स मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेल करते हैं। जब मुझे हाई प्रेशर पर फ्लेवर्ड वाटर में पंप किया जाता है तो मैं लाखों छोटे टिकली बबल्स बनाता हूँ और आपकी जो टंग है ना उस पर जंप करता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या हूँ? हमारे कुछ लिसनर्स हैं लिख रहे हैं ऑक्सीजन। भाई साहब क्या कह रहे हैं, हम इनहेल एक्सहेल का हमने आपको एग्जांपल दिया है तो ऑक्सीजन तो नहीं है। कुछ ने लिखा है नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रोजन भी नहीं है। कुछ ने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सो आई थिंक दैट्स द राइट आंसर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं और प्लांट्स इसको इनहेल करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने सही जवाब दिया आइए जरा उनके नाम देख लेते हैं। फैज हैं, आफताब हैं, रिजवान हैं, हमारे रेगुलर लिसनर मोहम्मद यूसुफ खान भी हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है। ये जनाब कौन है, मोहम्मद साद ने भी हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है। मेहरन उमर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो यस गाइस, आपने कमाल कर दिया। आरिफ ने भी हमें सही जवाब दिया है, सो गुड जॉब आप सभी।

ने सही जवाब देकर पहला पड़ाव पार कर लिया है। तो ये जो गैस होती है ना, ये बाहर निकलने के लिए हमेशा इंतजार करती रहती है, बेचैन रहती है। नाउ हमने क्या किया, हमने मेन टैंक को तो वेंट कर दिया है, लेकिन अफसोस ये है कि इमरजेंसी डोर अभी भी सील्ड है। इसे एक लिक्विड सेंसर कंट्रोल कर रहा है जो मेजर करता है कि सोडा कितना शार्प है या सावर है। तो चलिए अब हम क्लू नंबर टू की तरफ चलते हैं। ज्यादातर सोडास वाटर की तरह न्यूट्रल नहीं होते, ये तो हम जानते हैं। इन बबल्स और फ्लेवरिंग की वजह से ये जुबान पर थोड़े वो बाइटिंग वाला जो एहसास है ना, वो देते हैं। अब थोड़ा साइंस इसमें आएगा, केमिस्ट्री, थोड़ा ध्यान से सोचिए समझिए कि 0 से 14 के स्केल पर, ठीक है, 0 to 14 के स्केल पर जहाँ 7 न्यूट्रल होता है, ये नंबर की बात कर रहे हैं, 7 न्यूट्रल होता है, उन लिक्विड्स को क्या कहते हैं जो 7 से नीचे रैंक करते हैं, जैसे कि लेमन जूस और विनेगर इसी ग्रुप में आते हैं। चलिए मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। क्लू नंबर टू, ज्यादातर सोडाज वाटर की तरह न्यूट्रल नहीं होते, इन बबल्स और फ्लेवरिंग की वजह से ये जुबान पर एक बाइटिंग का एहसास देते हैं। 0 से 14 के स्केल पर जहां 7 न्यूट्रल होता है, उस लिक्विड को, उन लिक्विड्स को क्या कहते हैं जो 7 से नीचे रैंक करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, स्वीट लिक्विड कहते हैं, सॉल्टी लिक्विड कहते हैं, एसिडिक लिक्विड कहते हैं, क्या कहते हैं, सही जवाब भेजिए 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। And let's see कि ये दूसरा पड़ाव आप पार कर पाते हैं या नहीं। और अभी हाई एनर्जी सॉन्ग्स बरकरार रहेंगे ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे और आप एस्केप रूम के हर चैलेंज को सॉल्व करें। स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: Yes, escape room का second half शुरू हो चुका है और हम में दुनिया की मशहूर एक सोडा बॉटलिंग फैक्ट्री में कैद है। इस वक्त हम यही दुआ करेंगे कि हमें इस सोडा के फ्लड से या सोडा के तूफान से बचाया जा सके और हम इस सोडा बॉटलिंग फैक्ट्री से एस्केप कर पाए।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
2: हां जी, वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आज हमारा सफर बड़ा शानदार शुरू हुआ एस्केप रूम की सिचुएशन की। हम एक दुनिया की सबसे बड़ी सोडा बॉटलिंग प्लांट या यूं कहें फैक्ट्री में बंद हो गए हैं। यहाँ पर सोडा बॉटलिंग प्लांट है और कुछ टेक्निकल ग्लिच हुई जिसकी वजह से जो कहते हैं ना फिजोमैटिक मशीन, वो कांपना शुरू हो गई। अब उसके फटने में कभी भी कुछ भी हो सकता है और स्पेशली अगर वो फट गई तो हम पूरी तरह से उस सोडा में डूब सकते हैं। अब यहाँ से निकलने के लिए हमें एक एक करके क्लूज सॉल्व करने। पहला क्लू हमने सॉल्व किया, सही जवाब था कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे क्लू की तरफ आए जो थोड़ा सा हमें साइंस स्पेशली केमिस्ट्री के साइड ले जा रहा है कि ज्यादातर सोडाज वाटर की तरह न्यूट्रल नहीं होते। इन बबल्स ऑफ फ्लेवरिंग की वजह से ये जुबान पर ना एक बाइटिंग का एहसास देते हैं। 0 से 14 के स्केल पर जहाँ 7 न्यूट्रल होता है, 7 नंबर न्यूट्रल होता है, तो उन लिक्विड्स को क्या कहते हैं जो 7 से नीचे रैंक करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि लेमन जूस और विनेगर इसी ग्रुप में आते हैं, तो आपको वो कैटेगरी बतानी है। फिर और आसान किया मैंने, आपको ऑप्शन दिए कि 7 से नीचे जो लिक्विड्स आते हैं उन्हें क्या, उन्हें मतलब वो जो 7 से नीचे रैंक करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें स्वीट ड्रिंक कहते हैं या सॉल्टी ड्रिंक यानी सॉल्टी लिक्विड कहते हैं या एसिडिक लिक्विड कहते हैं, क्या कहते क्या है। तो आइए देखें हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं। कुछ स्वीट सॉल्टी में अटक गए हैं और कुछ ने कहा है कि मैडम ये ना एसिडिक लिक्विड है। देखो जिन्होंने स्वीट

सॉल्टी लिक्विड लिखा है, मैं कहना चाहूंगी कि आपने शायद साइंस थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा है. इट्स बेसिकली एसिडिक लिक्विड. तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की. सही जवाब जिन्होंने दिए आई उनके नाम. तो यहाँ पर आरिफ अंसारी ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने भी हमें सही जवाब देने की कोशिश की है, और तैयब ने भी हमें सही जवाब दिया है. फैज, आफ्ताब, रिजवान, गुड जॉब गाइस, आप सभी ने सही जवाब दिया है. वेल, सोडा एसिडिक होता है और वही इसे वो रिफ्रेशिंग जिंग देता है, समझ गए. तो अब जरा प्रेशर गॉज की तरफ देखिए. फाइनल लॉक खोलने के लिए हमें पीएच स्केल पर सही नंबर चुनना होगा, ठीक है. आप चाहे तो गैस भी कर सकते हैं. अब क्लू नंबर 3 आपके लिए ये है कि ज्यादातर सोडास का पीएच लेवल 2 और 4 के बीच होता है, और 7 न्यूट्रल वाटर है, और 1 सुपर स्ट्रॉन्ग बैटरी एसिड. तो क्या सोडा का एसिड लेवल स्केल पर क्या होगा, हाई माना जाएगा या लो माना जाएगा? सोचिए और सही लेवल बताइए ताकि हम इस हैच को उड़ाकर बाहर निकल सके, ठीक है. सो 666-22107, 666-22107 इज आर नंबर. उस पर आप मैसेज करें अपने नाम के साथ सही जवाब. क्लू नंबर 3 मैं फिर से दोहराऊंगी कि ज़्यादातर सोडास का जो पीएच लेवल है वो 2 और 4 के बीच होता है, और 7 न्यूट्रल वाटर है, और 1 सुपर स्ट्रॉन्ग बैटरी एसिड है. तो क्या सोडा का एसिड लेवल स्केल पर हाई माना जाएगा या लो? आज कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया आपके लिए. हाँ चले, अगर आप नहीं बता पाते तो गैस कर लीजिए या तुक्का मार लीजिए, हाई माना जाएगा या लो. अपने जवाब दीजिए अपने नाम के साथ 666-22107 पर. थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के साथ. तो बस एंजॉय कीजिए FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस माय देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और आज की एस्केप रूम की सिचुएशन कि हम दुनिया के सबसे बड़े सोडा बॉटलिंग प्लांट में फंस चुके हैं, और यहाँ पर जब हम फंसे तो अलार्म्स वगैरह बजना शुरू हुए। हम डरे, फर्श पर देखा तो हर जगह स्टिकी सिरप फैल चुका था। एंड देन ये जो हमारे सामने जायंट फिजोमैटिक मशीन थी वो बुरी तरह कांप रही थी। ये मशीन कभी भी फट सकती थी, ठीक है, थी इसलिए क्योंकि आपने दो क्लूज सॉल्व कर लिए हैं, अपने आप को कुछ हद तक सेव कर लिया है, वरना आपको इस सोडा के सैलाब से, सोडा के तूफान से बचाना बड़ा मुश्किल था। क्लू नंबर वन आपने सॉल्व किया, सही जवाब था कार्बन डाइऑक्साइड। क्लू नंबर टू आपने सॉल्व किया, दैट वाज एसिडिक लिक्विड। अब क्लू नंबर थ्री पर हमारे लिसनर्स की गाड़ी थोड़ी सी फंस गई है, और लग रहा है कि अमिता आज ये साइंस वाला आपने क्यों रख लिया चैलेंज, बड़ी मुश्किल हो रही है। देखो, अगर नहीं बता पा रहे हो तो गैस कर लो, एक अपने अंदर की भी एक इंस्टिंक्ट होती है, वैसे क्लू सॉल्व कर लो, है कि नहीं। सो क्लू नंबर थ्री, ज्यादातर सोडास का पीएच लेवल 2 और 4 के बीच होता है। अगर 7 न्यूट्रल वाटर है और 1 सुपर स्ट्रॉन्ग बैटरी एसिड, तो क्या सोडा का एसिड लेवल स्केल पर हाई माना जाएगा या लो? बस आपको इसी का जवाब देना है, सोचिए और सही लेवल बताइए ताकि हम इस हैच को उड़ाकर बाहर निकल सकें। सो 666-22107 666-22107 इस नंबर, इस पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक बार मैं फिर से, यूं कहें तो आखिरी बार, क्लू नंबर थ्री दोहराऊंगी। ज्यादातर सोडास का पीएच लेवल 2 और 4 के बीच होता है। अगर 7 नंबर जो है वो न्यूट्रल वाटर है और 1 नंबर सुपर स्ट्रॉन्ग बैटरी एसिड, तो क्या सोडा का एसिड लेवल स्केल पर हाई माना जाएगा या लो? सोचिए सोचिए और सही जवाब दीजिए, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है। इसे सॉल्व करने के बाद ही आप इस सोडा फैक्ट्री से, सोडा के बहुत बड़े प्लांट की इस फैक्ट्री से बाहर निकल सकते हैं, वरना कोई नहीं बचा सकता, ठीक है? तो सोचें और 666-22107 पर अपने नाम के साथ अपना सही जवाब दे। और अभी के लिए क्या बात है, हिमेश रेशमिया एक नए अंदाज में, लेट्स एंजॉय द ट्रैक, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल्स।

0: ना।
1: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं

0: भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखें
2: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी एफ और अमिता. बिल्कुल आखिरी मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के एस्केप रूम शो पर. तो जनाब आज आप कैद हुए कहां पर? दुनिया की सबसे बड़ी सोडा बॉटलिंग प्लांट में. इस सोडा बॉटलिंग फैक्ट्री में जब आप कैद हो गए, बड़ी परेशानी हुई, अलार्म बजे, फिर आपने देखा फर्श पर स्टिकी सिरप फैल गया और जो फिजोमैटिक मशीन थी वो काफ़ी कांप रही थी, वो फट सकती थी, लेकिन अभी हमने उसे फटने से रोक लिया है समहाउ. और हमने क्लू नंबर 1 और 2 सॉल्व किया. क्लू नंबर 1 का सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड, क्लू नंबर 2 का सही जवाब एसिडिक लिक्विड, और क्लू नंबर 3 पर लोग अटक गए हैं. तो क्लू नंबर 3 वाज ज़्यादातर सोडास का पीएच लेवल 2 और 4 के बीच होता है, और 7 अगर न्यूट्रल वाटर है तो 1 सुपर स्ट्रॉन्ग बैटरी एसिड है. तो क्या सोडा का एसिडिक लेवल स्केल पर हाई माना जाएगा या लो? बस यही मैंने आपसे पूछा था. और हमारे कुछ लिसनर्स लिख रहे हैं हाई, कुछ लिख रहे हैं लो. चलिए मैं सीधा सही जवाब की तरफ बढ़ती हूँ. तो सही जवाब है लो. पीएच स्केल पर नंबर जितना कम होता है एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है. सो सही जवाब इज लो. जोरदार तालियां वो हमारे सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया है और आखिरी मुकाम को पूरा कर लिया. और जैसे ही आपने सही जवाब दिया, प्रेशर रिलीज हो गया और इमरजेंसी हैच खुल गया और आप सब फैक्ट्री से बाहर निकल चुके हैं ठीक उसी वक्त जब ग्रेप सोडा की एक मैसिव वेव ग्लास से टकराई एंड यू आर सेफ. लेकिन शायद घर जाकर आपको एक अच्छा शावर लेना पड़ेगा.

क्या बात है, मतलब सच में मजा आ गया जिस तरह से आपने आज इस शो पर लगातार जुड़कर हमें सही जवाब देने की कोशिश की. आइए देखें जिन्होंने हमें सही जवाब दिए. उनके नाम है रिजवान, फैज, आफताब और कौन है जिन्होंने सही जवाब दिया है. हमारे फ्रेंड आरिफ ने भी सही जवाब दिया है. सो ये सभी सही जवाब देने वाली जो लिस्ट थी स्पेशली आखिरी मुकाम पर कम थी क्योंकि हमारे लिसनर्स काफ़ी कन्फ्यूज हो गए थे. और अब इसी के साथ जो हमारे फिज मास्टर बने उनका नाम क्या है, आज के लकी विनर का नाम है फैज. जोरदार तालियां भाई आपके लिए, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं. कमाल कर दिया आपने सही जवाब देकर, प्रूव कर दिया कि पूरे गेम में आपने अपने माइंड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, दिमाग का सही उपयोग, क्या बात है. वेल इसी तरह हर दिन आपके लिए एस्केप रूम में एक नई नई चैलेंजेस लेकर आऊँगी एंड आई एम वेरी सर्टेन कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे. एक्चुअली इट्स ये पूरा जो शो है ना, इट्स अ ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइजिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. सो अगले हफ्ते क्या क्या आपको चैलेंजेस मिलेंगे वो जानने के लिए आपको दोपहर 1:30 बजे अपनी ए फॉर अमिता से मिलना होगा एस्केप रूम पर FM 107 पर. अभी वक्त है भाई मेरे जाने का, तो मुझे जाना होगा. आप भी अपना वीकेंड एंजॉय करें, वीकेंड प्लान करें और अपना ख्याल खूब रखें, ठीक है. सोशल मीडिया पे आप जुड़ सकते हैं हमारे FM 107 के और चाहे तो आप आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. और जाते जाते ये कहना तो बनता है, हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. और इस वक्त वॉल्यूम बढ़ाइए, एंजॉय कीजिए इस गाने को FM 107 पर, दिल से देसी. स्टे ट्यून्ड.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, हमारा किचन घर की वो जगह होती है जहां रोजाना सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है कि नहीं। सुबह की चाय से लेकर डिनर की तैयारी तक, सब्जी धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, किचन में पानी का इस्तेमाल तो भाई लगातार होता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम किचन में कितना पानी इस्तेमाल करते हैं और कितना जाया करते हैं? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि नल खुला रह जाता है, कभी बर्तन धोते वक्त जरूरत से ज्यादा पानी बह जाता है, और कभी खाने की प्रिपरेशन में हम पानी को भी वेस्ट कर देते हैं। साथियों, पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, ये जिंदगी की बुनियाद है। इसलिए आज के इको स्विच में बात करते हैं सेविंग वाटर इन द किचन के बारे में, यानी किचन की छोटी छोटी आदतों से पानी बचा लेना। भाई देखिए, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाए ना साथियों, तो अक्सर हम पानी की कदर तब समझते हैं जब वो घर में कम होने लगता है। किचन में पानी का वेस्ट बहुत आसानी से हो जाता है साथियों। मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊँ ना, तो बर्तन धोते वक्त वो जो नल का हम कंटिन्यूसली खुला छोड़ देते हैं, बहुत ही गलत बात है। या सब्जी और फल धोते वक्त जरूरत से ज्यादा पानी चला देना, ये भी एक मसला है। अच्छा हाँ, खाना बनाते वक्त अंदाजे से ज्यादा पानी यूज कर जाना, ये भी एक इशू है। अच्छा, कभी कभी हमें ये लगता है कि थोड़ा सा ही तो पानी वेस्ट हुआ, क्या ही कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर घर में रोज थोड़ा थोड़ा पानी वेस्ट हो रहा है तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। भाई, पानी को साफ करने, स्टोर करने और घर तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है ना, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यानी पानी बचाना सिर्फ पानी बचाना नहीं है, बल्कि एनर्जी और रिसोर्सेज को बचाना भी है। देखिए, अब आप कहेंगे कि सफा सिंपल इको स्विच

0: सॉल्यूशन बताओ। तो दोस्तों, किचन में पानी बचाने के लिए हम कौन से सिंपल इको स्विच कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो ये भाई कि ये जो नल की जरूरत है ना, ये जो टैब है, नल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। देखें, बर्तन या सब्जी धोते वक्त नल को कंटिन्यूसली खुला ना छोड़े ना। पहले बर्तन आप थोड़ा साबुन वगैरह लगा लें, साइड पे कर लें, फिर पानी से उसे रिंस कर लें। ये जो सब्जी होती है या फल होते हैं, इनको स्मार्ट तरीके से धोएं। जो रनिंग वाटर के नीचे आप इसको डाल देते हैं और ये पानी चल रहा है बोल के अंदर, कंटेनर के अंदर, और आपका पानी सारा बहता चला जा रहा है, एक एक सब्जी उठाकर आप धो रहे हैं। एक काम करें ना, कंटेनर में पानी भरें और सब्जियों को उसी के अंदर धोएं, जितना पानी है उसी से। इससे पानी की बचत भी होती है और काम भी आसानी से हो जाता है। और हाँ, एक और बात, पानी को दोबारा इस्तेमाल करें। सब्जी धोने का पानी जो है वो पौधों को दिया जा सकता है। अगर पास्ता या चावल उबालने का पानी है तो कुछ लोग इसे कुकिंग के दूसरे काम में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और हाँ, मैंने तो ये भी देखा था कि पास्ता या चावल का जो पानी होता है उससे आप अगर अपने बालों को धोएं तो वो बड़ा अच्छा होता है रिंसिंग में। अब ये कौन सा टोटका है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं उससे बाल अच्छे होते हैं। अच्छा, लीक्स को इग्नोर ना करें साथियों। अगर किचन का नल हल्का सा भी लीक कर रहा है, वो जो टिप टिप टिप करके पानी बहता है ना, तो उसे रिपेयर कराना जरूरी है। छोटी सी लीक भी वक्त के साथ साथ सारा पानी वेस्ट कर सकती है। लेकिन स्मार्ट किचन हैबिट्स अपनाएं। डिशवॉशर यूज करते हैं तो उसे हाफ लोड पर चलाने के बजाय फुल लोड पर चलाएं, यानी जरूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करें ना, ज्यादा नहीं करें। तो साथियों, देखें, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर। बहुत सारे घरों में लोग छोटी छोटी चेंजेस से पानी बचाने की कामयाब कोशिशें कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज ने किचन में एक सिंपल रूल बनाया हुआ है, जितना पानी जरूरी है उतना इस्तेमाल करना। कुछ लोग सब्जी धोने के लिए बोल मेथड यूज करते हैं। कुछ लोग एक कंटेनर रखते हैं जहां एक्स्ट्रा पानी कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें अपने पौधों को क्यारी में दे दिया जाता है। ये छोटी छोटी आदतें शुरू में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आपका पूरा घर इन आदतों पर अमल करता है ना, तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पानी बचाने से अक्सर घर का बिल भी कंट्रोल में आ जाता है। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज अपने किचन में सिर्फ एक दिन ऑब्जर्व करें कि भाई सबसे ज्यादा पानी कहाँ वेस्ट होता है। क्या बर्तन धोते वक्त यूज होता है, क्या सब्जी धोते वक्त यूज होता है, या किसी लीक की वजह से होता है। और फिर एक छोटा सा चेंज करें और हमें जरूर बताएं कि पानी बचाने के लिए किचन में आप कौन सी आदत फॉलो करते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, पानी की एक एक बूंद कीमती है, क्योंकि हर बूंद मिलकर जिंदगी बनाती है। छोटी छोटी आदतें बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज का टॉपिक है खामोश सदका। खामोश सदका यानी ऐसी मदद जो बिना किसी को बताए की जाए, इस्लाम में बहुत अफजल मानी जाती है। ये ना सिर्फ ज़रूरतमंद की मदद करती है बल्कि देने वाले का इखलास भी जाहिर करती है। आजकल लोग अपनी नेकियों को शेयर करते हैं लेकिन असल खूबसूरती उस अमल में है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। खामोश सदका इंसान के दिल को पाक करता है और उसे रिया यानी दिखावे से बचाता है। ये अमल इंसान और उसके रब के दरमियान एक खास रिश्ता पैदा करता है। आज का अमल ये है कि किसी की मदद इस तरह करे कि किसी और को पता भी ना चले, सिर्फ अल्लाह के लिए हो। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to
2: 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टू choices, सेफ्टी या स्पीड। सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या स्पीड? देखिए, आजकल की जो हमारी तेज रफ्तार वाली ये दुनिया है, इस दुनिया में ये सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हर चीज फास्ट हो रही है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट डिलीवरी, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन और शायद हमारे रिश्तों में भी वो तेजी आ गई है टूटने और बिखरने की। हर कोई चाहता है कि उसका काम जल्दी हो और उसका वक्त बचे, लेकिन जब बात ट्रैवल, टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ की आती है तो एक इम्पोर्टेंट सवाल सामने आता है, क्या स्पीड ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर सेफ्टी? ये सवाल जो है ना दोस्तों, सिर्फ रोड्स या फिर ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है। आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज ये कि हम इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं, कभी सवाल किया है अपने आप से? देखिए, मॉडर्न लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है विदाउट अ डाउट। लोग ऑफिस, मीटिंग, स्टडीज और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दरमियान वक्त बचा ही नहीं पाते, इसीलिए जब कोई टेक्नोलॉजी या सर्विस हमारे काम जल्दी करती है तो हमें वो बड़ी पसंद आती है ना? जैसे फास्ट ट्रेन्स, हाई स्पीड इंटरनेट और क्विक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन सारी चीजों ने जिंदगी को आसान बनाया है। स्पीड के बहुत से फायदे हैं, वक्त की बचत होती है, प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है, बेटर कनेक्टिविटी होती है, इमरजेंसी सिचुएशन में मदद मिलती है, इसीलिए दुनिया हमेशा फास्टर सॉल्यूशंस की तरफ भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल है कि अगर स्पीड की वजह से सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो क्या हो? अब जान लेते हैं कि सेफ्टी है क्या। देखिए, सेफ्टी का मतलब है कि अपने और दूसरों की हिफाजत। रोड्स पर सीट बेल्ट पहनना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना सेफ्टी का हिस्सा है। एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर फ्लाइट से पहले आप देखते और जानते ही हैं कि मल्टीपल चेक्स किए जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ऑपरेशन करने से पहले हर डिटेल वेरीफाई करते हैं, यानी हर सक्सेसफुल सिस्टम की बुनियाद सेफ्टी होती है। अगर सेफ्टी ना हो तो स्पीड का कोई फायदा है? देखिए, ट्रांसपोर्ट में भी सेफ्टी या स्पीड एक ऐसा टॉपिक है कि किसको चूज करें। सुनने में हर कोई कहता है सेफ्टी, लेकिन क्या हम स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं? सोचिए, आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। एक ऑप्शन है कि आप बहुत फास्ट ड्राइव करें, दूसरा ऑप्शन है कि आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए सेफ ड्राइविंग करें। जाहिर सी बात है कि सेफ ऑप्शन बेटर ऑप्शन है। अगर कोई ड्राइवर कुछ मिनट्स बचाने के लिए डेंजरस ड्राइविंग करे और एक्सीडेंट हो जाए तो ना सिर्फ उसका वक्त जाया होता है बल्कि जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो लाइन याद आ रही है मुझे, कि वो बेटर लेट देन नेवर, थोड़ा लेट पहुंचना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि इंसान अपने या दूसरों की जान खतरे में डाले। तो दोस्तों फ्यूचर जैसा भी हो लेकिन हमें जो आपको सेफ्टी को हर हाल में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसी चैलेंज का सामना कर रही हैं. कंपनीज चाहती हैं कि टेक्नोलॉजी फास्ट और इफिशिएंट हो लेकिन साथ ही डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी तो जरूरी है. सोचिए कोई ऐप बहुत फास्ट काम करे लेकिन यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट ना करे तो क्या आप उसे यूज करना पसंद करेंगे? शायद इसका जवाब मैं ही दे देती हूँ, नहीं. यानी टेक्नोलॉजी में भी सेफ्टी को स्पीड पर तरजीह देनी पड़ती है. वहीं हेल्थ केयर सेक्टर हो, मतलब हर चीज डॉक्टर्स नर्स हर स्टेप को वेरीफाई करते हैं. आप जानते हैं हॉस्पिटल में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना मैंडेटरी होता है क्योंकि इंसान सबसे कीमती चीज है. रियल लाइफ में बैलेंस इज वेरी मच मैंडेटरी. ये कहना बिल्कुल सही है कि स्पीड जरूरी है, जरूरत है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है सेफ्टी के साथ. इमरजेंसी सर्विस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. अगर एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड टाइम पर ना पहुंचे तो जान बचाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ भी स्पीड के साथ सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है. यानी असल कामयाबी स्पीड और सेफ्टी के दरमियान बैलेंस में है. तो बैलेंस जो है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है. देखिए आज की दुनिया स्पीड को सेलिब्रेट करती है. हम फास्ट इंटरनेट को, फास्ट ट्रांसपोर्ट को, फास्ट रिजल्ट्स को पसंद करते हैं, लेकिन हर प्रोग्रेस की बुनियाद सेफ्टी होनी चाहिए क्योंकि वक्त दोबारा मिल सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन जान और सेहत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं. अगर स्पीड और सेफ्टी के दरमियान चॉइस करनी है या करनी पड़े तो सेफ्टी को पहली चॉइस में रखें. असल कामयाबी सिर्फ जल्दी पहुंचने में नहीं है बल्कि महफूज पहुंचने में है. टेक्नोलॉजी हमारी और आपकी आसानी के लिए है.

0: अपने आप को जितना आसानी में हम डाल सकते हैं उसमें हमें ये ख्याल रखना है कि किसी भी सूरत में सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आपको एक ऐसी ट्रांसपोर्ट सर्विस आज दी जाए जो बहुत फास्ट हो लेकिन उसकी सेफ्टी एवरेज हो, और दूसरी तरफ थोड़ी स्लो ट्रांसपोर्ट या थोड़ी ज्यादा स्लो ट्रांसपोर्ट लेकिन उसकी सेफ्टी पुख्ता हो, तो कौन सी चॉइस के साथ आप जाएंगे? इसका जवाब मुझे तो पता है। चलिए फिलहाल मैं आपसे यहाँ पे इजाजत लूंगी इस वादे के साथ कि आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर लिसनर्स, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू अपनाने जा रहे हैं।

0: धड़कन को बुलंद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर की जो सतह है उसको बैलेंस में रखने में मदद देता है। ये सादा सरगर्मी एक्टिविटी जो है दिल की बीमारी और फालिज के खतरे को नुमाया तौर पर कम कर सकती है। इसके अलावा चहलकदमी या वॉक वजन को बैलेंस में रखती है, कैलोरीज बर्न होती हैं और इसी तरह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर सेहतमंद वजन को बरकरार रखना, यहाँ तक कि जो एक्स्ट्रा पाउंड्स हैं यानी एक्स्ट्रा वजन है उसको कम करना भी आसान बना देती है। एक और काबिले जिक्र फायदा ये है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर पॉजिटिव असरात मुरतब करती है। वॉक या चहलकदमी एंडोर्फिन्स के अखराज को एक्टिव करती है, उससे हमारा जो डिप्रेशन है, इस्तराब है और एनजाइटी है उसकी अलामत कम से कम होती चली जाती हैं। 45 मिनट की वॉक जो है वो बाकायदगी से अगर हम करते रहें तो जो जॉइंट्स हैं उनको भी मोबिलाइज रखती है और इसमें सख्ती और दर्द को कम कर सकती है। खास तौर पर आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। वॉक करने से मसल्स और जॉइंट्स को लचकदार रखने में मदद मिलती है और आपकी जो एक्टिविटी है या आप जो भी हरकत कर रहे हैं उसकी हद को बेहतर बनाने और चोट लगने के खतरे को भी कम करने में मदद देती है। वॉक एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे नींद जो है बेहतर होती है, यानी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बेहतर हो जाती है और इस तरह से हम ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। बाकायदगी से वॉक करने से जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होता है और जिससे बीमारियों का खतरा कम से कम होता चला जाता है। तो 45 मिनट की वॉक को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करना हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत को बढ़ाने का एक बहुत ही सादा और ताकतवर तरीका है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। इससे बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो।

0: FM 107. Time check.
1: हाँ जी, टाइम फॉर द टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो में फिलहाल 4:01. मैं थोड़ा सा अटक गया था, ये जो घड़ी है ना बीच में आ जाती है भाई साहब, मतलब नहीं दिख रहा। फिलहाल इस्तकबाल एक बार फिर से आप सभी का एफएम 107 पे 4:01 और अभी से लेकर 5 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। फिलहाल तैयार हैं आज और जबरदस्त गाने भी प्ले होंगे क्योंकि आज है थर्सडे, इसी का तो इंतजार करते हैं बाबा। 6 अगस्त आज का दिन और कौन से गाने प्ले कर दे बताओ भाई। दिल दिया गल्ला वाले भाई बहुत दिन से नहीं आ रहे, वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि है कहाँ वो भाई, लेकिन आ जाएंगे, कहीं ना कहीं होंगे। या फिर वो हो गया होगा कि अरे बस हो गया यार, इससे रोज रोज कहो और ये प्ले नहीं करता है, लेकिन आज आज दिन है आपका, आज हो सकता है प्ले है जी। फिलहाल ये जो गाने की रिक्वेस्ट है वो थीम पर बेस्ड होती है और आज का थीम है 2020 से लेकर 2025 के जो मर्जी आप गाना प्ले करवाना चाहते हैं वो करवा लें। तो थीम लेकर तैयार हैं अपन।
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो, रिक्वेस्ट शो सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ जी, दिल से देसी द रिक्वेस्ट शो इसका नाम, और 5 बजे तक जो गोए वो प्ले कर देंगे अपन। ये मोबाइल किधर है यार, मोबाइल नहीं दिख रहा है यार, ये मोबाइल जो है ना इधर ही था, अब भी निकाल के देता हूँ मैं, अब भी सही करके देता हूँ मैं, ये मेरे को दिख जाए तो फिर मैं बताऊँ कि जो रिक्वेस्ट आएगी वो गाने अपन प्ले करेंगे। और थर्सडे का दिन है, खुशी का दिन है भाई साहब, देखो क्या है, खुशी ना एक चॉइस है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे ही नहीं हो जाता हिसाब किताब, खुशी एक चॉइस होती है, इंसान को कुछ भी कर दे दो है ना, आप उसके लिए कुछ भी ला कर दे दो, अगर उसने ये चॉइस कर ही ली कि उसे खुश नहीं रहना है तो वो खुश नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसको सब कुछ ला कर दे दो या फिर ऐसा हो कि उसके लाइफ में कुछ भी ना हो है ना, तो भी क्या है कि इंसान फिर भी खुश रहेगा। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में कुछ हो या ना हो, खुशी होनी चाहिए। खुशी क्या है कि इंसान के मन में होती है, ये तो हो गई देखो फालतू की बातें। अब जो है आपकी अपनी मर्जी की गाने की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वजह ये है कि ये शो है द रिक्वेस्ट शो, आपकी अपनी मर्जी के गाने, और अगर आपकी अपनी मर्जी के गाने प्ले हो जाएं तो इंसान खुश हो जाता है, और वैसे भी आज थर्सडे है, वीकेंड है, तो खुश तो होना बनता है। लेकिन जो इंसान खुश ही नहीं रहना चाहता, क्या फिर ढेंगा कुछ लाइफ में खुशी आएगी उसके।
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो, रिक्वेस्ट शो सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ जी, दिल से देसी, और देखो क्या है कि मोबाइल लेकर मैं आगे, बहुत तेज भागना पड़ता है भाई। हाँ ठीक है, अभी भाग दौड़ के आ गए, और अरे इतने रिक्वेस्ट दाग दी तुमने यार इतनी देर में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, आज तो नेपाली सॉन्ग प्ले कर दो, दुश्मन हेरे को हेरे को। अरे भाई थीम यार, थीम पर रुको थोड़ा सा, लेकिन अगर ये गाना मुझे मिल गया तो मैं प्ले कर दूंगा। उसका रीज़न है कि ये 2020 से 2025 तक के गाने प्ले करने हैं, तो इट्स ओके। फजील भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वेलकम। मुमताज़ मेरा भाई, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून भाई अनुज, अरे डॉट डॉट डॉट भाई डॉट डॉट डॉट अनुज, हैप्पी थर्सडे इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? सलाम, मैं फैसल भाई कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। फजील ज़रा छाप तिलक सॉन्ग हो जाए, छाप तिलक 2020 से 2025 का होगा तो प्ले हो जाएगा। अच्छा देखो, इंसान जब भूखा हो ना तो उसको छाप तिलक नहीं चाप चाप सुनाई देता है। इतना गंदा जोक मारा मैंने, कसम से

एक गाना तो है छाप तिलक, लेकिन ये है लाइके लाइका 2026। ये कोई मूवी थी क्या लाइके लाइका? इसमें है तो अच्छे लोग, राजश्री हैं और फरीदकोट हैं, और एक छाप तिलक गिनी वेड्स मनी। अरे ये आ रही है सनी वेड्स, गिनी वेड्स सनी। अच्छा ये 2026 का ट्रैक है। अब इन दोनों में से कौन सा सुनना चाहते हैं ये भी तो बताओ भाई। अपने पास छाप तिलक दो है, तो वैसे तो और भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हीर और पैराडॉक्स का ज्यादा अच्छा होगा। इन दोनों में से कोई एक अपन प्ले करेंगे, लेकिन क्या है इन दोनों में से इनार भी करेंगे कि अगर भाई ये कह दें कि कौन सा प्ले करवाना। मिस्टर खान ने ये रिक्वेस्ट की है। बाकी हिशाम का सलाम आया, वालेकुम सलाम। आदत यो मैं यार, ये मेरा भाई अजहर हुसैन को इतनी आदत लग गई आदत गाना सुनने की, हनी सिंह का ये गाना है। फजील भाई हाउ आर यू, मैं एकदम ख़राब हो गया हूँ भाई तुम्हारी ये बात सुन के कि आदत गाना प्ले करो। तो कितनी बार प्ले कराओगे यार, इंसान का टेस्ट नहीं चेंज हो रहा यार, एक ही जगह रुक कर रह गया। सलाम वालेकुम मेरा भाई, किसका है मैसेज? सरफराज आलम का, वालेकुम अस्सलाम। और यूसुफ भाई कहते हैं तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा, अरे मेरा भाई करता हूँ प्ले। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, वालेकुम अस्सलाम। ओ माही प्ले कर दो भाई, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है ओ माही। हाँ ये गाना भी अच्छा है यार, ये गाना भी अपन प्ले कर सकते हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ, और छाप तिलक वाला क्लियर करो यार, मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा वाला हो प्ले, ऐसा ना हो कि एकदम ही रोतलू गाना प्ले हो जाए। डंकी का एक गाना है ओ माही, सबसे पहले इस गाने को अपन प्ले कर रहे हैं, अरिजीत सिंह की आवाज़ में है। 2023 में ये मूवी आई थी, चलो इसे एंजॉय करते हैं FM 107 पे, और फिर एक एक करके बाकी की रिक्वेस्ट पर आएंगे, ठीक है।

अरिजीत सिंह के जो गाने हैं ना भाई, वो हैं भी लाजवाब। और मैं ये बात तो बताना चाहूंगा कि इन गानों को सुनने के बाद ना इंसान के दिल में खुशी आती है। फिलहाल 4:11 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और देखो भाई, छाप तिलक वाले किधर रह गए मेरे को नहीं पता, लेकिन हीर और पैराडॉक्स का ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ जो नेक्स्ट सॉन्ग है, और फिर उसके बाद आदत सॉन्ग आएगा। तो ये शो द रिक्वेस्ट शो, जो आपकी अपनी मर्जी का सॉन्ग है, इसमें मैंने अपनी उंगली से पूरी मेहनत कर ली है भाई। कीबोर्ड में गड्ढे भी हो गए हैं और कई गाने जो हैं वो नहीं मिलते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो माजरत मेरी तरफ से, मैं कैपिटल लेटर में सॉरी लिख दूंगा आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पे। लेकिन अभी कुछ गाने मेरे को मिले हैं। यूसुफ भाई ने एक कहा है गाना, तू मेरी मैं तेरा टाइटल सॉन्ग गलत पड़ गया मैं तो। कौन सा सुनना है यहाँ पर? बहुत से गाने हैं। एक तो विशाल का है, विशाल शेखर का, फिर नमस्ते इंग्लैंड का 2018 का, राहत फतेह अली खान साहब का है। यूसुफ भाई थोड़ा इसमें क्लियर करो यार, क्योंकि बहुत सारे इसमें गाने जो है मेरे पास लिख कर आ रहे हैं, तो अगर क्लियर कर देते तो बढ़िया होता। लेकिन हाँ, 2020 के बाद वाले चल रहे ना, तो 2025 वाला ये गाना प्ले कर रहे हैं अपन। चलो ये भी क्लियर हो गए, तो अपने पास तीन गाने तैयार हो गए ले अपन प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले ये छाप तिलक आएगा हीर और पैराडॉक्स की आवाज़ में, फिर एपी ढिल्लो और हनी सिंह की आवाज़ में आदत। और ये जो आदत लगी अजहर भाई, आदत गाना सुनने की, प्लीज़ यार ऐसा मत करो यार, इतनी बार सुन लिया है उसके बाद तो आपको सुकून मिल जाना चाहिए। अब तक ओ माही ये गाना भी हो गया है, और छाप तिलक वाले भाई। अच्छा एक बात है यार, गाना जब मैं आपका प्ले कर दूँ थैंक यू उधर से बोला करो, थोड़ा सा मैं वो हूँ ना, क्या कहते हैं उसे, लालची आदमी मेरे लालच को पूरा किया करो। फिलहाल 4:12 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, जल्दी से रिक्वेस्ट कर लो, और फिर कल की तरह ना हो जाए कि अरे यार मेरा गाना प्ले नहीं किया, क्योंकि मुझे सामने वाला जो बंदा है ना, उससे कोड़े पड़े ना पड़े, आपकी बातों का कोड़ा मुझे हर बार पड़ जाता है व्हाट्सअप पर कि मेरा गाना प्ले नहीं किया। अरे प्ले हो जाएगा, आप थोड़ा पहले रिक्वेस्ट करें, 10 मिनट में सारे गाने आ जाते हैं, तो मैं क्या करूं। इन तीन गानों के बाद बाकी लोगों की रिक्वेस्ट है, मैं वो देख लेता हूं। चाह है तुमको चाहूंगा हरदम, और ये भाई थीम तो देख लो मेरा भाई, अगला आदमी थर्सडे को रोते रोते घर जाए अच्छा लगेगा। बीवी जो है वो कह रही होगी चलो बर्गर खाना चलते हैं, दिल खुश है, दिन अच्छा है, और तुम जो है चाह है तुमको, नहीं ये मत करो मेरा भाई। फिर उसके बाद गाना है मुशीर आलम ने कहा है, तुम ही हो यार, बहुत पुराना गाना आई गेस, ये तो फिर वो हो जाएगा यार, जुल्म हो जाएगा, बाकियों को भी तो सोचना है हमें। तो चाह है तुमको चाहेंगे हरदम, ये भाई तब चाह लेना जब संडे का दिन हो या मंडे का दिन हो, है ना, तब सही रहेगा। बिलाल भाई थोड़ा रुक के मेरा भाई। यूसुफ भाई ने कहा है ठीक है फजील, ओके मैं आपका ये गाना प्ले कर दूंगा। एक भाई ने कहा है वो लड़की मिल जाए तो कहना, ये किस मूवी का है? थोड़ा अगर इन्फॉर्मेशन हो जाए मेरी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए भाई, मेरी उंगलियां दर्द हो जाती हैं, यहाँ पर इतने सारे अलग अलग गाने होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कौन सा गाना मुझे एक्चुअली में प्ले करना है। फिर वो लड़की मिल जाए तो कहना, ये है फलक की रिक्वेस्ट पे, ये बता दो मेरे को लेकिन कौन सा गाना है, ये किस मूवी का है। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। आज आपका फेवरेट सॉन्ग हो जाए क्योंकि आपका वीकेंड स्टार्ट है आज से, मज़े ही आपका तो भाई मज़े। हाँ यार ये तो बात है, ये तो है मेरे अंदर मेरे मज़े हैं। हम तो 5 साल से ही कतर में हैं लेकिन आज तक वीकेंड नहीं आया है। आपका वीकेंड नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? देखो एक तरह है, एक तरह से वीकेंड आप ले सकते हैं, जैसे ये कर दो कि अरे सर तबीयत खराब है, आवाज नहीं निकल रही, इस तरीके से भी आप वीकेंड जो है वो मना सकते हैं। बस इसकी फोटो मत डाल देना कहीं एंजॉय करते हुए। आशिकी कॉलोनी रोमियो, ओ रोमियो मूवी का ट्रैक है फैसल भाई के रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो एक ये भी गाना हमें मिल गया है, तो ये भी गाना अपन प्ले कर देंगे। फिर है फजील भाई शायद प्ले कर दो, शायद प्ले कर दूं, ये कौन सा गाना है शायद, मेरे को थोड़ा क्लियर करो भाई, इतना आधा अधूरा लिख कर छोड़ देते हैं, कहते हैं फजील तुम समझ लो। बाकी ये तीन गाने एंजॉय करें FM 107 पे, छाप तिलक, हीर पैराडॉक्स की आवाज़ में, एपी ढिल्लो, हनी सिंह, आदत, ये गाना अगला आएगा, फिर तू मेरी मैं तेरा, विशाल और शिखर की आवाज़ में। वीकेंड एंजॉय करो FM 107 पे फजील के साथ, दिल से देसी।

0: दिया ताकि आपको पता चल जाए कि अरे अगला गाना ये है, कहीं जाना नहीं है भाई साहब। हेलो हबीबी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या है हाल चाल। 4:26 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और ऐसे गानों की रिक्वेस्ट करो कि हमें मिल जाए मेरा भाई। पता है मेरे नाखून मेरे को काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे ही बड़े होते हैं कीबोर्ड पे इतना टाइप कर लेता हूँ कि नाखून घिस जाते हैं मेरे। मतलब जो जो कंपनी जो फैक्ट्री नेल कटर बनाती है ना, वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो ये है कि अरे यार पता नहीं इतने गाने रिक्वेस्ट करते हैं और उसमें भी वो गाने आसानी से मिलते नहीं, तो ज़्यादा कीबोर्ड पे हाथे चलते हैं, हाथ ज़्यादा चलते हैं तो नाखून घिसते रहते हैं बराबर। तो इस चक्कर में ना नेल कटर बिक नहीं रहे भाई। देखो बात कहाँ से कहाँ ले आए, आरजे का ये कमाल है भाई साहब। फिलहाल 4:27 और दो गाने मिले हैं ऐसे जो मैं प्ले कर सकता हूँ, बाकी तो भाई ऐसे दूर दूर इलाकों से दराजों से ये रिक्वेस्ट आ रही कि क्या बताऊँ। सलाम आया है का, वालेकुम अस्सलाम, फजील भाई शायद प्ले कर दो। अब बताओ शायद वो गाना शायद ही मुझे मिल जाए कि शायद कहीं हमारे डेटाबेस में शायद मिल जाए, पड़ा होगा अगर कहीं, अगर मिल जाए तो शायद मुझे प्ले करना है। और वो शायद एक्चुअली में अरिजीत सिंह की आवाज़ का गाना है, और ये गाना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आज थीम बताई है आपको, उसी थीम से रिलेटेड 2020 से लेकर 2025 के दरमियान अगर ये गाने हैं तो मैं प्ले कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को कोड़े नहीं चाहिए भाई। और कोड़ा लेकर वो बैठा अगला आदमी, दो चार गाने जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ, वो तेल निकाल ले रहा है भाई कि अपने चमड़े वाले कोड़े में जो है तेल लगाऊंगा तो सटक से आवाज़ आएगी, और फिर कोड़े जब पड़ेंगे तो स्लिपरी, वापस खींचने में भी मजा आएगा। तो भाईजान उधर वो तेल जो है ना वो गरम करके अपने कोड़ों में लगा रहा है जब जब आप मुझसे इधर उधर के गाने कह रहे हैं, तो थीम पे ही रहेंगे। अगर मैं सोच रहा हूँ किसी रिस्क ले लूँ तो देखें कोड़े में अगर सही में मजबूती है तो फिर तो मैं भूल ही जाऊं इधर उधर गाना प्ले करने से। लेकिन लव आजकल 2 मूवी का ट्रैक है जो 2020 में आई थी, कोड़े मैन सुन लो भाई, 2020 में आई थी, और ये शायद उसी का गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में गाया हुआ। तो यहां पर मैं बच गया हूं, ये रिक्वेस्ट किसकी है ये मैं बता देता हूं, सरफराज आलम की ये रिक्वेस्ट है, बहुत ही उम्दा। और फिर आशिकों की कॉलोनी जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले थोड़ा सा हुक प्ले किया, गाया गया है मधुबंती बागची और जावेद अली की रिक्वेस्ट में। तो ये दो गाने तो अपने को बड़े आसानी से मिल गए। उसके बाद कुछ गाने ऐसे हैं जो मैं ढूंढते ढूंढते भाई मैं लंबा हो जाऊंगा लेकिन गाना नहीं मिलेगा। लू भाई का सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। एक गाना है कभी ना कभी तो मिलोगी कहीं पे, ये गाना किस ज़माने का है ये बताएं, और अगर उस ज़माने का है तो मैं कहता हूँ कोड़े मैन से बात कर लो भाई, बाहर खड़ा हुआ है कोड़ा लेके, अगर वो राज़ी हो गया तो मैं गाना प्ले कर दूंगा, तो कॉल पर बात करा दूँ, ठीक है। और एक और गाना जैसे इन्होंने कहा था, चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम, भाई थीम पर रहिए प्लीज़, क्यों कोड़ा पिटवाना चाह रहे हैं बिलाल साहब, निशान पड़ जाना है। सलाम आया एक भाई का, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, नाम नहीं लिखा है इन्होंने। फिर उसके बाद माशू का सॉन्ग प्ले कर दें तो बेहतर होगा, मैं प्ले तो कर दूँ इमरान साहब, लेकिन माशू का कौन सा, बहुत सारे माशू के पड़े हुए हैं यहाँ पे। एक तो हमारे डेटाबेस में माशू का, एक बाहर भी है, कतर में भी बहुत घूम रहे हैं। अरे मतलब कतर में अपने पर्चे में लेकर लिरिक्स लेकर बहुत ज़्यादा लोग माशूका का गाना वो घूम रहे हैं हल्के हाथ से। उसके बाद एक और ये मैसेज है, अंधाधुन फिल्म का सॉन्ग, अंधाधुन ये 2018 में आई थी मादरत के साथ, 2020 से 2025 का सीन चल रहा है, और ये फलक फलक वाले फलक है, ये फलक SRK वाले फलक नहीं है जो अंधाधुन का गाना सुनना चाह रहे हैं। तो फलक भाई SORRY सॉरी। फिर अरिजीत सिंह का आवारापन 2 2026 में आई थी, कोड़ा भाई बैठ जाओ, तुम्हारा तो मैं एम्प्लॉयमेंट छीन ही लूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं प्ले करूंगा। 2020 और 2025 तक का थीम है आज का, वही होगा, चिंता मत करो कोड़े वाले भाई, तुम तेल गरम मत करो, तुम्हारा वैसी गैस खत्म हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, मैं पिटने से रहा तुमसे। हाँ ये लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, नहीं ये बात सही है आपकी कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फजील को कुटवा दें, लेकिन फजील भी बेटा मोटी चमड़ी के हैं।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से, कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: वो कोड़े वाला कह रहा था कि तुमने ऐड नहीं प्ले किया इसलिए तेल लगा रहे, तो मैंने कहा ओ मेरे को समझ नहीं है भाई, मैं कहूँ यार मैं तो सही चल रहा हूँ, उसने कहा ये वाला प्ले करो उसके बाद।

0: बच गया भाई, एकदम सही टाइम पे प्ले कर दिया तुम्हारे भाई ने। बाकी छुए छुए भाई जैन, ये कौन सा गाना है? छुए छुए भाई जैन, जैन साहब आप ये गाने गा रहे हैं? अरे ये तो सही है, लेकिन मेरे को थोड़ा और क्लियर करो यार कि जैन ने जो गाना गाया है वो ऐसा कि छुए छुए किधर है। जैन भाई ये गाना अगर आप गा रहे हैं तो बताएं। और कौन सा एल्बम है, मूवी है तो एक तो आया 2010 का जील है और जैनुल अबिदीन ने गाया है ये गाना और 2010 का है, तो SORRY बंधु। बंधु ये कौन सा गाना भाई, 2020 मुझे तो नहीं याद है कि 20 से 25 के दरमियान ये कोई गाना आया होगा। बंधु नहीं मेरा भाई, कोई बंधु गाना नहीं है। तुम ही हो बंधु तुम ही सखा ये वाला तो ज़रूर था, लेकिन वो पुराना है। फिर एक आया है कुंडी वाला गाना। हाँ बशारत साहब ये मेरे ख्याल में नहीं है अपने पास, ठीक है। हाँ ये वाला गाना नहीं है,
1: बताइए।
0: वो उधर कोड़ा लेके तैयार था पता है, अब इस कुछ बातों को बता नहीं सकते, गानों से समझ जाओ क्यों कोड़ा लेकर तैयार था। रमेश कहते हैं धुरंधर का अरेबिक सॉन्ग। ओके धुरंधर का अरेबिक सॉन्ग कौन सा भाई? दस थुस थुस गाना बजा दो। ओ अरे मेरा भाई दर्द कर रहा है गाल मेरा। वो ये गाना कह रहे हैं फासला। अक्षय खन्ना की जो एंट्री थे ना, थूस थूस। अरे मेरा भाई इतने मासूम है यार ये लोग, मतलब सच में यार प्यार आ जाता है भाई। ठीक है रमेश भाई, हो जाएगा चिंता ना करो। अस्सलाम वालेकुम, ये कसूर मेरा है प्ले, ये कसूर मेरा है, ये आपका कसूर है कि ये गाना है ही नहीं भाई 2020 वाला। ये कसूर 2012 सोनू कक्कर की आवाज़ में गाया हुआ गाना है, बहुत पुराना है। सलाम आया है अनवर भाई का, वालेकुम अस्सलाम। खलील कहते हैं यार फजील मेरा नाम खलील है नॉट खल्लू, प्यार से कहते हैं खलील भाई। ठीक है यार अब नहीं आपको पसंद है तो कोई मसला नहीं, प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग। ये दिन ये महीना साल गुजर जाए भाई, ये मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा गाना आया होगा 2020 से 25 में। माशू का भाई कॉकटेल, कॉकटेल कॉकटेल कॉकटेल में कौन से माशू का गाना था यार? कॉकटेल एक तो है भी तो नहीं, कॉकटेल 2026 का एक गाना है, लेकिन जो मूवी आ रही कॉकटेल 2 और 2026 में आई है, वरना फिर 2012 में आई है। 20 से 25 का गाना नहीं है। तो इमरान भाई एक बार फिर से SORRY सॉरी। और झूमे जो पठान एक रिक्वेस्ट है तो ये मैं प्ले कर सकता हूँ, उसके बाद रिक्वेस्ट लेना थोड़ा हम थमेंगे। पठान 2022 मूवी का ट्रैक है, अरेबिक वर्जन 2023 में आया था। ओह नाइस, ठीक है। तो चार गाने अपने पास रेडी हो गए और पहले तो ये तीन गाना प्ले करता हूँ और फिर उसके बाद जो मैं जो पठान पर आएंगे अगर हमारे पास वक्त बचा, वरना फिर पहचान कौन गेम खेलेंगे।

0: खुश रहा एक साथ।
1: हाँ ये लाइन थी जो भाई कह रहे थे, ये ला ठूस ठूस। लो भाई हो गया ये गाना प्ले, आपकी मर्जी का ठूस ठूस। और उम्मीद है कि मजा आया होगा। अक्षय खन्ना की एंट्री है फिलिपराची की आवाज में, बहरीन के सिंगर। वेल अब वक्त आ गया है कि पहचान कौन गेम खेल लिया जाए, और बड़ा ही लाजवाब ये गेम होता है। लिरिक्स जो है बीच से मैं गाड़ कर तैयार रखता हूँ, और आपको गाने का नाम असल में बताना होता है, क्योंकि आज की थीम है 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी गाने हैं वो आप हमसे प्ले करवा सकते थे, और अभी वक्त वही है। 2020 से 2025 तक के गाने जो है मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, और बीच से लिरिक्स मैंने तैयार कर ली हैं। ये लिरिक्स प्ले करूंगा और आपको गाने का एग्जैक्ट नाम बताना है। और अगेन ये बहुत ही ज़्यादा हिट गाने मैं लेकर आया हूँ, उम्मीद है कि आपके लिए आसान होगा और आप इस गेम में बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहला गाना जो आ रहा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और पहला गाना अगर पहचान जाएंगे तो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहचानिए पहले गाने को FM 107 पे जो है 2021 का ट्रैक। छोटा करना, हाँ छोटा, इस वाले को छोटा ही प्ले करा मैंने, ज्यादा लंबा नहीं भाई, ज्यादा प्ले कर देंगे तो मामला खराब हो जाएगा। बाकी ये मैसेज लोगों को पढ़ लेता हूँ। ये सही, आशिकों की कॉलोनी घर ले लिया, लिरिस्ट कौन है ब्रो, 11 तोपों की सलामी है। नहीं बात तो है भाई आशुतोष, मैं तो कहता हूँ 11 क्या दर्जनों तोपों की सलामी दे दो, ये खिलाड़ी आदमी है। बाकी मैसेज जो है वो आ गया है जो समझा है। अच्छा मैं धीरे धीरे करके पढ़ता हूँ, बाकी लोगों के मैसेज देख लेता हूँ। और ये मैसेज किसका है, अगर पारसा खाना है तो क्या, पारसा खाना है तो जोजी खा, थैंक्स। आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है कोशिश करते रहिए खलील भाई। बाकी ये मैसेज अब तो पुराना हो गया। अजीत भाई क्या हाल है, अजीत नहीं फजील है, यारा हो यारा गाना प्ले कर दो। अरे हो गया मेरा भाई, अब तो प्ले नहीं कर सकते, बहुत दूर निकल आए हम। यूसुफ भाई ने बिल्कुल सही पहचाना है इस गाने को जो हमने पहचान कौन में प्ले किया है। फलक एसआरके ने बिल्कुल सही पहचाना है, दानिश आज़ाद ने सही पहचाना है, और सैफ ने भी बिल्कुल सही पहचाना है। फलक सिंगल वाले फलक ने भी सही पहचाना, इबरान ने सही पहचाना, बहुत ही उम्दा अबरार, इबरार ने भी सही पहचाना, रमेश ने सही पहचाना, और अदील बिल्कुल सही जवाब। फिर उसके बाद मकसूद साहब ने भी सही जवाब दिया है, दिलबर अली ने सही जवाब दिया है, शाम ने सही जवाब दिया है, सोहेल ने भी सही जवाब दिया। देखो यार ये तो आसान था, मानना पड़ेगा। एक भाई ने जवाब दिया लेकिन नाम नहीं लिखा है। हेलो ब्रो, हेलो मेरा भाई ए एस सुमोन, कैसे हैं आप। फिर एहसान अली ने सही पहचाना है। इसके लिरिसिस्ट थे लेजेंडरी गुलजार साहब, हाँ ओके, ये पुराना भी बड़ा होता भाई, लोगों को जिनको पता है उनको पता है। एक्चुअली में जो गाना मैंने अभी प्ले किया है पहचान कौन का, वो असली गाना है ये।

0: इसी के बाद हाय हाय दिलबर दिलबर ऐसा ऐसे लगता तलवार कोई खींच रहा भाई।
1: नेहा कक्कड़, धनी भानुशाली और इक्का सिंह को इस गाने के लिए बधाइयां तो देनी पड़ेंगी भाई साहब, गदर गाना है ये। लेकिन इसका जो पहला वर्जन था ना वो भी बहुत जबरदस्त था, उसका भी कोई तोड़ है नहीं भाई साहब। अब आ जाते हैं दूसरे गाने की तरफ और ये गाना है 2022 का। हाँ, और गाया किसने वो कुछ देर में आपको पता चल जाएगा, बड़ा बड़ा आसान हो जाएगा मुझे लगता है कि ये गाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी पीजी है। इसमें हिट सिंगर हैं, गाने का नाम आपको बताना है 666-22-107 पे। मिलना जरूरी है और आपको जवाब देना जरूरी है 666-22-107 पे। ये हथकड़ी जो है ना, जो शाम को 4 बजे आपको ऑटोमेटिक आपकी कार की स्टेयरिंग से बांध देगी, हम लोग करीब पहुंच गए इसको बनाने के लिए। अभी टेस्टिंग चल रही है, बीच बीच में हथकड़ी काम नहीं कर पाती है, वो ज़्यादा गर्मी होती है ना उसमें, हाँ काम नहीं कर रही वो हथकड़ी। जिस दिन मिल जाएगी, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना वो लेट ज्वाइन करना बंद कर देंगे। बाकी अब जवाब की तरफ आते हैं, गाने का नाम आपको बताना है। दानिश आज़ाद ने सही पहचाना, यूसुफ भाई ने सही पहचाना, इमरान साहब ने सही पहचाना है, हेशाम साहब ने सही पहचाना, बहुत ही बढ़िया। कच्चे चावल हैं ये सब, मतलब पुराने पुराने चावल अच्छे वाले हैं। फैसल भाई ने हाय सर लिखा है, उसके बाद कुछ तो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके भाई, ऑडियो भी भेज सकते हैं, लेकिन क्या है ऑडियो का मसला, थोड़ा लेट सुनना पड़ता है, मतलब जब गाना प्ले हो रहा है तब यहाँ पर सुनना पड़ता है। क्या ये गाना थोड़ा टफ है लोगों के लिए, सिर्फ 4-5 लोगों ने पहचाना। मेरे दोस्त का बर्थडे है, उसको विश कर दो फैसल की तरफ से अखिल को। ओके अखिल भाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद फैसल भाई की तरफ से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिल भाई, अगर आप गाना गा रहे होते, आपने कोई एक गाना गाया होता, तो आपका गाना FM 107 के शाम को 4 से 5 इस शो में ज़रूर हम प्ले करते, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। क्योंकि हम बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे भी करते हैं, किसी सिंगर ने अगर गाया है अच्छे गाने और यहाँ पर उनके गाने प्ले हो सकते हैं, तो हैप्पी बर्थडे कह के उनका गाना प्ले हो जाता है। और फैसल भाई की तरफ से आपको ये मेरी तरफ से, फजील की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। बस बिरयानी का इंतजाम कर देना, इतना कहलवा दिया है तो। रिपीट अगेन, अच्छा ठीक है, एक बार फिर से प्ले कर रहा हूँ, जिनके लिए मुश्किल है आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। बस पंछी, ये जो दो पंछी हैं, दो ही पंछी हैं जो पहचान नहीं पा रहे गाने का नाम। गाने का नाम बता दोस्त। फिर उसके बाद ये क्या लिखा है, सोनू निगम कैन बी हर्ड, ब्रदर सोनू निगम बांग्ला कैन बी हर्ड, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 2023 का गाना है, बिल्कुल सही पहचाना है अब्दुल अलीम ने, लेकिन आपको बताना है गाने का नाम। फलक ने बिल्कुल सही पहचाना, गाने का नाम है

Backstreet Bros, Johnny De Gandhi और Jubin Nautiyal की आवाज में गाना है और बहुत ही ज्यादा हिट चला था। अब तीसरा गाना कितने परसेंट लोग, 95% लोग पहचान लेंगे और जो 5% लोग नहीं पहचान पाएंगे उनको सिंगिंग का शौक नहीं है, बस ये कह सकता हूं मैं। इसी के बाद वो लाइन है जो गाने का नाम भी है। अब यहां पर आपको गेस करना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आसान है भाई, फिर से सुन लो चाहे तो। लल्ला लल्ला ला, बताओ भाई। कोड़ा भाई तुम बैठ जाओ, पूरा नहीं गाऊंगा मैं, तैयार बैठा रहता है। एसआर के फलक, एसआर के ने दूसरे नंबर का गाना सही पहचाना था, फिर उसके बाद ये कौन शख्स है, मोहम्मद बिलाल ने सही पहचाना है, कैसर साहब ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, इमरान ने कह दिया कि बाबा आप अनिदारिच है, और ढोलक ड्रम सब लेकर आ गए, बिल्कुल सही पहचाना दानिश आज़ाद ने। हिशाम ने कहा है कि अरे पैर जमे हुए पुराने मेरा भाई, फलक ने कहा है भले दूसरा नाम है, फलक एसआर के नहीं है, लेकिन कोई कहीं पर भी खड़ा हो जाए फलक भाई को देख सकता है, फलक की तरफ अगर नजर करे तो। ओए होए क्या बात ही कह दी मैंने। बताए गाने का नाम क्या है, बिल्कुल सही पहचाना है मेरे भाई आपने भी, और अब्दुल अलीम आपने भी बिल्कुल सही पहचाना है। 100 बार भी रिपीट कर लो हम नहीं पहचान पाएंगे लास्ट दो गाने। गाने का नाम तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि आप गाने के फैन नहीं है यार, कोई मसला नहीं, गाने का नाम है

बात है, आला बहुत सही लोगों ने पहचाना है। हेशाम, दानिश आजाद, कैसर साहब ने बिल्कुल सही पहचाना, फलक और फलक एसआरके ने भी अच्छा खेला, लेकिन इन सब में फलक एसआरके को मैं नाम दूंगा, क्योंकि फलक भाई आपने आखिरी वाला गाना नहीं पहचाना, लेकिन तीनों गाने नहीं बट दो गाने एटलीस्ट फलक एसआरके ने पहचाने हैं। उसके बाद इमरान भाई ने भी बढ़िया खेल का मुजाहरा किया है, और यूसुफ भाई आखिरी गाना नहीं पहचान पाए, ये कैसे हो सकता है? आखिरी गाना तो आपको पहचान लेना चाहिए, ये तो आसान था आपके लिए। खैर कोई मसला नहीं। फिर ये क्या लिखा है, कब ले जाएंगे, क्या देखते रह जाएंगे, क्या है भाई ये, कब ले जाएंगे? एमके भाई क्या लिखना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं लिखना चाह रहे कब बजाएंगे। आवारापन टू का गाना इन्होंने कहा था, 2026 में वो गाना आया है भाई, आवारापन टू की अनाउंसमेंट भी 2026 में आई है, तो माजरत, 2025 तक की थीम थी। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को अब इजाजत लेने का वक्त आ गया, और आपके इजाजत देने का भी वक्त आ गया। आज सबसे खूबसूरत दिन है, तो मुझे इजाजत दीजिए। आज या थर्सडे ना भाई, मतलब एक दिन तो ऐसा होता है ना कि लाश बना हूँ और मैं पड़ा हुआ हूँ, कोई काम धंधा नहीं है भाई साहब, इससे बढ़कर क्या हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे के दिन। और फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 4:56, और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। आखिरी गाना मैं अरिजीत सिंह की आवाज में प्ले करके जा रहा हूँ, आपको पसंद आएगा, झूमे जो पठान, पठान मूवी का ट्रैक है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे संडे को दोपहर के 1 बजे, और ये समर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जहाँ पर आपको स्पोर्ट्स की तमाम जानकारियाँ मिलेंगी, और साथ ही शाम को 4 बजे मिलेंगे आपके अपने मर्जी के गानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और सुनते रहें FM 107, इस खास प्रोग्राम को सुनते रहें, और मेरे साथ यारी बना के रखें, वो कोड़े से जो कोड़ा मैन है ना, उससे यारी थोड़ी कम कर लो भाई। थीम पर आप रहेंगे तो मुझे कोड़े नहीं पड़ेंगे, थीम से आप अलग हटेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि प्ले ना करूं, लेकिन अगर किसी दिन फंस गया कि मैं भी तो इंसान हूं, रोबोट थोड़ी हूं भाई, AI थोड़ी हूं कि मेरे को सब पता है कब कौन से गाने किस जन्म में गाए गए हैं, और कहीं अगर पकड़ में आ गए तो मेरी हो जाएगी सुताई। ठीक है, तो कोड़ों से बचाना आपकी जिम्मेदारी है, बाकी अपना ख्याल रखो दोस्त। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना आपके लिए, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: भाई साहब तमने तो बेरा 5:01 हो लिए, हम तो जानते हो आज किन तो ढोल बजा कर रहे हैं भाई। हैप्पी वीकेंड सारे। मागा जी बातों की बदमाशी करेंगे बढ़िया करके। मुबारक हो जी, हैप्पी वीकेंड। आ जाओ जी जल्दी आ जाओ, हम तो आ लिए। आ भाई म्यूजिक कहाँ गया हमारा? ओ भाई लाडले म्यूजिक नहीं, ये नहीं बजाने का, ये बजा बेटे नहीं करते ऐसा।

0: मैं जी दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब, जब भी वीकेंड आ लिया करे ना भाई, मेरे को तो वो रैप याद आ जाता है कि पांचों उंगली घी में मेरी, मैं करूं जो आवे जी में मेरी, देखो रे घड़ी में मेरी, टाइम कसूता चल है मेरा, काला चश्मा गाड़ के रखूं, आंखें रवे चढ़ी रे मेरी। क्या बात है भाई, यो रैप कौन सा था याद नहीं आ रहा भाई, कौन सा कोई तो रैप था, पर कोई गाल नहीं। अब मैसेज कर दो 6622107 पर, आपके मैसेज बड़े जरूरी हैं। एक बजे तो मैं आ लिया था भाई, एक बजे आया था मैं शो करके गया हूँ, आपको पता है, जिनको नहीं पता। हेलो भाई साहब, दूसरी शिफ्ट आई आपके भाई की। गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम मुबीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन बगदादी अमार भाई, वालेकुम अस्सलाम। और हमजा भाई लिखते हैं शाबाश शाबाश, और ये कह रहा है ये वीकेंड में प्ले होना जरूरी है। भाई जी बहुत जरूरी है, ये ढोल बड़े जरूरी हैं यूसुफ भाई। और सलाम भाई एम के भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, क्या इनके आज अस्सलाम वालेकुम आई। कल स्टूडेंट एबसेंट था, ये क्या स्टूडेंट का नाम लिखो भाई, रोल नंबर को नहीं भाई, इसका नाम यूसुफ है। हाँ डायरी पे साइन करा के लेके आना घर पे यूसुफ भाई, लेट आने पे और एबसेंटी पे हम वो कराते हैं चालान लगाते हैं 5 रियाल का। और ये मैसेज क्या है हमें, फलक भाई वालेकुम अस्सलाम हैप्पी वीकेंड, निशाम साहब वालेकुम अस्सलाम हैप्पी वीकेंड। और यो मैसेज किया है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपको और आपके तमाम लिसनर्स को, मुबीन भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और खादिम हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारा प्यार। और आसिफ भाई कह रहे हैं गुड जॉब भाई, काम बहुत ज़रूरी है। और मौलाना साहब सब खैरियत भाई, आसिफ सब बढ़िया चल रहा भाई, और हम बताओ क्या हाल है भाई, ढंग से सारा। परांठे खाओगे परांठे, आज बहुत दिल कर रहा है भाई, मैं सही बताऊं शो शुरू करने से पहले मेरा कति ऐसा मन कर रहा डोल सा रहा था, मैंने कहा आज तो आलू के परांठे खाएंगे भाई। एक मैसेज है, फौरन नंबर भेजो भाई, फर्स्ट पेमेंट कर देता हूँ। नहीं भाई कोई गल नहीं एक मैसेज है अपोन भी प्रेजेंट है भाई, भाई को बहुत सारा प्यार किया। जाकिर भाई ने अपना नाम बहुत ही कूल तरीके से लिखा है भाई, मुझे जिनके नाम ये जेड से होते हैं ना वो ये कूलनेस दिखाते हैं अपनी, इन्होंने अपना नाम एक्स से लिखा हुआ है व्हाट्सएप पे, जाकिर प्रोफेसर एक्स किदा वीरे और एक मैसेज है इसी भाई का, 1 बजे आना या मत आना, शाम को हाजिरी बराबर लगाना। जी सर जी, आप जैसा बोलेंगे वैसे कर लेंगे। अब तो देख रहा ऑर्डर, देख रहा है सबके, देख रहा है ऑर्डर सबके। एक मैसेज है भाई रिक्वेस्ट शो पर हमारा सॉन्ग प्ले नहीं हुआ, कंप्लेंट है मेरी। देखो जी मारा शो को नहीं भाई, कंप्लेंट शो मेरे को कंप्लेंट करने कोई फायदा नहीं है, मेरा तो शो है नहीं वो, है ना। फजीर भाई आएंगे उनको कंप्लेंट कर लेना संडे को, मैं तो जी दूसरा सरकारी अफसर हूँ ना, मेरे पास ये सब काम नहीं है। एक मैसेज है शुभमंदा का, गुड इवनिंग हाउ आर यू, मैं जी बढ़िया। और एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई क्या हाल है शराज साहब, बढ़िया माशाल्लाह। कह रहे फजील भाई को रस्ते में दबोचो, भाई फजील भाई जो है अभी घर की तरफ निकलेंगे, बड़े आदमी भाई, वेस्ट वे में रहते हूँ ठीक है, जिसको कंप्लेंट करनी है वेस्ट वे में जाना, मैं तो कंप्लेंट करना नहीं चाहता भाई, बहुत दूर रहती हूँ, बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े लोग भाई कबीर भाई ढोल भाई ढोल बजाया तो क्या आर्टिस्ट क्या अरेस्ट करो फजील भाई को, थम ही जाओ अरेस्ट करने। एक मैसेज अलहमदुल्ला आप कैसे शराज भाई, में बढ़िया। उस्ताद जी वो कल बारिश थी उसकी वजह से स्कूल नहीं आया, शर्म को नहीं आवे तना है, बारिश हो रही थी घुटनों तक भी होया करे ना, स्कूल नहीं छोटा करते। एक मैसेज है कबीर कहीं कोस्टल एरिया में बारिश हुई है क्या, मेरे सुनने में तो ये आया था यूसुफ भाई, आई आई डोंट नो, आई होप होपफुल यहाँ पे वो जाए। एक मैसेज कबीर भाई जी भाई क्या हाल है भाई की। और मैसेज है बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, भाई यार मुबीन भाई यार वजील भाई बड़े आदमी यार वेस्ट में रहते हैं यार, कहाँ हमारी बातें सुनेंगे यार वो, ये लोग रिक्वेस्ट करवा रहे हैं तो रिक्वेस्ट सुनेंगे वो किसी की लोल तो भाई जी बात सारी ऐसी है, सबसे पहले भाई हैप्पी वीकेंड साहब को, बढ़िया करके मारे धोरे व्हाट्सएप पे मैसेज गाल दो ठीक है जी, मजे करेंगे। लेकिन उससे पहले कहानी का कुछ बता दूं मैं, कहानी आज की जो है वो मिस्टीरियस है, वो बहुत कर्री कहानी है। एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक टू थैंक समवन जो कि अभी ट्यून इन कर चुके हैं राइट फ्रॉम मलेशिया, तो मलेशिया से एक साहब हैं जिनका नाम है यासिर मोहम्मद यासिर साहब, इनके लिसनिंग टू मी राइट नाउ, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी इन द स्टोरी एंड टन्स ऑफ लव टू यू, आई होप आई डू जस्टिस टू द स्टोरी दैट यू हैव शेयर्ड विद मी, लॉट्स ऑफ लव। तो भाई मैंने आज की कहानी में बाहर से मदद ली है बिकॉज कहानी ऐसी है। यूसुफ भाई लिखते हैं मैं भी यहीं पढ़ा इसलिए पूछा, मैंने कहीं पढ़ा इसलिए पूछा, हाँ सही सही पढ़ा आपने, गलत नहीं पढ़ा। एक मैसेज और अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम करण भाई किदा, और खादिम भाई ने सुन लिया, चलो ठीक है अब 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलेंगे। और वेलकम बैक कौन कर रहा है ये चार्ली भाई, थैंक यू। तो 11 मिनट 2 सेकंड के बाद इंशाल्लाह शाम के इतकार के बाद मिलेंगे, जाना आपने है नहीं। और भाई साहब मैसेज करते रहे ना, दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। हाँ सबसे बढ़िया जगह हो अब तो मैं बता दूँ पहली, इधर उधर मत जाया करो।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अज़कार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: सारी डिटेल्स नहीं थी, बहुत बढ़िया काम किया
1: बहुत, लेकिन ये है कि उसमें कुछ मतलब पुराने वाले भी है सीन्स वगैरह।
0: हाँ मगर सही है, अच्छी बात है, मुझे बहुत
1: मतलब स्टोरी पिछले पार्ट की भी उन्होंने मतलब रखी है इसमें, बहुत मजा आएगा भाई देखने में, तो बहुत एक्साइटेड,
0: मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, मुझे लग रहा है वो देसी देसी जॉन विक वाली फील आ रही है भाई, कसम से मजा ही आ गया मुझे वो देख के ना, मुझे लगा कुछ कुछ अलग होने वाला है इस बारी, और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी थी,
1: मैं इसीलिए करने वाला कॉल किया था कि भाई ने देखी कि नहीं
0: भाई, ऑफ कोर्स भाई सुबह उठते के साथ ही भाई, कैसे नहीं देखेंगे भाई, तो सबसे
1: पहले भी देखे भाई, बहुत
0: कौन से थिएटर में लगी है, सबसे पहले वहीं जाके देखेंगे बढ़िया करके 14 अगस्त को, तो ये तो डन है।
1: और बढ़िया
0: भाई, शानदार, एकदम शानदार, सब शानदार। आप सुनाइए क्या हाल है,
1: आज की स्टोरी है कि नहीं एकदम भयंकर, मजा आ जाना चाहिए
0: भाई। भाई इंशाल्लाह मजा जरूर आएगा, क्योंकि आज की कहानी की हेल्प जो है सीधा मलेशिया से ली हमने, तो हमारे एक जान पहचान वाले में खुद मलेशियन ही है, और उन्होंने जो है काफी मदद करी आज की स्टोरी में, तो काफी ज्यादा डिटेल्स हैं आज की कहानी के बारे में मेरे पास, बहुत कुछ है आज।
1: चलो कोई ना भाई, मिस्टीरियस है तो और मजा आएगा,
0: मिस्ट्री ज्यादा है, सारे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, थ्रिल भी है, थोड़ा बहुत हॉरर भी है, बहुत सारी मिस्ट्री भी है, बहुत कमाल की कहानी है।
1: अच्छा, आज बड़ी कहानी है,
0: ठीक ठाक है, मतलब हाँ ठीक है, बड़ी भी है, मिड स्टोरी है, ठीक है, 20-25 मिनट की होगी आई थिंक, इंशाल्लाह
1: लास्ट यार बड़ी कहानी भी बनती है यार, 30
0: बनती है भाई।
1: भाई मैं तो बोला रात तक चलाओ कहानी, मैं बैठा हूँ इधर तैयार।
0: नहीं, मेरे पास एक्चुअली में कहानी पड़ी हुई है, मैं उसे कई दिनों से शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे होने दिए, वो एक घंटे तकरीबन की कहानी हुई, एक घंटे दो
1: मिनट। भाई कबीर भाई, आप कहानी को शॉर्ट मत किया करो, हम बिल्कुल पूरा नहीं मानेंगे।
0: अच्छा ठीक है,
1: और लंबी सुना दो कोई बात नहीं, हम बैठे हुए तैयार बैठे हैं, हम सुनने के लिए भाई।
0: ओके,
1: किसी से भी आप अभी वोटिंग ले लो, वो कोई नहीं मना कर सकता।
0: भाई कुछ लोग बोल देते हैं कि थोड़ी लंबी हो गई, ये हो गई, इसलिए मैं थोड़ा सा बच बचा के
1: निकलता। कोई नहीं बोलेगा भाई, उसके पास डायरेक्ट मैं पहुंच जाऊं, कैसे कोई बोलेगा।
0: अच्छा ठीक है, नहीं वो काली सुनाऊंगा, बहुत जल्दी सुनाऊंगा वाली, मैं डेफिनेटली सुनाऊंगा, पक्का लिखे आऊंगा वो कहानी। ठीक है
1: भाई,
0: और बाकी सब शानदार, बस शुरू कर रहा हूँ मैं स्टोरी कुछ देर में।
1: ठीक है
0: मेरा भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद जो एक मैसेज आया, भाई एमसी स्टैन को बुला रहा है मुंबई में, कौन बुला रहा है भाई, और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरी मौलाना कबीर साहब, सेकंड क्लास के लिए वेलकम, सेकंड क्लास के लिए वेलकम। भाई हम आए भी नहीं और प्रोग्राम शुरू हो गया, भाई साहब अशफाक भाई आपकी गलती है। और एक भाई कह रहे हैं मेरा नाम सफ़ीर है, आप चार्ली बोल देते हैं, भाई आपकी जैसी डीपी चार्ली भाई लगा रखी है सफ़ीर भाई, बहुत सारा प्यार सफ़ीर भाई को, सफ़ीर अहमद। और राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम, और गुड इवनिंग कबीर भाई, गुड इवनिंग मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक भाई उधर कॉल कर रहे हैं, एक भाई इधर कॉल कर रहे हैं, इनकी भी ज़रा कॉल उठा ली जाए, एक सेकंड रुको भाई। अस्सलाम वालेकुम।
2: अरे वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप?
0: क्या हैं भाई के, बढ़िया
2: जी, अल्लाह का शुक्र है, दुआ है भाई की।
0: बस भाई शानदार है भाई, एकदम बढ़िया चल रहा है, तुम कड़क। और सुनाओ कहाँ निकले हो,
2: क्या सिचुएशन चल रही है आवार अपन की?
0: भाई आवारापन की सिचुएशन ऐसी, आज ट्रेलर ड्रॉप हुआ है और एक गाना भी आया है तेरा मेरा रिश्ता बैले वर्जन, तो वो भी लॉन्च हुआ है अभी, बहुत बहुत बढ़िया लिरिक्स हैं, बहुत शानदार लिरिक्स हैं एक्चुअली में।
2: यार उसमें एक्ट्रेस यार पसंद वाली नहीं
0: है। अरे एक्टर्स का क्या करना है, मैं तो इमरान हाशिफ हो गए भाई, पिछली वाली पिक्चर में उन्होंने मार ही दिया था श्रिया सर।
2: मेरा भी बड़ा मन था, कई दिन से मतलब सुन रहा हूँ आपको, बताने सारे लिसनर्स हैं, आवारापन आवारापन आवारापन, लेकिन जब मैंने देखा यार उसमें एक्ट्रेस नहीं यार।
0: अरे नहीं, उसका रोल सिर्फ जो है एक स्ट्रेट फेस रखने का है भाई, मेन पिक्चर रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर शिवम जो इमरान हाशमी प्ले कर रहे हैं, बस अपने को उससे मतलब।
2: पहले देख के आओ रिव्यू, तो उसके बाद जाएंगे
0: भाई, हम तो पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाएंगे भाई, उसके बाद देखेंगे।
2: आप पहले जाओ देख के आओ रिव्यू दो, उसके बाद जाएंगे
0: भाई। रिव्यू अच्छा ही है हमारी तरफ से, हम कह ही नहीं सकते पूरा, भाई ने बोला तो बोलने का, भाई है तो भाई है, साफ
2: सीधा। मैं पर्सनली ले लूंगा, डोंट वरी।
0: ठीक है, डन है डन है डन है, मैं जरूर जरूर रिव्यू दूंगा, मैं एक बार देख के आ जाऊं फिर मैं जरूर रिव्यू दूंगा, डन है।
2: ओके बॉस,
0: ठीक है भाई, चलो ख्याल रखो, शुभ भाई, हैप्पी वीकेंड भाई।
2: अभी सुनते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी?
0: हां बस स्टार्ट कर रहा हूं मैं।
2: ओके भैया, ऑनलाइन है
0: फिर, हाफिज। और शुभ भाई के बाद अस्सलाम वालेकुम, ये अब्दुल करीम भाई कहते हैं 5 से 7 आप स्टोरी बोलते रहो, हम लोग सुनने के लिए तैयार है भाई, बहुत प्यार भाई। भाई रिक्वेस्ट है 5 रियाल का ढोल बजा दो जरा प्लीज। कामरान भाई के लिए, भाई कामरान ये तुम्हारे लिए, कामरान भाई के ढोल बजाओ भाई सारे।

0: क्या हाल है भाई के? बढ़िया
1: धुआं काट रहे वेस्ट में
0: धुआं काट रखा भाई वेस्ट में तक पहुंच गए क्या? फजील भाई को उतारोगे बिल्डिंग से? क्या हो गया?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताए कैसे हैं आप हमारे कबीर भाई? कैसे हैं?
0: बढ़िया भाई, एकदम शानदार चल रहा है सब।
1: भाजन अभी हमारे शायद एक भाई आपसे बात कर रहे थे लंबी स्टोरी के लिए, मेरी हाँ। उनकी भाषा से लग रहा था, वो लखनऊ साइड के हैं
0: भाई।
1: उन्होंने एक बात कही।
0: कौन सी?
1: जी जी
0: कौन सी?
1: की स्टोरी लंबी रहने दो।
0: हाँ स्टोरी लंबी।
1: आपकी स्टोरी सुन रहा था वो सोल्जर वाली।
0: हाँ
1: कब खत्म हो गई? मुझे गुस्सा आ रहा था कि खत्म क्यों हो गई।
0: अरे भाई साहब और क्या तोड़वाऊं, उसका हाथ पैर तो तोड़वा चुका था एंड में बचा रहा हूँ, जल्दी से बचा लिया मैंने उसको।
1: इतना इंटरेस्टिंग हो गया था कि चलती रहने से लगा पिक्चर की तरह।
0: भाई चलती रहने दो। नहीं भाई आज है बढ़िया है, आज 25 मिनट के आसपास की तो होगी आज की कहानी, मुझे उम्मीद है जहाँ तक मैं तैयार करके।
1: अरे माशाल्लाह प्लीज हाँ। भेज देना आज। कोई सवाल नहीं पूछा आपने?
0: सवाल को नहीं भाई, आज वीकेंड है, ऐसी गप्पे लड़ा रहे हैं हम तो, मजे आ रहे हैं।
1: आज छूट दे दी।
0: हाँ छूट दे दी। आज जान दो यार, आज वीकेंड है, हल्का रखो दिमाग, बढ़िया ड्राइविंग फोकस करो, और तो क्या है।
1: क्या लोगों के मानसिक तनाव दोगे? सवाल पूछ के छोड़ डालेंगे।
0: आज कोई मानसिक तनाव नहीं भाई, आज कोई मानसिक तनाव नहीं भाई, आज सीधा स्टोरी सुनाएंगे बढ़िया वाली।
1: मिलने का प्रोग्राम हो रहा था, दो हफ्तों से गोली दे रहे हो
0: भाई।
1: मुझे लग रहा है किसी दिन मुंसा आके नीचे धप्पा करना पड़ेगा। आ जाओ भाई नीचे।
0: अरे ना भाई शीशे वाली बिल्डिंग है भाई, नीचे आ जाना, कोई दिक्कत को नहीं भाई, ऐसी मोस्ट वेलकम है, हम तो घर पे रहते हैं।
1: माशाल्लाह
0: माशाल्लाह।
1: कबीर भाई ऐसे प्यार दीजिए हमें,
0: बहुत प्यार भाई,
1: हमारा
0: प्यार।,
1: प्यार भी आपके साथ है।
0: थैंक यू मेरा भाई,
1: ऐसे ही स्टोरी सुनाते रहिए,
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: मुलाकात करते रहिए।
0: डन डन नेस भाई, अभी बस शुरू करता हूँ मैं स्टोरी।
1: ओके कबीर भाई, हैप्पी वीकेंड।
0: हैप्पी वीकेंड भाई को, हैप्पी वीकेंड भाई को। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम।
1: हैप्पी वीकेंड।
0: और सबसे मैंने इनके बाद मैसेज किया है, आज हो रहा है कि बहन अभी बताता हूँ स्टोरी क्या है, और भाई के लिए अच्छा और एक मैसेज है थर्सडे के लिए, थैंक यू सो मच भाई। ये करीम भाई को पूछें कि इतने दिन कहाँ थे, गैर हाजिरी लगी हुई है काफ़ी। करीम भाई तो आके चले, कल आए थे, आज नहीं आए। चलो मैं कहानी शुरू करता हूँ, मैं आई विल नॉट वेस्ट सम मोर टाइम। तो आज की जो स्टोरी है, आई जस्ट वांट टू से कि इसमें सब कुछ है, इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री ज़्यादा है, एंड जिन्होंने मेरी हेल्प करी है उनका नाम जरूर मैंशन करूँगा। सो एक प्रोमो के बाद मिल रहे हैं, आज जल्दी स्टोरी शुरू कर देता हूँ, आई नो आप वेट कर रहे हैं।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, देसी।
0: हाँ जी भाई, दिल से देसी। मैं जरा चेक कर लूँ म्यूजिक बराबर चल रहा। हाँ जी, आज इस पे सुना देंगे, चलो इसी पे सुनाते। तो मैं आज का जो किस्सा है उसको शुरू करने जा रहा हूँ। पूरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ते क्या? सवाल तो बहुत बड़े हैं भाई के लिए, सवाल तो बहुत बड़ा है भाई के लिए। क्या सवाल है पूछो ज़रा। ओके चलो मैं आज का किस्सा शुरू कर रहा हूँ, आई विल नॉट वेस्ट एनी टाइम फर्दर। सो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस गाने का मकसद किसी जज्बात को खुशी पहुंचाना नहीं, गाने किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, इट इज़ वेरी वेल रिपोर्टेड। एंड स्टोरी शुरू करने से पहले क्रेडिट देना चाहूँगा मैं एक शख्स को, मिस्टर यासिर फ्रॉम मलेशिया कुआलालंपुर से, उन्होंने मुझसे बातचीत करी, बहुत अच्छे से स्टोरी के बारे में सब कुछ बताया, एंड ही इज़ वर्किंग इन द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। तो शुरू करते हैं आज का किस्सा, एंड आई होप आपको पसंद आए, वॉल्यूम बढ़ा ली जाए। मैं दुहा वाला कबीर FM 107 से, और आज का जो किस्सा है ना, इसे सुनाने के लिए मैं आपको कई साल पीछे ले चलता हूं, क्योंकि ये बहुत ही खास जगह की कहानी है, पर मैं इसे शुरू से शुरू करूंगा। ये किस्सा है जून 1972 का, 1972 ऑन द 13th ऑफ जून एक नौजवान लड़की अपने हस्बैंड के साथ थी, इनका नाम था हैना, और हैना अपने हस्बैंड के साथ एक ब्लैक जैक टेबल के पास बैठी हुई थी। जिन्हें नहीं पता ब्लैक जैक, इट्स अ गेम जहां पर लोग जो है पैसे लगाते हैं, और ये जगह पे बहुत बहुत ज्यादा लोग लुट जाते हैं, कुछ कमा लेते हैं, कुछ यू नो किस्मत बदलती है यहां पे। पर ये जो ब्लैक जैक की टेबल थी, ये थी जेंटलिंग हाइलैंड्स कैसीनो में, और ये सेंट्रल एशिया का बहुत बहुत प्रोमिनेंट

हिस्सा है। जिस रूम में हैना थी अपने हस्बैंड के साथ, ये जगह बहुत लाउड थी। इट वॉज अ रूम फिल्ड विद पीपल, हर जगह चैटिंग, हर जगह लाफिंग, लोग हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, धुआं धुआं पूरे कमरे में सिगरेट का। और हैना इस वक्त पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने जज्बात जो हैं वो किसी तरीके से कंट्रोल करके रखें, बिकॉज शी वॉज वेरी एंग्शियस। वो बहुत बेचैन हो रही थी क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने सारे चिप्स लगा दिए थे दांव पर, जितने कमाए थे सारे के सारे लगा दिए थे। हस्बैंड ने जो अभी तक दो कार्ड्स तीन कार्ड्स जितने निकाले थे उसमें 19 नंबर आया था। अब मैं बताऊं 19 नंबर बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लैक जैक में होता क्या है कि जो आपके कार्ड्स का टोटल है वो 21 आना चाहिए, राइट, या 21 के आसपास होना चाहिए। अगर वो 21 से ज्यादा है तो यानी बस्ट हो जाएगा, मतलब आप हार गए हैं। तो 19 इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। और वो इस वक्त डीलर के अगेंस्ट खेल रहे थे, जो डीलर था। अब उसका मकसद क्या है, अगर वो हैना के हस्बैंड को हराना चाहता है तो उसे 21 के आसपास नंबर लाना होगा या 21 नंबर लाना होगा। अभी फिलहाल उसके दो पत्ते सामने थे, वन फेस अप वन फेस डाउन। जो फेस अप था उस पे ऑलरेडी 10 नंबर आ चुका था। अब हैना सोच रही थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि अगर दूसरे पत्ते पर भी 10 आ गया तो टोटल 20 हो जाएंगे और ये लोग हार जाएंगे। डीलर ने दूसरा पत्ता ऊपर करा और उसमें थे 4, 14, बट दैट्स गुड। मगर डीलर के पास एक रूल होता है कि वो तब तक खेलता रहेगा जब तक या तो वो 17 नहीं ले आता या वो हार नहीं जाता। डीलर ने फिर एक और पत्ता आगे किया और नंबर आया 8, पूरा हुआ 22 और डीलर हार गया। हस्बैंड और हैना दोनों बहुत खुश थे क्योंकि सारी की सारी रकम जो उन्होंने लगाई थी वो भी जीत ली, डबल अमाउंट ने मिला, सब लगाया हुआ जीत गए। दोनों बेइंतहा खुश थे और वो जानते थे उनकी किस्मत किस कदर चमकी है। दे जस्ट वन एंड डबल द मनी दे हैड। हैना ने सारे के सारे चिप्स उठाए, दोनों के दोनों, ये जो पूरा कपल था ये खुशी के साथ पूरी एनर्जी के साथ कैशियर के पास जा रहे थे और लोग इस पूरे कमरे में तालियां बजा रहे थे, खुशी मना रहे थे सबके सब कि कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, सब जगह शोर था। एंड ये दोनों कैशियर के पास गए, वहां पे वो चिप्स दिए, उसके बदले इन्होंने कैश लिया। और हैना ने बोला अपने हस्बैंड को, यू नो दिस इज ऑसम, एक काम करते हैं, अब अच्छा खासा हमने कमा लिया है ना, यहीं पे पास में रूम ले लेते हैं, स्टेकेशन भी हो जाएगा हमारा, है ना, बढ़िया वेकेशन हो जाएगा, विल हैव फन, मजा आ गया यार, जीत गए। मगर जैसे वो अपने हस्बैंड को ये बोल रही थी, उनका हस्बैंड वो सिर्फ सुन रहा था और वो कुछ बोलना चाह रहा था और बहुत हिम्मत बहुत जान लगा कि उसने बोला, है ना हम जीत गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार एक बात बोलूं, आई फील लकी यार, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें और खेलना चाहिए, मैं और जीत जाऊंगा, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, प्लीज यार हैना। जब उसने ये बोला तो ऑब्वियसली हैना को बहुत गुस्सा आया। हैना ने बोला, नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, चलो यहां से चलते हैं। पर हैना का जो हस्बैंड था वो मानने को तैयार नहीं था, वो बोला थोड़ा सा एक स्लॉट मशीन बस एक बार। एंड वो ये कह के जल्दी से मशीन के पास गया और चिप्स खरीदने के लिए। And she was like, come on. और फिर वो अपने हस्बैंड के पीछे पीछे गई, उसने खेलना शुरू किया एंड इट वॉज नॉट गोइंग वेल, वो इस बार हारने लगा। और वो बोल रही थी अपने हस्बैंड से, मैं तुम्हें बोल रही थी रुक जाओ, मैंने तुम्हें बोला था मत करो, पर वो मान नहीं रहा था। 2 घंटे तक खेला वो, 2 घंटे के बाद सब उड़ा दिया उसने, जो भी जीता था, मतलब बस थोड़ा सा अमाउंट बचा था, वो बचा था होटल की अमाउंट को कवर करने के लिए, क्योंकि रात भी तो गुजारनी है, कहाँ रहेंगे, तो बस उतना ही अमाउंट बचा था, जस्ट इनफ। और हैना ने कहा, प्लीज अब चलें, प्लीज लेट्स गो नाउ। और वो जैसे ही चलने लगी, उसका हस्बैंड गया नहीं, हस्बैंड ने बोला, एक बार और, बस एक और बाजी खेलें तो बस एक बार और। और उसने वो बाजी खेली जिद में आके, एंड ही लॉस्ट जो होटल में रुकने के लिए चाहिए थे पैसे, वो भी खत्म, वो भी ये हार गया। अब इनके पास रहने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, अब इन्हें घर जाना पड़ेगा।

नो चॉइस. अब आप सोच लीजिए, इमेजिन द ड्राइव, अगर आप एक कपल हैं, आप आपकी पार्टनर से लड़ाई हो जाए और आपको एक लंबा सफ़र घर की तरफ तय करना हो, तो वो ड्राइव कैसी होगी? यू कैन इमेजिन दैट. तो ये जो ड्राइव थी, अच्छी खासी लंबी ड्राइव थी, और हैना जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी. वो गाड़ी तक जाने तक बस चिल्लाए जा रही थी, अपने हस्बैंड पे बोल रही थी, यू कंप्लीटली लॉस्ट इट, तुमने ये क्या किया? डू यू हैव एनी आइडिया, ये तुमने क्या किया? एंड अभी वो चुप था, उसे पता था उसकी वाइफ सही है, वो उससे बहस नहीं कर सकता इस वक्त. 20 मिनट के बाद दोनों गाड़ी में थे, पैसेंजर सीट पे हैना बैठी हुई थी और उसके हस्बैंड जो थे वो गाड़ी चला रहे थे. अभी जो रास्ता था ये इसकी कहानी है. तो ये रास्ता एक पूरा आइसोलेटेड स्ट्रेच है, बहुत लंबा रास्ता, और ये देर रात को निकले थे और लड़ लड़ के दोनों इतने थक चुके थे कि अब एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं थी, ना बात कर रहे थे. हैना जो थी वो अपने राइट हैंड साइड पे देख रही थी बाहर की तरफ, एंड शी वॉज लुकिंग एट द एरिया. बहुत सारे पेड़ थे, जंगल था, पूरा कंप्लीट डार्क, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, सिर्फ गाड़ी की लाइट थी उस सड़क पे पड़ रही थी. और हस्बैंड एकदम चुप था. कुछ देर के बाद उन्होंने अपने जूते उतारे और सीट पे अपने आप को बिल्कुल कर्ल अप करके सोने की कोशिश कर रही थी. शी जस्ट वॉन्टेड टू स्लीप, कि बस मैं बस सो जाऊं, घर आ जाए मेरा, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वॉन्ट. मगर फिर कुछ दूरी के बाद कार में से अजीब आवाजें आने लगी, और बड़ी अजीब सी आवाज थी, और वो खड़ खड़ खड़ खड़ करती हुई गाड़ी, ऐसा लग रहा था कि अभी रुक जाएगी. एंड उनकी नींद टूटी है ना कि, एंड शी वॉज लाइक, ओ माई गॉड, सीरियसली अब ये भी होना है क्या? और उसका जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ की तरफ देखा, बोला, अरे यार अब मैं क्या करूं इसमें, मेरी गलती थोड़ी, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. उसने अपनी गाड़ी को संभालने की कोशिश करी और उसने जो है गाड़ी को साइड में लगाया, राइट हैंड साइड पे गाड़ी रोकी. एंड वहां पे जब साइड में लगाई तो गाड़ी वापस स्टार्ट नहीं हो रही थी, एकदम बंद हो गई, जैसे इंजन पूरा फेल हो चुका है. एंड हैना ने बहुत सार्कास्टिकली कहा, वाओ, जस्ट वाओ, क्या किस्मत रही है हमारी आज रात, है ना, माय गॉड. और वो बस ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन दो से, एंड शी रियलाइज्ड कि वो ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहां पर पूरे रास्ते उन्हें आते हुए भी कोई गाड़ी नहीं दिखी थी, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई भी नहीं, इट वॉज कंप्लीटली आइसोलेटेड. और इस वक्त जब उनकी गाड़ी खड़ी है तो भी कोई आ नहीं रहा है, देयर वाज नो वन, कंप्लीट साइलेंस. ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी और प्लेनेट पे ही चले गए हों, एक आवाज नहीं, कुछ नहीं, इट वाज कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस. हैना का जो हस्बैंड था ऑब्वियसली उसे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं ही इस प्रॉब्लम का आर्किटेक्ट हूं, मैंने ही सब कुछ किया है, क्योंकि अगर मैं जल्दबाजी ना करता तो आज हम सुकून की नींद तो ले रहे होते होटल में. एंड ही न्यू दैट रियली रियली वेल. तो उसने हैना की तरफ देखा और बोला, आई डोंट थिंक कोई आएगा, है ना, आई एम रियली सॉरी यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं पास में एक जगह मुझे लगता है, मैं वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ से पेट्रोल लेके आता हूँ. आई थिंक पेट्रोल ख़त्म हो गया, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था यार कि ऐसे हो जाएगा. एंड हैना ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, शी वॉज लाइक, रियली, अब तुम इस रात को तुम्हें ये भी करना है, राइट? उसने बोला, है ना, तुम्हें क्या करूं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, हम यहां बैठे रहे सुबह तक, दैट्स व्हाट यू वांट? हैना ने बोला, यू नो व्हाट, फाइन. उसने बोला, डोंट वरी, आई विल बी बैक. और हैना का जो हस्बैंड था वो गाड़ी से उतरा, उसने गाड़ी की डिग्गी खोली, उसमें से जो कैन था वो निकाला और उसने बोला, मैं जल्दी आता हूँ. और वहां से हैना के सामने उसे जाता हुआ नजर आया वो, और फिर अंधेरे में वो गायब हो गया. हैना जो थी वो गाड़ी में ही रुकी. एंड हैना ये जानती थी कि उसके हस्बैंड को आते आते आधा घंटा, 40 मिनट या मैक्सिमम एक घंटा तो लग ही जाएगा. सो उसने डोर्स को लॉक किया गाड़ी के, एंड उसने पूरी कोशिश करी, लेट्स जस्ट स्लीप, और वो नींद लेने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी इस वक्त. जब उसे हल्की नींद लगी तो 10 मिनट के अंदर अंदर वापस उसकी आंख खुली. और इस वक्त उसकी जब आंख खुली तो फॉर अ सेकंड उसे समझ में नहीं आया कि होता है ना, आप एकदम से

आप कहीं सो जाते हैं, आपकी आँख खुलती है, आप सोचते हैं ये मैं कहाँ आ गया या कहाँ आ गई। तो इसके साथ हुआ, शी रियलाइज, ओ यस, गाड़ी में फंसी हूँ मैं। और है ना, वापस अपनी सीट पर कंफर्टेबल होने लगी और फिर से आँख बंद करने की कोशिश कर रही थी। इतने में उन्हें एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी गाड़ी की रूफ पे से, ऊपर से। शी वाज लाइक, ये क्या आवाज थी? अब वो देख नहीं सकती क्योंकि ये आवाज गाड़ी के रूफ के ऊपर से आ रही है। बाहर दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट्स का नामो निशान नहीं था, सो देयर इज नो वे कि वो ऊपर देख सकें कि क्या है। एंड वो बाहर निकलना नहीं चाहती थी बिकॉज इट इज नॉट सेफ। एंड शी रिमेम्बर्ड कि गाड़ी जहाँ पे पार्क हुई हुई है वो एक पेड़ के पास है, तो क्वाइट ऑब्वियसली शायद पेड़ की कोई वो लो हैंगिंग ब्रांच होगी, कोई टहनी होगी, कुछ होगा जो गाड़ी के ऊपर गिरा होगा और इसलिए शायद ये आवाज़ आ रही होगी। हवा होगी उस वजह से लकड़ियाँ गिर रही होंगी, एनीथिंग कैन हैपन। एंड देन वो बस सामने देख रही थी, एंड शी वॉज वेटिंग। और ऐसे बैठे बैठे उनकी एकदम से आँखें बंद होने लगी, उन्हें नींद आने लगी, पर वो सो ही नहीं पा रही थी। कुछ देर में वो जो आवाज गाड़ी की रूफ के ऊपर से आ रही थी वो बड़ी अजीब सी थी, बहुत अजीब सी। इट वॉज लाइक जैसे कोई लकड़ी या कुछ तो है जो बार बार गाड़ी के ऊपर स्क्रैच हो रहा है, हवा है, टहनी है। शी वॉज रियली रियली कन्फ्यूज्ड। फिर उन्होंने सामने की तरफ देखा तो उन्हें हेडलाइट्स नजर आई, यानी एक गाड़ी सामने से आ रही थी। जब उन्होंने गाड़ी देखी देन शी वॉज लाइक ओके फाइन, उन्हें लगा उनका हस्बैंड जो है वही आया होगा मदद लेकर किसी के साथ गाड़ी में, एंड दैट्स व्हाई इज यार ओके अब फाइन, अब हम घर पहुंच जाएंगे। और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में थी वो, बट वो जो थंपिंग थी वो साउंड की, वो बार बार बार बार आ रही थी। पर उनका दिमाग कह रहा था स्टे काम स्टे काम। वो जो हेडलाइट उन्हें दिखी गाड़ी की, उन्हें लगा अब गाड़ी उनके पास रुकेगी, और वो गाड़ी लिटरली उनके बहुत करीब आ रही थी, बहुत करीब। अभी रोशनी इतनी थी, हेडलाइट जब ज़्यादा होती हैं तो आपको नज़र नहीं आता अंदर कौन है क्या है। और वो बस ये सोच रही थी कि बस अभी उनका हस्बैंड निकलेगा, गाड़ी रुकेगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और वो बहुत ही कॉशियसली गाड़ी को देख रही थी। वो गाड़ी आई धीरे धीरे उनकी गाड़ी के पास, एक सेकेंड के लिए रुकी और उसके बाद इतनी तेजी से भगाई गाड़ी जिस बंदे ने, जो भी उसके अंदर था। एंड शी वॉज लाइक व्हाट हैपेंड, क्योंकि वो तो उम्मीद कर रही थी कि उनका हस्बैंड मदद लेके आया होगा इस गाड़ी में और गाड़ी से अभी वो उतरेगा, बट ये क्या था? गाड़ी धीरे धीरे करीब आई और एकदम से इतनी तेजी से चली गई, कौन था ये पागल? एंड शी वॉज लाफिंग एट द सेम टाइम वेरी एंग्शियस कि क्या होगा। मगर गाड़ी के ऊपर से उस रूफ पे से आवाजें लगातार आ रही थी, लगातार, इट वॉज परसिस्टेंट। और हैना वॉज अनॉयड, पहले जो उन्हें टहनी वहनी लग रही थी, अब शी वॉज फ्रीक्ड आउट क्योंकि उनका हस्बैंड अभी तक आया नहीं था और 40 मिनट के आसपास हो चुके थे ये आवाज सुनते हुए। शी डजंट नो कि वो किधर जाए, क्या करे, वो उस जगह को जानती भी नहीं है। और उतरने से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और ऊपर से एक कार का एकदम से जाना वो सुपर वियर्ड। तो व्हाट शुड आई डू? वो वेट करती नहीं, लेकिन उनका हस्बैंड नहीं आया। एक घंटे के आसपास हो गया है ना, जो थी वो बस कहीं खोने की कोशिश कर रही थी अलग अलग ख्यालों में, मगर परेशानी उन्हें लगातार बेचैन कर रही थी। एक बार उन्होंने कोशिश करी भी कि गाड़ी से बाहर उतरूं, देन शी सेड लाइक नो नो नो नो नो नो नो नो, मैं नहीं उतरूंगी। उन्होंने गाड़ी को लॉक ही रखा। उन्होंने ये सोचा कि मैं गाड़ी से उतरूंगी, मैं अपने पति को ढूंढने जाऊंगी, पता लगा इतने अंधेरे में वो मुझसे पहले गाड़ी तक आ गया तो फिर वो मुझे ढूंढेगा, एंड ऑलरेडी हम इतने परेशान हैं और ये परेशानी और बढ़ जाएगी, तो लेट मी जस्ट स्टे पुट, मैं गाड़ी में ही रहती हूँ। एंड टाइम जो था वो कट नहीं रहा था। मगर इतने में एक और चीज हुई, उनको सामने से एक गाड़ी फिर से आती हुई नजर आई। इसकी भी हेडलाइट्स फुल बीम पे थी, हाई बीम पे गाड़ी थी। उन्होंने देखा ये गाड़ी जो है उनकी तरफ आ रही है, ये गाड़ी जो है इसके ऊपर भी लाइट्स हैं, यानी ये पुलिस की गाड़ी लग रही है। शी वॉज लाइक आ, मेरे हस्बैंड ने ये किया, उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया तो गाड़ी आ रही है पुलिस की, अब मैं समझी। नाउ शी वॉज रिलैक्स, ओके फाइन अब हम बच गए। पर उसने देखा कि वो जो गाड़ी जो थी वो हैना की गाड़ी की तरफ आ रही थी, तो हैना की गाड़ी इज पार्क्ड ऑन द राइट हैंड साइड और पुलिस वालों की गाड़ी

जो थी वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रही थी और हैना की गाड़ी के थोड़े सी दूरी पर गाड़ी एकदम से रुक गई. एंड हैना वॉज कन्फ्यूज्ड कि गाड़ी इन्होंने वहाँ क्यों रोकी. उस गाड़ी में से दो ऑफिसर निकले और दोनों के पास गन्स थी. एक ऑफिसर जो गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड से उतरा था वो उतरा और उसने अपनी गन को हैना की तरफ तान दिया. एंड हैना वॉज लाइक अरे अरे अरे अरे ये क्या कर रहे हैं, मेरी तरफ क्यों निशाना लगा रही है, व्हाट इज दिस. शी वॉज कन्फ्यूज, उसने शीशा नीचे किया और बोला कि ऑफिसर व्हाट इज रॉन्ग विद यू. और वो डर रही थी शीशा पूरा के पूरा ऑन करने से खोलने से कहीं कहीं गोली वोली ना मार दें. पर ऑफिसर जो था वो उसकी तरफ देख कर कांप रहा था. शी वॉज कन्फ्यूज कि ये कर क्या रहा है, ये व्हाट आर दे डूइंग. फिर उसने नोटिस किया कि नहीं ये गोली जो है, ये जो निशाना है गन लेकर, वो हैना की तरफ नहीं, वो हैना की गाड़ी की रूफ की तरफ लगाए हुए हैं. और वो बहुत डर गई, उसने शीशा चढ़ाया. अरे बाप रे, ये जो मैं थंपिंग इतनी देर से सुन रही थी ये क्या थी. शी हैड नो आइडिया. हैना ने बहुत जरा सा ग्लास खोला और पुलिस वाले चिल्ला रहे थे लिटरली. जब शीशा उसने खोला, शीशा खोला तो दोनों पुलिस वाले चिल्ला रहे थे, मैडम मैडम बार आई डोंट लुक बैक, पीछे मत मुड़िएगा. और वो लगातार बस यही कहे जा रहे थे, गाड़ी से बाहर आइए. और वो समझ नहीं पा रही थी व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है. उसको बोला मैडम इधर आइए, गाड़ी की तरफ आइए, पीछे मत देखिए. और वो गाड़ी से निकली, दबे पांव झुकी हुई, और जो ऑफिसर्स कह रहे थे बस वो फॉलो कर रही थी. शी वाज फॉलोइंग एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग. और बार बार उसे कह रहे थे पीछे मत मुड़ना. एंड शी वाज जस्ट वॉकिंग. और वो पुलिस की गाड़ी की तरफ पहुंची, गाड़ी के अंदर बैठी और गाड़ी बंद हुई. और उसने फिर सुना कि ऑफिसर जो हैं वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर. एंड आउट ऑफ एंग्जाइटी एंड क्यूरियोसिटी कि आखिर है क्या, हालांकि उसे मना किया था मत देखना, बट कोई भी इंसान होगा तो जानना चाहेगा. और जब उसने गाड़ी के ऊपर देखा, शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग सो बैडली और बुरी तरह से रोने लगी. शी कुड नॉट बिलीव कि ये क्या है. वो ऑफिसर्स भी थे, वो भी उतने ही हैरान थे, बिकॉज दे कुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग एट ऑल. एंड दोनों के दोनों ऑफिसर्स जो गोली चला भी रहे थे, अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, उनके तक हाथ कांप रहे थे. दे वर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट, जो उनके सामने वो देख रहे हैं. तो दरअसल जब हैना ने सामने देखा तो उसे नजर आया कि उसकी गाड़ी के ऊपर एक औरत है, एक अजीब गरीब दिखने वाली औरत, जिसके मुंह से खून ही खून निकल रहा है, उसके चेहरे पर खून है, उसके नाखून पता लग रहे हैं दूर से भी कि काले काले हो चुके हैं, और वो गाड़ी पर ऊपर से खरोंच मारे जा रही है. और उसके हाथ में कुछ तो है, शी कुड नॉट सी, मगर जब ऑफिसर्स ने लगातार उस पर गोली चलाई तो वो चीज़ उसके हाथ में थी वो गिर गई. वो ऑफिसर्स उसके पीछे भागे, मगर जब पीछे भागे दे कुड नॉट कैच हर. और उनके समझ में नहीं आया कि जब उन्होंने गोली चलाई तो इतने तो बेकार निशानेबाज नहीं कि गोली ना लगी हो. बट वो लड़की हैना के सामने लिटरली गाड़ी के ऊपर से कूदी, और ऐसा लगा नहीं इंसानों की तरह कूदी, और बिल्कुल जानवर की तरह वो अंदर फॉरेस्ट की तरफ भागी. ये ऑफिसर उसके पीछे भागे, उसे पकड़ नहीं पाए, गाड़ी के ऊपर उन्हें एक उंगली का हिस्सा मिला. और जब वो फॉरेस्ट के अंदर गए तो उन्हें हैना के हस्बैंड की बॉडी मिली. एंड हैना वॉज इन अ डिफरेंट शॉक ऑल टुगेदर. ये हैना के लिए भी और ऑफिसर्स के लिए भी समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल थे. दे इवन ट्राइड टू क्लिक अ फोटो जो कि धुंधली है, बट वो पुलिस रिपोर्ट्स में कभी सामने नहीं आई. इट वॉज ओनली कैप्ट देयर. उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बनी, मगर टेस्टिमनी देने वाले दो ऑफिसर्स हैं एंड दे स्टिल डोंट नो. ये जिस जगह का वाकया है ये है करक हाईवे मलेशिया. ये बहुत ही वेल नोन हॉन्टेड हाईवे है एंड यहाँ पर अक्सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कहा जाता है कि किसी किस्म की कम्युनिटी रहती है जंगलों में जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और देर रात तो यहाँ से बिल्कुल भी गुजरना नहीं चाहिए. दैट इज़ द रीज़न वाई कि कोई भी गाड़ी आसपास नहीं जा रही थी. एंड उसके अलावा एक येलो गाड़ी, हमेशा छोटी गाड़ी देखी जाती है वहाँ पर, और किसी को नहीं पता कि वो
बार बार उस रास्ते पे क्यों

नजर आती है, हालांकि वो हैना को नहीं दिखी थी, मगर ऑब्वियसली वो उस जगह पे नजर आती है। ये जो किस्सा हुआ उसके बाद से का फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इस जगह को अवॉइड करते थे लोग मोस्टली। अभी भी लोग कोशिश करते हैं कि लेट्स जस्ट अवॉइड द एरिया, कोई भी शाम के बाद यहाँ से निकलता नहीं है। बट व्हाट हैपेंड वाज सो वाइल्ड एंड बिजार कि इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी जो रिपोर्ट पुलिस वालों ने भी बनाई, दे जस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन। उन्हें खुद नहीं समझ में आया कि उन्होंने जो देखा वो उस पर क्या लिखें, लाइक उसको क्या बोलें। एंड दैट्स व्हाट इट इज। बॉडी हालांकि उन्हें मिल गई थी हैना के हस्बैंड की, एंड हैना को भी पछता हुआ, मगर जो हैना ने देखा अपनी गाड़ी के ऊपर, वो जो एहसास था कि वो इतनी देर तक गाड़ी के ऊपर खरोंच रही थी 40-45 मिनट तक, तो वो क्यों कर रही थी ऐसा और कौन थी ये हैना के लिए भी कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल था। एंड वो ऊपर ही थी वाइल्ड शी वॉज इन द कार, ये एहसास उसको और भी ज्यादा डरा रहा था। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ शी वॉज रियली रियली रियली रियली स्केर्ड। इसके ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी हैं अवेलेबल, एंड थैंक यू टू मिस्टर यासिर फ्रॉम मलेशिया, जिन्होंने इस कहानी के बारे में मुझे और भी डिटेल्स दी जो मैं आपको दे पा रहा हूँ। करक हाईवे, जैसे हम चाय का नाम है यहाँ पे करक, वैसे करक हाईवे के नाम से मलेशिया में। और रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, बट दिस वॉज वन ऑफ द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड। तो ये अब आपके हवाले, आई डोंट नो व्हाट योर रिएक्शन इज। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको ये किस्सा जितना नैरेटिवली सुना सको उतना सुनाया है मैंने। सो 666-22-107, 666-22-107, ये किस्सा अब आपके हवाले, और अब आप बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, 666-22-107। हाँ जी भैया, अरे भाई बहुत हार्ड कहानी थी, तो आपके ऊपर है। अब आप बता दीजिएगा, हम वेट कर रहे हैं, माहौल को थोड़ा सा पंप अप करते हैं क्योंकि वीकेंड है, ये भी तो जिम्मेदारी है।

0: जूता जापानी। पांच बज गए 56 मिनट में दुआ वाला कबीर एफएम सेवन में कुछ मैसेज हैं, कह रहे हैं ऐसा सदमा बोलना मुमकिन नामुमकिन होता है किसी के लिए भी, लेकिन खुद के हस्बैंड साथ हो तो मुश्किल ही होता है, और जो भी आंखों से देखा हो जिंदगी भर याद रहता है। एब्सोल्युटली राइट। सबसे पहला ही तो माई अपना म्यूजिक चलाएगा। अच्छा कॉल भी आ रही है, कॉल उठा लेते पहले। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम भाई।
0: भाई क्या हाल है भाई के?
1: भाई एक नंबर।
0: बढ़िया भाई, और सुनाओ भाई।
1: भाई आज एक तुम्हारी कहानी से ना भाई एक चीज से समझना आए भाई अपने को।
0: हाँ मेरे भाई,
1: बहुत बुरी भला है भाई, जितना मिल गया उतने में खुश रहो।
0: हाँ ज्यादा उड़ने का नहीं क्या?
1: नहीं भाई, वो बंदा भाई छोटा जबरदस्ती जीतने के चक्कर में गया अपनी जान को बेटा ना भाई।
0: अच्छा खासा भाई,
1: ढूंढते बैठेंगे भाई उसको पब्लिक मले।
0: वही ना भाई, अच्छा खासा होटल वोटल में रहता, मजे करता।
1: मजे करता भाई, मलेशिया बोले तो क्या है भाई जब।
0: अरे यार ये सब बाहर के सब कुछ होता है यार, मुंबई सुंबई में।
1: भाई मिस्त्री तो इसी है ना भाई, मतलब वो जो बेचारी ऊपर गाड़ी के ऊपर बैठ के खरोच मार रही थी, उसके नाखून काले हो गए थे बाकी खरोच मारते।
0: हाँ वो तो भाई मैंने उसको देखा नहीं, पर जो डिटेल्स में पुलिस ने लिखा वही मैंने आपको बता दिया भाई।
1: कबीर भाई
0: मेरी कोई इच्छा नहीं देखने का,
1: जबरदस्त जिस तरीके से तुम बता रहे थे ना, पर मेरे बाजू में अगला बैठे क्या बोलता मालूम, ये कबीर भाई अपने हाथ से लिखते क्या कहानी? वो अलग लेवल का बंदा है, वो अलग लेवल का बंदा है।
0: नहीं नहीं नहीं भाई, मैं अपने अपने हिसाब से लिखूंगा तो बहुत गंदे लिखूंगा, ये तो शुक्र है असली किस्से तो मुझे बताने में मजा आता है, बस ये है कहानी।
1: नहीं भाई बात नहीं करता, वो बंदा भी खुश हो गया बाजू में बैठ के बोलता हाँ एक नंबर कहानी बनाता बाकी।
0: चलो यार मुझे अच्छा लगा भाई को, सलाम बहुत सारा प्यार भाई को।
1: आपको भी भाई, बाकी क्या बोलते कबीर भाई?
0: बस भाई बढ़िया चल रहा भाई।
1: ये सब स्टोरी सुनने के बाद ना भाई स्टीयरिंग पे हाथ ज्यादा टाइट पकड़ना पड़ता है।
0: गाड़ी के ऊपर चेक कर लेना भाई क्या?
1: अरे मैं तो उतरू ही नहीं भाई गाड़ी में, हाथ में आज वीकेंड में गाड़ी में बैठ के मनाऊंगा भाई सुनते सुनते। उतरू ही नहीं भाई, मैं मैडम को बोलूंगा मैडम आना माफी इन दिल से यार
0: आज नहीं हो पाएगा मैडम।
1: हमसे ना हो पाएगा भाई।
0: बस भाई बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच कि आपको अच्छी लगी कहानी हमारी लिए आपने मेरा भाई। शुक्रिया मेरे भाई, हैप्पी वीकेंड मेरी जान। ओके मेरा भाई ख्याल रखो। तो कुछ दिन मिलेंगे, अभी तो वैसे भी जिंगल का टाइम है, बाकी म्यूजिक सुनूंगा मैं। मुझे मैसेज कर दीजिएगा

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107
2: Time check. Time check. आज 6:03 और 6 मिनट से गाना कबीर हाजिर आए। लाइन में लग जाइए सारे मेरे पीछे।

0: शाबाश शाबाश हमारी ऑडियंस को। भाई साहब कितने कितना प्यार से आप कहानियों पर रिस्पॉन्स देते हैं, दिल खुश हो जाता है यकीन जानिए। शाम में मैं हंसता वगैरह जाऊंगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत सारा प्यार, अल्लाह ताला आप सभी की जो सुन रहे हैं आपकी सारी जायज दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। बहुत सारा प्यार, मैं क्या बताऊं, इमोशनल कर देते आप लोग यार, प्यार है यार आप लोग। ये देखो हार्ट बना रहा हूँ दूर से मैं, एक कॉल डालूं मैं जरा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरा भाई?
0: बढ़िया भाई एकदम, आप सुनाए क्या हाल है भाई के?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाओ मजा आ रहा है
0: भाई? बहुत मजा आ रहे हैं, मैंने तो सुना दिया।
1: छुट्टी का सोच सोच के मजा आ रहा भाई,
0: बहुत ज्यादा भाई, एकदम चस आ गई। अलग एंजॉयमेंट चल रही भाई, आप सुनाइए कैसी लगी कहानी वानी सुनी?
1: लोगों को
0: डरा कर जा रहे हो, खुद
1: भाई
0: अपनी गाड़ी छत पे देख लेना भाई, बस बाकी कुछ नहीं कर रहा।
1: अरे तो रात में किसी जगह अकेले भी जाओगे ना तो एक बार सोचोगे अल्लाह करे यहाँ गाड़ी बंद ना हो, लाइट बंद हो जाए, यहाँ
0: बंद ना हो। नहीं अल्लाह ना करे भाई, हर किसी गाड़ी में कभी पेट्रोल की कमी ना हो और बढ़िया चलती रहे भाई गाड़ी, यही दुआ है। बस कहानी अच्छी लगनी चाहिए।
1: कहानी तो बड़ी मजे की थी, बस ये एक केस जाना, ये केस एक बार पहले भी मैंने एक बार सुना था।
0: अच्छा मैंने नहीं सुना होगा,
1: ये कंफर्म नहीं था कि कहाँ का है कहाँ का नहीं, बट अच्छा। ये केस मैंने सुना था।
0: हाँ सुना होगा, काफी फेमस है, पर मैंने पहले
1: सुना। इतना वाकया पेश आया है बट मुझे ये कंफर्म नहीं था कि कहाँ का है कहाँ का नहीं। आपने आज बताया कि मलेशिया में भी हुआ है, क्या बता दुनिया में और भी कहीं हुए हूँ।
0: नहीं जी,
1: मेरे कानों से गुजरा है।
0: जिस हाईवे की कहानी है करक हाईवे, वो बहुत मशहूर है मलेशिया में, बहुत सारी कहानी है उनमें से एक मैंने सुनी। हाँ
1: चाय को तो रहने दो यार।
0: चाय नहीं भाई,
1: करक को मत जोड़ो भाई, करक को नहीं जोड़ने का भाई,
0: करक है
1: अलग मोहब्बत है।
0: मैं क्या करूं भाई, अब जगह का नाम ही ऐसे ही है तो अपन क्या करेंगे भाई, क्या करें
1: भाई, हमने जहन से निकाल दिया।
0: थैंक यू मेरा भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार आपको, हैप्पी वीकेंड मिल
1: गया। ओके भाई, मजा आया वैसे,
0: थैंक यू सो मच।
1: इसमें एक सबसे सबसे बड़ी चीज ये सीखने को है कि इंसान को अपने पेशेंस रखने चाहिए
0: भाई, बहुत बहुत।
1: इंसान पेशेंस खो बैठता है वहाँ फिर वो बहुत सारी चीजें खो बैठता है।
0: इससे ये सीखने को मिलता है ज्यादा ज्यादा खुशी और ज्यादा गम में फैसले नहीं लेने चाहिए, समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा आदमी को शांत हो जाना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: क्योंकि अगर वो वहाँ अपने पेशेंस नहीं खोता तो क्या पता टाइम से घर चला जाता।
0: एब्सोल्यूट,
1: क्या पता उसके साथ ये वाकया नहीं पेश आता
0: भाई, सवेरे सवेरे जाता बढ़िया धूप में,
1: गरीबी जगह कोई और रगड़े में आ जाता।
0: नहीं आपको पूरा भरोसा है, कहानी सुनाएगा तो कोई ना कोई तो लपेटा जाएगा
1: भाई, इसे इत्मीनान से तो कहानी सुनते हैं।
0: थैंक यू मेरा भाई, ये आपकी मोहब्बत है मेरी जान, थैंक यू सो मच।
1: जैसा आपने पहले वाला बताया ना कि जना पहली वाली गाड़ी रुकी और जना बंदा निकल गया, ठीक है मैं समझा कोई लेपर्ड वगैरह आया हुआ,
0: अच्छा
1: ठीक है तो टाइगर होगा लेपर्ड होगा। फिर जब दूसरा जना पुलिस वालों को बताया ठीक है, फिर मुझे लगा यार इसके शोर के साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ है। और फिर जिस अगर खून वाली कहानी बताई मैंने, आप तो पक्का इसका शोर ही वापस आया होगा। फिर मैंने पता चला यार तीसरी मखलूक निकली।
0: मुझे मैं साथ साथ ये सोचता रहता हूँ कि लोगों ने कहाँ तक कहानी को सोच लिया होगा, मैं भी वही सोच रहा था कि आप लोगों ने क्या एंडिंग सोची होगी। And I feel really nice about
1: क्योंकि इंसानी फितरत है ना भाई, एक्सपेक्टेशन इंसान की फितरत है। तो वो इंसान खुद जना सोच लेता है कि हाँ यार आगे शायद ये हुआ होगा।
0: करेक्ट, तो
1: ये होना चाहिए आगे।
0: मैं वही अज्यूम कर रहा होता हूँ, फिर मुझे उसी हिसाब से नैरेटिव लिखना पड़ता है। पर चलो अच्छा लगा मुझे कि आप लोग अच्छे लगी गाने, मेरा मेरी शाम बन गई भाई, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार भाई को। ओके मेरा भाई,
1: ओके
0: वालेकुम सलाम मेरी जान। और भाई के बाद एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
2: सलाम, के आला कैप्टन साहब,
0: बढ़िया भाई, चसा रही है वीकेंड भाई को, मुबारक हो।
2: आज तो भाई दोरी आएगी तारे थे।
0: हाँ जी भाई, क्या चल रहा है गावा जी, कहाँ चल रहा है, क्या सीन है?
2: सीन भाई अभी तो घर पे ही है कबीर भाई।
0: अच्छा बारिश बुरिश करा दो यार। हाँ। क्या हो रहा है, कैसा मौसम हो रहा है यार, दो दिन पहले बारिश की बात हुई थी, हुई नहीं भाई।
2: यार यकीन मानो कबीर भाई, मेरे कहने से होती ना यार मैं स्नोफॉल करवाता।
0: अच्छा नहीं भाई इतना भी नहीं चाहिए, बस थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल जाए ठीक है, स्नोफॉल तक नहीं चाहिए, इतना नहीं सोचते हम औकात अनुसार।
2: बस ठीक है यार कबीर भाई, सारा कुछ मिल गया फिर आपको पता ही है ना।
0: हाँ वही ना, सारा कुछ नहीं चाहिए भाई,
2: कुछ तो मिसिंग रहना चाहिए।
0: बिल्कुल भाई बिल्कुल, कमी थोड़ी रहनी चाहिए, परफेक्ट चीज अच्छी नहीं होती भाई, इम्परफेक्शन बहुत जरूरी है। और गाबा जी क्या सीन है फिर वीकेंड का, क्या चल रहे हो?
2: बढ़िया भाई, आप कभी मारे थे भी ले जाओ NH 10 पे।
0: ए तो भाई प्लान कर लिया भाई, ले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी कुछ दिन में एक दिन रुक जाओ, बस एक दिन, फिर मैं आपको डेट बता रहा हूँ, आपको भी और एक दो और भाई लोग हैं उनको भी।
2: या था दौरी गुम हो गए भाई।
0: ना जी भाई, बस एक आज का दिन है, आज थर्सडे ना, ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मेरे दो तीन काम मैंने डालूंगा, देन फिर मैं आपको मैसेज करूंगा, दो तीन और भाई लोग हैं तो करते हैं।
2: अच्छा कबीर भाई, अभी है दो तीन मिनट है ना प्रेयर के टाइम में?
0: अभी है मेरी जान। हाँ बोलो।
2: ठीक है ठीक है, तो फिर आप अभी कभी बनाना है प्रोग्राम?
0: अभी तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं आज थोड़े से काम धाम कर लूँ अपने फ्राइडे के, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। नंबर है मेरे पास आपका, ठीक है?
2: हाँ ठीक है ठीक है,
0: ओके गाबा जी, ख्याल रखो अपना, मैं भी जरा।
2: भाई आप बताओ, आप अपना वीकेंड किस तरह मनाने लग रहे हैं आज?
0: भाई मेरा तो एक ही है, घर जाके गेमिंग कर लेता हूँ।
2: नहीं, और... नहीं नहीं नहीं भाई, वो मत बोलना यार,
0: वो वही है भाई। वही है भाई, वही है अपना।
2: कबीर भाई यार एक बात पूछनी थी यार।
0: हाँ बोलो ना।
2: मैंने अभी सर्च नहीं किया, मैं उस दिन सुन रहा था भी आपके नाम पे दो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं
0: जी मेरा भाई,
2: तो थोड़ा बता दीजिए ना, टेक्नोलॉजी में है, मीडिया में है, किस चीज
0: भाई? इसी में, रेडियो में ही है। एक तो है 106 घंटे लाइव करने का, लगातार लाइव किया था मैंने शो 4 दिन, कोई बीच मार्जन नहीं था, सिर्फ मैं ही था, और रात में 20 मिनट सोना अलाउड था उसमें, क्योंकि वो रिकॉर्ड के लिए ही चल रहा था, तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लिम्का में आया था वो। और उसके बाद हमने किया था 23,000 अक्रॉस इंडिया, तो हमने राजस्थान पुष्कर से गाड़ी शुरू करी थी, और उसके बाद पूरा ट्रैवल शो किया था घूमते हुए 56 दिनों तक, हर स्टेट सिटी में गए थे हम, वहाँ से नीचे पूरा घूमते हुए फिर दिल्ली में आके ये सफ़र पूरा हुआ था। सो दैट वाज 23,000 किलोमीटर्स, और पता नहीं कितने शहर था, आई थिंक 22 या 23 शहर होंगे।
2: आप बताओ कौन सी साइड चले रहे, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। राजस्थान से हरियाणा?
0: राजस्थान से होते हुए, नहीं, राजस्थान से पुष्कर से होते हुए निकले थे हम, फिर ये गुजरात साइड से होते हुए पूरा ऊपर तक ना, वो जो घाटियां जाती हैं पूरी की पूरी, वो तो उल्टा पूरा घुमाया था। हाँ उस वाली साइड।
2: बाकी ये एक बात है कबीर भाई, ये जो पुष्कर या अजमेर शरीफ के आसपास जो हाईवेज बने हैं ना अभी, जो दिल्ली को टच होते हैं भाई, देखने वाले हैं।
0: बिल्कुल भाई,
2: मार्बल्स की फैक्ट्रियों के आसपास के हैं जो।
0: हाँ नहीं, अभी तो काफी खूबसूरत बने हुए हैं, अभी तो बहुत अच्छे बने हुए।
2: जी बिल्कुल कबीर भाई, मैंने भी ट्रैवल किया था, मगर मैंने इतना नहीं किया यार,
0: नहीं,
2: मेरा
0: नहीं।
2: तो 1,200 का ही है यार।
0: नहीं आप निकलो भाई थोड़ा सा, और इंडिया में तो हमारे बहुत सारी जगह घूमने लायक, पहाड़ी इलाकों में जाओ, मजे करो, बहुत बढ़िया इलाके भाई।
2: तो उसकी वीडियो है, ट्रैवलिंग की वीडियो जो आपने वो किया,
0: उसका
2: था
0: आर्टिकल होगा, क्योंकि हम लोग रेडियो पे कर रहे थे ना मेरी जान, तो उन्होंने फोटोज वगैरह लिए थे, और हमने ऑडियो पूरा किया था, ऑडियो पूरा का पूरा पड़ा होगा, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए किया था, वो मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, तो
2: ठीक है, सही है, अच्छा आपको टास्क मिला होगा,
0: हम लोग रेडियो पार्टनर थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ करना है।
2: यार रेडियो वाला तो यार अजीब है यार, 4 दिन है,
0: 4.5
2: स्टूडियो में थे आप?
0: हाँ मैं स्टूडियो में था भाई, ना नहाया ना धोया, हालत खराब हो गई थी मेरी
2: यार। कमाल है यार कबीर भाई, खाना पीना पूरा सिस्टम वहीं पे है,
0: उसमें रोटी और चावल मना था, क्योंकि आपको नींद आ सकती है, तो वो बाकी खाना आपको ऑफर करते हैं जिससे आपको नींद ना आए।
2: नहीं वो भी टास्क ही था या प्रेशर था? वो
0: नहीं, वो टास्क था, हमने वो खुद ही वो का उसमें हम बिग वो मैराथन करके हमने शुरू किया था, तो हमने कहा देखते हैं कहां तक मैराथन जाएगा, तो 90 करने के बाद मुझे लगा चलो 100 ही कर लेते हैं, 100 करके लगा चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर मेरा मन था 111 करने का, मगर डॉक्टर ने बोला ना जी ना अभी हो गया भाई, कर जा तू।
2: तो यार कबीर भाई आपने तो यार रोहित शेट्टी इनके जो शो हैं यार उसको पीछे छोड़ दिया यार।
0: भाई खतरों के खिलाड़ी थे भाई हम एक टाइम में, इसलिए
2: चलो अगर लिंक वगैरह हो तो थोड़ा।
0: हाँ है ना, है ना, है ना,
2: नाम तो नहीं ले सकते अभी हम।
0: हाँ मैं उस चीज का उस ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, मगर मैं जरूर भेज दूंगा आपको, डन
2: भेजना, फिर मैं उसके ऊपर बात करूंगा बाद में, फिर आपके साथ देख के, अभी मैंने देखा नहीं है ना, मेरे को आपके ट्रिप के बारे में पता है।
0: डन डन मेरा भाई,
2: थोड़ा भेजना फिर देखते हैं उसमें क्या नया मिलता है देखने को।
0: ठीक है मेरा भाई, डन डन डन, बहुत प्यार भाई को भेजता हूँ मैं।
2: ठीक है भाई, हैप्पी वीकेंड।
0: हैप्पी वीकेंड भेजना, हैप्पी वीकेंड।
2: ओके
0: ओके भाई, टेक केयर। और गाबा जी के बाद कुछ मैसेज मैं जल्दी से पढ़ लूँ कहानी पर जो आए हुए हैं। एक भाई हमारे काशिफ भाई ने मैसेज किया, काशिफ भाई के भी मैसेज में पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, एक सेकंड इनका मैं मैसेज पढ़ूंगा कुछ देर में, लेकिन जो पहले मैसेज आ चुके हैं तबस्सुम बहन लिखती हैं, नो वर्ड्स, आपकी कहानी का मकसद पूरा हुआ, आई एम श्योर एवरीवन इज फीलिंग द सेम हॉरिफाइड, इसको और सस्पेंस और थ्रिलर थ्रिलिंग बनाया आपके नरेशन स्टाइल ने, पॉजेज एंड एक्सप्रेशंस ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ अब अगली कहानी तक नहीं भूलेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम माय हस्बैंड सेज तुम यहीं रुको मैं काम करके आता हूं, ऐसे भी मुझे अकेले गाड़ी में रहना डर लगता है, अब तो बिल्कुल नहीं रुकूंगी करे आप तो रुकूंगी नहीं भाई मैं ऐसी की तैसी। और आगे उन्होंने लिखा है कि एक बार लाल गाड़ी वाली स्टोरी थी, येलो गाड़ी वाली स्टोरी, कहाँ से लाते हैं ये स्टोरी बहन, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, पूरी माइनिंग है ये कहानियों की। लास्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, क्या हाल चाल भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम शानदार, आप सुनाइए भाई।
3: अरे बहुत बढ़िया यार, काफी काफी मस्त कहानी थी यार, बहुत मजा आया।
0: थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बस मजे आने चाहिए भाई।
3: बस ये हॉरर वाले भूत को जो नहीं मार रहे हो ना, वो रात में अगर आएंगे ना मेरे सपने में, तो मैं बस सीधा कबीर दरबार का ही नाम लूंगा भाई, वो तो चली गई मार के उसको यार,
0: कबीर तलवार वाह जी वाह
3: मैं बोलूंगा भाई इन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी और आपको नहीं मारा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ऐसे ही लोगों से मम्मी ने कहा था दूर रहा करो आप समझ गया मैं कहानी का असली भूत कौन है भाई
3: अच्छा उसकी मतलब उसके और कोई मिस्टीरियस नहीं बना, मतलब कि एक्चुअल में वो क्या थी?
0: नहीं नहीं, वहाँ पे बेसिकली लोग कहते हैं ऐसा कोई गोस्ट वो सिस्टम नहीं है, आई थिंक देयर इज अ कम्युनिटी जो अंदर रहती है जंगलों में, मे बी जो रहती होगी बुरे हाल में, होता है ना थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, कुछ हो सकता है अंदर, तो उसके बारे में बहुत कुछ है, आप पूरा करक हाईवे पे देखेंगे तो पूरी उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बना रखी है, एक एक दो दो घंटे की है भाई, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैंने कहा मैं सारी चीज़ें सुना नहीं सकता, तो वाई नॉट टेक इंसिडेंट एंड देन नरेटेड, तो मैंने बस वही रास्ता अपनाया।
3: उनके तो वो मुझे तो एंडिंग लग रहा था कि चलो वो जीत गया है, पैसा लेके जाएगा, और जो बेसिकली बॉलीवुड मूवीज में होता है कि पैसा लेके जाएगा और पीछे से होटल वाला एक्सीडेंट करवा देगा।
0: भाई हमारी गाने में थोड़ी मजे लेने देंगे हम किसी को
3: भाई क्योंकि आपने कहा था, मैंने पूछा था, आपने कहा था मिस्टीरियस है, तो मैंने उसी हिसाब से सोचा, अब मुझे क्या मालूम था कि फिर से पलटी मारोगे
0: थैंक यू भाई, ये इसी बात के तो पैसे भाई, इसी बात के
3: यार, इसमें और मजा आ जाता है जो यू टर्न मारते हो ना कहानी में, वो यार वाकई
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत बहुत प्यार भाई को, बस मैं इसी बात से खुश हूँ कि आपको अच्छी लगी कहानी, दैट्स ऑल, मेरा काम हो गया भाई।
3: अरे मैं आज भी बोला, मैं अभी भी लाइव सुनने के लिए बैठा हूँ।
0: थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू सो मच, नहीं बस वो चीज पूरी करनी, मैं खुद रुका बैठा, मुझे पता कि हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, अगर चैनल बना लिया मैंने तो डेढ़ हजार तो सब्सक्राइबर्स पा ही लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे, मैं छोटी उम्मीद लेके जा रहा हूं,
3: इससे ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह भाई, इंशाल्ला, आप पहल करो, हम आपके साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ

0: ठीक है भाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई।
1: आप मुझे स्टोरी दो, मैं आपको लाइक्स और कमेंट्स दूंगा।
0: वाह वाह वाह वाह, ठीक है इनकलाब फिर तो। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत प्यार।
1: मैं अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला भी था कि आपकी स्टोरी सब सुनेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं सुनेगा, और काफी लोगों ने मैसेज भी किया इस बारे में।
0: हाँ बिल्कुल किया भाई, बिल्कुल किया, उसके लिए
1: बिल्कुल भाई। यार लोग दिल से चाहते भाई ऐसी स्टोरी लाते हो।
0: थैंक यू सो मच।
1: दिमाग खराब एकदम हो जाता है, मतलब शॉक में हो जाता है।
0: बस चलो दो दिन तक ये कहानी बस याद रहे, यही मेरी दुआ है। और
1: भाई दो दिन तक रात में सपने में आई तो कॉल लगा दूंगा।
0: डन डन डन। चलो ठीक है, आसान का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह फिर मैसेज बात करते हैं, आ जाना ठीक है।
1: चलो ठीक है, ओके भाई, ओके भाई,
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद एक मैसेज है दानियाल काशिफ भाई का, वो मुझसे कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आपका रैप सिंगल ड्रॉप कब हो रहा है, कब कबीर, कब दोहा वाला कबीर बजेगा रेडियो पर? भाई मैं तो भाई जब बोलेंगे आप तब चला दूंगा मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। स्टोरी फिनिश कर दी, शॉर्ट शॉर्ट नहीं थी भाई। ओके तो अभी जो है क्योंकि अजान का वक्त है, इंशाल्लाह उसके बाद मुलाकात होगी। जाना आपने नहीं, कुछ देर मिलते हैं भाई।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर।

Javed Mohsin Dev Negi Pai Dev Negamma. छह बज के 25 मिनट हो लिए भाई. कुछ कमाल के मैसेज है, जरा मैं पढ़ दूं. मैं कि एक तो मैसेज किया है कि सोशल मीडिया की बात पे कबीर भाई सबको चॉकलेट देते हैं, फरद भाई कह रहे हैं. और एक भाई, उन्होंने कहानी की एंडिंग ऐसी दी है, बता भी नहीं सकता, बहुत कर रही है एंडिंग दी भाई. लेकिन थैंक यू सो मच, आपको स्टोरी अच्छी लगी करण भाई. इनके बाद जो है मैसेज किया है सिद्दीकी भाई, लिखते हैं वीकेंड हॉरर थ्रिल्स भाई एक नंबर, इतनी गोलियां चला गई भी नहीं मेरी जी, मेरा भाई बहुत डीट थी भाई. यहाँ भाई ने मैसेज किया है, वो लिखते हैं सलाम वालेकुम. सलाम भाई, लिखते हैं मेरा बेटा बोल रहा है कि आप हाईवे नहीं जाना रात को. और आगे लिखते हैं एक्सीलेंट नरेशन विद द म्यूजिक, इट वॉज ऑसम. अगर रात को कैंपिंग में ये सुनी जाए तो मज़ा आ जाएगा. और आगे लिखते हैं भाई, वो चीज़ थी, वो एक वाइफ की आत्मा थी और उन कपल्स को टारगेट करती थी जिनकी फाइट होती है ड्राइव करते हुए रात को. सो डोंट फाइट एंड ड्राइव. कह रहे कपल्स को टारगेट करती है वो, जो लड़के गाड़ी चला रहे होते हैं ना उनके पीछे पड़ती है वो. कैसे चला रहे हो तुम, लड़ो बदतमीजी. और स्लीपिंग सिकनेस पे एक कहानी है, वो उन्होंने मुझे भेजी एक भाई ने. वालेकुम अस्सलाम खादिम साहब. एक भाई और हैं, वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई फ्रॉम पाकिस्तान. उन्होंने मैसेज किया है, लव यू मेरा भाई सैयद जिशान फ्रॉम पाकिस्तान. थैंक यू सो मच भाई, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया. लॉट्स ऑफ लव टू पाकिस्तान एज वेल. एक मैसेज है मुबीन भाई का, कहाँ जा रहे हैं वेकेशंस पर, तो नहीं जा रहे भाई. मैं वेकेशंस पे मैं जाऊँगा 12 अक्टूबर से इंशाल्लाह. कहते मैंने सर्च किया था फुल 2018 तो है राइट. क्या मतलब, क्या सर्च किया था आपने, मैं समझा नहीं. और एक मैसेज तब उससे मैंने लिखती है, मैंने सुना अभी आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, आई मीन आई एम हैप्पी टू बी योर सिस्टर. आप इतनी मेहनत करते हैं स्टोरीज के लिए,

को सुनेंगे जो भी आया है, बट फिलहाल आवारापन का जिक्र इतना हो रहा है, बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है आवारापन 2 का ये गाना, अरिजीत सिंह की आवाज, ये आवारापन। भाई इतने कर्रे लिरिक्स है ना इसके, सईद कादरी साहब ने

का मैं इंतजार कर रहा हूँ, बस 8 दिन बाकी हैं अवारापन रिलीज होने में, अवारापन 2। पता नहीं ये थिएटर में कमिंग सून के नीचे क्यों नहीं लगा हुआ अभी तक, भाई कोई थिएटर में लगा हुआ है क्या बताना मेरे को, आई एम जस्ट वेटिंग भैया, कब होगा ये, मैं तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा हूँ।

सवाल देनी पड़ेगी भाई, कतर में बहुत कुछ हो रहा है अभी भी। सबसे पहले जो खबर आई है वो है सैंटियागो चिले और दोहा की तरफ से। तो कतर म्यूजियम जो नेशंस का, पूरे नेशन का बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है फॉर आर्ट एंड कल्चर, और सालों साल कल्चरल बैकग्राउंड को लेकर चलता आ रहा है। अभी एनुअल इनिशिएटिव सेलिब्रेट किया गया है, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, अनाउंस किया गया, जिसका नाम है योर गोस्ट्स आर माइन। एक एक्सपेंडेड सिनेमा, एम्पलीफाइड वॉइसेस दैट आर ओपन इन चिले फॉर इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन इन लैटिन अमेरिका। जो ओपनिंग है, इट वाज अटेंडेड बाय फ्रांसिस्को, चिलेज मिनिस्टर ऑफ कल्चर्स आर्ट एंड हेरिटेज एम्बेसडर पेट्रिशिया अराया, हेड ऑफ DRIAC एंड हिज एक्सीलेंसी बातल बिन मुजीब बातल अल दुसारी और एम्बेसडर ऑफ द स्टेट ऑफ कतर टू द अर्जेंटीन रिपब्लिक एंड नॉन रेसिडेंट एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ चिले। तो कतर म्यूजियम में अभी भी बहुत कुछ है, नेशनल म्यूजियम जाइए, MIA जाइए, अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स हैव बीन रन फॉर एवरीबॉडी। तो अभी समर वेकेशंस के दौरान भी काफी कुछ वहां पे किया गया अलग अलग म्यूजियम में, सो दैट इज अनदर थिंग। इसके अलावा एक खबर जो कतर एयरवेज की तरफ से वो ये है कि कतर एयरवेज ने अपनी फ्लाइट्स वापस शुरू कर दी हैं टू बहरीन एंड कुवैत, और ये 8 अगस्त से शुरू होने वाली है। दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर सोशल मीडिया अकाउंट, जब आप देखेंगे तो वहाँ पता लग जाएगा। इन्होंने आज ही अनाउंस किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि बहरीन और कुवैत की फ्लाइट्स वापस शुरू हो रही हैं, सो दैट इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा अहमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने रिमाइंड किया है सारे के सारे लोगों जो ट्रैवल करने वाले हैं कि वो जो चीज़ें हेल्थ प्रिकॉशंस के लिए ज़रूरी हैं उन पे ध्यान दें बिफोर एम्बार्किंग ऑन देयर जर्नी। जो हर कंट्री का कोई ना कोई एग्जिस्टिंग कंट्रीज का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, तो एडवांस प्लानिंग करें वेकेशंस की। ऐसे नहीं कि अभी टिकट ले अभी चढ़ जाऊँगा, लोकल ट्रेन नहीं है ये, ठीक है। तो आराम से पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस फैलाते हुए मैसेज को दिया गया है, टाइटल रखा गया है स्टे हेल्दी वाइल्ड ट्रैवलिंग। अहमद मेडिकल कॉरपोरेशन के दफ्तर से लिटरली एडवाइजरी जारी हुई है ट्रैवलर्स के लिए टू सीक मेडिकल गाइडेंस पूरी तरह से बिफोर डिपार्चर, और रिक्वायर है अगर तो कैरी ऑल योर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, के आपको दिक्कत ना हो कि कहीं आपको दवाई ले जानी है, कोई स्पेशल इलाज है या कोई क्रॉनिक डिजीज है, सो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए ऑफ हैंड बिफोर यू इवन ट्रैवल आउट। So that is there, and इसके अलावा जो है मौसम का हाल ज़रा बता देता हूँ, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है ऐसा मेरी नाक मुझे बता रही है। साइनस जब चालू होता है तो मुझे लगता है कि आज तो कुछ ना कुछ होगा। 38 degrees for now, 33 minimum है, एंड इसके अलावा maximum 46-47 temperature, ठीक है। मगर अभी जो ह्यूमिडिटी का लेवल है अभी 48 पट का हुआ है, कुछ दिनों से 40s में चल रहा है, तो गर्मी तो है। स्पेशली वो लोग जो मेरे तरह चश्मा पहनते हैं, हमें तो धुंध वैसी लग जाती है भाई। तो हम तो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन आप भी ख्याल रखिए। किसी को आपके घर में अगर रेस्पिरेटरी फंक्शंस में किसी भी किस्म की परेशानी है, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, तो एक्स्ट्रा ख्याल रखिए। स्टे इंडोर्स, ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की, तो कोई ज़रूरत नहीं है, गर्मी के मौज नहीं लेने। इतना विटामिन डी लेना है तो खिड़की खोल के ले लेना, पर प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अपना बहुत बहुत बहुत बहुत भर भर के ख्याल रखिए। कहीं पर ट्रैफिक जाम है तो बताइएगा 666-22107 पर, 666-22107 पर, और मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पर। साथ ही साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सोशल मीडिया पर भी, सो FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, और मुझसे भी जुड़ सकते हैं आप दोहा वाला कबीर TikTok और Instagram पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। प्लीज़ वहाँ पर भी आया करें यार, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है भाई। मैं ज़रा ये गाना चलाऊंगा क्योंकि इसका हुक भाई बहुत बढ़िया हो गया, इस गाने का बहुत ही बढ़िया। चरणप्रीत और साथ में बादशाह, 637, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे।

0: इस गाने में एक कोरियोग्राफर है, उनका करियर रॉकेट कर दिया भाई, मजा आ गया उनके। शरण प्रीत बादशाह बन जा तू मेरी। हाँ जी, अब वक्त है, एक साहब ने मुझे बोला कि उनको कॉल पे बात करनी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको कॉल लगा लेता हूँ। एंड आई एम कॉलिंग राइट नाउ मिस्टर अब्दुल रहमान, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए।
1: कबीर भाई
0: जी, बढ़िया भाई, आप सुनाइए।
1: यार आपकी नींद तो सुला दी मुझे वल्ला। मैं लाहौर से आ रहा था, खाना खाकर आ रहा था अच्छे से, मैं सोचा कि चलो आज लगाएंगे फिल्म।
0: हाँ।
1: लेकिन जैसे जैसे आप बता रहे हैं, मेरे ऐसे स्लोरी स्लोरी ऐसा लग रहा है कि कोई लोरी दे रहा है।
0: चलो इस बहाने
1: माशाल्लाह बहुत
0: इस बहाने खाना हजम हो जाएगा। थैंक यू मेरे भाई, आपकी बड़प्पन आपका, थैंक यू सो मच।
1: बचपन याद दिला दिया, बोलते कि 12 बजने के बाद वो गेट खुलेगी, उसमें से बुढ़िया आएगी, वही कपड़े में रहेगी, बाल खुले रहेंगे, तो सब कुछ आपने रिकॉल करवा दिया
0: है ना। वो ये मैं इन कहानियों के साथ यही है, मतलब मुझे खुद सुनाने में मजा आता है, मैं सुनाते सुनाते सोच रहा होता हूँ कि सामने वाले के जहन में क्या उतर रहा होगा, कितना सोच रहा होगा। सो आई एम रियली हैप्पी कि आपको, और वो भी अलखोर के रास्ते में।
1: और यकीन नहीं जानेंगे आप, मेरा घर ना वकरा पब्लिक बीच के पास है।
0: अच्छा,
1: तो ओरिडोर से जब जाएंगे अंदर तो आपको तो पता होगा राइट लेफ्ट में पूरा अंधेरा, आपको बात करके घर जाएगा।
0: मैं वही कहने वाला था, मैंने कहा आपको तो रास्ता भी माशाल्लाह बहुत दूर से आ रहे थे, तो अच्छा खासा आपको रास्ता मिला होगा अंधेरे वाला, तो आपको तो ज्यादा फील आई होगी खाने की। बहुत बहुत बहुत खुश हुई कि आपने आपने मैसेज किया, इसके लिए मेरे लिए बड़ी बात है सर, थैंक यू सो मच आपके लिए। कहाँ से हैं वैसे आप?
1: मैं हैदराबाद से हूँ।
0: अच्छा, हैदराबाद से हैं, माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, नहीं आपको कभी भी आपको लगे कुछ भी कहना मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं फौरन आपको कॉल कर लूँ, कोई मसला नहीं है।
1: बिल्कुल बड़े भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: हैदराबाद स्टाइल में क्या मोड डाल दिया भाई कॉल
1: कर, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं आप जी मेरे भाई,
0: बहुत प्यार भाई को, बहुत प्यार मेरी जान, थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और इतनी मोहब्बत के बाद सारे हैदराबादियों को बहुत सारा प्यार, आई जस्ट लव द वे आप लोग जब हिंदी बोलते हैं मजा आ जाता है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ मैं।

फील आती है. सो थैंक यू सो मच उस चीज के लिए. एक मैसेज है इकरम साहब का, इकरम हसन साहब लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, सर स्टोरी आउट क्लास, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार भाई को, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इनका नाम है एस एस एस एस. व्हाट्सएप पे क्यों अपना नाम लिखते हैं आप लोग? मैं मतलब आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ. आई एम रियली रियली क्यूरियस टू नो कि अपना नाम क्यों नहीं लिखते हैं अक्सर लोग. आई

सवासी तो भाई पूरी मिलनी चाहिए, बहुत मेहनत करी हमने कहानी के लिए। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं मजाक कर रहा था। आप लोगों ने इतने अभी तक मैसेजेस के लिए कहानी के लिए मैसेजेस किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो आज कौन कौन से दिन इंटरनेशनली मार्क्ड है कैलेंडर बताता हूँ आपको, एक से बढ़कर एक दिन है भाई। आज है फ्रेश ब्रेथ डे, साफ और घनी सूत्री सांस, ब्रश करके जाना चाहिए हर जगह, ठीक है। और एक मैं मुझे याद है अभी भी एक मैम थी जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था, वो डेंटिस्ट थी, उन्होंने मुझे बहुत डांटा मैंने पूछा मैडम ये सवेरे सवेरे जो ब्रश करती है इसकी इंपॉर्टेंस बताइए, बोले नहीं आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं, ब्रश जो है वो मेनली रात को सोने से पहले करना चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा, तो बोली लॉजिक जानते हैं, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने फिर डांटा, बोले एक बात बताओ तुम खा के जब ब्रश करोगे तो ज़्यादा तुम्हें लॉजिकल लग रहा है या सुबह उठ के तो करोगे ही करोगे, वो तो अच्छी बात है तुम्हारी फ्रेश ब्रेथ के लिए, पर रात में सोने से पहले इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसा मैंने कहा चलो आपको बता दूँ, क्योंकि मैम ने मुझे बहुत डांटा था आपके चक्कर में, तो ये था। मैडम मैं नाम भूल रहा हूँ आपका, पर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे डांटा उस दिन, अच्छा सर पड़ा उसका। इसके बाद है इंटरनेशनल स्कूबा डे, सो स्कूबा डाइविंग एक लौती चीज़ है मेरे लिस्ट पे आज की। अगर मैं सिनेरियो के बारे में बताऊँ, मेरा बड़ा मन है स्कूबा डाइविंग करने, बड़ा मन है, पता नहीं कब करूँगा, इंशाल्लाह ताला जल्दी करूँगा, अल्लाह ताला मौका दे तो एक बार तो हो ही जाएगी स्कूबा डाइविंग। एक मैसेज सॉरी एक और है, आज है फार्म वर्कर अप्रिसिएशन डे, जो लोग खेतों में काम करते हैं उनके लिए बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत वाला, उन्हें अप्रिशिएट करने वाला दिन है। और ए बलून्स टू हेवंस डे, ऐ की है मुझे नहीं पता भाई बलून्स टू हेवंस क्यों है। और इसके बाद है नेशनल मरीन वीक, ये यहाँ पे नहीं है, यूएसए मनाया जाता है बेसिकली, तो हमसे कोई लेना देना नहीं है उसका, पर ये कुछ ही दिन है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं ऐसा जो हमारे मतलब का हो। और कुछ है क्या, नहीं, विगल योर टोज डे, ये कोई बात होती है मतलब बैठे बैठे अपने पैर को झूला झुलाते रहते हैं लोग, उसका भी कौन सोच रहा है ये सब, कौन सोचता है ये सब। और एनीवे ये कुछ दिन थे तो मैंने आपको बता दूं, बाकी ट्रैफिक दे दीजिएगा 666-222-107 पे, और मैं भी आपके मैसेजेस के इंतज़ार में रहूँगा बिल्कुल। और क्योंकि अभी वीकेंड का जो फील है वो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, सो आई विल मेक श्योर दैट डज नॉट हैपन। ये गाना भाई, ये गाना ले जाता है मैं, मुझे तो मैं क्योंकि दिल्ली का हूँ तो दिल्ली में अप्पू घर में ये गाना चलता था वाटर पार्क्स में, और बच्चे ऐसे उछल उछल कूद कूद के नाच रहे उड़ते हैं। है ये सैड गाना, है ये सैड गाना, लेकिन पार्टीज में चलता है भाई, सुन के देख लो सैड गाना ये, जिन्हें नहीं पता भाई साहब वाटर पार्क चला जाता हूँ मैं जब भी गाना चलता है वाला। जी मैसेज मुसेज करता हूँ, हैप्पी वीकेंड है।

करण माने लिखा है, कबीर भाई एनर्जी और साथ में इलेक्ट्रिक साइन लगा मेरा भाई, बहुत सारा प्यारा भाई। क्या ना, देखो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं छुट्टी पे जाऊँ या शो में ना हूँ किसी और शो में, तो आपको ना याद आनी चाहिए, आपको लगे यार बंदा तो वही है, तो इसलिए जो है एनर्जी पास ऑन होती रहनी चाहिए ना। करण भाई थैंक यू, बहुत सारा प्यार मेरे भाई को। और भाई कतई कड़क डीबी लाई ने भाई ने। और एक मैसेज, कभी कभार मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि तुम दिल्ली के हो या हरियाणा के या पंजाब के कबीर भाई। तो मैं भाई मेरे दादा जो है ना वो पंजाब में रहे, ठीक है, हरियाणा में रहे, और मेरे पापा जो हैं वो हरियाणा की तरफ रहे, दिल्ली की तरफ रहे। तो भाई मैं ये इस पूरे सर्कल का हूँ मेरी जान, तो यही मेरे सारे के सारे भाई मिलेंगे आपको। भाई मैं भी जा रहा हूँ अक्टूबर 5 को। अरे बहुत बढ़िया करण भाई, कहाँ जा रहे हैं आप, छुट्टी पे किधर जा रहे हैं? और हुसैन भाई लिखते हैं, कति जहर भाई, भाई मौज आ गई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इकरम भाई थैंक यू सो मच। और अरबाज भाई क्या लिखे, हम तो कभी कभी दस दिन ब्रश करते हैं, 5 दिन बात करते हैं। ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो। बाकी इजाज़त चाहूँगा आपसे, टाइम तो हो गया है मेरे इजाज़त लेने का, तो ऑलरेडी 6:51 ऑन द क्लॉक, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। इंशाल्लाह आप सीधा संडे को मुलाकात होगी, मिलते हैं संडे को शाम 5 बजे, तब तक याद करते रहिएगा, ठीक है। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, और मुझे भी ढूंढ लीजिएगा दोहा वाला कबीर के नाम से टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, वेरी हैप्पी वीकेंड, ड्राइव सेफली, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी है। मां सलामा।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, हमारा किचन घर की वो जगह होती है जहां रोजाना सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है कि नहीं। सुबह की चाय से लेकर डिनर की तैयारी तक, सब्जी धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, किचन में पानी का इस्तेमाल तो भाई लगातार होता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम किचन में कितना पानी इस्तेमाल करते हैं और कितना जाया करते हैं? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि नल खुला रह जाता है, कभी बर्तन धोते वक्त जरूरत से ज्यादा पानी बह जाता है, और कभी खाने की प्रिपरेशन में हम पानी को भी वेस्ट कर देते हैं। साथियों, पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, ये जिंदगी की बुनियाद है। इसलिए आज के इको स्विच में बात करते हैं सेविंग वाटर इन द किचन के बारे में, यानी किचन की छोटी छोटी आदतों से पानी बचा लेना। भाई देखिए, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाए ना साथियों, तो अक्सर हम पानी की कदर तब समझते हैं जब वो घर में कम होने लगता है। किचन में पानी का वेस्ट बहुत आसानी से हो जाता है साथियों। मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊँ ना, तो बर्तन धोते वक्त वो जो नल का हम कंटिन्यूसली खुला छोड़ देते हैं, बहुत ही गलत बात है। या सब्जी और फल धोते वक्त जरूरत से ज्यादा पानी चला देना, ये भी एक मसला है। अच्छा हाँ, खाना बनाते वक्त अंदाजे से ज्यादा पानी यूज कर जाना,

0: भी एक इशू है। अच्छा, कभी कभी हमें ये लगता है कि थोड़ा सा तो पानी वेस्ट हुआ, क्या ही कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर घर में रोज थोड़ा थोड़ा पानी वेस्ट हो रहा है तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है भाई। पानी को साफ करने, स्टोर करने और घर तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है ना, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यानी पानी बचाना सिर्फ पानी बचाना नहीं है, बल्कि एनर्जी और रिसोर्सेज को बचाना भी है। देखिए, अब आप कहेंगे कि सफा सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन बताओ। तो दोस्तों, किचन में पानी बचाने के लिए हम कौन से सिंपल इको स्विच कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो ये भाई कि ये जो नल की जरूरत है ना, ये जो टैब है, नल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। देखें, बर्तन या सब्जी धोते वक्त नल को कंटिन्यूसली खुला ना छोड़े ना। पहले बर्तन आप थोड़ा साबुन वगैरह लगा लें, साइड पे कर लें, फिर पानी से उसे रिंस कर लें। ये जो सब्जी होती है या फल होते हैं, इनको स्मार्ट तरीके से धोएं। जो रनिंग वाटर के नीचे आप इसको डाल देते हैं और ये पानी चल रहा है बोल के अंदर, कंटेनर के अंदर, और आपका पानी सारा बहता चला जा रहा है, एक एक सब्जी उठाकर आप धो रहे हैं। एक काम करें ना, कंटेनर में पानी भरें और सब्जियों को उसी के अंदर धोएं, जितना पानी है उसी से। इससे पानी की बचत भी होती है और काम भी आसानी से हो जाता है। और हाँ, एक और बात, पानी को दोबारा इस्तेमाल करें। सब्जी धोने का पानी जो है वो पौधों को दिया जा सकता है। अगर पास्ता या चावल उबालने का पानी है तो कुछ लोग इसे कुकिंग के दूसरे कामों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और हाँ, मैंने तो ये भी देखा था कि पास्ता या चावल का जो पानी होता है उससे आप अगर अपने बालों को धोएं तो वो बड़ा अच्छा होता है रिंसिंग में। अब ये कौन सा टोटका है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं उससे बाल अच्छे होते हैं। अच्छा, लीक्स को इग्नोर ना करें साथियों। अगर किचन का नल हल्का सा भी लीक कर रहा है, वो जो टिप टिप टिप करके पानी बहता है ना, तो उसे रिपेयर कराना जरूरी है। छोटी सी लीक भी वक्त के साथ साथ सारा पानी वेस्ट कर सकती है। लेकिन स्मार्ट किचन हैबिट्स अपनाएं। डिशवॉशर यूज करते हैं तो उसे हाफ लोड पर चलाने के बजाय फुल लोड पर चलाएं। यानी जरूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करें ना, ज्यादा नहीं करें। तो साथियों, देखें, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे घरों में लोग छोटी छोटी चेंजेस से पानी बचाने की कामयाब कोशिशें कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज ने किचन में एक सिंपल रूल बनाया हुआ है, जितना पानी जरूरी है उतना इस्तेमाल करना। कुछ लोग सब्जी धोने के लिए बोल मेथड यूज करते हैं। कुछ लोग एक कंटेनर रखते हैं जहाँ एक्स्ट्रा पानी कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें अपने पौधों को क्यारी में दे दिया जाता है। ये छोटी छोटी आदतें शुरू में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आपका पूरा घर इन आदतों पर अमल करता है ना, तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पानी बचाने से अक्सर घर का बिल भी कंट्रोल में आ जाता है। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज अपने किचन में सिर्फ एक दिन ऑब्जर्व करें कि भाई सबसे ज्यादा पानी कहाँ वेस्ट होता है। क्या बर्तन धोते वक्त यूज होता है, क्या सब्जी धोते वक्त यूज होता है, या किसी लीक की वजह से होता है। और फिर एक छोटा सा चेंज करें और हमें जरूर बताएं कि पानी बचाने के लिए किचन में आप कौन सी आदत फॉलो करते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, पानी की एक एक बूंद कीमती है, क्योंकि हर बूंद मिलकर जिंदगी बनाती है। छोटी छोटी आदतें बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: Maximum music, maximum fun. On FM 107, Dil Se Desi. Say what?

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी। One step to 2030.
5: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
6: One Step to 2030.
5: दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टू choices, सेफ्टी या स्पीड। सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या स्पीड? देखिए, आजकल की जो हमारी तेज रफ्तार वाली ये दुनिया है, इस दुनिया में ये सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज फास्ट हो रही है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट डिलीवरी, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, और शायद हमारे रिश्तों में भी वो तेजी आ गई है टूटने और बिखरने की। हर कोई चाहता है कि उसका काम जल्दी हो और उसका वक्त बचे, लेकिन जब बात ट्रैवल, टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ की आती है तो एक इम्पोर्टेंट सवाल सामने आता है, क्या स्पीड ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर सेफ्टी? ये सवाल जो है ना दोस्तों, सिर्फ रोड्स या फिर ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है। आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज ये कि हम इतनी जल्दी में

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा

0: छोटे कदमों से शुरू होती है इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं लेकिन इंसान की रूह आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं सबरिक्रम आज हम एक इंतहाई खूबसूरत सुन्नत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिस पर अमल करने में न कोई मशक्क़त है और न कोई खर्च लेकिन इसमें अदब है सेहत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का शरफ है आज का मौजू है पानी तीन सांस में पीना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते वक्त तीन मरतबा सांस लेते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि बर्तन के अंदर सांस लेते थे बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घूंट पीते फिर बर्तन को अपने मुबारक मुंह से हटा लेते उसके बाद सांस लेते फिर दोबारा पानी पीते फिर बर्तन अलग करके सांस लेते और फिर तीसरी मरतबा पानी नोश फरमाते यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका था इसी तरह सामने कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पानी पीने के हवाले से एक अहम अदब भी सिखाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के अंदर सांस लेने और फूंक मारने से मना फरमाया क्योंकि इससे दूसरों को तकलीफ हो सकती है सफाई मुतासर हो सकती है और ये हुस्न आदाब के खिलाफ है चुनांचे जब भी पानी पीना हो सांस लेने की जरूरत महसूस हो तो बर्तन को पहले मुंह से हटा लिया जाए फिर सांस ली जाए और उसके बाद दोबारा पिया जाए यही सुन्नत है समझ कर आज की मशहूर जिंदगी में हम अक्सर पानी भी जल्दी जल्दी एक ही सांस में पी जाते हैं कभी खड़े खड़े कभी चलते चलते और कभी मोबाइल देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से बैठकर अल्लाह का नाम लेकर ठहर ठहर कर पानी नोश फरमाते ये अंदाज इंसान को यह एहसास भी दिलाता है कि पानी अल्लाह ताला की कितनी अजीम नेमत है सोचिए अगर अल्लाह ताला पानी को खारा बना देता या जमीन से पानी निकालने की ताकत छीन लेता तो हमारी जिंदगी कैसे चलती कुरान करीम में अल्लाह ताला हमें इसी नेमत की तरफ मुतवज्जे करते हुए फरमाता है أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ भला बताओ जो पानी तुम पीते हो क्या तुमने उसे बादल से उतारा है या हम उतारने वाले हैं अगर हम चाहते तो उसे खारा बना देते फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते ये आयतें सूरतुल वाकिया की हैं सामने कराम जब मोमिन पानी पीता है तो वो दरअसल अपने रब की नेमत को भी याद रखता है तो सामने कराम इस प्रोग्राम में अगरचे हमारा मकसद सुन्नत बताना है सुन्नत पर अमल करना है लेकिन अल्लाह ताला की शरीयत में इन सुन्नतों में ऐसी बेशुमार हिकमतें भी पोशीदा हैं जो सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं लेकिन मोमिन इन तिब्बी फवायद की वजह से नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तबा में इस सुन्नत पर अमल करता है सामिन ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर बरकत सुकून और कामयाबी पोशीदा है और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत मासलामा
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी
2: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
3: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया में रहते हुए हर शख्स को अपनी जिंदगी में अच्छे और बुरे हालात का सामना जरूर होता है। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अपनी बेहतरी के लिए दुआगो रहना चाहिए। याद रखिए कि दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। दुआएं मांगते और देते रहा करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
4: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।

0: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

राज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, मोहम्मद मनाई एक इमर्जिंग कतरी फुटबॉलर हैं जो मिडफील्ड में अपनी एनर्जी, डिसिप्लिन और डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी पैदाइश कतर में हुई और उन्होंने अपना फुटबॉल का सफर जो है असद अकेडमी से शुरू किया। बाद में वो कतर के डोमेस्टिक सर्किट में अशमाल क्लब के लिए खेलते हुए प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचे। उनका मेन रोल डिफेंसिव मिडफील्डर का है, लेकिन वो सेंट्रल मिडफील्ड में भी अच्छी एडेप्टिविटी दिखाते हैं। मनाई की गेम रीडिंग, प्रेसिंग और शॉर्ट पासिंग उन्हें मॉडर्न फुटबॉल सिस्टम में एक यूजफुल प्लेयर बनाती है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका स्टैमिना और डिफेंसिव ट्रांजिशंस को कवर करना है। इस साल के वर्ल्ड कप में मोहम्मद मनाई ने कतरी नेशनल टीम के लिए ग्रुप स्टेज मैचेस में पार्टिसिपेशन किया और स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में कतर ने 1-1 का ड्रॉ हासिल किया, जहां मनाई ने मिडफील्ड में डिफेंसिव स्टेबिलिटी दी। कनाडा के खिलाफ मैच में कतर को शिकस्त मिली, जहां उन्हें बहुत ज्यादा डिफेंसिव प्रेशर फेस करना पड़ा और ग्रुप के आखिरी मैच बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ में भी वो मिडफील्ड रोटेशन का हिस्सा थे, लेकिन कतर को यहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ा। इन वर्ल्ड कप मैचेस हार के बावजूद अगर देखा जाए, इन वर्ल्ड कप मैचेस में मोहम्मद मनाई को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया और उनके करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस साबित हुआ। आने वाले टूर्नामेंट्स में उनसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: Absolute Cinema।
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
6: Maximum music, maximum fun.
0: On FM 107, Dil Se Desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर लिसनर्स, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू अपनाने जा रहे हैं। पहले भी बात की कि वॉक करनी है, पैदल चलना है आपको, मगर जो हम कहते हैं कि 45 मिनट्स पैदल चलना है तो वो क्यों फ़ायदेमंद है। दिन में सिर्फ 45 मिनट चलना हमारी मजमू सेहत और तंदुरुस्ती को फ़ायदा पहुंचा सकता है, और सबसे जो फौरी फवायद हैं उनमें से दिल की जो सेहत है उसमें बेहतरी आती है। तेज़ चलना हमारे दिल की धड़कन को बुलंद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर की जो सतह है उसको बैलेंस में रखने में मदद देता है। ये सादा सरगर्मी एक्टिविटी जो है दिल की बीमारी और फालिज के खतरे को नुमायां तौर पर कम कर सकती है। इसके अलावा चहलकदमी या वॉक वजन को बैलेंस में रखती है, कैलोरीज बर्न होती हैं और इसी तरह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर सेहतमंद वजन को बरकरार रखना, यहाँ तक कि जो एक्स्ट्रा पाउंड्स हैं यानी एक्स्ट्रा वजन है उसको कम करना भी आसान बना देती है। एक और काबिले जिक्र फ़ायदा ये है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर पॉजिटिव असरात मुरतब करती है। वॉक या चहलकदमी एंडोर्फिन्स के अखराज को एक्टिव करती है, उससे हमारा जो डिप्रेशन है, इस्तराब है और एनजाइटी है उसकी अलामत कम से कम होती चली जाती हैं। 45 मिनट की वॉक जो है वो बाकायदगी से अगर हम करते रहें तो जो जॉइंट्स हैं उनको भी मोबिलाइज रखती है और उसमें सख्ती और दर्द को कम कर सकती है। खास तौर पर आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। वॉक करने से मसल्स और जॉइंट्स को लचकदार रखने में मदद मिलती है और आपकी जो एक्टिविटी है या आप जो भी हरकत कर रहे हैं उसकी हद को बेहतर बनाने और चोट लगने के खतरे को भी कम करने में मदद देती है। वॉक एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे नींद जो है बेहतर होती है, यानी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बेहतर हो जाती है और इस तरह से हम ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। बाकायदगी से वॉक करने से जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होता है और जिससे बीमारियों का खतरा कम से कम होता चला जाता है। तो 45 मिनट की वॉक को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करना हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत को बढ़ाने का एक बहुत ही सादा और ताकतवर तरीका है।
0: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: क्या आप इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं? क्या आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, आरजे नाजिया आपको लेकर जाएंगी एक नए सफर पे, जहां आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हो या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हो, इन्वेस्ट कतर ये है आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म। सुनिए शो इन्वेस्ट कतर, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी तरक्की।
1: Hello and welcome to the show called Invest Qatar, where we dwell into the world of finance, investments and businesses. दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात होगी टेक इन्वेस्टमेंट्स की, और इस टॉपिक पर इनसाइट्स शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे

0: Ben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for inviting me today.
0: Pleasure to have you here. और शुरुआत इसी बात से कि कतर में टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ हो रहे हैं?
1: इस बारे में देखने के लिए हम बुनियादी तौर पर ग्लोबल जो टेक्नोलॉजी लैंडस्केप है उसको देखना जरूरी है क्योंकि you know, the whole world is now become a global village.
0: True.
1: Internet ki wajah se, technological evolution, aur ab AI ke aane ki wajah se, to wo har taraf jo hai, uska jo impact hai, wo everyone is witnessing.
0: True.
1: So in particularly Qatar mein bhi jo hai, wo without any doubt, sabse zyada heavy focus jo hai, wo AI ki taraf hi hai, which basically transforming the way we live in today, we interact, we socialize. इसने AI ने आके तकरीबन हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है और वो जो चाहे ऑफिस में काम करना हो चाहे आपस में जो है वो सोशलाइज करना हो चाहे ऑनलाइन

0: हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट,
4: हदीद टू हैबिट,
3: दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलाम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस दिलचस्प हलके में आपको खुशामदीद। आज का यह हलका हमारे गुज़श्ता हलके का तकमिला है, जिसमें हमारी गुफ्तगू हो रही थी बेहिसी और लाताल्लुकी की बीमारी के हवाले से कि हमारे माशरे में क्यों पैदा हुई। पिछले हलके में हमने इस बात की वजाहत पेश की थी कि लाताल्लुकी का मसला ये सिर्फ एक सबब से पैदा नहीं होता। अच्छा, ये बेहिसी और लाताल्लुक ये क्या चीज़ है, इस सिलसिले में भी हमने इसकी वजाहत पेश की थी। इसको अगर हम मुख्तसरन समझना चाहें तो ये दरअसल वो सवालात होते हैं जो हम रोज़मर्रा बार बार एक दूसरे से कर रहे होते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इससे क्या, सब कुछ ख़राब है, कुछ नहीं बदल सकता। तो यही सोच बेहिसी को आदत और फिर इज्तिमाई मिजाज बना देती है। तो लाताल्लुकी का मसला ये सिर्फ़ एक सबब से पैदा नहीं होता, इस बेहिसी और लाताल्लुकी के पीछे बहुत से तहें हैं। इसमें बैरूनी फिक्री दबाव है, घर की कमज़ोर तरबियत एक सबब, इसी तरह दीन से दूरी ये भी एक सबब है, ईमानी हिस्स की मौत, मसाइल की कसरत, गुरबत और माली दबाव, मालदारी की गफलत, मुतवस्त तबके की कमज़ोरी के हवाले से भी हमने इसकी वजाहत पेश की थी, इदारों की नाअहली, बदअनवानी, नमूना अमल का फ़ुकदान, तालीमी कमज़ोरियाँ, दीनी और समाजी तरबियत का बिखर।

ये सब मिलकर एक ऐसा इंसान पैदा करते हैं जो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इससे क्या, सब कुछ ख़राब है, कुछ नहीं बदल सकता। तुहमत की ये बेहिसी अचानक पैदा नहीं हुई, ये बरसों की गफलत, कमज़ोर तरबियत, दाखिली मसाइल और दीनी शऊर से दूरी का नतीजा है। लेकिन जिस बीमारी के असबाब मालूम हो जाए उसके इलाज की राह भी खुल जाती है। तो हमें बाहर की साजिशों से भी खबरदार रहना है, इसी तरह अंदर के वैरान हिस्सों को भी आबाद करना है। आज के इस हलके का अहम सवाल ये है कि क्या ये बेहिसी और लातालुकी की कैफियत अहदे सहाबा में भी मौजूद थी? क्या पहली इस्लामी नस्ल भी अपने गिर्दोपेश के मसाइल से बेनियाज रहती थी? क्या वो नस्ल भी ये कहती थी कि हमें क्या, कोई और देख लेगा? तारीख का जवाब इस सिलसिले में नहायत वाज़ह है कि नहीं, इस्लाम की पहली नस्ल की नुमाया खुसूसियत ये थी कि वो जिंदा ज़मीर, बेदार एहसास और फ़ाल ज़िम्मेदारी रखने वाली नस्ल थी। उनमें ये सोच रासिख थी कि अगर कहीं ख़तरा है, कहीं मजलूम पुकार रहा है, कहीं दीन या माशरे की कोई अमानत ज़ाय हो रही है, तो हर शख्स अपनी इस्तेताहत के मुताबिक ज़िम्मेदार है। वो ये इंतज़ार नहीं करते थे कि पहले कोई बड़ा शख्स उठे फिर हम देखेंगे। वो ये नहीं कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, हमारी क्या ज़रूरत है, बड़े सहाबा मौजूद हैं, हम क्यों आगे बढ़ें। उनके अंदर एक ऐसी ईमानी हरारत थी जो ख़तरे की आहट पर उन्हें बेदार करती थी। जैसे कि आप सब जानते हैं सामिन किराम के अहद नबवी के इब्तदाई दौर में मुसलमान माशी आसूदगी में नहीं थे। खैबर की फतह से पहले मदीना में बहुत से मुसलमान शदीद फ़क्र और किल्लत वसाइल से दो चार थे। कभी खाने को पूरा सामान मैसर नहीं होता, कभी एक ही खजूर पर गुजारा होता, कभी कई कई दिन घरों में चूल्हा न जलता। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनकी गुर्बत ने उन्हें खुद गर्ज नहीं बनाया। वो अपनी ज़रूरतों में घिर कर दूसरों को नहीं भूले। उनके पास माल कम था मगर दिल कुशादा थे, वसाइल महदूद थे मगर एहसास ज़िम्मेदारी वसी था। वो चाहते थे कि इंसान की कदर इस बात से नहीं होती कि उसके पास कितना माल है, बल्कि इस बात से होती है कि वो ज़रूरत के वक्त कितनी जल्दी उठता है। सीरत में आता है कि एक रात मदीने में अचानक एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। लोगों को अंदेशा हुआ कि शायद कोई दुश्मन हमला आवर हो गया है। सहाबा इकराम अपने घरों से निकले, हथियार संभाले और खतरे की सम्त चल पड़े। लेकिन इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोड़े पर सवार होकर खुद हालात का जायजा ले चुके थे। वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई सहाबा से, तो उन्होंने सहाबा किराम को तसल्ली देते हुए फरमाया, लन तुराउ, यानी खौफ न करो, कोई ख़तरा नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे पहला सबक ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यादत को सिर्फ एक मनसब नहीं समझा बल्कि ख़ुद सबसे पहले मैदान में पहुँचे। दूसरा सबक ये है कि सहाबा इकराम ने यह नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, वही सब कुछ संभाल लेंगे। बड़े छोटे, जवान और उम्र रसीद सब हरकत में आ गए। यही जिंदा मुआशरे की निशानी है। ख़तरा आए तो हर शख्स पूछे, मैं क्या कर सकता हूँ, न कि ये किसकी जिम्मेदारी है। अब सामने करम बेहसी का एक आम जुमला ये मशहूर है, कितने बड़े लोग मौजूद हैं, मेरी क्या हैसियत है। लेकिन तीन इंसान को इस बहाने की इजाज़त नहीं देता। हर शख्स अपनी जगह ज़िम्मेदार है। वालिद अपने घर के ज़िम्मेदार है, माँ अपनी औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदार है, उस्ताद अपने शागिर्दों का ज़िम्मेदार है, साहिब कलम अपनी तहरीर का ज़िम्मेदार है, साहिब मनसब अपने फ़ैसलों का ज़िम्मेदार है, और आम मुसलमान भी अपनी इस्तेआत के मुताबिक खैर की हिमायत और बुराई से इज्तनाब का ज़िम्मेदार है। एक मुआशरा उस वक्त मजबूत होता है जब जिम्मेदारी

उनसे शिकस्त खाती है, कभी अंदरूनी फसाद से, कभी खौफ उसे खामोश करता है, कभी मफाद, कभी थकन, कभी ये एहसास कि हमारे करने से क्या होगा। फिर वही गलतियां नए नामों के साथ वापस आती हैं। तारीख इसलिए दोहराई जाती है कि इंसान सबक पढ़ता है मगर अपने किरदार में नहीं उतारता। आज हमारे पास उतने औकात नहीं मगर इजहार और राबते के बहुत से ज़राए मौजूद हैं। एक बामकसद तहरीर हजारों लोगों तक पहुंच सकती है, एक तालीमी मंसूबा नस्लों को बदल सकता है, एक दुरुस्त मालूमाती मुहिम किसी मजलूम की आवाज बन सकती है। अलबत्ता ये सब सच्चाई, तहकीक, हिकमत और कानूनी व अखलाकी हदूद में होना चाहिए। झूठी खबर फैलाना मुस्बत इकदाम नहीं, लोगों की इज्जत उछालना इस्लाह नहीं, नफरत भड़काना दीनी गैरत नहीं, लेकिन सच, दलील और जिम्मेदाराना जबान के साथ बात कहना यकीनन मुस्बत किरदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हैरत अंगेज तालीम दी कि अगर क़यामत कायम होने लगे और तुम में से किसी के हाथ में खजूर का एक पौधा हो और वो उसे लगाने की मोहलत रखता हो तो उसे लगा दे। जरा गौर कीजिए, क़यामत कायम हो रही है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, इस पौधे को फल देने में बरसों लग सकते हैं, फिर भी हुक्म है उसे लगा दो। क्यों? क्योंकि इस्लाम इंसान को नतीजे का गुलाम नहीं जिम्मेदारी का अमीन बनाता है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं कि तुम हर कोशिश का मुकम्मल नतीजा अपनी आंखों से देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी तो ये है कि आखिरी लम्हे तक खैर का बीज बोते रहो। यही ईमानी शख्सियत है। ये शख्सियत ये कहती है कि मैं जानता हूँ शायद मेरी कोशिश से पूरी दुनिया न बदले मगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ूंगा। बाज़ मौके पर इंसान समझता है कि मैं खामोश रहूंगा तो गैर जानिबदार रहूंगा, हालांकि हक बात पर खामोश रहने वाला गूंगा शैतान है, ये एक मकूला है। इसका मफहूम यह है कि कुदरत और मुनासिब मौका के बावजूद हक को छुपाना बड़ी अखलाकी कमजोरी है। हर शख्स हर जगह बोलने का मुकल्लफ नहीं, कभी खामोशी हिकमत भी होती है, कभी जबान खोलने से बड़ा फसाद पैदा हो सकता है, लेकिन खौफ, मफाद या सुस्ती की वजह से हमेशा खामोश रहना बेहिसी है। न बेहिकमत शोर मतलूब है न बुजदिल खामोशी, बल्कि हक, हिकमत और इस्तेताअत का तवाज़ुन मतलूब है। सूरह यासीन में एक शख्स का जिक्र है जो शहर के दूर किनारे से दौड़ता हुआ आया और अपनी कौम से कहा, या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ए मेरी कौम इन रसूलों की पैरवी करो। मुफस्सिरीन की रिवायात में उसे हबीब नज्जार के नाम से याद किया जाता है। उसने अपनी कौम को सच्चाई की दावत दी, उसकी बात कबूल नहीं की गई बल्कि उसे कत्ल कर दिया गया। जाहिरी नतीजा क्या था कि कौम फौरन ईमान नहीं लाई, शहर उसकी बात से एकदम तब्दील नहीं हुआ, मगर कुरान ने उस शख्स का जिक्र हमेशा के लिए महफूज कर दिया। उसे जन्नत की खुशखबरी दी गई और उसने मौत के बाद भी अपनी कौम के लिए खैर खाही करते हुए कहा, या लैत कौमी यालमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर दिया। तो सबक ये है कि मोमिन सिर्फ नतीजा नहीं देखता, वो देखता है कि अल्लाह के सामने मेरा मौकिफ क्या था, क्या मैंने हक पहचाना, क्या मैंने अपनी इस्तेआत के मुताबिक उसे बयान किया, क्या मैंने खौफ के बावजूद वफादारी दिखाई। वैसे एक ख़तरनाक बहाना बेहसी का ये है कि लोग ये कहने लगे, सबसे आम उजर तो यही है बेहसी का कि मेरी एक बात से क्या होगा, एक पैगाम लिख देने से क्या बदल जाएगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। मगर तारीख में हर बड़ी तब्दीली किसी एक ज़मीर, एक जुमले, एक कदम या एक छोटे ग्रोह से शुरू हुई। कुरान एक और शख्सियत का जिक्र करता है, मोमिन आल फिरौन। वो फिरौन के ख़ानदान या दरबार से ताल्लुक़ रखने वाला एक मोमिन था जो अपना ईमान छुपाए हुए था। जब मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की बात हुई तो उसने नहायत हिकमत, तजरीज और मुहताज ज़बान में कहा, أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब कौन है, मेरा रब अल्लाह है। फिर फिरौन की कौम को साबिका अक़वाम के अंजाम से डराया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के दलाइल पर गौर की दावत दी, तो ये हिकमत भरी मुस्बत जद्दोजहद थी। कुरान कहता है, फवकाहुल्लाहु सय्यिआति मा

0: आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सभी करम, आज हम एक इंतहाई खूबसूरत सुन्नत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिस पर अमल करने में न कोई मशक्क़त है और न कोई खर्च, लेकिन इसमें अदब है, सेहत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का शरफ है। आज का मौजू है पानी तीन सांस में पीना। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते वक्त तीन मरतबा सांस लेते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बर्तन के अंदर सांस लेते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घूंट पीते, फिर बर्तन को अपने मुबारक मुंह से हटा लेते, उसके बाद सांस लेते, फिर दोबारा पानी पीते, फिर बर्तन अलग करके सांस लेते और फिर तीसरी मरतबा पानी नोश फरमाते। यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका था। इसी तरह सामने कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पानी पीने के हवाले से एक अहम अदब भी सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के अंदर सांस लेने और फूंक मारने से मना फरमाया, क्योंकि इससे दूसरों को तकलीफ हो सकती है, सफाई मुतासर हो सकती है और ये हुस्न आदाब के खिलाफ है। चुनांचे जब भी पानी पीना हो, सांस लेने की जरूरत महसूस हो, तो बर्तन को पहले मुंह से हटा लिया जाए, फिर सांस ली जाए और उसके बाद दोबारा पिया जाए। यही सुन्नत है। समझ कर आज की मशहूर जिंदगी में हम अक्सर पानी भी जल्दी जल्दी एक ही सांस में पी जाते हैं, कभी खड़े खड़े, कभी चलते चलते और कभी मोबाइल देखते हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से बैठकर अल्लाह का नाम लेकर ठहर ठहर कर पानी नोश फरमाते। ये अंदाज इंसान को यह एहसास भी दिलाता है कि पानी अल्लाह ताला की कितनी अजीम नेमत है। सोचिए, अगर अल्लाह ताला पानी को खारा बना देता या जमीन से पानी निकालने की ताकत छीन लेता तो हमारी जिंदगी कैसे चलती। कुरान करीम में अल्लाह ताला हमें इसी नेमत की तरफ मुतवज्जे करते हुए फरमाता है, أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون। भला बताओ, जो पानी तुम पीते हो क्या तुमने उसे बादल से उतारा है या हम उतारने वाले हैं? अगर हम चाहते तो उसे खारा बना देते, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते। ये आयतें सूरतुल वाकिया की हैं। सामने कराम, जब मोमिन पानी पीता है तो वो दरअसल अपने रब की नेमत को भी याद रखता है। तो सामने कराम, इस प्रोग्राम में अगरचे हमारा मकसद सुन्नत बताना है, सुन्नत पर अमल करना है, लेकिन अल्लाह ताला की शरीयत में इन सुन्नतों में ऐसी बेशुमार हिकमतें भी पोशीदा हैं जो सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। लेकिन मोमिन इन तिब्बी फवायद की वजह से नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तबा में इस सुन्नत पर अमल करता है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: अलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, मोहम्मद मनाई एक इमर्जिंग कतरी फुटबॉलर हैं जो मिडफील्ड में अपनी एनर्जी, डिसिप्लिन और डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी पैदाइश कतर में हुई और उन्होंने अपना फुटबॉल का सफर जो है असद अकेडमी से शुरू किया। बाद में वो कतर के डोमेस्टिक सर्किट में अशमाल क्लब के लिए खेलते हुए प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचे। उनका मेन रोल डिफेंसिव मिडफील्डर का है, लेकिन वो सेंट्रल मिडफील्ड में भी अच्छी एडेप्टिविटी दिखाते हैं। मनाई की गेम रीडिंग, प्रेसिंग और शॉर्ट पासिंग उन्हें मॉडर्न फुटबॉल सिस्टम में एक यूजफुल प्लेयर बनाती है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका स्टैमिना और डिफेंसिव ट्रांजिशंस को कवर करना है। इस साल के वर्ल्ड कप में मोहम्मद मनाई ने कतरी नेशनल टीम के लिए ग्रुप स्टेज मैचेस में पार्टिसिपेशन किया और स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में कतर ने 1-1 का ड्रॉ हासिल किया, जहां मनाई ने मिडफील्ड में डिफेंसिव स्टेबिलिटी दी। कनाडा के खिलाफ मैच में कतर को शिकस्त मिली, जहां उन्हें बहुत ज्यादा डिफेंसिव प्रेशर फेस करना पड़ा और ग्रुप के आखिरी मैच बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ में भी वो मिडफील्ड रोटेशन का हिस्सा थे, लेकिन कतर को यहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ा। इन वर्ल्ड कप मैचेस हार के बावजूद अगर देखा जाए, इन वर्ल्ड कप मैचेस में मोहम्मद मनाई को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया और उनके करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस साबित हुआ। आने वाले टूर्नामेंट्स में उनसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. So no FOMO.

0: ever again. सुनिए कदर 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
1: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास. ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं. स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए. पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है. हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे. पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं. वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश रहें.
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे.
0: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर लिसनर्स, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू अपनाने जा रहे हैं। पहले भी बात की कि वॉक करनी है, पैदल चलना है आपको, मगर जो हम कहते हैं कि 45 मिनट्स पैदल चलना है तो वो क्यों फ़ायदेमंद है। दिन में सिर्फ 45 मिनट चलना हमारी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती को फ़ायदा पहुंचा सकता है, और सबसे जो फौरी फ़ायदे हैं उनमें से दिल की जो सेहत है उसमें बेहतरी आती है। तेज़ चलना हमारे दिल की धड़कन को बुलंद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर की जो सतह है उसको बैलेंस में रखने में मदद देता है। ये सादा सरगर्मी एक्टिविटी जो है दिल की बीमारी और फालिज के खतरे को नुमाया तौर पर कम कर सकती है। इसके अलावा चहलकदमी या वॉक वजन को बैलेंस में रखती है, कैलोरीज बर्न होती हैं और इसी तरह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर सेहतमंद वजन को बरकरार रखना, यहाँ तक कि जो एक्स्ट्रा पाउंड्स हैं यानी एक्स्ट्रा वजन है उसको कम करना भी आसान बना देती है। एक और काबिले जिक्र फ़ायदा ये है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर पॉजिटिव असरात मुरतब करती है। वॉक या चहलकदमी एंडोर्फिन्स के अखराज को एक्टिव करती है, उससे हमारा जो डिप्रेशन है, इस्तराब है और एनजाइटी है उसकी अलामत कम से कम होती चली जाती हैं। 45 मिनट की वॉक जो है वो बाकायदगी से अगर हम करते रहें तो जो जॉइंट्स हैं उनको भी मोबिलाइज रखती है और इसमें सख्ती और दर्द को कम कर सकती है। खास तौर पर आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। वॉक करने से मसल्स और जॉइंट्स को लचकदार रखने में मदद मिलती है और आपकी जो एक्टिविटी है या आप जो भी हरकत कर रहे हैं उसकी हद को बेहतर बनाने और चोट लगने के खतरे को भी कम करने में मदद देती है। वॉक एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे नींद जो है बेहतर होती है, यानी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बेहतर हो जाती है और इस तरह से हम ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। बाकायदगी से वॉक करने से जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होता है और जिससे बीमारियों का खतरा कम से कम होता चला जाता है। तो 45 मिनट की वॉक को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करना हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत को बढ़ाने का एक बहुत ही सादा और ताकतवर तरीका है।
0: Maximum music, maximum fun
1: on FM 107. Dil se desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, हमारा किचन घर की वो जगह होती है जहां रोजाना सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है कि नहीं। सुबह की चाय से लेकर डिनर की तैयारी तक, सब्जी धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, किचन में पानी का इस्तेमाल तो भाई लगातार होता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम किचन में कितना पानी इस्तेमाल करते हैं और कितना जाया करते हैं? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि नल खुला रह जाता है, कभी बर्तन धोते वक्त जरूरत से ज्यादा पानी बह जाता है, और कभी खाने की प्रिपरेशन में हम पानी को भी वेस्ट कर देते हैं। साथियों, पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, ये जिंदगी की बुनियाद है। इसलिए आज के इको स्विच में बात करते हैं सेविंग वाटर इन द किचन के बारे में, यानी किचन की छोटी छोटी आदतों से पानी बचा लेना। भाई देखिए, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाए ना साथियों, तो अक्सर हम पानी की कदर तब समझते हैं जब वो

0: पानी को साफ करने, स्टोर करने और घर तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है ना, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यानी पानी बचाना सिर्फ पानी बचाना नहीं है, बल्कि एनर्जी और रिसोर्सेज को बचाना भी है। देखिए, अब आप कहेंगे कि सफा सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन बताओ। तो दोस्तों, किचन में पानी बचाने के लिए हम कौन से सिंपल इको स्विच कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो ये भाई कि ये जो नल की जरूरत है ना, ये जो टैब है, नल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। देखें, बर्तन या सब्जी धोते वक्त नल को कंटिन्यूसली खुला ना छोड़े ना। पहले बर्तन आप थोड़ा साबुन वगैरह लगा लें, साइड पे कर लें, फिर पानी से उसे रिंस कर लें। ये जो सब्जी होती है या फल होते हैं, इनको स्मार्ट तरीके से धोएं। जो रनिंग वाटर के नीचे आप इसको डाल देते हैं और ये पानी चल रहा है बोल के अंदर, कंटेनर के अंदर, और आपका पानी सारा बहता चला जा रहा है, एक एक सब्जी उठाकर आप धो रहे हैं। एक काम करें ना, कंटेनर में पानी भरें और सब्जियों को उसी के अंदर धोएं, जितना पानी है उसी से। इससे पानी की बचत भी होती है और काम भी आसानी से हो जाता है। और हाँ, एक और बात, पानी को दोबारा इस्तेमाल करें। सब्जी धोने का पानी जो है वो पौधों को दिया जा सकता है। अगर पास्ता या चावल उबालने का पानी है तो कुछ लोग इसे कुकिंग के दूसरे कामों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और हाँ, मैंने तो ये भी देखा था कि पास्ता या चावल का जो पानी होता है उससे आप अगर अपने बालों को धोएं तो वो बड़ा अच्छा होता है रिंसिंग में। अब ये कौन सा टोटका है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं उससे बाल अच्छे होते हैं। अच्छा, लीक्स को इग्नोर ना करें साथियों। अगर किचन का नल हल्का सा भी लीक कर रहा है, वो जो टिप टिप टिप करके पानी बहता है ना, तो उसे रिपेयर कराना जरूरी है। छोटी सी लीक भी वक्त के साथ साथ सारा पानी वेस्ट कर सकती है। लेकिन स्मार्ट किचन हैबिट्स अपनाएं। डिशवॉशर यूज करते हैं तो उसे हाफ लोड पर चलाने के बजाय फुल लोड पर चलाएं। यानी जरूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करें ना, ज्यादा नहीं करें। तो साथियों, देखें, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे घरों में लोग छोटी छोटी चेंजेस से पानी बचाने की कामयाब कोशिशें कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज ने किचन में एक सिंपल रूल बनाया हुआ है, जितना पानी जरूरी है उतना इस्तेमाल करना। कुछ लोग सब्जी धोने के लिए बोल मेथड यूज करते हैं। कुछ लोग एक कंटेनर रखते हैं जहां एक्स्ट्रा पानी कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें अपने पौधों को क्यारी में दे दिया जाता है। ये छोटी छोटी आदतें शुरू में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आपका पूरा घर इन आदतों पर अमल करता है ना, तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पानी बचाने से अक्सर घर का बिल भी कंट्रोल में आ जाता है। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज अपने किचन में सिर्फ एक दिन ऑब्जर्व करें कि भाई सबसे ज्यादा पानी कहाँ वेस्ट होता है। क्या बर्तन धोते वक्त यूज होता है, क्या सब्जी धोते वक्त यूज होता है, या किसी लीक की वजह से होता है। और फिर एक छोटा सा चेंज करें और हमें जरूर बताएं कि पानी बचाने के लिए किचन में आप कौन सी आदत फॉलो करते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, पानी की एक एक बूंद कीमती है, क्योंकि हर बूंद मिलकर जिंदगी बनाती है। छोटी छोटी आदतें बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज का टॉपिक है खामोश सदका। खामोश सदका यानी ऐसी मदद जो बिना किसी को बताए की जाए, इस्लाम में बहुत अफजल मानी जाती है। ये ना सिर्फ ज़रूरतमंद की मदद करती है बल्कि देने वाले का इखलास भी जाहिर करती है। आजकल लोग अपनी नेकियों को शेयर करते हैं लेकिन असल खूबसूरती उस अमल में है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। खामोश सदका इंसान के दिल को पाक करता है और उसे रिया यानी दिखावे से बचाता है। ये अमल इंसान और उसके रब के दरमियान एक खास रिश्ता पैदा करता है। आज का अमल ये है कि किसी की मदद इस तरह करें कि किसी और को पता भी ना चले, सिर्फ अल्लाह के लिए हो। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टू choices, सेफ्टी या स्पीड। सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या स्पीड? देखिए, आजकल की जो हमारी तेज रफ्तार वाली ये दुनिया है, इस दुनिया में ये सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हर चीज फास्ट हो रही है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट डिलीवरी, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, और शायद हमारे रिश्तों में भी वो तेजी आ गई है टूटने और बिखरने की। हर कोई चाहता है कि उसका काम जल्दी हो और उसका वक्त बचे, लेकिन जब बात ट्रैवल, टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ की आती है तो एक इम्पोर्टेंट सवाल सामने आता है, क्या स्पीड ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर सेफ्टी? ये सवाल जो है ना दोस्तों, सिर्फ रोड्स या फिर ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है। आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज ये कि हम इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं। कभी सवाल किया है अपने आप से? देखिए, मॉडर्न लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है विदाउट अ डाउट। लोग ऑफिस, मीटिंग, स्टडीज और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दरमियान वक्त बचा ही नहीं पाते। इसीलिए जब कोई टेक्नोलॉजी या सर्विस हमारे काम जल्दी करती है तो हमें वो बड़ी पसंद आती है ना? जैसे फास्ट ट्रेन्स, हाई स्पीड इंटरनेट और क्विक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन सारी चीजों ने जिंदगी को आसान बनाया है। स्पीड के बहुत से फायदे हैं। वक्त की बचत होती है, प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है, बेटर कनेक्टिविटी होती है, इमरजेंसी सिचुएशन में मदद मिलती है। इसीलिए दुनिया हमेशा फास्टर सॉल्यूशंस की तरफ भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल है कि अगर स्पीड की वजह से सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो क्या हो? अब जान लेते हैं कि सेफ्टी है क्या। देखिए, सेफ्टी का मतलब है कि अपने और दूसरों की हिफाजत। रोड्स पर सीट बेल्ट पहनना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना सेफ्टी का हिस्सा है। एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर फ्लाइट से पहले आप देखते और जानते ही हैं कि मल्टीपल चेक्स किए जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ऑपरेशन करने से पहले हर डिटेल वेरीफाई करते हैं। यानी हर सक्सेसफुल सिस्टम की बुनियाद सेफ्टी होती है। अगर सेफ्टी ना हो तो स्पीड का कोई फायदा है? देखिए, ट्रांसपोर्ट में भी सेफ्टी या स्पीड एक ऐसा टॉपिक है कि किसको किसको चूज करें। सुनने में हर कोई कहता है सेफ्टी, लेकिन क्या हम स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं? सोचिए, आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। एक ऑप्शन है कि आप बहुत फास्ट ड्राइव करें, दूसरा ऑप्शन है कि आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए सेफ ड्राइविंग करें। जाहिर सी बात है कि सेफ ऑप्शन बेटर ऑप्शन है। अगर कोई

0: लेवल कुछ मिनट्स बचाने के लिए डेंजरस ड्राइविंग करे और एक्सीडेंट हो जाए तो ना सिर्फ उसका वक्त जाया होता है बल्कि जान भी खतरे में पड़ सकती है. इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो लाइन याद आ रही है मुझे कि वो बेटर लेट देन नेवर, थोड़ा लेट पहुंचना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि इंसान अपने या दूसरों की जान खतरे में डाले. दोस्तों फ्यूचर जैसा भी हो लेकिन हमें जो आपको सेफ्टी को हर हाल में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसी चैलेंज का सामना कर रही हैं. कंपनीज चाहती हैं कि टेक्नोलॉजी फास्ट और इफिशियंट हो लेकिन साथ ही डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी तो जरूरी है. सोचिए कोई ऐप बहुत फास्ट काम करे लेकिन यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट ना करे तो क्या आप उसे यूज करना पसंद करेंगे? शायद इसका जवाब मैं ही दे देती हूँ, नहीं. यानी टेक्नोलॉजी में भी सेफ्टी को स्पीड पर तरजीह देनी पड़ती है. वहीं हेल्थ केयर सेक्टर हो, मतलब हर चीज डॉक्टर्स नर्स हर स्टेप को वेरीफाई करते हैं. आप जानते हैं हॉस्पिटल में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना मैंडेटरी होता है क्योंकि इंसान सबसे कीमती चीज है. रियल लाइफ में बैलेंस इज वेरी मच मैंडेटरी. ये कहना बिल्कुल सही है कि स्पीड जरूरी है, जरूरत है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है सेफ्टी के साथ. इमरजेंसी सर्विस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. अगर एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड टाइम पर ना पहुंचे तो जान बचाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ भी स्पीड के साथ सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है. यानी असल कामयाबी स्पीड और सेफ्टी के दरमियान बैलेंस में है. तो बैलेंस जो है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है. देखिए आज की दुनिया स्पीड को सेलिब्रेट करती है. हम फास्ट इंटरनेट को, फास्ट ट्रांसपोर्ट को, फास्ट रिजल्ट्स को पसंद करते हैं, लेकिन हर प्रोग्रेस की बुनियाद सेफ्टी होनी चाहिए क्योंकि वक्त दोबारा मिल सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन जान और सेहत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं. अगर स्पीड और सेफ्टी के दरमियान चॉइस करनी है या करनी पड़े तो सेफ्टी को पहली चॉइस में रखें. असल कामयाबी सिर्फ जल्दी पहुंचने में नहीं है बल्कि महफूज पहुंचने में है. टेक्नोलॉजी हमारी और आपकी आसानी के लिए है और अपने आप को जितना आसानी में हम डाल सकते हैं उसमें हमें ये ख्याल रखना है कि किसी भी सूरत में सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. अगर आपको एक ऐसी ट्रांसपोर्ट सर्विस आज दी जाए जो बहुत फास्ट हो लेकिन उसकी सेफ्टी एवरेज हो और दूसरी तरफ थोड़ी स्लो ट्रांसपोर्ट या थोड़ी ज्यादा स्लो ट्रांसपोर्ट लेकिन उसकी सेफ्टी पुख्ता हो, तो कौन सी चॉइस के साथ आप जाएंगे? इसका जवाब मुझे तो पता है. चलिए फिलहाल मैं आपसे यहाँ पे इजाजत लूंगी इस वादे के साथ कि आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2020.
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट
2: भाई सोशल मीडिया पे मैंने कार बेचने का एडवर्टाइजमेंट डाला था अभी मैसेज आ गया और मैसेज आते ही मैं जा रहा हूँ भाई पर्ल जैसी जगह से मैसेज आया है पर्ल पे बुलाया है एक्सपेंसिव जगह पे बुलाया कह रहा रेट टू रेट हाथों हाथ खरीद लेंगे ये तो भाई बेस्ट हो गया लेकिन ये स्कैम हो सकता है अभी भी इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस वेल ये एक नए जमाने के स्कैम के बारे में जब मैं बात करता हूँ ना तो कुछ ऐसे स्कैम है जिसको तो मतलब चुटकियों में आपको पकड़ लेना चाहिए लेकिन कई बार क्या है कि नादान दिल है हम बड़े मासूम हैं अम्मी जान कहा करती थी तो ये क्या है कि इस तरह के स्कैम में हमारा फंसना बड़ा आम हो जाता है जब हम इस तरह का सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कि भाई हमें अपनी कार जो है वो बेचनी है और किसी का मैसेज आ भी जाए आज के आज कि बिल्कुल यार आपकी कार खरीद लेंगे कितने की 20,000, 30,000, 40,000 कितने रियाल चाहिए इतने रियाल की है ठीक है भाई मैं खरीद लूंगा लेकिन देखो 2,000-3,000 रियाल कम कर देना आपको लगता है कि यार नेगोशिएशन इतना तो चलता ही है और 2,000-3,000 रियाल तो मैंने भी बढ़ा के डाला था अब आपको वो ऐसी जगह बुलाते हैं मिसाल के तौर पे अच्छी जगह पे जहाँ मतलब एक्सपेंस जो है बहुत ज्यादा होता है लोगों का पर्ल जैसी जगह वेस्ट बे जैसी जगह और आपको लगता है कि यार ये तो इतना पैसे वाला है और ये खरीद लेगा क्योंकि वहीं रहता है ना पर्ल में रहता है या फिर वेस्ट बे में रहता है या फिर लुसेल में रहता है और अच्छी जगह पे बुला रहा है वहां पर भी एरिया है कुछ ऐसे जो बहुत ही अच्छे तो आपको लगता है कि यार ये तो गाड़ी खरीद लेगा पर आप वहां पर जाते हैं और काम ऐसे होता है इस स्कैम में इस फ्रॉड में कि जैसे ही आप पहुंचते हैं आपसे वो कहता है कितने की है थोड़ी बहुत मांडवली या नेगोशिएशन जो है वहां पर चलता है और फाइनली आप दोनों एक रेट पर तय हो जाते हैं लेकिन आपने उनका चेहरा देख लिया उसने आपका चेहरा देख लिया आपको लगता है कि स्कैम तो हो ही नहीं सकता एक दूसरे को देख ही लिया भाई और फिर होता यह है कि वो कहता है ठीक है आप ट्रांसफर करो मैं आपको पैसे देता हूं तो आप और श्योर हो जाते हैं कि भाई मैं नीचे खड़ा हूँ वो गया है अपने घर पे पैसे लाने के लिए और मैं ट्रांसफर कर दूंगा इतनी देर में वो आता है अपनी जेब में कुछ भर के और फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है ट्रांसफर कर रहे हैं क्या है सारी डिटेल आप डालते हैं मैं ट्रैश पे सारी आप एक एक डिटेल डाल देते हैं अब होता यह है वो आपको देता है चेक आप कहते हैं कैश की बात हुई थी तो फिर वो कहता है नहीं मेरे घर में कैश नहीं है ऐसा है वैसा है आप ये बैंक में चला जाओ फला फला फला ये हो जाएगा फिर आपको अंदाजा होता है कि ये चेक तो हो गया बाउंस जब आप बैंक पहुंचते हैं ये एक बहुत बड़ा रिस्क और स्कैम दोनों है क्योंकि अगर चेक बाउंस हुआ तो क्योंकि बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है आपने कार ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया अब मुद्दा लेकर आप कहीं जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे हो सकता है जिस नंबर से आपके पास मैसेज आ रहा हो वो आपको ब्लॉक कर चुका हो आप ट्रेस कैसे करेंगे आप पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे या कुछ और करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो फोन नंबर अगर ट्रेसेबल नहीं हुआ पता नहीं लगा जा पाया तो फिर ये आपके लिए रिस्क हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफर आपके

मैट्रेस से हुआ है, आपने सारी डिटेल डाली है, ये इस तरह का फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। हालांकि इस तरह के स्कैम आपके साथ होने के यहाँ पर चांसेस बेहद कम है। मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको ये स्कैम के बारे में अलर्ट किया, ये आपके साथ कहीं और भी बहुत आसानी से हो सकता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्क रहें और सोचते रहें। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक इसी तरह के एक नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अल मुदाका के बारे में, जो कतर चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल चेस में एक बहुत ही बड़ा नाम है और अहम शख्सियत समझे जाते हैं। मोहम्मद अल मुदाका ने कतर में चेस के फरोग के लिए काबिल तारीफ काम किया है और इस गेम को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। उनकी क़यादत में कतर चेस एसोसिएशन ने ना सिर्फ लोकल टूर्नामेंट्स को बेहतर बनाया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कतर का नाम रोशन किया। कतर में मुनक़द होने वाली वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप को दुनिया भर से सराहा गया, जो अल मुदाका की प्लानिंग और मैनेजमेंट स्किल्स के वजह से सबूत है। मोहम्मद अल मुदाका पीडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के अहदे पर भी फाइज हैं। इस जिम्मेदारी के जरिए वो दुनिया भर में शतरंज को प्रमोट करने, नए ममालिक तक गेम को फैलाने और यंग प्लेयर्स को मौका देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा एशिया में शतरंज के मुस्तकबिल पर जोर दिया है और रीजनल डेवलपमेंट को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया है। अल मुदाका का मानना है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में कतर की शिरकत खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे उन्हें ग्लोबल एक्सपीरियंस हासिल होता है। दोस्तों मोहम्मद अल मुदाका आज कतर स्पोर्ट्स लीडरशिप की एक रोशन मिसाल है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107,
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। बात हम कर रहे हैं एनर्जी ड्रिंक की, मगर ये कि बहुत से जो बालिग अफराद हैं अपनी मसरूफ जिंदगी, रात की ड्यूटी या थकन की वजह से एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। अगरचे वक्ती तौर पर वो एक्टिव हो जाते हैं, अपने आप को बहुत एक्टिव महसूस करते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बालिग अफराद में ज़्यादा कैफीन दिल की धड़कन को तेज़ कर सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है उससे, और इसी तरह वो बहुत ही बेचैनी या फिर घबराहट का शिकार भी हो सकते हैं। बाज़ अफराद में सर दर्द और मेदे की शिकायत भी पैदा होती हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी मुतासिर उससे होता है। बहुत से अफराद, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बालिग अफराद हों या बुज़ुर्ग अफराद हों, तो उनके लिए एनर्जी ड्रिंक्स लेते हुए एहतियात क्यों ज़रूरी है, तो इस उम्र में बहुत से अफराद पहले से हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल, डायबिटीज़ या नींद के मसाइल का शिकार होते हैं, उन्हें ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। बुज़ुर्ग अफराद में कैफीन के असरात ज़्यादा नुमायाँ हो सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स नींद में खलल डाल सकते हैं, जिससे थकन, इसी तरह तवज्जो में कमी और मजमूई सेहत मुतासिर होती है। कुछ अफराद थकन दूर करने के लिए बार बार एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum saathiyon, welcome back. Aap sun rahe hain Eco Switch on FM 107 with Safa. साथियों, हम सब चाहते हैं कि हमारा घर खूबसूरत लगे, एक ऐसी जगह जहां सुकून हो, पॉजिटिविटी हो और जहां आने वाला हर मेहमान कहे भाई वाह क्या तो माशाल्लाह प्यारा घर है। देखिए, घर को डेकोरेट करना हम सबको पसंद होता है। कभी नए कर्टन्स लगाते हैं, कभी नए कुशन्स रखते हैं, कभी खूबसूरत शो पीसेस भी हम ऐड करते हैं और कभी कभी तो फर्नीचर भी चेंज करने का मूड बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर को ब्यूटीफुल बनाने की इस रेस में हम एनवायरनमेंट को कितना इफेक्ट कर रहे हैं? देखिए भाई, आज का इको स्विच में हम बात करने लगे हैं एक ऐसे सिंपल आइडिया की जो आपके घर को भी स्टाइलिश बना सकता है और नेचर का भी ख्याल रख सकता है। तो भाई, हमारा आज का इको फ्रेंडली का टॉपिक है होम डेकोर, यानी अपने घर की सजावट एनवायरनमेंट के साथ, दोस्ती के साथ। साथियों देखें, अक्सर हम घर की डेकोरेशन के लिए नए नए आइटम्स खरीदते हैं, नए ट्रेंड्स आते हैं और हम सोचते हैं कि भाई अब जो है ना हमारे घर का लुक चेंज होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी डेकोरेशन आइटम्स प्लास्टिक या ऐसे मटेरियल्स के बने हुए होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर नहीं होते। सोचिए, एक प्लास्टिक का शोपीस जो है वो कुछ महीने में घर में अच्छा लगता है, कुछ महीने, लेकिन जब वो पुराना हो जाए तो वो कहाँ जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, कचरे में। इसी तरह जब हम पुराना फर्नीचर फेंक कर नया फर्नीचर लेते हैं तो हम रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना, वुड, एनर्जी और दूसरे तीसरे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके चीजें नई बनाई जा सकती हैं। अगर हम हर चीज को जल्दी रिप्लेस करेंगे तो भाई वेस्ट भी तो ज्यादा बढ़ेगा ना। अच्छा, एक और मसला ये है कि ओवर डेकोरेशन भी हो जाती है कभी कभी। कभी कभी हम घर को इतनी सारी चीजों से भर देते हैं, सिंप्लिसिटी और नेचुरल ब्यूटी कहीं खो जाती है। देखिए, इसमें ना सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। तो भाई, अब आप पूछेंगे भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक छोटा सा इको स्विच। भाई सबसे पहले बाय लेस, चूज वाइजली एंड रीयूज मोर। यानी हर नई चीज का खरीदना जरूरी नहीं होता। नो। आप अपनी पुरानी चीजों को नए अंदाज में यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पुरानी लकड़ी की चेयर्स जो होती हैं, वुडन चेयर्स जो होती हैं, उनको आप रीपेंट करके एक ब्यूटीफुल कॉर्नर बना सकते हैं। पुरानी ग्लास बॉटल्स को डेकोरेट करके फ्लावर वास बन सकता है भाई। पुरानी जार्स को स्टोरेज कंटेनर्स जो होते हैं उनकी तरह आप इस्तेमाल करें। मैं भी यही करती हूँ। पुराने कपड़ों से कुशन कवर्स या टेबल रनर्स बनाए जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये मैंने कर देखा है और बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है। और अगर आप डेकोरेशन के लिए कुछ नया लेना चाहते हैं तो नेचुरल मटेरियल्स

0: काफी लोग घरों में सस्टेनेबल डेकोरेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज पुराने फर्नीचर को फेंकने के बजाय उसे रीस्टोर कर लेती हैं। एक पुरानी वुडन टेबल जो होती है उसको अगर पॉलिश करके बिल्कुल नया लुक दे दिया जाए तो वो अच्छी खासी दिखती है। कई लोग अपनी बैल्कनी या लिविंग रूम में एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर बनाते हैं जहाँ प्लांट्स, रिसाइकल पॉट्स और नेचुरल डेकोरेशन होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी पुरानी चीजें ही घर को सबसे ज्यादा स्पेशल बना देती हैं, क्योंकि हर चीज के साथ एक कहानी जुड़ी होती है भाई। दादी का पुराना वुडन बॉक्स, पुरानी फैमिली फोटोज के फ्रेम्स या हैंडमेड डेकोरेशन आइटम्स, ये सिर्फ चीजें नहीं होते, ये यादें भी होती हैं। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि अगर आप अपने घर में एक ऐसी चीज ढूंढें जो आप रिप्लेस कर सकते हैं तो जरा सोचिए वो क्या होगी, और खुद से एक सवाल करें, क्या मैं इस चीज को फेंकने के बजाय दोबारा रीयूज कर सकता हूँ। हो सकता है एक पुरानी जार की एक बॉटल हो जो कि एक ब्यूटीफुल प्लांट पॉट बन जाए, हो सकता है एक पुरानी चेयर जिसे आप रेनोवेट करें तो भाई वो एक फेवरेट कॉर्नर बन जाए। और हमें जरूर बताएं आपके घर की वो कौन सी चीज है, या कहूं कि पुरानी चीज है, जो आज भी आपके लिए बहुत स्पेशल है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, खूबसूरत घर वो नहीं जहां सब कुछ नया हो, बल्कि वो है जहां हर चीज की कदर हो। छोटी छोटी आदतें बदलें साथियों, और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज का टॉपिक है वालिदैन की खिदमत। वालिदैन की खिदमत इस्लाम में बहुत बुलंद मकाम रखती है। उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, बिना किसी शर्त के हम पर अपना वक्त, मेहनत और मोहब्बत लगाई। उनकी खिदमत करना सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि जन्नत तक पहुंचने का जरिया भी है। अक्सर हम अपनी मसरूफ जिंदगी में उनकी छोटी छोटी जरूरियात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी मदद, एक प्यारा सा लफ्ज या उनके साथ वक्त गुजारना उनके लिए बहुत कीमती होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि वालदैन से नरमी से बात करें, उनकी बात सुनें और उनका दिल कभी ना दुखाएं। उनकी दुआ जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत होती है। आज का अमल यह है कि अपने वालदैन के साथ कुछ वक्त गुजारें, उनका हाल पूछें और उनके लिए दिल से दुआ करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी.
2: One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One Step to 2030.
1: दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की. देखिए, आज की दुनिया में ना सबसे अहम चैलेंजेस में से एक है फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी इसका मतलब है कि हर इंसान को हर वक्त सेफ, हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो. देखो, आने वाले सालों में दुनिया की बड़ी आबादी जो है वो तेजी से बढ़ रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से जो गजा है उसकी डिमांड बढ़ेगी. और सवाल ये होगा कि क्या सारे जितने लोग हैं सबको उस तरह से फूड अवेलेबल होगा कि नहीं. सवाल ये भी है कि कितने ज्यादा लोगों के लिए फूड का इंतजाम कैसे किया जाएगा, जबकि आप और हम जानते हैं कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और हमें इस डिमांड को भी फुलफिल करना है. शायद इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत जरूरी हो गया है. अब चलिए समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या. दोस्तों, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मुराद है ऐसी फार्मिंग जो कि जमीन, पानी और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाए बगैर फूड प्रोड्यूस करें. और इसका मकसद सिर्फ आज की जरूरत पूरा करना नहीं है, बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेस को महफूज रखना है. दोस्तों, पुराने जमाने में लोग जमीन को फितरी तरीके से यूज करते थे, लेकिन वक्त के साथ फार्मिंग में केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और देखा जाए तो एक्सेसिव वाटर यूज बढ़ गया है. इससे प्रोडक्शन तो बढ़ी है, लेकिन एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स भी पैदा हुई हैं. जमीन की फर्टिलिटी कम हुई है, पानी जाया हो रहा है या होता है, और फिर पोल्यूशन भी तो बढ़ रहा है. आज सस्टेनेबल फार्मिंग की बात की जाती है, और सस्टेनेबल फार्मिंग का फोकस ये है कि हम कम रिसोर्सेस इस्तेमाल करके ज्यादा और बेहतर फूड प्रोड्यूस करें. डियर फार्मर्स जो है वो ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पानी और एनर्जी बचाई जा सके. वैसे फूड वेस्ट भी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. दुनिया भर में लाखों टन खाना रोजाना वेस्ट होता है. बहुत से लोग भूख का सामना करते हैं और भूखे सो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या फिर घरों में खाना जाया हो जाता है. अगर हम सिर्फ अपना फूड वेस्ट कम करते हैं तो शायद हम फूड सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, या फूड सिक्योरिटी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं. हर इंसान इस मिशन का हिस्सा बन सकता है. घर में उतना ही खाना आप खरीदिए जितने की आपको जरूरत है. वहीं पर जो लेफ्ट ओवर्स हैं उनको रीयूज करना और फूड को सही तरीके से स्टोर करना छोटी लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कदम है. वहीं वाटर कंजर्वेशन भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक अहम हिस्सा है. फार्मिंग दुनिया की पानी का बहुत बड़ा हिस्सा यूज करती है. अगर पानी का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो फ्यूचर में पानी की कमी पैदा हो सकती है. इसीलिए मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम का यूज बहुत जरूरी है. देखिए, आप और हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज भी एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर रहा है. फिर चाहे एक्सट्रीम हीट हो, सूखा हो, बाढ़ हो, ये सारी चीजें क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती हैं. फार्मर्स के लिए नई टेक्निक्स और क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की जरूरत है ताकि फूड प्रोडक्शन और ज्यादा बेहतर हो. कतर जैसे ममालिक में फूड सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए लोकल फार्मिंग और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है. इससे इम्पोर्टेड फूड पर डिपेंडेंसी जो है वो कतर की कम हो रही है और लोकल प्रोडक्शन बढ़ रहा है. वहीं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मर्स की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट हो, बिजनेसेस हो, कंज्यूमर्स हो, सबको मिलकर काम करना होगा. ऐसे स्कूल्स में भी अब देखा जाए तो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कम्युनिटीज में एजुकेशन कैंपेन्स भी जो है वो चलाए जाते हैं. तो दोस्तों, फ्यूचर का जो फूड सिस्टम है वो स्मार्ट और सस्टेनेबल होगा, होना चाहिए. टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ हर इंसान को हेल्दी फूड मिल सके और एनवायरमेंट भी महफूज रहे. आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि दोस्तों, फूड सिक्योरिटी सिर्फ खाने का मसला नहीं है, ये हेल्थ का भी मसला है, ये इकोनॉमी का भी मसला है और शायद सस्टेनेबल फ्यूचर का एक बड़ा मसला। अगर हम आज सही फैसले करेंगे तो कल की नस्लें भी बेहतर और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगी। कल दोस्तों आज के लिए इतना ही कहूंगी। अब नेक्स्ट सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
0: आप सुन रहे हैं FM 107
3: FM 107
1: दिल से देसी।

0: Midnight Melodies, only on FM 107. Dil Se Desi.
1: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर न करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।